नमस्कार। मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलो हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। आज गुरुवार है। शक संवत 1948 के श्रावण मास की 8वीं तिथि, तदनुसार 30 जुलाई सन 2026। इस समय 5:57 होने को हैं। अब हमारी प्रातःकालीन सभा आरंभ होती है।

0: ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। सुबह के 6 बजने को हैं। थोड़ी ही देर में हिंदी में समाचार हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। लोकसभा ने लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक में 10 वर्ष तक के कारावास, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और अपराधियों की संपत्ति जब्त करने का प्रावधान है। मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए प्रत्येक राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश को दैनिक सुनवाई के लिए विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित करने का आदेश दिया गया है। विधेयक के अनुसार अपराधों की जांच पुलिस थाने में सूचना दर्ज होने की तारीख से 2 महीने के भीतर पूरी की जानी चाहिए और मुकदमे की सुनवाई आरोप पत्र दाखिल होने की तारीख से 3 महीने के भीतर पूरी होनी चाहिए। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा है कि यह संशोधन कानून को और अधिक सख्त बनाने तथा त्वरित न्याय दिलाने के लिए

0: किया गया है। डॉ सिंह ने बताया कि प्रधानमंत्री ने टास्क फोर्स का भी गठन किया है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस विधेयक के पारित होने पर विद्यार्थियों और युवा अभ्यर्थियों को बधाई दी है। श्री वैष्णव ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि यह विधेयक परीक्षा में होने वाली गड़बड़ियों और अनुचित गतिविधियों पर अंकुश लगाएगा। राज्यसभा ने राष्ट्रीय सम्मान की रक्षा के लिए राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक वंदे मातरम को राष्ट्रीय गान के समान वैधानिक संरक्षण प्रदान करेगा। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि वंदे मातरम के अपमान के लिए अब 3 वर्ष तक की कैद, जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के माध्यम से प्रोजेक्ट कंसर्न इंटरनेशनल इंडिया के साथ एक गैर वित्तीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते का उद्देश्य सार्वजनिक खरीद और बाजार से जुड़े उद्यम विकास के माध्यम से महिला नेतृत्व वाले उद्यमों, विशेष रूप से स्वयं सहायता समूह के नेतृत्व वाले उद्यमियों को सशक्त बनाना है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि नवाचार, उन्नत प्रौद्योगिकियां, स्टार्टअप, लघु और मध्यम उद्यम भारत के आर्थिक विकास के अगले चरण को गति प्रदान करेंगे। नई दिल्ली में आयोजित 22वें जेआरडी टाटा स्मृति व्याख्यान में श्री गोयल ने नवाचार को बढ़ावा देने के लिए कई पहलों का उल्लेख किया, जिनमें 1,00,000 करोड़ रूपये का अनुसंधान, विकास और नवाचार कोष, इंडिया एआई मिशन और दूसरे चरण के सेमी कंडक्टर मिशन शामिल हैं। उन्होंने कहा कि ये पहल देश के नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र को और मजबूत करेंगी और उभरती प्रौद्योगिकियों के विकास में तेजी लाएंगी। नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने सतत विमानन ईंधन का उपयोग करने और अंतर्राष्ट्रीय विमानन के लिए कार्बन ऑफसेटिंग और न्यूनीकरण योजना के कार्यान्वयन के लिए देश की तैयारियों की समीक्षा की। कल नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए श्री नायडू ने अगले वर्ष 1 जनवरी से इस योजना के अनिवार्य चरण से पहले सतत विमानन ईंधन के उत्पादन, मिश्रण, कार्बन अकाउंटिंग और आपूर्ति श्रृंखला विकास के लिए देश की कार्य योजना की समीक्षा की। इस अवसर पर श्री नायडू ने कहा कि सतत विमानन ईंधन नीति का मसौदा अपने अंतिम चरण में है और हितधारकों के साथ परामर्श के माध्यम से इसे अंतिम रूप दिया जा रहा है। बिहार सरकार ने दरभंगा के रायम और मधुबनी के सकरी में बंद चीनी मिलों को फिर चालू करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में कल पटना में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इस प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई। अपर मुख्य सचिव अरविंद कुमार चौधरी ने मंत्रिमंडल के फैसलों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि एक अन्य महत्वपूर्ण फैसले में मंत्रिमंडल ने बिहार खेल नीति 2026 को भी मंजूरी दी है। बैठक में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 97 करोड़ रूपये से अधिक की योजनाओं को लागू करने की भी स्वीकृति दी गई है। वहीं शहरी विकास क्षेत्र में अमृत योजना के दूसरे चरण के अंतर्गत किशनगंज जलापूर्ति परियोजना के लिए 53,71,00,000 रूपये और लखीसराय जलापूर्ति परियोजना के लिए 1,50,96,00,000 रूपये से अधिक की राशि स्वीकृत की गई। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में अशांति लगातार बढ़ रही है। अब तक 40 प्रदर्शनकारियों की मौत हो गई है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय ने प्रदर्शनकारियों की मौत पर चिंता व्यक्त की है। उच्चायुक्त के प्रवक्ता जेरेमी लॉरेंस ने कहा कि एक नागरिक समाज संगठन को अपराधी घोषित करना और सभाओं पर कड़े प्रतिबंध लगाना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण सभा और संगठन के अधिकारों के उल्लंघन के बारे में गंभीर चिंताएं पैदा करता है। राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने पैरा एथलेटिक्स के पुरुषों की 100 मीटर T47 स्पर्धा के फाइनल में स्वर्ण और रजत पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलो हर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है।
2: ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना।

भारत हमारी मातृभूमि है, इसकी मिट्टी, नदियाँ, पर्वत, संस्कृति और परंपराएं हमारी पहचान। जिस प्रकार हमारी माता हमें जन्म देकर पालन पोषण करती है, उसी प्रकार मातृभूमि हमें अन्न, जल, वायु और जीवन के सभी साधन प्रदान करती है।

भगवान शिव का गंगाधर स्वरूप अत्यंत दिव्य और कल्याणकारी माना जाता है। उनके मस्तक पर विराजमान मां गंगा केवल एक नदी नहीं, बल्कि पवित्रता, ज्ञान और ईश्वर की कृपा का प्रतीक हैं। गंगा शिव की शोभा है और शिव गंगा का आधार। दोनों का यह दिव्य मिलन हमें सिखाता है कि जहां शिव हैं वहां शांति है, और जहां गंगा हैं वहां पवित्रता है।

हमारे देश में माँ गंगा को सिर्फ एक नदी नहीं बल्कि माँ का दर्जा दिया गया है। ऐसा माना जाता है कि माँ गंगा में स्नान करने से मन और तन दोनों पवित्र हो जाते हैं। भारत की पावन भूमि पर बहने वाली माँ गंगा केवल एक नदी नहीं बल्कि हमारी आस्था, संस्कृति और सनातन परंपरा की जीवन धारा है।

जैसे चातक पक्षी केवल स्वाति की बूंद का इंतजार करता है, जैसे पानी के बिना मछली तड़पती है, जैसे माँ से बिछड़ा बच्चा रोता है, ठीक वैसी ही छटपटाहट एक सच्चे भक्त के दिल में होती है। जब ये व्याकुलता जागती है तो संसार के सारे सुख, धन दौलत और वैभव फीके लगने लगते हैं।

0: अभी आपने सुना भक्ति संगीत का प्रातःकालीन आयोजन वंदना। ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। आइए सुनते हैं चिंतन। शीर्षक है जल ही जीवन है, जल संवर्धन की आवश्यकता। आलेख चेतन शाह शर्मा का और वाचक हैं रूपाली चव्हाण।
1: कहा गया है, रहिमन पानी राखिए, बिन पानी सब सुन। ये छोटी सी पंक्ति जल के महत्व को बहुत सरलता से समझा देती है। जल केवल एक प्राकृतिक संसाधन नहीं, बल्कि समस्त जीवन का आधार है। पृथ्वी पर चाहे मनुष्य हो, पशु पक्षी हो, वनस्पति हो या सूक्ष्म जीव, सबका अस्तित्व जल पर निर्भर।

0: इसलिए ये कहना बिल्कुल उचित है कि जल ही जीवन है। प्रकृति ने हमें नदियां, तालाब, झीलें और वर्षा का अमूल्य उपहार दिया है, लेकिन आज बढ़ती जनसंख्या, अनियंत्रित शहरीकरण और संसाधनों के अंधाधुंध दोहन के कारण जल संकट एक गंभीर चुनौती बनकर हमारे सामने खड़ा है। जिन नदियों का जल कभी बारहों महीने बहता था, वे आज कई स्थानों पर सिकुड़ रही हैं। भूजल का स्तर लगातार नीचे जा रहा है और अनेक क्षेत्रों में पीने योग्य पानी की उपलब्धता भी चिंता का विषय बनती जा रही है। विडंबना ये है कि हम जल का महत्व तब समझते हैं जब उसकी कमी का सामना करना पड़ता है। घरों में खुला नल बहता रहता है, आवश्यकता से अधिक पानी खर्च किया जाता है और वर्षा के जल को बिना उपयोग के बह जाने दिया जाता है। हम अक्सर भूल जाते हैं कि प्रकृति का प्रत्येक संसाधन सीमित है और उसका विवेकपूर्ण उपयोग हमारी जिम्मेदारी है। जल संवर्धन का अर्थ केवल पानी बचाना नहीं है, बल्कि जल के स्रोतों का संरक्षण और संवर्धन भी है। वर्षा जल संचयन, तालाबों और कुओं का पुनर्जीवन, नदियों की स्वच्छता तथा वृक्षारोपण जैसे उपाय जल संरक्षण के महत्वपूर्ण माध्यम हैं। जब वर्षा का जल भूमि में समाहित होता है, तब भूजल का स्तर बढ़ता है और आने वाली पीढ़ियों के लिए जल का भंडार सुरक्षित रहता है। हमारे पूर्वजों ने जल संरक्षण के अनेक पारंपरिक उपाय विकसित किए थे। गांवों में तालाब, बावड़ियां और कुएं केवल जल स्रोत नहीं थे, बल्कि सामुदायिक जीवन का हिस्सा थे। आज आवश्यकता है कि हम आधुनिक तकनीक के साथ साथ उन पारंपरिक ज्ञान प्रणालियों को भी पुनर्जीवित करें जिन्होंने सदियों तक जल संतुलन बनाए रखा। जल संरक्षण की शुरुआत हमारे अपने घर से हो सकती है। दांत साफ करते समय नल बंद रखना, वाहनों की धुलाई में पानी की बचत करना, रसोई और घरेलू उपयोग में जल का विवेकपूर्ण प्रयोग करना तथा वर्षा जल संचयन को अपनाना, ये छोटे छोटे कदम मिलकर बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। जब प्रत्येक व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी समझेगा, तभी समाज में व्यापक बदलाव संभव होगा। जल केवल आज की आवश्यकता नहीं है, बल्कि भविष्य की सुरक्षा भी है। यदि हमने आज जल को बचाया, तो आने वाली पीढ़ियां हमें धन्यवाद देंगी, लेकिन यदि हमने लापरवाही बरती तो भविष्य हमें क्षमा नहीं करेगा। इसलिए जल संरक्षण किसी एक व्यक्ति, संस्था या सरकार का कार्य नहीं, बल्कि हम सबका साझा दायित्व है। आइए हम संकल्प लें कि जल की प्रत्येक बूंद का सम्मान करेंगे, उसे व्यर्थ नहीं बहने देंगे और अपने आसपास जल संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाएंगे, क्योंकि जब जल सुरक्षित रहेगा तभी जीवन सुरक्षित रहेगा, प्रकृति सुरक्षित रहेगी और हमारा भविष्य भी सुरक्षित रहेगा।
1: अभी आपने सुना चिंतन, जल ही जीवन है, जल संवर्धन की आवश्यकता। आलेख था चेतन शाह शर्मा का और वाचक थी रूपाली चव्हाण। ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। आइए सुनते हैं कार्यक्रम खेती की बातें। विषय है जुलाई माह के समसामयिक कार्य। वाचक हैं तुलसा दरगैया।
2: किसान भाइयों ने राम राम। किसान भाइयों ने जुलाई को महीनों चली रोज न हमारा किसान भाई ने न खरीफ फसल की बुवाई करी भी दी होएगा न कथई बुवाई चली भी रही होएगा। तो इस समय हमारा किसान भाई खेत न बुवाई निराई गुड़ाई न कीट नियंत्रण जैसो कि माहू की रोकथाम जैसा जरूरी काम करी रहेगा। खरपतवार नियंत्रण पर ध्यान देना बहुत जरूरी छे जिका से हमारी फसल की पैदावार अच्छी आवा। भाई रोनी जिन भाई ने न खरीफ फसल जैसे कि सोयाबीन मक्का धान अरहर की बुवाई अभी तक भी नहीं हुई हो तो वो नमी का देखता हुआ तुरंत बुवाई करी दे न बीज उपचार जरूर कर जिकासी शुरुआत में रोग न से अपनी फसल बची सके। बात करा निंदाई गुड़ाई की तो फसल का आसपास जो भी अवांछित घास या खरपतवार हो वो खुरपी से निकाल ही देवा। पहली निराई गुड़ाई का बाद फसल में यूरिया या जो भी अन्य अनुशंसित उर्वरक छे वो डाला, साथ ज वरसात को मौसम छे तो जल निकासी की भी व्यवस्था करा, वरसात सी खेत में पानी नहीं रुक एकालेण अपन मेड़ नप उचित जल निकासी की नाड़ी न बने देवा, कदी बारिश में लंबो अंतराल हुई जाए तो अपन आवश्यकता का अनुसार सिंचाई भी करा, न इना समय कीट न रोग न को भी प्रकोप देखने का मिला तो इना मौसम में अपन फसल विशेषकर सब्जी न दाल न पत्ती खाने वाला कीड़ा या माहू को प्रकोप देखे रोज, कृषि विशेषज्ञ न की सलाह सी उचित कीटनाशक को छिड़काव करा, दीमक सी बचाव का लेना जैविक फपून जसों की मेटाराइजियम को इस्तेमाल गोबर की खाद का साथ मिले न करा। जुलाई का महीना में बरसात होना से कृषि बागवानी न पर्यावरण संरक्षण का लिए भी बहुत महत्वपूर्ण काम हो, न मुख्य रूप से धान की रोपाई, खरीफ फसल की बुवाई, वृक्षारोपण, न वर्षा जल संचयन जैसा कार्य भी हो। खरीफ की फसल की बुवाई तो हमारे किसान भाई ने करी दी, न जी भाई ने नहीं करी होगा वो भी करी देगा, इस समय हमारा खेत न भिंडी लौकी तुरई न ककड़ी की भी बुवाई करी दी होगा किसान भाई ने, साथ पर्यावरण का अनुकूल आम अमरूद नींबू जैसा फलदार पौधा न को रोपण करी हम पर्यावरण का भी स्वच्छ बनी सका। जल निकासी की बात करा तो खेत में जल भराव से फसल का बचावना का लेना उचित निकास वाली नाड़ी न बनावा, उनकी सफाई करा, न समय समय पर मरम्मत भी कराना, वरसात को पानी रोकना का लेना अपन मेड़बंदी करा, वरसात का पानी का खेत में रोकना न रिचार्ज करने को प्रबंधन करा, खेत को पानी खेत में रहेगा तो अपन को सिंचाई का काम आएगा, अपना घर की छत पर भी पानी अपन जमा करी न पाइप न का द्वारा वो पानी का अपन जमीन में उतारी देवा, जेका सी अपनी जमीन में पानी को स्तर बढ़ेगा न वो पानी अपन का बाद में काम आऊंगा। साथ इना महीना में वन महोत्सव भी मनाया जाए, जेका में ज्यादा से ज्यादा पौधा लगाने का बारे में भी जानकारी दी जाए, न भाई बहनों जसो हम कोई भी फसल लगावा उसको बीजोपचार करांगा तो हमका शुरुआत में मतलब जब हमने फसल लगाई हमका पहले पता चली जाएगा कि कहाँ का पौधा स्वस्थ छे, तो उस स्वस्थ पौधा ने को अपना खेत में रोपाई करांगा, वो स्वस्थ पौधा अपना खेत में लगाऊंगा तो हमारी फसल अच्छी होगा, हमारी फसल में कोई कीड़ा व्याधि को प्रकोप भी नहीं लगना को, एकासी बीजोपचार करने के बाद अपनी फसल लगावा, फसल आना का बाद ओका में कभी हमका चारों देखे रहो खरपतवार देखे रहो तो समय समय पर ओकी निंदाई गुड़ाई करा, कभी पानी की लंबी खेच भी जाए पानी नहीं आवा तो बीच बीच में सिंचाई भी करता रहवा, न कभी ज्यादा पानी आई जाए तो उस स्थिति में भी अपना खेत में पानी जमा नहीं हुई होने देवा, क्योंकि पानी जमा होने से क्या होगा कि जो हमारी फसल छे खराब होने लगी जाएगा, एकासी उचित नाड़ी न बने देवा जेकासी वहां को बरसात को पानी अपना खेत में से निकल ही जाए, न अपनो पानी खेत में जमा नहीं हुए, समय समय पर रोका में जो खाद छे उर्वरक छे वो भी अपन डाला, कीट व्याधि न को प्रकोप भी इन समय देखना में आई रो तो कीट व्याधि न का प्रकोप का लेना जो भी वैज्ञानिक न का द्वारा जो दवा न बताई उन्हीं दवानों को प्रयोग करा, समय समय पर अपने खेत की निगरानी करता रहा, जरा भी अपने खेत में से लगा कि कहीं कीट व्याधि को प्रकोप हो रहा है कहीं बीमारी को प्रकोप हो रहा है तो अपना जो भी विशेषज्ञ है उनका से जानकारी लेता रहा, उनकी जानकारी पर अमल करता रहा, उसके अनुसार अपने खेत में खेती का कार्य करांगा तो अपनी फसल अच्छी आवेगा, साथ साथ अपनी फसल को उत्पादन भी आपका मिलेगा, न अपन का कम लागत में ज्यादा से ज्यादा उत्पादन प्राप्त होगा। किसान भाई बहनों हमारो आपसे यज कहूं तो
1: अभी आपने सुना कार्यक्रम खेती की बातें, विषय था जुलाई माह के समसामयिक कार्य, वाचक थी तुलसा दरगैया, ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। आइए अब सुनते हैं श्री रामचरितमानस गान।

राक्षसों तथा पापाचारियों से आतंकित पृथ्वी तथा ब्रह्मा सहित देवताओं ने परम पिता की स्तुति करके उन्हें प्रसन्न किया। तब गंभीर आकाशवाणी हुई, हे मुनि सिद्ध और देवताओं के स्वामी, भयभीत न हो। तुम्हारे कल्याण के लिए मनुष्य रूप धारण करके मैं सूर्यवंश में अवतरित होऊंगा। अदिति तथा कश्यप ने कठोर तपस्या करके मेरा वरदान प्राप्त किया और वे ही कौशल्या तथा दशरथ के रूप में अयोध्या में प्रकट हुए हैं। उन्हीं के घर श्रेष्ठ चार भाइयों के रूप में मैं अपनी परम शक्ति समेत पैदा होऊंगा। आकाश में गूंजती ब्रह्मवाणी अपने कानों सुनकर सभी देवता आश्वस्त हुए।

अभी आपने सुना श्री रामचरितमानस गान। ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। वक्त है कार्यक्रम विवरण का, तो आइए आपको आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की जानकारी दे दें।

आज सुबह 7:20 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम सुनहरे पल। 8:30 पर आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से रिले करेंगे प्रायोजित कार्यक्रम वतन का राग। 9:00 लोक संगीत के कार्यक्रम में हम आपको सुनवाएंगे घीसीलाल पाटीदार के गाए लोकगीत। 9:15 पर सुगम संगीत के कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवाएंगे शान द्वारा गाए कुछ पॉप गीत। 9:30 पर शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत हम आपको सुनवाएंगे केशव रघुनाथ तलेगांवकर का गिटार पर बजाया

महिला कार्यक्रम 1 बजे, लोक संगीत 1:30 पर और सुगम संगीत 1:45 पर। रोजाना शाम 5 बजे हम आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम युववाणी।

5:45 पर आप सुन सकते हैं फिल्म संगीत। 6 बजे आप सुनेंगे NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम। 6:30 पर सुगम संगीत के अंतर्गत पार्श्व गायक शान द्वारा गाए कुछ गीत हम आपको सुनवाएंगे। 6:45 पर लोक संगीत के अंतर्गत घीसीलाल गोपाल जी और साथियों द्वारा गाए लोक गीत आप सुन सकते हैं। शाम 7:20 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम खेती गृहस्थी। रात 8 बजे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हम रिले करेंगे संसद समीक्षा सुर्खियों में। ये कार्यक्रम हम आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से रिले करेंगे 8:15 पर। 8:30 का समय है कार्यक्रम फिल्म संगीत का। 9:15 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम चित्रगीत। 9:30 पर आप सुनिए मन भावन। 10:30 पर शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत हम आपको सुनवाएंगे शुभदा मराठे का गाया राग यमन। ये थी आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की जानकारी।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बढ़ा सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र
2: EM आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचकः जतिन शर्मा। अथ वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी रविवासरे इत्युक्ते अगस्त मासस्य द्वितीय दिनांके मादक मुक्त युव विकसित भारत संकल्पाभियानस्य शुभारंभो विधास्यति। वस्तुतस्तु एतत् मादक पदार्थान् विरुध्य शत सप्ताहात्मकः राष्ट्रव्यापी जनसहभागितान्दोलनं वर्तते। एतस्य अभियानस्य नेतृत्वं माई भारत मञ्चः करिष्यति, यश्च यूनां नेतृत्व क्षमतायाः अथ च सामाजिक सहभागितायाः संवर्धनाय कार्यं करोति। अस्य पदक्षेपस्य उद्देश्यं जागरूकतायाः, सामाजिक सहभागितायाः, सतत जनसहयोगस्य च माध्यमेन यूनां संघटनं कृत्वा मादक मुक्त भारतस्य निर्माणम् इत्यस्ति। लोकसभायां लोकपरीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयकः 26,000 पारितः। अस्योद्देश्यं तावत्

0: परीक्षा प्रकरणेषु वञ्चनायाः निरोधाय कठोर दंड विधानं सहैव द्रुतगति न्यायालयानां स्थापनं इत्यस्ति। अनेन लोकपरीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियमे चतुर्विंशत्यधिक द्विसहस्रतमे संशोधनं विधीयते। अस्मिन् विधेयके दशवर्षात्मकः कारावासः, दशकोटिरूप्यकाणां दण्डः, सहैव सिद्धापराधिनां सम्पत्तेः अधिग्रहणम् इत्यादीनि प्रावधानानि सन्ति। विधेयकानुसारं प्रत्येकं राज्यम् अथ च केन्द्रशासितप्रदेशः दैनन्दिनवादश्रवणाय विशेषद्रुतगतिन्यायालयानां स्थापनं करिष्यति। चर्चायाः उत्तरं प्रददन् कार्मिक राज्यमन्त्री डॉ जितेन्द्र सिंहः न्यगादीत् यत् नियमस्य सुदृढीकरणाय सहैव पत्रगोप्यता भंग प्रकरणेषु शीघ्र न्यायार्थम् एतत् संशोधनम् आनीतम्।
1: सरकार की प्रतिबद्धता का आप इसी बात से अनुमान लगा सकते हैं कि इसी विधेयक के लाने के साथ ही साथ हमारे लॉ मिनिस्टर्स की ओर से भी एक प्रस्ताव जारी कर दिया गया। स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट्स है, इनको स्थापित करने का भी क्रम प्रारंभ किया जाए। उसमें दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड में पहले ही इन्होंने गठित कर दिया है और आने वाले दिनों में बाकी स्थानों पर।
0: राज्यसभायां षड्विंशत्यधिक द्विसहस्रतमस्य राष्ट्रिय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयकं पारितम्। एतत् विधेयकं राष्ट्रिय गौरव अपमान निवारण अधिनियमे एकसप्तत्यधिक एकोनविंशतितमे संशोधनं करोति। अस्य विधेयकस्योद्देश्यं वन्दे मातरम् इत्यस्मै राष्ट्रगीताय अपि राष्ट्रगानेन समं वैधानिक सुरक्षा प्रदानम् इत्यस्ति। एतादृशेषु अपराधेषु त्रिवर्षात्मकः कारावासः, द्रव्यदण्डः उत वा उभयमपि भवितुमर्हतः। उत्तरप्रदानकाले गृहराज्यमन्त्री नित्यानन्दरायः प्रावोचत् यत् एतत् संशोधनं भारतस्य आत्मने राष्ट्रियचेतनायै, सांस्कृतिकन्यासाय सहैव स्वतन्त्रतासंग्रामस्य आदर्शेभ्यश्च सामूहिक प्रतिबद्धतां दर्शयति।
2: राष्ट्रीय गीत अपमान पर इस विधेयक के माध्यम से दंडनीय प्रावधान करने का विचार हुआ है। वर्तमान संशोधन का उद्देश्य राष्ट्र गीत वंदे मातरम के जानबूझकर किए गए अपमान को भी उसी प्रकार के दंडनीय बनाया जाए जैसा कि वर्तमान कानून में है। हर भारतवासी के राष्ट्र प्रेम का उद्घोष है वंदे मातरम, विकसित भारत का संकल्प है वंदे मातरम।
0: ओडिशा राज्ये अतिवृष्ट्या उच्छ्वसित नदीभिश्च विकट जलौघ स्थितिः दुरापद्यते। अस्माद् हेतोः चत्वारः जनाः मृत्युमुपगताः, सहैव चतुर्लक्षाधिकाः जनाः प्रभाविताः अभवन्। श्रावणमासस्य वार्षिकी कावड़यात्रा अद्यारभ्य प्रवर्तते। अस्यां यात्रायां भक्ताः गंगाजलमानेतुम् उत्तराखण्डस्य हरिद्वार, गोमुख, गंगोत्री इत्यादिषु तीर्थस्थलेषु गच्छन्ति। अस्याः विशालयात्रायाः सुव्यवस्थायै उत्तराखण्ड उत्तरप्रदेश सर्वकाराभ्यां व्यापक प्रबन्धाः प्रकल्पिताः इति वार्ताः।
3: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। लोकसभा ने लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक में 10 वर्ष तक के कारावास, 10 करोड़ रुपए तक के जुर्माने और अपराधियों की संपत्ति जब्त किए जाने का प्रावधान है। मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए प्रत्येक राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश को दैनिक सुनवाई के लिए विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित करने का आदेश दिया गया है। विधेयक के अनुसार अपराधों की जांच पुलिस थाने में सूचना दर्ज होने की तारीख से 2 महीने के भीतर और मुकदमे की सुनवाई आरोप पत्र दाखिल होने की तारीख से 3 महीने के भीतर पूरी होनी चाहिए। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि ये संशोधन कानून को और अधिक सख्त बनाने तथा त्वरित न्याय दिलाने के लिए किया गया है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस विधेयक के पारित होने पर विद्यार्थियों और युवा अभ्यर्थियों को बधाई दी है। श्री वैष्णव ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये विधेयक परीक्षा में होने वाली गड़बड़ियों और अनुचित गतिविधियों पर अंकुश लगाएगा। राज्यसभा ने राष्ट्रीय सम्मान की रक्षा के लिए

0: राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक वंदे मातरम को राष्ट्रीय गान के समान वैधानिक संरक्षण प्रदान करेगा। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद रॉय ने कहा कि वंदे मातरम के अपमान के लिए अब 3 वर्ष तक की कैद, जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के माध्यम से प्रोजेक्ट कंसर्न इंटरनेशनल इंडिया के साथ एक गैर वित्तीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते का उद्देश्य सार्वजनिक खरीद और बाजार से जुड़े उद्यम विकास के माध्यम से महिला नेतृत्व वाले उद्यमों, विशेष रूप से स्वयं सहायता समूह के नेतृत्व वाले उद्यमों को और सशक्त बनाना है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि नवाचार, उन्नत प्रौद्योगिकियां, स्टार्टअप, लघु और मध्यम उद्यम भारत के आर्थिक विकास के अगले चरण को गति प्रदान करेंगे। नई दिल्ली में आयोजित 22वें जीआरडी टाटा स्मृति व्याख्यान में श्री गोयल ने कहा कि देश को उत्कृष्टता के लिए प्रयासरत रहना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि मेड इन इंडिया उत्पाद गुणवत्ता और प्रतिस्पर्धा के माध्यम से वैश्विक स्तर पर महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त करें। श्री गोयल ने नवाचार को बढ़ावा देने के लिए कई पहलों का उल्लेख किया, जिनमें 1,00,000 करोड़ रूपये का अनुसंधान विकास और नवाचार कोष, इंडिया एआई मिशन और दूसरे चरण के सेमीकंडक्टर मिशन शामिल हैं। नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने सतत विमानन ईंधन का उपयोग करने और अंतर्राष्ट्रीय विमानन के लिए कार्बन ऑफसेटिंग और न्यूनीकरण योजना के कार्यान्वयन के लिए देश की तैयारियों की समीक्षा की। ये योजना अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों से होने वाले कार्बन उत्सर्जन को नियंत्रित करने में मदद करता है। कल नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक में श्री नायडू ने बताया कि सतत विमानन ईंधन नीति का मसौदा अपने अंतिम चरण में है और हितधारकों के साथ परामर्श के माध्यम से इसे अंतिम रूप दिया जा रहा है। बिहार सरकार ने दरभंगा के रायम और मधुबनी के सकरी में बंद चीनी मिलों को फिर चालू करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में कल पटना में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इस प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई। एक अन्य महत्वपूर्ण फैसले में मंत्रिमंडल ने बिहार खेल नीति 2026 को मंजूरी दी। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में अशांति लगातार बढ़ रही है। अब तक 40 प्रदर्शनकारियों की मौत हुई है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय ने प्रदर्शनकारियों की मौत पर चिंता व्यक्त की है। उच्चायुक्त के प्रवक्ता जेरेमी लॉरेंस ने कहा कि एक नागरिक समाज संगठन को अपराधी घोषित करना और सभाओं पर कड़े प्रतिबंध लगाना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के उल्लंघन के बारे में गंभीर चिंताएं पैदा करता है। श्रावण महीने की वार्षिक कांवड़ यात्रा आज से शुरू हो रही है। इस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु गंगा नदी का पवित्र जल लेने के लिए उत्तराखंड के हरिद्वार, गोमुख और गंगोत्री जैसे तीर्थ स्थलों की यात्रा करते हैं। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलो हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है।
2: एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर से प्रसारित हो रहा है शाम 6 बजे।

श्रोताओं, आइए सुनते हैं एक सूचना। इस गुरुवार दिनांक 30 जुलाई 2026 को सुबह 10:32 से 11:02 तक प्रसारित होने वाले सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो डॉक्टर का विषय है हेपेटाइटिस और अन्य लीवर से जुड़ी हुई बीमारियां और उनका उपचार।

श्रोता इस विषय से संबंधित अपनी जिज्ञासाएं और प्रश्न स्टूडियो में उपस्थित डॉक्टर अमित अग्रवाल हेपेटोलॉजिस्ट से पूछ सकते हैं। आप हमारा ये कार्यक्रम आकाशवाणी के विविध भारती चैनल FM 101.6 MHz पर सुन सकते हैं। इसके अलावा मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी इस कार्यक्रम को सुना जा सकता है। प्रश्न पूछने के लिए दिन और समय नोट करें। गुरुवार दिनांक 30 जुलाई 2026 यानी आज सुबह 10:32 से 11:02 तक। प्रश्न पूछने के लिए हमारे फोन नंबर हैं 2710223 और 2710224। फोन नंबर एक बार फिर से सुन लीजिए 2710223 और 2710224। इंदौर का STD कोड है 0731। फोन करना ना भूलें। गुरुवार दिनांक 30 जुलाई यानी आज, समय सुबह 10:32 से 11:02 तक। विविध भारती इंदौर के FM 101.6 MHz और मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी इस कार्यक्रम को सुना जा सकता है। सूचना समाप्त हुई।

0: ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। कुछ ही पलों में आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से हम आपको सुनवाएंगे प्रादेशिक समाचार।
1: आकाशवाणी का साकार हुआ सपना, जन जन सब गाएं मिल मधुर।

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार।

नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 अगस्त को करेंगे नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत संकल्प अभियान का शुभारंभ। 100 सप्ताह तक चलेगा जन आंदोलन। ग्वालियर में बनेगा देश का पहला टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन। केंद्र और राज्य सरकार के बीच आज नई दिल्ली में होगा MOU। दतिया विधानसभा उपचुनाव के लिए आज मतदान शांतिपूर्ण। चुनाव के लिए प्रशासन ने की पुख्ता व्यवस्था। और प्रदेश

0: किसान आंदोलन खत्म, राज्य सरकार अब 60% तक खरीदेगी मूंग, मूंग खरीदी की अंतिम तारीख भी बढ़ी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 अगस्त को नशा मुक्त फॉर विकसित भारत संकल्प का शुभारंभ करेंगे। यह अभियान नशाखोरी के खिलाफ 100 सप्ताह का एक राष्ट्रव्यापी जन भागीदारी आंदोलन है। इस अभियान का नेतृत्व माय भारत प्लेटफॉर्म करेगा, जो एक ऑनलाइन युवा नेतृत्व और सामाजिक सहभागिता मंच है। इस मंच का उद्देश्य युवाओं को सशक्त बनाना और उन्हें नेतृत्वकर्ता बनने के लिए प्रेरित करना है। ग्वालियर में देश का पहला टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन स्थापित होने जा रहा है। इसके लिए आज नई दिल्ली में दूरसंचार विभाग और मध्य प्रदेश शासन के बीच एमओयू पर हस्ताक्षर होंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव भी मौजूद रहेंगे। ये प्लग एंड प्ले औद्योगिक क्लस्टर करीब 350 एकड़ में विकसित होगा, जिसमें मोबाइल उपकरण, नेटवर्क इक्विपमेंट और 5G 6G अनुसंधान की सुविधाएं होंगी। भारत सरकार ने इस परियोजना के पहले चरण के लिए करीब 500 करोड़ रुपए का अनुदान स्वीकृत किया है। इस परियोजना से करीब 12 से 15 हजार करोड़ रुपए के निवेश और 5 हजार करोड़ के रोजगार के अवसर मिलने की संभावना है प्रदेश में मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान 7 अगस्त से शुरू होगा। मुख्य सचिव अशोक वर्णवाल ने कलेक्टरों और संभागायुक्तों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर अभियान की तैयारियों की समीक्षा की। मुख्य सचिव बनने के बाद पहली बार कलेक्टरों से संवाद करते हुए उन्होंने अभियान को सर्वोच्च प्राथमिकता से पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि वार्ड और पंचायत स्तर पर इकाइयां बनाकर शिविर से पहले ही लंबित समस्याओं का निराकरण किया जाए। मुख्य सचिव ने बताया कि हर शुक्रवार अधिकारी क्षेत्र का भ्रमण कर योजनाओं की समीक्षा करेंगे। इस दौरान सीएम हेल्पलाइन और जन सुनवाई के लंबित मामलों का भी निपटारा किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बुरहानपुर में आयोजित बलराम कृषि महोत्सव में शामिल होंगे। ये महोत्सव किसानों को आधुनिक तकनीक और वैज्ञानिक खेती से जोड़ने के लिए हर जिले में आयोजित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने 15 जुलाई को इंदौर से इस राज्य स्तरीय महोत्सव की शुरुआत की थी। सरकार ने वर्ष 2026 को कृषक कल्याण वर्ष घोषित किया है। इस महोत्सव में किसानों को ड्रोन से खाद छिड़काव और स्मार्ट सिंचाई जैसी तकनीकों की जानकारी दी जा रही है। दतिया विधानसभा उपचुनाव के लिए आज सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो गया है। ये शाम 6 बजे तक चलेगा। कल सुबह पॉलिटेक्निक कॉलेज से 291 मतदान केंद्रों के लिए निर्वाचन सामग्री का वितरण किया गया। दतिया विधानसभा के 36 सेक्टरों में सेक्टर अधिकारियों के साथ चिकित्सा अधिकारी भी तैनात किए गए हैं। स्वीप आइकन सारिका खारू ने मतदाताओं से अपने मताधिकार का प्रयोग करने की अपील की। भाजपा ने संत गुरु रविदास महाराज की 650वीं जयंती पर कल देशव्यापी समरसता संकल्प अभियान का शुभारंभ किया। इस मौके पर पूरे प्रदेश में एक साथ दीपोत्सव आयोजित कर संत रविदास को श्रद्धांजलि दी गई। यह अभियान अगले साल 20 फरवरी तक चलेगा। वहीं दूसरी तरफ सीहोर जिले के कुबेरेश्वर धाम में 6 दिवसीय गुरु पूर्णिमा महोत्सव कल सम्पन्न हुआ। इस महोत्सव में लाखों श्रद्धालु शामिल हुए। रेल विभाग ने श्रद्धालुओं की सुविधा को देखते हुए सीहोर स्टेशन पर 10 अतिरिक्त ट्रेनों का ठहराव भी उपलब्ध कराया। समाचारों में वक्त है ब्रेक का।
1: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। राज्यसभा ने राष्ट्रीय सम्मान की रक्षा के लिए राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक वंदे मातरम को राष्ट्रीय ज्ञान के समान वैधानिक संरक्षण प्रदान करेगा। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा है कि वंदे मातरम के अपमान के लिए अब 3 वर्ष तक की कैद, जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है।
2: राष्ट्रीय गीत अपमान पर इस विधेयक के माध्यम से दंडनीय प्रावधान करने का विचार हुआ है। वर्तमान संशोधन का उद्देश्य राष्ट्र गीत वंदे मातरम के जानबूझकर किए गए अपमान को भी उसी प्रकार के दंडनीय बनाया जाए जैसा कि वर्तमान कानून में है। हर भारतवासी के राष्ट्र प्रेम का उद्घोष है वंदे मातरम, विकसित भारत का संकल्प है वंदे मातरम।
0: प्रदेश में किसान आंदोलन के बीच राज्य सरकार ने बड़ी राहत दी है। सरकार अब हर पात्र किसान से 25 के बजाय 60 फीसदी तक मूंग खरीदेगी। नर्मदापुरम, सीहोर और हरदा जैसे जिलों में करीब 3 क्विंटल प्रति एकड़ खरीदी होगी। कल रात मंत्रालय में हुई बैठक के बाद किसानों ने अपना आंदोलन समाप्त कर दिया है। सरकार ने स्लॉट बुकिंग की अवधि बढ़ाकर 10 अगस्त कर दी है। मूंग खरीदी की अंतिम तारीख अब 20 अगस्त होगी। कृषि मंत्री एंदल सिंह कंसाना ने बताया कि ई टोकन व्यवस्था की समस्याओं के समाधान के लिए एक उच्च स्तरीय समिति भी बनाई गई है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि भारतीय संस्कृति में गुरु को हमेशा उच्च स्थान दिया गया है। मुख्यमंत्री कल देर शाम उज्जैन से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मंदसौर में आयोजित गुरु पूर्णिमा कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने उज्जैन के सांदीपनी आश्रम की महत्ता का जिक्र करते हुए कहा कि सांदीपनी विद्यालय शिक्षा के क्षेत्र में देश में सर्वश्रेष्ठ स्थान बना रहे हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश में 25,000 करोड़ रूपये की राशि से सांदीपनी विद्यालय शुरू किए जा रहे हैं। उन्होंने मंदसौर में गौ संरक्षण कार्यक्रम चला रहे गुरु पंडित भीमा शंकर शास्त्री की भी सराहना की।
3: 60 सांदीपनी विद्यालयों की सौगात मिल रही, 39 शिक्षा विभाग के और 21 जनजाति विभाग के। सरकारी स्कूल बारिश के समय तो लगते ही नहीं थे, लगे तो टाट पट्टी घर से ले जाना पड़ती थी या टाट का बोरा घर से ले जाना पड़ता था, बड़ा कठिन दौर रहता था। इसलिए ये मानवता के दृष्टिकोण से भी हमने अपने विद्यालयों का नाम सांदीपनी विद्यालय रखा है। 2 साल के अंदर जो पहले और दूसरे चरण के विद्यालय बन रहे हैं, 25,500 करोड़ की लागत हमारी सरकार के माध्यम से खर्च करने वाले, जोरदार अभिनंदन कर 25,500 करोड़ के।
0: प्रदेश में नशे से दूरी है जरूरी 2.0 अभियान अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बना रहा है। बड़वानी पुलिस ने जिले के विद्यालयों में चित्रकला और स्लोगन लेखन प्रतियोगिताएं आयोजित की, जिनमें विद्यार्थियों ने 16,700 ड्राइंग शीट्स तैयार की हैं। वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन ने इस पहल को मान्यता देते हुए बड़वानी पुलिस का नाम रिकॉर्ड में दर्ज किया है। सावन माह की शुरुआत आज से हो गई है। इसका समापन 28 अगस्त को होगा। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में हर दिन करीब 4 लाख श्रद्धालुओं के पहुंचने का अनुमान है। महाकाल की पहली सवारी 3 अगस्त को निकलेगी, जबकि अंतिम राजसी सवारी 7 सितंबर को होगी। राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने पैरा एथलेटिक्स में इतिहास रच दिया है। पुरुषों की 100 मीटर T47 स्पर्धा में भारत के दिलीप महादू गावित ने स्वर्ण और मोहम्मद बासिल मोर सिंगनाथन ने रजत पदक जीता। इससे पहले मुरली श्री शंकर ने पुरुषों की लंबी कूद में रजत पदक जीता। वे राष्ट्रमंडल खेलों में इस स्पर्धा में 2 बार पदक जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। अब कुछ समाचार संक्षेप में। भोपाल में 5 से 8 अगस्त तक ब्रिक्स सांस्कृतिक सम्मेलन होगा, इसके लिए शहर में तैयारियां जारी हैं। इंदौर में 3 अगस्त को रोजगार मेला लगेगा, इसमें युवाओं को नौकरी और स्वरोजगार की जानकारी दी जाएगी। खंडवा में नशे से दूरी है जरूरी 2.0 अभियान के तहत जनजागरूकता कार्यक्रम हुए। आगरमालवा के नए कलेक्टर डॉ. शेर सिंह मीना ने अधिकारियों की बैठक ली, उन्होंने योजनाओं की प्रगति भी जानी। अशोकनगर में गुरु पूर्णिमा पर सांदीपनी विद्यालय का लोकार्पण हुआ, ये एक मॉडल उच्चतर माध्यमिक विद्यालय है। सतना में श्रमिकों के लिए आयुष्मान कार्ड शिविर लगाया जा रहा है, इससे उन्हें मुफ्त इलाज मिल सकेगा। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन दोपहर 2:10 पर। नमस्कार।

मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलो हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। श्रोताओं, आइए सुनते हैं कार्यक्रम सुनहरे पल।

श्रावण मास की इस पहली सुबह में हम हमारे श्रोताओं को ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं और शुरू करते हैं कार्यक्रम सुनहरे पल। स्वीकार कीजिए अमृता का नमस्कार। आज की ये सुबह लग रही है ना कुछ खास, मानो

प्रकृति की शुभता में शिवत्व घुल गया हो। हमारा मन मस्तिष्क जैसे स्वाभाविक रूप से उमंगित हो गया हो, आध्यात्मिक हो गया हो, और क्यों ना हो, प्रकृति में एक नई ऊर्जा का संचार जो हो रहा है, ऐसे में मन का विस्तार कीजिए, खुली बाहों से स्वागत कीजिए सावन का, यकीनन आप ऊर्जा से भर जाएंगे। कार्यक्रम के हर गीत को सुनिए और सावन के रंग में रंग जाइए।

सावन वर्ष का वह मनभावन महीना जब प्रकृति अपने सुंदर स्वरूप में दिखाई देती है। आकाश में घिरे काले बादल, धरती पर बिछी हरियाली की चादर, पेड़ों पर लहराती डालियां और पत्तों पर ठहरी वर्षा की बूंदें, मानो सृष्टि का हर कण जीवन के लिए उत्सव का गीत गा रहा हो। सावन केवल ऋतु नहीं बल्कि भावनाओं का एक अनमोल संसार है। यह वह समय है जब सूखी धरती वर्षा की फुहारों से मुस्कुरा उठती है। खेतों में लहराती फसलें किसानों के चेहरे पर आशा की किरण बनकर चमकते हैं। नदियां, तालाब, झरने नव जीवन से भर उठते हैं और कोयल मधुर कूक करती है। पपीहे की पुकार और मोर का मनमोहक नृत्य वातावरण को संगीत से सराबोर कर देता है। ऐसे में सावन में विरह का सताना भी वाजिब है, और जब विरह सताता है तो हृदय कुछ यूं गाता है।

सावन का संबंध केवल प्रकृति से नहीं बल्कि प्रेम से भी उतना ही गहरा है। यह मिलन की आकांक्षा, यादों की मिठास और भावनाओं की कोमल अभिव्यक्ति का मौसम है। झूलों की मस्ती, मेहंदी की महक, कांच की चूड़ियों की खनक और मल्हार की सुर लहरिया प्रेम के अनगिनत रंगों को सजीव कर देती है। विरह में डूबे मन को यह ऋतु प्रियतम की याद दिलाती है तो मिलन के क्षणों को मधुर भी बनाती है। और जब मिलन होता है तो मन झूम उठता है और कहता है, जिया जब झूमे तभी सावन है।

0: भारतीय साहित्य, लोकगीतों और संगीत में सावन का विशेष स्थान रहा है। कवियों ने इसे प्रेम, सौंदर्य और प्रकृति के अद्भुत संगम के रूप में चित्रित किया है। शायद यही कारण है कि सावन आते ही मन अनायास गुनगुनाने लगता है और हर दिल में नई उमंग, नई आशा और नई ऊर्जा का संचार होने लगता है। आइए इस सावन हम भी प्रकृति के और निकट हो जाएं, वर्षा की हर बूंद का स्वागत करें, हरियाली का सम्मान करें और अपने रिश्तों में प्रेम, अपनापन और संवेदनाओं की नई फुहार भरें।
1: तालियों के शोर में एक गुमसुम खामोशी भी थी, एक ऐसी खामोशी जो घटाओं के बरसने से पहले सुनाई देती है। आरती की छलकी हुई आंखों में वो खामोशी यूं ठहर गई थी जैसे कह रही हो, अब के न सावन बरसे, अब के बरस तो बरसेंगी अखियां, अब के न सावन बरसे।

वर्षा की रिमझिम फुहारें जब धरती के आंचल को स्पर्श करती है तब प्रकृति मानो नव जीवन का उत्सव मनाने लगती है। यही तो है सावन, हरियाली, उमंग, प्रेम और संवेदनाओं का वह मनभावन महीना जिसकी प्रतीक्षा केवल मनुष्य नहीं समूची सृष्टि करती है। सावन के आगमन के साथ ही दिशाएं मेघों के श्यामल रंग में रंग जाती है, हवा में भीगी मिट्टी की सौंधी महक घुल जाती है, वृक्षों की डालियां वर्षा के बूंदों पर स्नान करती है और हरी भरी हो उठती है। कहीं मोर के पंख फैलाकर नृत्य करते देखा जा सकता है तो कहीं पपीहे की पुकार में वर्षा की रागिनी में नया स्वर जोड़ देता है। ऐसा प्रतीत होता है मानो प्रकृति स्वयं किसी अदृश्य संगीतकार के निर्देशन में जीवन का अनुपम संगीत रच रही हो।

आकाश में उमड़ते घुमड़ते बादल, रिमझिम बरसती वर्षा, मिट्टी की सौंधी सुगंध और मंद मंद बहती पुरवाई, मानो सृष्टि स्वयं शिव की आराधना में लीन हो गई हो। श्रावण का महीना भगवान शिव को समर्पित माना गया है। भारतीय मान्यता है कि इस माह में की गई श्रद्धा, उपासना और जलाभिषेक विशेष फलदायी होती है। गंगा जल, निर्मल जल, बेलपत्र, धतूरा, आक और पुष्प अर्पित कर श्रद्धालु भोलेनाथ का पूजन करते हैं। यह केवल पूजा का विधान नहीं, बल्कि प्रकृति के प्रति कृतज्ञता और जीवन में संयम, सरलता और संतुलन का संदेश भी है। भगवान शिव को देवों के देव, महादेव और आशुतोष कहा गया है। ऐसे आराध्य जो निष्कपट भक्त से शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। उनके मस्तक पर विराजमान चंद्र

चंद्रमा हमें शीतलता का संदेश देता है। जटाओं से अवतरित होती गंगा जीवन की पवित्रता का, कंठ में धारण किया गया विष त्याग और लोक कल्याण का, और ध्यान मग्न स्वरूप आत्मसंयम और आंतरिक शांति का प्रतीक बन जाता है।

गांवों की पगडंडियों से लेकर नगरों के शिवालयों तक हर ओर हर हर महादेव और ओम नमः शिवाय का पावन स्वर वातावरण को आध्यात्मिक ऊर्जा से भर देता है। कांवड़ यात्रा हो, शिवालयों की आरती हो या सावन के मधुर लोकगीत, हर परंपरा भारतीय संस्कृति की समृद्ध विरासत का परिचय देती है। आइए इस श्रावण मास में हम केवल पूजा अर्चना ही नहीं बल्कि भगवान शिव के आदर्शों को भी अपने जीवन में स्थान दें। सरलता, सहिष्णुता, करुणा, प्रकृति के प्रति सम्मान और समस्त प्राणियों के कल्याण की भावना, यही है शिवत्व और यही श्रावण का सच्चा संदेश है। सावन और बारिश का वो नाता है कि अगले गीत में गुलजार साहब ने बरसती आंखों के लिए बड़ा खूबसूरत सा शब्द कहा है, सावनी अखियां। आइए सुनते हैं।

हमारे फिल्मी गीतों ने भी सावन के रंग को बड़े स्नेह से सहेजा है। कहीं रिमझिम फुहारें तो कहीं प्रेम की पहली आहट सुनाई देती है, तो कहीं विरह की टीस भी है। सावन में उमंगित मन न जाने क्या क्या इरादे रखता है।

उमंगित रहिए, तरंगित रहिए, शिव की शरण में रहिए और सावन का भरपूर आनंद लीजिए। और इजाजत दीजिए अमृता को। नमस्कार।

0: अभी आपने सुना कार्यक्रम सुनहरे पल, ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। समाचार प्रभात के लिए आइए आपको ले चलते हैं आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र।
1: बेटा, मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
4: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे ये सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
5: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीष शर्मा। मुख्य समाचार। लोकसभा ने लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पारित किया। विधेयक में प्रश्न पत्र लीक मामले में दोषी पाए जाने पर 10 साल तक कारावास का प्रावधान। बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश की 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए मतदान जारी। बिहार सरकार ने दरभंगा के रायम और मधुबनी के सकरी में बंद चीनी मिलों को फिर से खोलने का निर्णय लिया। लाल सागर संकट और वैश्विक उथल पुथल के बावजूद भारत के व्यापारिक निर्यात में 15% की वृद्धि। श्रावण महीने की वार्षिक कांवड़ यात्रा आज से शुरू और राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने पैरा एथलेटिक्स में पुरुषों की 100 मीटर T47 स्पर्धा का स्वर्ण और रजत पदक जीतकर रचा इतिहास।

0: और अब समाचार विस्तार से। लोकसभा ने लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक में प्रश्न पत्र लीक मामले में दोषियों को 10 वर्ष तक के कारावास और 10 करोड़ रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त अपराधियों की संपत्ति भी जब्त कर ली जाएगी। मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए प्रत्येक राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश को दैनिक सुनवाई के लिए विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित करने का आदेश दिया गया है। विधेयक के अनुसार अपराधों की जांच पुलिस थाने में सूचना दर्ज होने की तारीख से 2 महीने के भीतर और मुकदमे की सुनवाई आरोप पत्र दाखिल होने की तारीख से 3 महीने के भीतर पूरी होनी चाहिए। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि ये संशोधन कानून को और अधिक सख्त बनाने और त्वरित न्याय दिलाने के लिए किया गया है।
1: इसी विधेयक के लाने के साथ ही साथ हमारे लॉ मिनिस्टर्स की ओर से भी एक प्रस्ताव जारी कर दिया गया। स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट्स है, इनको स्थापित करने का भी क्रम प्रारंभ किया जाए। उसमें दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड में पहले ही इन्होंने गठित कर दिया है और आने वाले दिनों में बाकी स्थानों पर।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने यह विधेयक पारित होने पर देश के प्रत्येक विद्यार्थी को बधाई दी है। श्री शाह ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यह विधेयक लोक परीक्षाओं की शुचिता भंग करने वालों को कड़ी सजा देने वाले पुख्ता प्रावधानों के माध्यम से देश के युवाओं के सपनों और आकांक्षाओं की रक्षा करता है। उन्होंने आश्वासन दिया कि नरेंद्र मोदी सरकार विद्यार्थियों के भविष्य को खतरे में डालने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शेगी नहीं और उन्हें कानून के पूर्ण दंड का सामना कराने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। अपने संदेश में शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि इस विधेयक से परीक्षा में होने वाली धांधली से निपटने के लिए सख्त कानूनी ढांचा तैयार हो गया है। उन्होंने कहा कि इस विधेयक का उद्देश्य पेपर लीक के तंत्र को खत्म करना और परीक्षा प्रक्रिया में पारदर्शिता, विश्वसनीयता और निष्पक्षता को बढ़ाना है। राज्यसभा ने राष्ट्रीय सम्मान की रक्षा के लिए राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक वंदे मातरम को राष्ट्रीय गान के समान वैधानिक संरक्षण प्रदान करेगा। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद रॉय ने कहा कि वंदे मातरम के अपमान के लिए अब 3 साल तक की कैद, जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है। बिहार सरकार ने दरभंगा के रायम और मधुबनी के सकरी में बंद चीनी मिलों को फिर से चालू करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में कल पटना में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इस प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई।
2: अपर मुख्य सचिव अरविंद कुमार चौधरी ने मंत्रिमंडल के फैसलों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि एक अन्य महत्वपूर्ण फैसले में मंत्रिमंडल ने बिहार खेल नीति 2026 को मंजूरी दी है। बैठक में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 97 करोड़ रुपए से अधिक की योजनाओं को लागू करने की भी स्वीकृति दी गई। शहरी विकास क्षेत्र में अमृत योजना के दूसरे चरण के अंतर्गत किशनगंज जलापूर्ति परियोजना के लिए 53 करोड़ 71 लाख रुपए और लखीसराय जलापूर्ति परियोजना के लिए 1 अरब 50 करोड़ 96 लाख रुपए से अधिक की राशि स्वीकृत की गई। मंत्रिमंडल ने राज्य के सभी जिलों में पक्का वर्मी कंपोस्ट, गोबर बायोगैस और वाणिज्यिक वर्मी कंपोस्ट इकाइयां स्थापित करने का भी निर्णय लिया है। समाचार कक्ष से जया भारती।
0: बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश में विधानसभा के 3 निर्वाचन क्षेत्रों में उपचुनाव के लिए मतदान जारी है। बिहार में बांकीपुर, गुजरात में मंजलापुर और मध्य प्रदेश में दतिया निर्वाचन क्षेत्रों के लिए वोट डाले जा रहे हैं। मतदान आज सवेरे 7 बजे शुरू हुआ और शाम 6 बजे तक चलेगा। गुजरात में मंजलापुर विधानसभा सीट के लिए भारतीय जनता पार्टी ने सतीश पटेल को उम्मीदवार बनाया है, जबकि कांग्रेस ने भीखा भाई रवारी को खड़ा किया है। मध्य प्रदेश में दतिया सीट राजेंद्र भारती के अयोग्य घोषित होने के कारण रिक्त हुई है। वहीं बिहार के बांकीपुर में उपचुनाव भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन के राज्यसभा के लिए चुने जाने और ये सीट छोड़ने के बाद कराया जा रहा है। एक रिपोर्ट।
3: बांकीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए सभी 164 मतदान केंद्रों के 422 बूथों पर सुबह 7 बजे से शांतिपूर्वक मतदान चल रहा है। मतदान शाम 5 बजे तक चलेगा। लंबे समय से भाजपा का गढ़ रही बांकीपुर सीट पर इस बार कुल 25 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं, जहां कुल 3,79,616 मतदाता सभी उम्मीदवारों की चुनावी किस्मत का फैसला करेंगे। हालांकि मुख्य मुकाबला भाजपा के नीरज कुमार, जन स्वराज के

0: प्रशांत किशोर और राष्ट्रीय जनता दल की रेखा कुमारी के बीच माना जा रहा है। उपचुनाव में एक तरफ जहां भाजपा ने अपनी परंपरागत सीट पर करार रखने के लिए पूरी ताकत लगाई है, वहीं जनसुराज भी इस चुनाव में जीत के जरिए शहरी मतदाताओं के बीच अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश में है। राजद भी अपने पारंपरिक जनाधार के सहारे मुकाबले को दिलचस्प बना रहा है। सविता पारेख, आकाशवाणी समाचार, पटना।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
2: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1455 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि लाल सागर संकट और वैश्विक उथल पुथल के बावजूद चालू वित्त वर्ष में अब तक भारत के माल निर्यात में 15% की वृद्धि दर्ज की गई है। श्री गोयल ने जेआरडी टाटा स्मारक व्याख्यान देते हुए कहा कि बढ़ते भू राजनैतिक तनाव और वैश्विक व्यापार मार्गों में व्यवधान के बावजूद देश का माल निर्यात मजबूत बना हुआ है। उन्होंने कहा कि भारत का निर्यात देश की आर्थिक बुनियाद की मजबूती को दर्शाता है, जबकि दुनिया भर के व्यवसाय पश्चिम एशिया में संघर्ष और प्रमुख शिपिंग गलियारों में व्यवधान से पैदा अनिश्चितता से जूझ रहे हैं। श्री गोयल ने कहा कि चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में लगातार वैश्विक चुनौतियां बनी हुई हैं, जिनमें कच्चे तेल, पेट्रोल, डीजल और गैस बाजारों में अस्थिरता, साथ ही होर्मुज जलडमरू मध्य के आसपास की अनिश्चितता और लाल सागर संकट शामिल हैं। मध्य प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार के दूरसंचार विभाग के बीच आज नई दिल्ली में एक समझौते पर हस्ताक्षर किए जाएंगे, जिसके अंतर्गत भारत का पहला दूरसंचार विनिर्माण क्षेत्र मध्य प्रदेश के ग्वालियर में स्थापित किया जाएगा। अमेरिका में 2022 में सलमान रुश्दी पर हुए चाकू हमले के मामले में एक व्यक्ति को संघीय आतंकवाद के आरोपों में दोषी ठहराया गया है। रुश्दी को उनके उपन्यास द सैटेनिक वर्सेस को लेकर दर्शकों से जान से मारने की धमकियां मिल रही थी। जूरी ने हादी मटार को अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद समेत सभी आरोपों में दोषी पाया। 28 वर्षीय मटार पहले से ही अगस्त 2022 में एक एम्फी थिएटर के मंच पर हुए हमले में हत्या के प्रयास के लिए आरोप में न्यूयॉर्क की जेल में 25 साल के लिए कैद में है। संघीय दोष सिद्धि में आजीवन कारावास की सजा भी शामिल है। लेखकों की सुरक्षा पर बात करने वाले रुश्दी पर दर्शकों के सामने 15 बार चाकू से हमला किया गया। वे गंभीर रूप से घायल हो गए थे और उनकी दाहिनी आंख की रोशनी चली गई थी। अमेरिका ने कुछ समय के युद्ध विराम के बाद ईरान पर हवाई हमले फिर से शुरू कर दिए हैं। ये हमले उस समय किए गए हैं जब ईरान ने सप्ताह के शुरुआत में जॉर्डन में एक अमरीकी सैन्य अड्डे पर बैलिस्टिक मिसाइलें दागी थी। श्रावण महीने की वार्षिक कांवड़ यात्रा आज से शुरू हो रही है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: कांवड़ यात्रा को लेकर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में यात्रियों की सहूलियत को ध्यान में रखते हुए एनसीआरटीसी ने नमो भारत ट्रेनों के फेरे बढ़ाने का फैसला किया है। देवघर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए रेलवे प्रशासन ने गोरखपुर से 2 श्रावणी मेला स्पेशल ट्रेनों की घोषणा की है। अयोध्या में प्रशासनिक अधिकारियों ने राम की पैड़ी और नया घाट क्षेत्र का निरीक्षण किया। वहीं वाराणसी में श्री काशी विश्वनाथ धाम मंदिर ट्रस्ट के सीईओ विश्वभूषण मिश्र ने बताया कि यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा के ये विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने पैरा एथलेटिक्स में पुरुषों की 100 मीटर T47 स्पर्धा के फाइनल में स्वर्ण और रजत पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। भारत के दिलीप महादुगावित ने 10.71 सेकंड का समय लेकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया, जबकि

हमारे देश में स्वाधीनता का सूर्योदय किसी एक दिन का चमत्कार नहीं था, वो असंख्य देशभक्तों के स्वयं जलकर प्रकाश बनने के त्याग का परिणाम था। उस पावन प्रभात की पहली किरण में अनगिनत क्रांतिवीरों के रक्त की आभा थी। स्वतंत्रता की हर

सांस में उनके बलिदान की सुगंध थी और मुक्त गगन में लहराते तिरंगे की हर लहर में उनके राष्ट्र प्रेम का स्पंदन था। कितने ही ऐसे सपूत हुए जिन्होंने अपने सपनों को मातृभूमि के चरणों में अर्पित कर दिया। किसी ने यौवन की मुस्कान त्याग दी, किसी ने परिवार का स्नेह, किसी ने सुख सुविधाओं का संसार, तो किसी ने अपने प्राणों का अमूल्य उपहार। और सबसे बड़ी बात ये कि वो इतिहास के पन्नों में अपना नाम अंकित करने नहीं निकले थे। उनका तो एकमात्र स्वप्न था कि भारत स्वाधीन हो, भारत आत्म गौरव से आलोकित हो। एक ऐसे ही महान स्वाधीनता संग्राम सेनानी थे मणिलाल मूलाशंकर पंड्या। एक ऐसे देशभक्त जिन्होंने मौन समर्पण के साथ स्वाधीनता यज्ञ में अपनी आहुति दी और अपना सर्वस्व मातृभूमि के चरणों में अर्पित कर दिया। मणिलाल पंड्या का जन्म 20 जुलाई सन 1911 को गुजरात के पाटन नामक स्थान पर हुआ था। उनके पिता का नाम मूलाशंकर पंड्या था। ये 20वीं सदी का उदय काल था। गुजरात का ऐतिहासिक नगर पाटन उस समय गायकवाड़ राजवंश की छत्रछाया में अपनी सांस्कृतिक चेतना को संजोए हुए था। इसी नगर के एक पारंपरिक ब्राह्मण परिवार में उनकी परवरिश हुई। पिता ने उन्हें धर्म, मर्यादा और विद्या के संस्कार दिए। पराधीन भारत की दशा से उस समय के युवा अत्यंत आक्रोशित थे। बड़ौदा रियासत की प्रगतिशील शिक्षा नीतियों और महाराजा सयाजी राव गायकवाड़ के राष्ट्रीय दृष्टिकोण ने पाटन के युवाओं में एक मूक चेतना भर दी थी। मणिलाल पंड्या ने जब होश संभाला तब उनके कानों में तिलक जी के स्वराज की हुंकार गूंज रही थी, गांधी जी के आंदोलनों का आमंत्रण गूंज रहा था और उनके भीतर एक संकल्प जाग चुका था कि उनका जीवन देश हित में समर्पित होने के लिए है।

मणिलाल पंड्या ने देश की पुकार पर अपने मित्रों के बीच स्वदेशी का प्रचार प्रसार आरंभ कर दिया था। वो स्वदेशी और स्वराज का मंत्र लिए आगे बढ़ने लगे। इसी बीच गांधी जी ने सन 1930 में नमक सत्याग्रह आरंभ किया। 12 मार्च सन 1930 को साबरमती आश्रम से ये सत्याग्रह आरंभ हुआ। गांधी जी ने दांडी के लिए अपनी ऐतिहासिक यात्रा आरंभ की, जो 24 दिनों तक चली और 6 अप्रैल सन 1930 को दांडी समुद्र तट पर नमक कानून भंग के साथ संपन्न हुई। इस ऐतिहासिक दांडी मार्च का प्रभाव पूरे भारत में हुआ और गुजरात तो इसके केंद्र में ही था, इसलिए गुजरात की धमनियों में राष्ट्रवाद का रक्त उबल रहा था। दांडी मार्च के बाद गांधी जी ने मई सन 1930 में ब्रिटिश नमक कर के विरुद्ध धरसाना सत्याग्रह की योजना बनाई। ये स्वाधीनता संग्राम का महत्वपूर्ण अहिंसक विरोध था। दरअसल गांधी जी की गिरफ्तारी के बाद 21 मई सन 1930 को सरोजनी नायडू और इमाम साहब के नेतृत्व में 2500 सत्याग्रहियों ने धरसाना नामक डिपो की ओर शांतिपूर्ण मार्च किया। ये धरसाना नमक कारखाने पर शांतिपूर्ण छापे की योजना थी। ब्रिटिश दमन चक्र चला। जब इन सत्याग्रहियों पर बर्बर लाठियां बरस रही थीं, तब गुजरात के स्वयं सेवकों के जत्थे में मणिलाल मूलाशंकर पंड्या अग्रिम पंक्ति में सीना ताने खड़े थे। पुलिस की लाठी बरसती जा रही थी और महात्मा गांधी की जय का नारा बुलंद होता जा रहा था। सैकड़ों लोग घायल हुए। एक अमेरिकी पत्रकार वेब मिलर ने अपनी रिपोर्ट के जरिए इस घटना को दुनिया के सामने उजागर किया और भारतीय स्वाधीनता आंदोलन की वैश्विक चर्चा के साथ ही ब्रिटिश शासन की अंतर्राष्ट्रीय आलोचना हुई। धरसाना सत्याग्रह ने मणिलाल पंड्या को ब्रिटिश शासन की नजरों में ला दिया। उन्होंने पाटन के स्थानीय बाजारों में घूम घूम कर विदेशी वस्त्रों की होली जलाई। इसके साथ ही शराब की दुकानों के सामने धरनों का कुशल नेतृत्व किया। अंग्रेजी हुकूमत उनकी गतिविधियों से बौखला उठी। उन्होंने मणिलाल पंड्या को गिरफ्तार कर साबरमती सेंट्रल जेल में डाल दिया। एक अहिंसक योद्धा जेल के लोहे की सलाखों के पीछे धकेल दिया गया। जेल में उसे अनेक यातनाएं दी गईं।

रिहा होने के बाद मणिलाल पंड्या का संकल्प और भी फौलादी हो चुका था। 1930 के दशक के उत्तरार्ध में स्वाधीनता आंदोलन एक नए दौर में प्रवेश कर चुका था, जहां एक ओर ब्रिटिश भारत था, वहीं दूसरी ओर देसी रियासतें थीं। पाटन बड़ौदा रियासत का अंग था, जहां उत्तरदायी शासन की मांग को लेकर बड़ौदा राज्य प्रजामंडल तीव्र गति से सक्रिय हो रहा था। मणिलाल पंड्या जानते थे कि किसी भी बड़ी क्रांति के लिए संगठनात्मक मजबूती आवश्यक है। उन्होंने पाटन तथा मेहसाणा के सुदूर ग्रामीण अंचलों का व्यापक दौरा किया। उन्होंने शोषित किसानों से संवाद किया, उन्हें उनके अधिकारों के प्रति सजग किया और रियासती करों के विरुद्ध एक व्यापक जन आंदोलन खड़ा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस कार्य में उनके सहयोगी थे कर्मठ स्वाधीनता सेनानी माणिकलाल मगनलाल शर्मा। दोनों ने मिलकर स्थानीय युवाओं का एक ऐसा अभेद्य नेटवर्क तैयार किया जो खादी, छुआछूत उन्मूलन और राष्ट्रीय शिक्षा के संदेश को जन जन तक पहुंचाने लगा। सन 1942 में बंबई के ग्वालिया टैंक मैदान से गांधी जी ने करो या मरो का नारा देते हुए भारत छोड़ो आंदोलन का शंखनाद किया। ब्रिटिश हुकूमत ने शीर्ष नेताओं को रातों रात गिरफ्तार कर लिया। आंदोलन दिशाहीन न हो जाए, इस चिंता से अनेक नेताओं ने भूमिगत रहकर इस आंदोलन को हवा दी। पाटन में इस आंदोलन की कमान संभाली मणिलाल पंड्या जैसे नायकों ने। भूमिगत रहते हुए उन्होंने इस आंदोलन को जारी रखा। इस तरह पाटन और मेहसाणा का संपूर्ण क्षेत्र रातों रात गुप्त क्रांतिकारी गतिविधियों का मुख्य केंद्र बन गया। मणिलाल पंड्या ने देशभक्ति पत्रिकाओं और बुलेटिनों के संपादन तथा वितरण का कार्य अत्यंत सतर्कता के साथ गुप्त रूप से किया। अंग्रेजी व्यवस्था को पंगु बनाने के लिए उन्होंने सरकारी डाक, टेलीग्राफ लाइन और रेलवे पटरियों को बाधित करने वाले कई गुप्त अभियानों का कुशलतापूर्वक संचालन किया। जब अरुणा आसफ अली और अच्युत पटवर्धन बंबई से भारत छोड़ो आंदोलन का भूमिगत रहते हुए संचालन कर रहे थे, तब उत्तर गुजरात तक उनके संदेशों और रसद को सुरक्षित ठिकाने तक पहुंचाने का काम मणिलाल पंड्या ही कर रहे थे। मुखबिरों की सूचना पर ब्रिटिश खुफिया विभाग ने उन्हें भारी मात्रा में प्रतिबंधित साहित्य के साथ गिरफ्तार कर लिया। इस बार उन्हें अत्यंत कठोर कारावास में शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया गया, लेकिन उनका आत्मबल अजेय रहा। देश में आजादी की सुबह आने तक वो सलाखों के पीछे ही रहे। अंततः देश आजाद हुआ। उनकी आंखों में संतोष और खुशी के आंसू थे। उन्हें सत्ता या पद का कोई लालच नहीं था। वो एक मूक कर्मयोगी की तरह अपनी जड़ों की ओर लौट आए। वो जीवन के अंतिम क्षणों तक खादी भंडारों के माध्यम से स्वावलंबन का मंत्र देते रहे तथा निर्धन बच्चों की शिक्षा हेतु तन मन धन से समर्पित रहे। नमन ऐसी महान विभूति को।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग, मार्गदर्शन शिवशेखर शुक्ल, संकल्पना संतोष कुमार वर्मा और संकल्पना संयोजन अदिति गौड़, प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश की। और दोस्तों, अब बारी है आज के सवाल की। हमारा आज का सवाल है कि कार्यक्रम किस व्यक्तित्व पर केंद्रित था। सवाल एक बार फिर सुन लें, कार्यक्रम किस व्यक्तित्व पर केंद्रित था। आपके जवाब 10 दिनों के भीतर हमारे पास पहुंच जाने चाहिए। जवाब भेजने के लिए हमारा ईमेल एड्रेस है watankaraag@gmail.com और radioazadhind@gmail.com। सही जवाब के साथ आप अपना नाम, अपने शहर का नाम और अपना ईमेल एड्रेस अवश्य लिखें।

0: अभी आप सुन रहे थे स्वराज संस्थान संचालनालय भोपाल का प्रायोजित कार्यक्रम वतन का राग।
1: मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलो हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है।
2: एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर से प्रसारित हो रहा है शाम 6 बजे।
1: ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। लोक संगीत के कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवाने जा रहे हैं घीसीलाल पाटीदार और साथियों द्वारा गाए निमाड़ी लोकगीत।

लोक संगीत के कार्यक्रम में आप सुन रहे हैं घीसीलाल पाटीदार द्वारा गाए निमाड़ी लोकगीत। आइए सुनते हैं इन्हीं की आवाज में ये लोकगीत।

आकाशवाणी इंदौर से आप सुन रहे हैं लोक संगीत। लोक संगीत में आज हम आपको सुनवा रहे हैं घीसीलाल पाटीदार द्वारा गाए निमाड़ी लोकगीत।

लोक संगीत के कार्यक्रम में अभी आपने सुना घीसीलाल पाटीदार द्वारा गाए निमाड़ी लोकगीत। ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। सुगम संगीत के कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवाने जा रहे हैं पार्श्व गायक शान द्वारा गाए कुछ पॉप गीत।

आकाशवाणी इंदौर से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुगम संगीत। सुगम संगीत में हम आपको सुनवा रहे हैं पार्श्व गायक शान द्वारा गाए गीत।

0: सुगम संगीत के कार्यक्रम में आप सुन रहे हैं पार्श्व गायक शानदार गाए कुछ पॉप गीत। आइए सुनते हैं उन्हीं की आवाज में ये अगला गीत।
1: लेडीज एंड जेंटलमैन, सोल सर्वाइवर, मैन ऑफ द आवर, वी ब्रिंग टू यू समथिंग ओल्ड विद अ लिटिल बिट ऑफ न्यू, गोइंग रबर डबर डब Live up in the club.

सुगम संगीत के कार्यक्रम में अभी आपने सुना पार्श्व गायक शान द्वारा गाए कुछ पॉप गीत। इसी के साथ सुगम संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। श्रोताओं, आइए सुनते हैं एक सूचना। इस गुरुवार दिनांक 30 जुलाई 2026 यानी आज सुबह 10:32 से 11:02 तक प्रसारित होने वाले सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो डॉक्टर का विषय है हेपेटाइटिस और अन्य लीवर से जुड़ी बीमारियां और उनका उपचार। श्रोता इस विषय से संबंधित अपनी जिज्ञासाएं और प्रश्न स्टूडियो में उपस्थित डॉक्टर अमित अग्रवाल हेपेटोलॉजिस्ट से पूछ सकते हैं। आप हमारा ये कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर के विविध भारती चैनल FM 101.6 MHz पर सुन सकते हैं। इसके अलावा मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी इस कार्यक्रम को सुना जा सकता है। प्रश्न पूछने के लिए दिन और समय नोट करें। गुरुवार दिनांक 30 जुलाई 2026 समय सुबह 10:32 से 11:02 तक। प्रश्न पूछने के लिए हमारे फोन नंबर हैं 2710223 और 2710224। फोन नंबर एक बार फिर से सुन लीजिए 2710223 और 2710224। इंदौर का STD कोड है 0731। फोन करना ना भूलें। गुरुवार दिनांक 30 जुलाई यानी आज सुबह 10:32 से 11:02 तक विविध भारती इंदौर के FM 101.6 MHz और मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर सुना जा सकता है। सूचना समाप्त हुई। ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवाने जा रहे हैं केशव रघुनाथ तलेगांवकर का गिटार पर बजाया राग बसंत मुखारी।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आपने सुना केशव रघुनाथ तलेगांवकर का गिटार पर बजाया राग बसंत मुखारी। ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है।

0: NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर से प्रसारित हो रहा है शाम 6 बजे।
1: ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। जिले की चिट्ठी इस कार्यक्रम के लिए आइए आपको ले चलते हैं आकाशवाणी के भोपाल केंद्र।

आलेख कमल खस, वाचन स्वर दीपा सिंह। राजगढ़ जिले की चिट्ठी में सबसे पहले बात विकास कार्यों की। जिले के प्रभारी मंत्री चैतन्य कुमार कश्यप ने नरसिंहगढ़ में करीब 42 करोड़ रुपए की लागत से बने नए सांदीपनी विद्यालय भवन का लोकार्पण किया। आधुनिक सुविधाओं वाले इस स्कूल में एलकेजी से 12वीं तक करीब 1300 विद्यार्थी पढ़ेंगे। उन्होंने बताया कि स्कूल में प्रयोगशाला, संगीत, नृत्य सहित सभी जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। वहीं दूसरी तरफ भोपाल संभागायुक्त कर्मवीर शर्मा ने राजगढ़ जिले में विकास कार्यों और निर्माण परियोजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को सभी काम तय समय पर और गुणवत्ता के साथ पूरे करने के निर्देश दिए। संभागायुक्त ने सिंचाई परियोजनाओं और सड़क निर्माण की प्रगति भी जानी। उन्होंने मोहनपुरा बांध से क्षेत्र में हुए बदलावों का वैज्ञानिक अध्ययन कराने को भी कहा। इसके अलावा राज्य मंत्री नारायण सिंह पवार ने पार्वती नदी पर बन रहे बांध का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में बांध बनना उनका पुराना सपना था, जो अब पूरा हो रहा है। अधिकारियों ने बताया कि परियोजना पूरी होने पर 174 गांवों को सिंचाई का लाभ मिलेगा। बांध का करीब 80% काम पूरा हो चुका है। शेष निर्माण कार्य वर्ष 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। बाद जिले में नशा मुक्त भारत अभियान के जिले में इस अभियान के तहत कई विशेष कार्यक्रम आयोजित किए गए। एक कार्यक्रम में राज्य मंत्री नारायण सिंह पवार ने लोगों को नशा मुक्ति की शपथ दिलाई। उन्होंने लोगों से खुद नशे से दूर रहने और दूसरों को भी जागरूक करने की अपील की। पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए मां बिजासन धाम की पहाड़ी पर पौधरोपण किया गया। सांसद रोडमल नागर और कलेक्टर डॉ. गिरीश कुमार मिश्रा ने बरगद, पीपल और नीम सहित कई पौधे लगाए। जिले में कई दिनों के बाद मानसून ने जोरदार वापसी की है। अच्छी बारिश होने से खरीफ फसलों को फायदा मिल रहा है। हालांकि कई शहरी इलाकों में जल भराव के कारण लोगों को परेशानी का भी सामना करना पड़ा। गर्मी और अलनीनो के संभावित असर को देखते हुए जिले में अभी से तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। भूजल स्तर बढ़ाने और पेयजल संकट से निपटने के लिए जल संरक्षण के कार्य किए जा रहे हैं। केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं के तहत जल स्रोतों को मजबूत बनाने पर विशेष जोर दिया गया है। वर्षा जल संचयन और भूजल रिचार्ज के लिए भी कार्ययोजना बनाई गई है। कलेक्टर डॉ. गिरीश कुमार मिश्रा की पहल संवाद से समाधान लोगों की पसंद बन रही है। हर मंगलवार होने वाली जनसुनवाई में लोग अपनी समस्याएं सीधे कलेक्टर के सामने रख रहे हैं। अधिकारियों की मौजूदगी में शिकायतों का मौके पर ही निराकरण किया जा रहा है। जिला अस्पताल में आधुनिक आकस्मिक चिकित्सा विभाग शुरू हो गया है। अब जांच, इलाज, भर्ती और जरूरत पड़ने पर रेफरल की सुविधा एक ही जगह मिलेगी। इससे गंभीर मरीजों को बिना देरी बेहतर इलाज मिल सकेगा। अस्पताल प्रबंधन का कहना है कि इससे आपातकालीन सेवाएं पहले से अधिक प्रभावी होंगी। जिला शिक्षा विभाग ने फर्जी शैक्षणिक दस्तावेजों के आधार पर नौकरी पाने वाले 9 प्राथमिक शिक्षकों को बर्खास्त कर दिया है। ये कार्रवाई शिकायतों की जांच के बाद की गई। प्रशासन ने साफ किया है कि शासकीय सेवा में नियमों में कोई समझौता नहीं किया जाएगा और भविष्य में भी ऐसे मामलों की जांच जारी रहेगी। राजगढ़ जिले में हुए

दर्दनाक सड़क हादसे में 5 युवकों की जान चली गई। शाजापुर से खाटू श्याम के दर्शन के लिए जा रही कार खुजनेर के पास तालाब में गिर गई। ग्रामीणों ने बचाव का प्रयास किया लेकिन सभी 5 लोगों की मौत हो गई। राजगढ़ होमगार्ड लाइन में 7 दिवसीय सिविल डिफेंस वॉलंटियर प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में लोगों को आपदा प्रबंधन, नागरिक सुरक्षा, प्राथमिक उपचार और राहत बचाव कार्यों का व्यवहारिक और सैद्धांतिक प्रशिक्षण दिया गया। राजगढ़ जिले की 14 ग्राम पंचायतों में स्मार्टपुर परियोजना चलाई जा रही है। इसके तहत स्थापित स्मार्टपुर केंद्रों पर ग्रामीणों को डिजिटल साक्षरता, कंप्यूटर प्रशिक्षण, ऑनलाइन सरकारी सेवाएं, बैंकिंग और रोजगार से जुड़ी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। अंत में कुछ धार्मिक समाचार। जिले भर में देवशयनी एकादशी श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाई गई। श्रद्धालुओं ने भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना की। धार्मिक मान्यता के अनुसार देवशयनी एकादशी से भगवान विष्णु करीब 4 महीने के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं। इसी के साथ चतुर्मास की शुरुआत भी हो गई है। वहीं ब्यावरा में पहली बार भगवान जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा निकाली गई। स्कॉन के तत्वावधान में आयोजित यात्रा में हजारों श्रद्धालु शामिल हुए। पूरे शहर में भजन कीर्तन और जय घोष से भक्तिमय माहौल रहा। रथ यात्रा के दौरान मुस्लिम समाज के लोगों ने भी पुष्प वर्षा कर स्वागत किया और सांप्रदायिक सौहार्द की मिसाल पेश की। जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।

मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलो हर्ट्स पर ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। श्रोताओं, आइए सुनते हैं कार्यक्रम मन भावन।

दिल से निकली फरमाइशें, यादों से जुड़ी धुनें और संगीत का वो जादू जो हर दिल को छू जाए। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मनभावन, जहां आपकी पसंद बनती है हमारी प्रस्तुति। मनभावन सुनने वालों को अमृता का नमस्कार।

श्रोताओं, आप ही की पसंद पर हम लेके आए हैं ढेर सारे प्यारे प्यारे गीत। तो पहला गीत हम सुनवाने जा रहे हैं फिल्म नादान से, मुकेश की आवाज़ में। संगीत है शंकर जयकिशन का और शब्द हैं हसरत जयपुरी के।

चल चल। मुकेश की आवाज में ये गीत था फिल्म नादान से, शब्द हसरत जयपुरी के और संगीत था शंकर जयकिशन का, और पसंद थी आप सबकी। मालवा मिल कंपाउंड इंदौर से प्रमेन कुशवाहा, कैलाश रमेश कुशवाहा, कामिनी चौहान, मंजू चौहान और राम कुमार यादव। मॉडल टाउन करनाल से सुधीर नूतन, किरण ठाकुर, मीनाक्षी तिवारी। इसी गीत की फरमाइश आई नेवासा खुपटी महाराष्ट्र से, भेजने वाले हैं बंडू लोहार पोपलघट, माया शिवांश चंद्रकला और देवीदास पोपलघट, श्रीरामपुर भोकर से हरिभाव बिड़वे, श्रावण अनिता बिड़वे। अंबेडकर नगर अकोला महाराष्ट्र से हमारे श्रोता हैं प्रकाश खेडकर, मीरा ताई, आरती, संतोष, पूजा और समस्त खेडकर परिवार। उपाध्याय नगर देवास से हमारे श्रोता हैं मुरारीलाल वर्मा, मनीष वर्मा, शिवम वर्मा। शांतिपुरा देवास से सुभाष गोडिया, लक्ष्मीपुरा देवास से नवीन वर्मा, मीनू वर्मा और विराट वर्मा। राजाराम नगर देवास से हमारे श्रोता हैं राजेश अग्रवाल, शांति महाजन, कैलाश महाजन और मोहसिनपुरा से जमील खान। तुषार बाखल देवास से नागपाल फोटो वाले। साथ ही भील कॉलोनी मुसाखेड़ी इंदौर से रवि डामोर, बबीता डामोर, संदीप दुर्गा, अभिषेक डामोर और गौतम तथा विवान, इन सब ने इस गीत की फरमाइश भेजी। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म आबरू से, मोहम्मद रफी की आवाज में। शब्द हैं जीएल रावल के और संगीत दिया इस गीत में सोनिक ओमी ने, और पसंद जिन लोगों ने की उनका जिक्र हम करेंगे इस गीत के बाद।

मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में ये गीत आपने सुना फिल्म आबरू से, शब्द जीएल रावल के, और इस गीत में संगीत था सोनिक ओमी का। और इस गीत की फरमाइश हमें लिख भेजी आप सबने घंटाघर चौक खंडवा से संजय पंचोलिया, प्रियंका पंचोलिया, गुनगुन, संप्रीत, हेमेंद्र और सम्मति पंचोलिया। इंदौर से इस गीत की फरमाइश हमें आई श्रीमती पंकज पलटन वाले, किरण खाडिलकर और प्रभात पलटन वाले। इसी गीत को सुनना चाहा सुदामा नगर इंदौर से अनिल भंडारे, उषा भंडारे, समता चित्रा और निशी ने। जालौन से सत्येंद्र कुमार चंसौलिया, आदर्श सार्थक अलौकिक चंसौलिया। दतरेगी से भगवत वर्मा, लेवई से गुलाबदास मणिकपुरी, रिंगनी से दिनेश वर्मा, लच्छनपुर से विश्वनाथ साहू और मालवी सिंगारपुर से सालिक पुजारी। कड़ताल जिला रंगारेड्डी तेलंगाना से हमें ये पत्र मिला, गोपाल कानुगुला माहेश्वरी, प्रमालिका विष्णुवर्धन और विघ्नेश का। साथ ही इस गीत की फरमाइश हमें आई नंदबाग सुपर कॉरिडोर इंदौर से। भेजने वाले हैं मोहनलाल यादव, सोना यादव, मोहित, प्रतीक, सपना, सुनील, महेश जैन, सभी दोस्त और उनका परिवार।

ये गीत आप सुन रहे हैं फिल्म लिबास से, लता मंगेशकर की आवाज में। शब्द हैं गुलजार के और संगीत है आर डी बर्मन का।

लता मंगेशकर की आवाज़ में ये गीत था फिल्म लिबास से, शब्द गुलजार के और संगीत आरडी बर्मन का। और इस गीत की फरमाइश हमें आई बनियापारा धमतरी से। भेजने वाले हैं रामचंद्र माखीजा, शंकर लाल माखीजा, राहुल कुमार, श्रीमती सविता माखीजा और स्वाति माखीजा एवं समस्त माखीजा परिवार की। लावरा भेरू इंदौर से हमारे श्रोता हैं अनिल बमनिया, प्रमिला बमनिया, नंदिनी, मुस्कान, नीलम, सावन, कृष्ण कुमार, ऋतिक, कुणाल, केतन और समस्त बमनिया परिवार। संस्कृति नगर इंदौर से बबलू केशरी, छाया, हर्ष, मिताक्षी, सोमती बाई और समस्त केशरी परिवार। राजा राम कॉम्प्लेक्स, राजावत कॉम्प्लेक्स, नई सड़क एमपी शाजापुर से हमारे श्रोता हैं मनमोहन राजावत, मधु, राशि, चितरंजन, कमलेश, उमेश, सरोज, आरती, रेखा, रितिका, रिचा, स्वीटी, सागर, रिया, रीत, ऋषभ और समस्त राजावत परिवार। भोलेनाथ कॉलोनी इंदौर से स्वाति प्रयाग चौधरी, मालती भाऊ मराठा, गणेश दादा मराठा, कार्तिक भाऊ मराठा और परी संजना मराठा। अगला गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं फिल्म चांदनी से, सुरेश वाडकर की आवाज़ में। शब्द हैं

0: सुरेश वाडकर की आवाज में ये गीत था फिल्म चांदनी से, शब्द आनंद बख्शी के और संगीत शिव हरि का। और जिनकी पसंद पर हमने ये गीत सुनवाया वो हैं कवड़ कॉलोनी बड़वाह से प्रवीण श्रीमाली, मीना श्रीमाली, आदित्य, अदिति, शिवानी और मीनूराज श्रीमाली। बोईसर से हमारे श्रोता हैं नरेंद्र कापड़निश। सपना संगीता रोड इंदौर से लाल फतेह चंदानी, लीला फतेह चंदानी, संगीता, सुनीता, पिंकेश, साक्षी, मनन और तान्या। साहूनगर, शाहूनगर यवतमाल से हमारे श्रोता हैं राहुल मनवर, सरला, विशाल, चेतन और रोशनी मनवर, साथ ही बेबी प्रियांशी। एक और पत्र हमें आया पित्रामल जिला उज्जैन से, भेजने वाले हैं विनोद मूणत, नेहा जैन, दीपक मयंक मूणत, चेतन नाहटा और दिलीप सिंह पवार। और बेरडी से हुकुम करमरकर, सुनीता करमरकर, हार्दिक प्राची और तनया करमरकर भी इस गीत को सुनना चाहती थी। वाशिम से रविंद्र पवार, मीना पवार और श्रीकांत एवं एकनाथ काले भी इस गीत की फरमाइश हमें लिख भेजे। आइए सुनते हैं आप ही की पसंद का अगला गीत।
1: ए,
2: अरे
1: चुपके से दिल दे दे,
2: नहीं ते
1: नहीं ते

लता मंगेशकर और किशोर कुमार के युगल स्वरों में ये गीत था फिल्म मर्यादा से। शब्द आनंद बख्शी के और संगीत था कल्याण जी आनंद जी का। इस गीत की फरमाइश हमें भेजी नागचुन रोड संजय कॉलोनी खंडवा से अब्दुल गफार डावर खुशनसीब, अब्दुल हक डावर, जियाउल हक डावर, अब्दुल रहमान डावर, अब्दुल कादर डावर, मोहम्मद हमजा डावर और अब्दुल रशीद खत्री। मालीपुरा बिजलपुर से मोहनलाल चौहान, ललिता चौहान, प्रियंका परमार, पंकज सोनू, नितिन राहुल, गुंजन मुस्कान चौहान, साथी हैं वर्णिका, अदव्या, अंकित, सलोनी, लड्डू, कान्हा, ऋषि चौहान और हेमंत। ब्रह्मपुरी कॉलोनी इंदौर से हमारे श्रोता हैं दिनेश कुमार हार्डिया, ज्योति हार्डिया, राहुल, वर्षा, अंजू, अनुराग, अंकित हार्डिया, साथ में हेमंत। गांधी चौक रोपड़ से हरदेव मीका, बलविंदर जैतेग और मीका इस गीत को सुनना चाहते थे। गुमाश्ता नगर स्कीम 71 से भेजने वाले हैं अनिल कवचाले, नेहा फडनिस फंड से सीमा, सबीहा, फजल, पूजा, नेनावा, सुषमा और स्मिता। इसी गीत की फरमाइश हमें आई, भेजने वाले हैं हमारे श्रोता बी आर नामदेव, राजश्री, रौनक, दिव्यांशी, रोशनी, धीरज और श्रीधा। इन्होंने ये पत्र भेजा है सोमानी नगर इंदौर से।

0: अगला गाना जो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ वो मेरे स्टाइल से लोग कहते हैं जरा हटके है, लेकिन मैं जानता हूँ कि स्टाइल म्यूजिक का किस किस्म का हो, अगर उसमें जज्बात का थोड़ा सा भी हिस्सा हो तो बहुत खूबसूरत मालूम होता है। शोर
1: शराबा तो आजकल दुनिया। ये गाना है संगीतबद्ध किया मदन मोहन साहब का, फिल्म हंसते जख्म से, मोहम्मद रफी की आवाज में।
0: लोग हैं कहीं मारपीट है तो इनसे आजकल दूर भागना बड़ा मुश्किल सा मालूम होता है।

मदन मोहन का संगीतबद्ध किया ये गीत था फिल्म हंसते जख्म से। आवाज थी मोहम्मद रफ़ी की और कलाम था कैफी आज़मी का और पसंद थी आप सबकी। तहसील राहतगढ़ ज़िला सागर से हमारे श्रोता हैं मनीष कुमार पराशर, बेबी आकांक्षा, राधिका जीवा खुशी बाबूजी, श्री प्रेम नारायण पराशर, हेमंत अनीता किशन सविता अभिषेक दीपेश मोहित मयंक राजकुमार वैद्य पूजा वैद्य गढ़ाकोटा वाले नन्हे भाई वृंदावन मयंक राजा पुष्पेंद्र दीपक गिरीश गौरीशंकर पराशर कृष्ण कुमार और समस्त पराशर परिवार और समस्त ग्रामवासी। पलसीकर कॉलोनी इंदौर से धनेश मटाई राकेश मटाई उमेश सहजवानी हनी जिम्पी अमिता दियाना और जियांश मटाई। छाबड़ा राजस्थान से ये पत्र आया आसिफ अली सिद्दीकी वाहिद अली सिद्दीकी और शमीम बानो का। प्रमीरागंज आलोट जिला रतलाम से ये पत्र आया बलवंत कुमार वर्मा राजूबाई माया वर्मा शोभा वर्मा राहुल ज्योति अतुल प्रियांश और ऋषि वर्मा का। पिंपरी वाशिम से गबा सिंह राठौर सतीश राठौर अभय अजय यश और खुशन राठौर भी इस गीत को सुनना चाहते थे। आइए सुनते हैं आप ही की पसंद का अगला गीत।

लता मंगेशकर की आवाज़ में ये गीत था फिल्म संत ज्ञानेश्वर से। भरत व्यास की रचना थी और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत था और पसंद आप सबकी थी। धर्मपुरी जिलाधार से शेख फहीम मोहम्मद, मोहम्मद तस्लीम शेख, मुजफ्फर अयान, फैज़ान, सुमेरा, कशिश, साइमा हसनैन और खुशी। बगबुड़वा पथरिया से नरेन नेताम, कुसुम नेताम, प्रोणिका, प्रोणामिका और उत्कर्ष नेताम भी इस गीत को सुनना चाहते थे। जिला खंडवा ग्राम लोहारी से राजेश कुमार धनजे, राहुल कुमार धनजे, विशाल, शीला और गायत्री धनजे। खुर्दी रोड मानपुर से विजय वैद्य, रानी वैद्य, महिमा और नीतू वैद्य। बेरडी से राजेश सोनी, कंचन सोनी, गायत्री ढोमणे, वैष्णवी ढोमणे, चंचल, अर्जुन गवनेकर और धीरज सवासरे। सुदामा नगर से इसी गीत की फरमाइश आई, सुदामा नगर इंदौर से प्रबोध चंद्र कांडपाल, अंजलि और रेणु कांडपाल की।

लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर की आवाज़ में ये गीत था फिल्म लिबास से। शब्द थे गुलजार के और संगीत आरडी बर्मन का, और पसंदकर्ता पालदाना का इंदौर से, हसीना भी मंसूरी, अमीना भी और मोहम्मद रफ़ी मंसूरी, मक्सी से दयाराम जाटव, चैन सिंह आरोल, नानूराम कसोटिया, साथ में दीपक कसोटिया, धांडी नांदुरा महाराष्ट्र से श्री कृष्ण बाठे, संदीप बाठे, अमूल्य और वैशाली बाठे। इसी गीत की फरमाइश हमें आई राजपुर से घीसु दिलवारे, लक्ष्मी माधुरी, सोनाली भगवान, पुष्पा नेहा, एकता अस्मिता, सौरभ और कुणाल दिलवारे की। कार्यक्रम का अगला गीत हम सुनते हैं।

अमित कुमार और लता मंगेशकर की आवाज में ये गीत आप सुन रहे हैं फिल्म रोमांस से। आनंद बख्शी के शब्द, संगीत आर डी बर्मन का।

श्रोताओ, साथ ही साथ हम जान लें कि इस गीत के फरमाइशकर्ता कौन है। दरियापुर बाभली महाराष्ट्र से गजानन येले, नवदीप येले, शहरी वडनेर अकोला से बलदेव दामोदर, अरुणा दामोदर, मेहरनगर उमरखेड़ से अभिजीत गवाणकर, सरिता गवाणकर, सिद्धांत प्रिंस एकांश गवाणकर, आकार हाइट्स बहादुरा नागपुर से शैलेश गवाणकर, वैशाली श्वेता और ध्वनि गवाणकर, गौरीनगर इंदौर से आनंद कुमार कामले, रेखा कामले, राखी पारस तपस्या और करिश्मा कामले, नेपाल पैलेस सागर से तिलक राणा, मीना राणा, मोनिका नूपुर, ऋषिका और रॉबिन।

0: से।
1: लता मंगेशकर और अमित कुमार की आवाज में ये गीत था फिल्म रोमांस से। इसी गीत के साथ कार्यक्रम को अब यहीं विराम देते हैं। इजाजत दीजिए अमृता को। नमस्कार।

0: श्रोताओं, अभी आपने सुना कार्यक्रम मन भावन, ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। थोड़ी ही देर में अगला कार्यक्रम हम आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से रिले करेंगे।
1: आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है, हमारे अगले प्रसारण की कृपया प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, लीजिए सुनिए फोन इन प्रोग्राम बात आपकी गीत हमारे।
2: कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे में आज स्वागत है आपकी आपका श्वेता की ओर से। नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? आज हम आपसे बात करेंगे एक ऐसे विषय पर जिसे हम भूलते जा रहे हैं, वो है हमारा वर्तमान, जिसे हम आज भी कह सकते हैं। जैसे हम अपने भविष्य के लिए सभी सपने संजोते हैं, अपनी पूंजी, अपना सामान सब इकट्ठा करके रखते हैं ताकि भविष्य में जरूरत पड़ने पर हमारे काम आए। जो गुजर चुका है उसे भी हम याद करते हैं, उससे भी हम सबक लेते हैं अपनी गलतियों से और सोचते हैं कि ये चीज़ दोबारा ना हो, और इसी तरह हमारी ज़िंदगी भी चल पड़ती है। पर भविष्य और जो गुजर चुका है उसके बीच होता है हमारा वर्तमान, हमारा आज। हम उसे कैसे जी रहे हैं और आज का क्या महत्व है हमारे जीवन में, इसी विषय पर हम आपसे आपके विचार जानना चाहेंगे। हमारे फ़ोन नंबर 2660902 पर, भोपाल से बाहर के श्रोता साथी एसटीडी कोड 0755 लगाकर हमसे जुड़ सकते हैं। तो इंतज़ार है हमें आपके फ़ोन का। जी नमस्कार।
3: हाँ जी, हेलो, फरमाइश में।
2: हाँ जी, आपका नाम बताएं।
3: कोमल विश्वकर्मा बोल रहा है जी, टेनी खुरा से। कोमल विश्वकर्मा।
2: कोमल विश्वकर्मा जी, तो स्वागत है आपका कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे में
3: जी,
2: है ना। देखिए, आज हमने एक विषय रखा हुआ है कि कई बार क्या होता है कि हम अपने भविष्य के लिए बहुत सारी चीजें जोड़ कर रखते हैं आने वाले कल के लिए, और जो गुजरा हुआ हमारा कल है ना, जो हमारा पास्ट, उसको भी हम याद रखते हैं कि भाई ऐसा हुआ था तो कुछ गलतियां अगर हुई थी तो हम ऐसा नहीं करेंगे। लेकिन इस बीच जो आपका वर्तमान है, आज है, उसको आप कैसे जीते हैं, उसका क्या महत्व है आपके जीवन में, आपके आज का वर्तमान का क्या महत्व है?
3: वर्तमान का
2: जी बताएंगे, अपनी जिंदगी में आप आज को कैसे शामिल करते हैं?
3: जी, हम तो 65 साल की उम्र है हमारी जी।
2: जी जी,
3: यही है जो जल रहा है सो अपने घूमते रहते हैं जी।
2: जी जी जी, तो हम ये चाहेंगे कि आप अपना आज भी खुशनुमा बनाएं
3: जी।
2: जो काम आप भविष्य, जो पिछले समय में या कह ले आपने जो गुजरे हुए वक्त में नहीं कर पाए थे, आज उन कामों को करें
3: जी।
2: क्या सोचते हैं आप, क्या शौक है आपके?
3: अब हमको तो जो है जी थोड़ा बहुत करते रहते हैं बस।
2: जी जी जी,
3: काम करते हैं, हम शौक भी रखते हैं काम का
2: जी। ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपको देखिए शौक भी है ना।
3: हाँ
2: हाँ, तो आप अपने आप को व्यस्त रखते हैं
3: जी? जी।
2: अच्छा, और आज में जीते हैं कि जो आज की खुशियां हैं उसको भी शामिल करेंगे?
3: हाँ जी,
2: शामिल करते हैं। आप कैसे शामिल करते हैं बताएं?
3: अब जी हम तो जैसे कोई कहीं जाता है आता, हम जब भी सब में शामिल रहते हैं, हम सब खुशी में शामिल रहते हैं सब लोग
2: जी। अपने घर के छोटे बच्चे बड़े सभी के साथ
3: लोग नाती नतरा सबको साथ
2: देते जी। जी जी, सबके खुशियों में शामिल होते हैं, उन्हें अपने अनुभव बांटते हैं, है ना
3: जी।
2: तो यही होती है हमारी।

0: कार्यक्रम बात आपके गीत हमारे में स्वागत है आपका
1: जी
0: जी।
1: नमस्ते मैडम
0: नाम बताएं।
1: जी। संतोष कुमार राव बात कर रहा था मैडम, उमरिया मध्य प्रदेश से।
0: संतोष कुमार राव जी है ना।
1: जी मैम। जी।
0: तो स्वागत है कार्यक्रम बात आपके गीत हमारे में।
1: जी मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
0: जी
1: विषय बताइए मैम
0: आज
1: किस विषय।
0: देखिए हम आज बात कर रहे हैं, जैसे आज आपने हमें फोन लगाया है ना,
1: जी
0: आज लगाया, तो इस
1: जी जी
0: आज का यानी कि वर्तमान का आपके जीवन में क्या मायने, क्या स्थान है? जैसे जो बीत गया वो तो कल था, आने वाला भविष्य में जिसके बारे में आप जानते नहीं, लेकिन जो वर्तमान है वो आपके जीवन में क्या मायने रखता है?
1: वर्तमान की बात की जाए तो जीवन में मुस्कुराहट सबसे हमारा खुशी का गहना होता है, और वर्तमान में हमारे पास जो है वो सबसे खास होता है। हमारी माँ, हमारी बहन।

0: भाई और प्रेम से बढ़कर ये हमारा समाज हमारे लिए सबसे ऊपर उठ करके है, इसलिए जो आज है उसमें खुश रहें और जो गम है परेशानियां हैं उससे थोड़ा सा निजात पाने की कोशिश करें। आप लोगों का साथ रहेगा तो जिंदगी बहुत खूबसूरत होगी, इसी में हमारा जीवन समाहित होता है।
1: बिल्कुल है ना। मैं यही कहना चाहूंगी कि जैसे भविष्य के लिए तो हम सभी सोच कर रखते हैं, है ना,
0: जी मैम।
1: तो और जो पिछली जो गुजर चुका है उससे भी हम सबक लेते हैं कई बार, लेकिन आज को भूल जाते हैं, है ना। वर्तमान में बहुत सारी खुशियां हैं, रिश्ते हैं, मित्र हैं, इन सब का साथ और स्नेह जरूरी है
0: और
1: क्या
0: जो आज हमारे साथ है
1: जी?
0: सबसे बड़ा योगदान उसका भी होता है, रेडियो है। रेडियो इतने ज्ञानवर्धक जानकारियों को लेकर
1: जी
0: आता
1: जी
0: है
1: जी
0: जो
1: बिल्कुल
0: प्रतिदिन
1: बिल्कुल
0: हमारे साथ होता है निरंतर 5:55 से शुरुआत, रात को 11 से 11 बजे तक प्रसारण, बहुत
1: बिल्कुल
0: लगातार प्रसारण हमारे साथ बना रहता है
1: जी।
0: आकाशवाणी मध्य प्रदेश का सेवा।
1: हमें अच्छा लगा ये जानकर कि आप रेडियो से इस तरह जुड़े हुए हैं। आपने फोन किया, हमें बहुत खुशी हुई, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।

0: कार्यक्रम
1: हेलो,
0: बात आपके गीत हमारे में स्वागत है आपका।
1: नमस्ते दीदी।
0: नमस्ते, आपका नाम बताएं।
1: दीदी मैं नवग्रह नगरी खरगोन से आपके निमित्त श्रोता मीना दसूंदी बोल रही। दीदी
0: मीना,
1: दसूंदी,
0: अच्छा जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे में। आज हमने एक छोटा सा विषय रखा हुआ है ना। क्या होता है, जैसे कि भविष्य के लिए हम बहुत कुछ जोड़ कर रखते हैं, है ना। आने वाले समय के लिए बहुत सारे सामान चीज़ें इकट्ठा करके रखते हैं कि भाई भविष्य में ये काम आ जाएगा। ये भी बहुत कहना चाहिए ज़रूरी बात है, आवश्यक है बात है ना। और जो गुजर चुका है, जो बीत चुका है, उसको भी हम याद करते हैं कि देखो भाई ऐसा ऐसा हो गया
1: बिल्कुल।
0: था, है ना। लेकिन इन दोनों के बीच में जो आज है आपका वर्तमान,
1: आज वर्तमान,
0: उसके बारे में आप क्या सोचती हैं, उसे आप अच्छी तरह से जी रही हैं।
1: बिल्कुल दीदी, वर्तमान में अपने के साथ जो हो रहा है वो बढ़िया है,
0: जी बिल्कुल
1: और वर्तमान अच्छा है तो भविष्य भी अच्छा होगा।
0: बिल्कुल। और आज में जो छोटी छोटी खुशियां हैं जिसको हम मनाना भूल जाते हैं, है ना, अपनों का साथ, बड़ों का साथ, और साथ ही साथ अपनी सेहत भी इम्पोर्टेंट है। कई बार हम अपनी
1: बिल्कुल
0: सेहत को भी भूल जाते हैं।
1: नहीं दीदी, सेहत अपन अच्छी रहेगी तो अपन पूरे परिवार को संभाल सकेंगे और बड़ों को भी संभाल सकेंगे। सेहत का तो पहले ध्यान रखना पड़ेगा, खान पान का, रहन सहन का, वातावरण का, सब कुछ।
0: बिल्कुल। और वो अपने को अपने आज में ही ध्यान रखना पड़ेगा, है ना।
1: बिल्कुल दीदी,
0: उसको
1: और
0: हम टाल नहीं सकते कि हाँ भाई भविष्य में हम देख लेंगे, है ना।
1: हाँ, और भूतकाल में जो भी गया, उस अपने अगर परेशानियां उठाइए, कोई तकलीफ उठाइए, तो उनको याद मत करो। वो जो गया समय वो गया, जो आ रहा है वो समय पर ध्यान दो कि आप अच्छा आएगा।
0: बिल्कुल। और आज में हम बहुत सारे पलों को समाहित करें, खुशियां मनाएं, और जो चीज
1: बिल्कुल
0: जरूरी है उसे करें, है ना।
1: जी, छोटी छोटी खुशियों में जीना सीखो तो अपने आप भविष्य अच्छा आएगा,
0: बिल्कुल। देखिए, आपसे
1: सबको
0: बात
1: लेके
0: करके
1: चलो।
0: हमें बहुत अच्छा लगा,
1: जी,
0: है
1: मुझे
0: ना।
1: आपसे
0: और
1: अपना
0: मैं आपकी रेडियो मित्र श्वेता बोल रही हूँ, है ना।
1: जी
0: आपने
1: धन्यवाद।
0: फोन किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।

0: कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे में स्वागत है आपका।
1: हेलो,
0: हाँ जी, आपका नाम बताएं।
1: बोल रही हैं?
0: मैं आपकी रेडियो मित्र श्वेता बोल रही हूँ, आपका नाम बताएं।
1: आपसे एक बार अभी बात हुई थी, आपने फोन साबित नहीं किया था, तो इस बार अगर करना हो तो मैं बता दूं, उस बार
0: नहीं
1: आपने
0: नहीं
1: नहीं
0: नहीं
1: किया
0: सुनिए
1: था
0: सुनिए,
1: मैडम जी।
0: हाँ देखिए सुनिए, क्या होता है, हमारी एक समय सीमा होती है ना, कुल 58 मिनट का प्रोग्राम होता है, जिसमें जो जो पहले कॉल रहते हैं 8 है ना, उनको हमको शामिल करना पड़ता है, और एक समय सीमा निश्चित रहती है। इसलिए देखिए,
1: हाँ तो
0: आज तो
1: मैडम जी,
0: आपका
1: इसलिए
0: शामिल हो
1: मान के
0: गया।
1: चलिए
0: हाँ
1: कि उस बार जो है तो मान लो इस बार तो काफी दिन हो गए, महीनों पूछ गए हैं, तो अब तो कोई दिक्कत नहीं है। और मैं
0: नहीं
1: बता
0: नहीं
1: दूं
0: नहीं
1: कि
0: हमें आपसे कोई दिक्कत नहीं है, हमें आपसे कोई दिक्कत
1: तो
0: नहीं।
1: आज
0: आपका नाम बताएं, नाम
1: प्रश्न
0: बताएं।
1: आप क्वेश्चन क्या है, मतलब किसके
0: नहीं,
1: बारे में
0: पहले
1: बात कर
0: पहले
1: रही
0: आप
1: हैं?
0: अपना नाम बताएं।
1: हाँ, मेरा नाम है मैडम जी, ग्राम कल्पा, जिला सतना से, चांद मोहम्मद खान प्लस मजनू दीवाना, इसी तरह जानती हैं मैडम
0: जी
1: जी। मैं
0: जी
1: बहुत
0: बिल्कुल।
1: ही आपके कार्यक्रम का दीवाना हूँ, आकाशवाणी
0: अच्छा
1: भोपाल का।
0: अच्छा आज हमने जो विषय रखा है वो ये है कि
1: जी
0: जैसे भविष्य के लिए हम बहुत कुछ इकट्ठा करके रखते हैं आने
1: जी
0: वाले कल के लिए, और जो गुजरा हुआ पल है उसके बारे में भी सोचते हैं, है ना, कितना अच्छा
1: जी
0: समय था, या कुछ गलतियां हो गई हो तो भाई हम दोबारा ऐसा ना करेंगे, है ना, ऐसा
1: जी
0: सोचते हैं हम। लेकिन इन दोनों के बीच में आज वर्तमान आपके जीवन में क्या स्थान रखता है?
1: तो अब मैं बता दूं मैडम जी, पहले आपके लिए एक आध लाइन बोलना चाहता हूं आपके।
0: आज के बारे में हम जानना चाह रहे हैं, आज आप अपनी छोटी छोटी खुशियों का ध्यान रखते हैं।
1: अब मैडम जी मैं बता दूं कि अपनी जिंदगी के लिए जो है
0: जी
1: बहुत कुछ सोचना पड़ता है, क्योंकि हमने अभी तक तो बहुत कुछ किया और सब कुछ बना लिया है, लेकिन अब सोचते हैं कि अब हमारा ज्यादा किया तो होता नहीं है, लेकिन फिर भी जब तक दम में दम है तो इंसान करता रहता। हमें तो काम करने के लिए अगर 24 घंटे की जगह 48 घंटे भी मिल जाए तो हम काम करना बंद नहीं करेंगे, और काम जिंदगी में जरूरी है, अगर करेंगे नहीं तो खाएंगे क्या, बाल बच्चों
0: देखिए
1: के लिए बहुत कुछ
0: बहुत
1: सोचना
0: अच्छी
1: पड़ता
0: बात,
1: है।
0: नहीं, बहुत अच्छी बात है ना।
1: और
0: लेकिन इसके साथ
1: लेकिन
0: साथ मैं ये कहना चाहूंगी कि जैसे काम करना तो एक बहुत अच्छी बात कही आपने, लेकिन जैसे आज वर्तमान में हम अपने सेहत का ध्यान रख पाते हैं, हम अपने मनोरंजन का, जैसे हमारे छोटे छोटे शौक होते हैं, हर इंसान का अपना शौक होता है ना, पेंटिंग करना, बागवानी करना, संगीत सुनना, आप उसे पूरा कर पाते हैं?
1: अब मैडम जी मैं बता दूं कि अब जिंदगी में मनोरंजन के लिए जो है, क्योंकि हम तो रेडियो के बहुत दिनों से जुड़े हुए हैं, नियमित
0: जी जी
1: श्रोता हैं, और
0: जी
1: मनोरंजन ही जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद है, और इस
0: अच्छा
1: सेहत से भी भरपूर कार्यक्रम होते हैं। और चूंकि इन कार्यक्रमों के लिए मैं आपको बता दूं कि चाहे लाख नुकसान भी हो जाए, हम 1 घंटे के लिए सारे काम को अंजाम दे देते हैं, क्योंकि काम तो कभी रुक नहीं सकते हैं और काम कभी खत्म नहीं हो सकते, जिंदगी में मरते दम तक। लेकिन
0: सुनिए।
1: हमें काम को ध्यान में रख करके कुछ काम रोकने पड़ते हैं, कुछ काम मनोरंजन के लिए हमें छोड़ना पड़ता है मैडम जी,
0: बहुत
1: क्योंकि
0: अच्छी बात। हाँ, तो थोड़ा
1: मनोरंजन
0: सा
1: बहुत
0: वक्त,
1: जरूरी है।
0: हाँ थोड़ा सा वक्त कहें तो आज के लिए भी हमें जीना चाहिए, है ना, अपने मित्रों से, अपनी खुशियों को, और जो हमें अच्छा लगता है उसे भी सुनना चाहिए। और जैसे आप बोल रहे हैं हमें गीत संगीत का शौक है ना,
1: जी, और
0: बिल्कुल
1: गीत संगीत का है, और टाइम निकाल करके मैडम जी बताएं, हम दोनों लोग जो हो सकता है साइड में करते रहते हैं, समय निकाल करके,
0: जी
1: हो
0: जी
1: सकता
0: जी
1: है कभी
0: बहुत
1: भगवान
0: अच्छा,
1: की कृपा हो
0: जी
1: जाए,
0: जी जी जी
1: और
0: बहुत
1: सिलाई का
0: अच्छा,
1: काम
0: सिलाई का काम भी आप कर रहे हैं, है ना, तो
1: और मैडम जी ये भी करते हैं, और हम लोग ऑलराउंडर, हम और आपकी भाभी जी दोनों लोग जो है वो
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: सिलाई में हमारा भरपूर सहयोग करती है, शर्ट पैंट बनाती रहती है, और हम जो है शहर में कहीं मौका लगा यानी समय के मुताबिक कहीं भी फिट कर दो, हम लोग काम करने के
0: ये
1: लिए
0: बहुत अच्छी
1: तत्पर
0: बात
1: रहते
0: है,
1: हैं।
0: और हमें ये जानकर बहुत अच्छा लगा कि आप काम करते हैं और साथ साथ समय भी निकालते हैं, है ना,
1: निकालते हैं और बच्चों के लिए भी सोचते हैं, क्योंकि
0: बिल्कुल
1: बच्चों के लिए ये सोचते हैं कि हमारे बच्चे आगे भविष्य में निकल जाए, उनको अच्छी सलाह देते हैं,
0: अच्छी
1: अच्छा
0: परवरिश,
1: मार्गदर्शन देते हैं,
0: बहुत
1: पढ़ते हैं,
0: बढ़िया,
1: बच्चियां BA
0: बिल्कुल
1: कंप्लीट कर लिया है, लड़का
0: ये
1: जो है तो मिस्त्री
0: बिल्कुल
1: लाइन में
0: बिल्कुल,
1: निकाल दिए
0: तो
1: मैडम
0: ये
1: जी।
0: भी, हाँ ये भी बहुत जरूरी है वर्तमान के लिए। तो देखिए
1: हाँ
0: आपने
1: बच्चों के
0: फोन
1: लिए,
0: किया,
1: जी,
0: हाँ आपने फोन किया, हमें बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।
1: हे

0: अरे पीछे मुड़ के ना देख प्यारे आगे चल
1: हेलो आकाशवाणी मध्य प्रदेश
2: जी, आपका नाम बताएं।
1: जी मैं मुन्ना सोनी गुरु नानक स्कूल के पास दमोह मध्य प्रदेश से बोल रहा हूँ मैडम
2: जी। तो आपका स्वागत है कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे में, है ना जी। तो एक छोटा सा विषय हमने रखा हुआ है आज, जिससे हम बातचीत करना चाहेंगे, है ना। ये विषय ये है कि जैसे कि वर्तमान में तो हम सभी अपना जीवन बिता रहे हैं, है ना। बहुत सारी चीजें हम भविष्य के लिए सोचते हैं, सामान इकट्ठा करके रखते हैं, भविष्य में ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, और जो हो चुका उसके बारे में भी सोचते हैं कि ऐसा अगर कोई गलती हुई तो सबक भी लेते हैं कि ऐसा ना हो। लेकिन इस बीच में वर्तमान को हम किस तरह जी रहे हैं, आप बताएंगे वर्तमान के क्या मायने हैं आपके जीवन में।
1: बीती हुई बातों को छोड़कर मैडम, जो आने वाला कल है, आने वाला जो कल है उसके बारे में सोचे तो बेहतर होता है। आगे जो भी कार्य करना है अपने वो कार्य अपन कर सकते हैं।
2: अच्छा, जैसे आप ये बताएं, जैसे वर्तमान में बहुत सारी चीजें होती हैं, छोटी छोटी खुशियां होती हैं अपने परिवार के बीच, अपने मित्रों का साथ, कई हमारे स्कूल के मित्र होते हैं, कॉलेज के मित्र होते हैं, और हमारे बड़े बुजुर्ग भी होते हैं। क्या उनको आप ध्यान रखते हैं, उनका ख्याल रखते हैं, उनसे बातचीत करते हैं वर्तमान में? हाँ जी,
1: जैसे आज हम जितने भी आज जो है गुरु के ज्ञान के बिना तो जीवन संभव नहीं होता है।
2: बिल्कुल, ये तो हमारे गुरु, हाँ बिल्कुल,
1: गुरु का स्थान हम सबसे ऊपर।

0: करते हैं, जीवन में हम जिन लोगों से सीखते हैं उनमें केवल शिक्षक ही शामिल नहीं होते, कभी माँ का धैर्य, कभी पिता का अनुशासन, कभी मित्र की सलाह, कभी किसी छोटे बच्चे की सहजता
1: जी
0: दोस्त, और कभी अपनी ही गलतियां हमें
1: बहुत कुछ सिखाती हैं जी।
0: जीवन पाठ
1: हाँ
0: सिखा जाती है,
1: बिल्कुल,
0: जो कोई पुस्तक में नहीं लिखा होता,
1: बिल्कुल। और इन सब बातों का तो हमको ध्यान रखना चाहिए, लेकिन जैसे जो आज है हमारा वर्तमान है, उसमें भी हमें अपनी सेहत का, अपनी रुचियों का, इन सब का भी ध्यान रखना चाहिए कि नहीं?
0: जी मैडम, कैसा?
1: जैसे आज में हमें अपनी जीवन में जो कुछ, जैसे कि हमारी कुछ रुचि है, हमारे शौक हैं, उसको जिंदा रखना चाहिए कि नहीं?
0: नहीं, जिंदा बिल्कुल रखना चाहिए, और अपने जो भी कार्य है उसके लिए अपने लगन से करें।
1: हाँ
0: हाँ,
1: जैसे आप मान लीजिए आपको किस चीज का शौक है, पेंटिंग करना, संगीत सुनना, क्या अच्छा लगता है आपको?
0: हाँ, समय समय पर सब करते, संगीत भी सुनते हैं, गाना भी सुनते हैं।
1: बिल्कुल, तो इसके लिए समय निकालते हैं आप? हाँ, इसके लिए समय निकालते हैं आप
0: जी?
1: इसके लिए समय निकाल पाते हैं आप?
0: हाँ, निकाल लेते हैं मैडम, ऐसा नहीं है, निकालते हैं, बच्चों के
1: चलिए
0: निकालते हैं, अपने परिवार के लिए घूमने के लिए जाते हैं।
1: बहुत अच्छी बात, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है ना। तो ये आज है जिसे हम नजरअंदाज नहीं कर सकते, है ना। आज में हम अपने जीवन को जिए, भविष्य के लिए भी सोचें, लेकिन आज हमारे लिए खास स्थान रखता है ना। आपने फोन किया,
0: परिवार के साथ रहे,
1: बिल्कुल बिल्कुल, आपने फोन किया, अच्छी बातें हुई आपसे।
0: किस मैडम से बात हुई सर मेरी आज?
1: मैं आपकी रेडियो मित्र श्वेता बोल रही हूँ, है ना। तो आपने फोन किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार,
0: धन्यवाद, नमस्कार।

0: कार्यक्रम बात आपके गीत हमारे में स्वागत है आपका जी। आपने फोन किया है बात आपके गीत हमारे में, पहले आपका नाम बताएं।
1: नाम प्रोग्राम से बोल रहे सुहाग कोई से
0: जी, नाम बताएं।
1: छोटू मीना।
0: अच्छा, कोई बात नहीं है कि हम आपको गाने नहीं सुनवाते, हम गाने समय समय पर आपको सुनाते हैं। आज आपने फोन किया है बात आपकी गीत हमारे में, इसमें एक विषय रखा गया है जिसमें हम आपसे बातचीत करना चाहेंगे। अच्छा, तो जैसे बताएं कि वर्तमान में आपका, जैसे आप भविष्य के लिए भी बहुत कुछ सोचती हैं, है ना, समय सामान इकट्ठा करके रखते हैं हम कि भविष्य में ऐसा करेंगे, पैसे भी जोड़ कर रखते हैं हम, और ये बहुत अच्छी बात है ना। और गुजरा हुआ जो समय है उसको भी याद करते हैं कि भाई देखो ऐसी परेशानी बीते हुए वक्त में हुई थी, है ना, उससे भी हम सबक लेते हैं कि ऐसा ना हो। पर इस बीच जो आज है हमारा वर्तमान, वो हमारे लिए क्या स्थान रखता है?
1: स्थान दे रखता है मैडम जी, आप काम धंधे करते हैं, काम धंधे के साथ साथ फिर वो हम सब चीज सोच के चलते हैं।
0: ये तो बहुत अच्छी बात हुई। अब जैसे आज के बारे में मैं आपसे बात करना चाहूंगी, जैसे कुछ वक्त आप निकाल पाती हैं अपनी सेहत के लिए, सेहत बहुत इम्पोर्टेंट होती है, बहुत खास होती है, अपनी सेहत का ध्यान रखती हैं आप?
1: रखते हैं सेहत का ध्यान, हम आज तकलीफ हो जाती दर मैडम जी, अस्पताल जाते डॉक्टर किधर जाते हैं,
0: समय समय पर चेकअप कराना भी जरूरी है। और इसके अलावा, हाँ बिल्कुल, और इसके अलावा हमारी जो रुचि होती है, हमारे जो शौक होते हैं, जैसे किसी का संगीत सुनना, खाना बनाना, बागबानी करना, ये सब शौक होते हैं ना, आपके क्या शौक हैं?
1: हमारा शौक तो एक ही है मैडम जी, हम सुबह से रेडियो चालू कर लेते हैं
0: जी,
1: हम 12-3 बजे तक हम रेडियो बंद करते हैं।
0: हाँ,
1: शौक एक ही है हमारा,
0: बिल्कुल, मतलब गीत संगीत सुनना, रेडियो सुनना आपका शौक है?
1: बहुत शौक है,
0: बिल्कुल।
1: तो हम कॉल लगाते ही रहते, हमारा कॉल वही मुश्किल से लगता है।
0: नहीं नहीं, आज लग गया
1: तो हमको लगता है, तो हमारा हमको गाना नहीं सुनने मिलता।
0: नहीं नहीं, आपको कल जरूर सुनने को मिलेगा गाना। देखिए आपने फोन किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।

0: कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे में स्वागत है आपका।
1: धन्यवाद दीदी जी, नमस्कार।
0: आपका नाम बताएं।
1: मेरा नाम श्री चंद्र निषाद है दीदी।
0: श्री चंद
1: निषाद
0: जी, कहाँ से बात कर रहे हैं, आपकी जगह का नाम बताएं।
1: ग्राम जलालपुर, जिला बांदा, तहसील बदेरू, उत्तर प्रदेश से बोल रहा हूँ दीदी।
0: अच्छा, तो कार्यक्रम में आपका स्वागत है और आज हम आपसे बात करना चाहेंगे एक विषय पर। बात करेंगे आप हमसे?
1: जी,
0: जैसे कि हम बहुत सारी चीजें जोड़ कर रखते हैं अपने भविष्य के लिए, है ना, पैसा सामान जोड़ते हैं, है ना, और अच्छा भी है क्योंकि कई बार क्या होता है कि बुरे वक्त में ये चीजें काम भी आती हैं, हमें बचत भी करनी चाहिए। लेकिन कुछ जो बीत चुका है उससे भी हम सबक लेते हैं, भाई कोई गलती हो गई तो हम उससे सबक लेते हैं, दोबारा ऐसा ना हो। लेकिन इन दोनों के बीच में आपका वर्तमान भी होता है, आज होता है, तो आज आप मतलब वर्तमान का आपके जीवन में क्या स्थान है?
1: वर्तमान क्या क्या अच्छा है?
0: जैसे आप अपनी खुशियों को, अपने छोटी छोटी चीजों को, जैसे आपके जो शौक हैं, रुचि हैं, आपके मित्र हैं, उनके साथ समय बिता पाते हैं आज?
1: कुछ सब कम समय लगता है ऐसी चीजों में, ज्यादा करके बस वही जिंदगी भाग दौड़ की बनी है।
0: हाँ, वही हम कहना चाह रहे हैं कि आपकी जो जिंदगी है जिसमें हम सभी भाग रहे हैं, आज ऐसा लगता है कि आज को हम भूल जा रहे हैं। आज में हमें अपने परिवार का, मित्रों का, अपनी छोटी छोटी जो शौक हैं, रुचि हैं, उनका ध्यान रखना चाहिए।
1: रखना तो चाहिए दीदी जी,
0: इससे हमारी जिंदगी खुशनुमा होगी और अगर अच्छी होगी तो हम दुगने उत्साह के साथ फिर से काम में जुट जाएंगे।
1: जी दीदी जी।
0: तो फिर आपने क्या सोचा है, आप अपनी रुचि, शौक, अपने मित्र, अपने परिवार के साथ को कायम रखेंगे?
1: जी, हम तो कुछ समय लगाकर ध्यान रख लेते हैं जी।
0: जी जी जी, हमें खुशी हुई है जानकर और आपने फोन किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।

0: ये था कार्यक्रम बात आपके गीत हमारे। जो गुजर गया वो कल था, जो आने वाला है वो कल होगा, पर जो आज है वो हम सबका वर्तमान है। अपने जीवन में आज की खुशी मौके को शामिल करिए और जिंदगी का भरपूर आनंद उठाइए। तो अब दीजिए अनुमति आपके रेडियो मित्र श्वेता को। नमस्कार।
1: फोन इन प्रोग्राम बात आपकी गीत हमारे अभी आप सुन रहे थे, प्रसारण आकाशवाणी मध्य प्रदेश से किया गया।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। अब सुनते हैं इस घंटे की खास खबरें।
1: मध्य प्रदेश, बिहार और गुजरात की 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए आज मतदान जारी है। चुनाव आयोग के अनुसार सुबह 9 बजे तक प्रदेश की दतिया सीट पर 12.94% मतदान हुआ। सुबह 7 बजे से शुरू हुआ मतदान शाम 6 बजे तक चलेगा। ग्वालियर में देश का पहला टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन स्थापित होने जा रहा है। इसके लिए आज नई दिल्ली में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की उपस्थिति में दूर संचार विभाग और मध्य प्रदेश शासन के बीच MOU पर हस्ताक्षर होंगे। प्रदेश में 7 अगस्त से मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान चलाया जाएगा। मुख्य सचिव अशोक वर्णवाल ने कलेक्टर्स और संभागायुक्तों के साथ इस संबंध में बैठक की। श्री वर्णवाल ने निर्देश दिए हैं कि अभियान के दौरान सभी विभागों की लंबित समस्याओं का शत प्रतिशत निराकरण किया जाए। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बुरहानपुर में आयोजित बलराम कृषि महोत्सव में सहभागी बनेंगे। किसानों को आधुनिक तकनीक और वैज्ञानिक खेती से जोड़ने के लिए यह महोत्सव विभिन्न जिलों में आयोजित किया जा रहा है। प्रदेश में नशे से दूरी है जरूरी 2.0 अभियान में इंदौर पुलिस और बड़वानी पुलिस ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाकर प्रदेश का नाम रोशन किया है। लंदन नॉवल बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन ने इस पहल को मान्यता देते हुए इनका नाम रिकॉर्ड में दर्ज किया है। और प्रदेश के शासकीय अनुदान प्राप्त महाविद्यालयों में प्रवेश के लिए 31 जुलाई को अंतिम दिन है। उच्च शिक्षा विभाग ने कहा है कि विद्यार्थी समय सीमा में प्रवेश प्रक्रिया पूरी कर लें। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। प्रस्तुति कार्यक्रम आपकी फरमाइश। आज इस प्रोग्राम को लेकर हाजिर हूँ मैं आपकी अपनी रेडियो संगीनी प्रियंका। श्रोताओं नमस्कार। वक्त आ गया है पत्रों द्वारा आपकी भेजी गई फरमाइश को पूरा करने का। तो चलिए सुनते हैं 100 डेज फिल्म का गीत। लता मंगेशकर और एसपी बाला सुब्रमण्यम की आवाजों में गीत लिखा है दिलीप ताहिर ने, संगीत है राम लक्ष्मण का। और इस गीत के लिए हमें फरमाइश मिली है डोंगरगांव जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से राष्ट्रपाल गजभिये, राधिका गजभिये, बेबी अनामिका और तन्मय गजभिये की। साथ ही साथ इस गीत को सुनना चाहा है खुरई से राम सखी, परमानंद, सौरभ, गौरव, किशोरी बॉस, एलपी रोहित, लल्लू राम, पूरन रोहित, छोटू, डुंडुन और पूरा इनका परिवार। और ये फरमाइश हमें मिली है करूला मुरादाबाद से अयूब खान, इरम गुड़िया और शुएब खान की। तो आइए सुनते हैं 100 डेज फिल्म का गीत राम लक्ष्मण के संगीत निर्देशन में दिलीप ताहिर के बोल है, आवाज़ लता मंगेशकर, एसपी बालासुब्रमण्यम की।

लता मंगेशकर और साथियों की आवाज में आइए अब सुनते हैं हसरत जयपुरी का लिखा ये गीत, जिसकी धुन बनाई है रविंद्र जैन ने और फिल्म का नाम है राम तेरी गंगा मिली। इस फिल्म के इस गीत को सुनना चाहा है ग्राम पहरुआ से राम कुमार लोधी, गोविंद यादव, मुन्ना खान, बारेलाल, सुदामा सेन, सुमेर पटेल, अवधेश कुमार दुबे, संतोष सिंह ठाकुर इसी गीत को पसंद किया है। सिंहपुर बड़ा से राजेश नेमा, संगीता भावना और प्राची नेमा ने, और ये हमारे श्रोता है बेलई जिला सागर से लक्ष्मण रेकवार, श्रीमती विनीता रेकवार, कुमारी वैशाली, वैष्णवी अनुरथ हल्ले और ऋषि रेकवार बंडा, और साथ ही साथ लल्लू भाई भी हैं।

0: इस मस्ती भरे गीत के बाद आइए अब सुनवाते हैं मेरी जंग फिल्म का गीत, किशोर कुमार, एस जानकी, जावेद जाफरी की आवाज़ों में, गीतकार आनंद बख्शी, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। और इस गीत को सुनना चाहा है राजपुर से घीसु दिलवारे, लक्ष्मी, माधुरी, सोनाली, भगवान, पुष्पा, नेहा, एकता, मस्मिता, सौरभ और कुमणाल दिलवारे ने। इसी गीत को सुनने के लिए हमें ये पत्र मिला है गांव भड़भुंजी, जिला आगर, मध्य प्रदेश से, रघुनाथ मालवीय, भवरबाई, सुषमा, पुष्पा, ममता, मंजू, बबीता, राधा, सरिता, श्याम बाबू, भावना, दुर्गा, मधुबाला, मिलन और ओम प्रकाश। और प्रमिलागंज आलोट जिला रतलाम से ये खत है बलवंत कुमार वर्मा, राजूबाई वर्मा, माया, शोभा, राहुल, ज्योति, अतुल, प्रियांश वर्मा और ऋषि वर्मा।
1: To make you dance, you will move your feet and groove to the beat. So then, which beat would you like? Dosto, kaun sa dance pasand karenge aap? Rumba?

अब की फरमाइश कार्यक्रम का आखिरी गीत और इसमें शामिल कर रहे हैं हमारे इन श्रोताओं के पत्र। ये है मुल्ताई जिला बैतूल से पूरन बजाज लखन और आप है दिल्ली शहर मोरी गेट से कन्हैया लाल, रीता देवी, शिल्पा रानी, आकाश कुमार और महेशवाड़ी मलकापुर से शत्रुघ्न धाड़े, वाल्मीकि धाड़े, नीना जी, स्वप्निल धाड़े और अजय खिरोड़कर। आप सभी सुनना चाहते हैं अग्नि साक्षी फिल्म का गीत कविता कृष्णमूर्ति की आवाज़ में। गीत के बोल लिखे हैं समीर ने और संगीत नदीम श्रवण का है।

0: अग्निसाक्षी फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। कविता कृष्णमूर्ति की आवाजों में गीत लिखा था समीर ने, संगीत था नदीम श्रवण का। इसी के साथ आपकी फरमाइश कार्यक्रम अभी यहीं समाप्त होता है। समय है एक अंतराल का।
1: हेलो
2: राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ।
1: फिर से
2: आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे।
3: 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे।
1: सर इतने कहाँ से?
3: एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में।
1: 2 लाख
4: क्या हुआ पापा?
1: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं।
2: अरे
1: काट दिया।
4: पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
1: फ्रॉड?
4: पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें, उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
1: तो पैसे गवाओगे।
5: RBI कहता है
6: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
7: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
8: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी EMI गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान EMI के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
7: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
9: अरे तनिष्का, कहाँ थी इतने दिनों से?
10: अरे राधिका, मैं गई थी कुल्लू मनाली।
9: तो क्या क्या किया कुल्लू मनाली में? मजा आया कि नहीं?
10: अरे काहे का मजा,
9: क्यों, क्या हुआ?
10: अरे मैंने वहाँ आकाशवाणी और विविध भारती इंदौर को बहुत मिस किया।
9: अरे इसमें मिस करने वाली क्या बात है, अब तो आकाशवाणी और विविध भारती इंदौर मोबाइल ऐप News on AIR पर भी उपलब्ध है, तुम्हें नहीं पता?
10: ऐसा क्या, तो अब मैं जब भी बाहर जाऊंगी मोबाइल ऐप के जरिए आकाशवाणी ऐप से जुड़ी रहूंगी।
9: ये हुई ना बात।
7: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
8: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी EMI गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान EMI के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
7: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
11: CERT का प्रायोजित कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर से प्रसारित हो रहा है शाम 6 बजे।
7: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
8: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी EMI गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान EMI के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
7: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
12: बड़े अच्छे लगते हैं
13: क्या
12: ये धरती, ये नदिया, ये रैना
13: और
14: आकाशवाणी इंदौर, सुनते रहिए मालवा की शान आकाशवाणी इंदौर।
7: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
8: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी EMI गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान EMI के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
7: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
15: इस समय आप हैं हमारे साथ।
16: जी हाँ, मालवा की शान आकाशवाणी इंदौर के साथ।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। दोपहर के 12:30 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम संग्रहालय से। आज इसमें हम आपको सुनवा रहे हैं रेडियो धारावाहिक कामिनी काय कांतारे की 15वीं कड़ी।
1: प्रस्तुत है महेश कटारे द्वारा लिखे उपन्यास कामिनी काय कांतारे की रेडियो नाट्य प्रस्तुति। रूपांतरकार हैं प्रोफेसर प्रकाश दीक्षित और प्रस्तुतकर्ता चित्रेंद्र स्वरूप राजन। आज प्रस्तुत है कामिनी काय कांतारे के रेडियो नाट्य रूपांतरण का 15वां भाग। अब तक आपने सुना कि राजा भर्तृहरि चारुमित्रा से मिलने चंद्रपुर जा रहे हैं। मार्ग में देवी मणि भद्रा का तांत्रिक क्षेत्र पड़ता है। राजा उस क्षेत्र में प्रवेश चाहते हैं। अब आगे।

0: राजा भर्तृहरि देवी मणिभद्रा तक पहुंचना चाहते हैं, परंतु उन्हें मार्ग नहीं मिल रहा। वो जोर जोर से पुकारते हैं,
1: कोई है, कोई है, अरे कोई है जो मुझे देवी मणिभद्रा तक पहुंचा दे।
2: आज भी वृकवन की ही भांति किसी वृक्ष पर चढ़कर रात काटनी होगी, उजाले की प्रतीक्षा में।
3: कौन हो, कहां से आए हो, क्यों मिलना चाहते हो? ठहरो, मैं आती हूं।
2: मेरे पास देवी के लिए भेजा गया उपहार है, अन्य प्रश्नों के उत्तर मैं देवी को ही दूंगा।
3: माता मणिभद्रा से भेंट चाहता है तू?
2: हाँ।
3: उनके लिए क्या उपहार लाया है?
2: तुम भी भर मदिरा।
3: उपहार किसने भेजा है?
2: माधाग्राम के मधु विक्रेता मधुचंद्र ने।
3: ला, ये तुम भी मुझे दे।
2: नहीं, इसे केवल देवी मणिभद्रा को ही सौंपूंगा। तुम देवी मणिभद्रा तो नहीं हो?
3: और मैं छीन लूं तो?
2: मैं प्रतिरोध करूंगा, तुम उसे छीन नहीं सकती।
3: तू साहस होगा रे मानव, तू जानता है नहीं है मेरी शक्ति?
2: अपनी शक्ति जानता हूं, तुमसे विवाद नहीं करना चाहता। अस्तु, कृपा करके देवी मणिभद्रा तक पहुंचने का मार्ग बता दे।

0: हाँ, सर्वथा उपयुक्त है तो प्रति अनुष्ठान के हेतु सर्वथा योग्य सुंदर सुगठित वांछनीय है। आज मेरा भैरव तू बनेगा।
1: भर्तरी ने देखा कटी से ऊपर निर्वसन बाल फैलाए सिंदूर पोते मद में चूर भैरवी अपने उन्माद का भय उत्पन्न करती आलिंगन के लिए उद्दत मुद्रा में उनकी ओर बढ़ रही है।
2: माते, पहले मुझे देवी मणिभद्रा के पास पहुंचा दे, तत्पश्चात तुम्हारी अथवा देवी मणिभद्रा की जो भी जैसी भी आज्ञा होगी मुझे शिरोधारी होगी।
0: धूर्त है रे तू मनुष्य, धूर्त धूर्त। माता कहकर भरमाना चाहता है। मूर्ख, मैं शक्ति हूं, अनेक रूप है मेरे, उनमें से एक माँ का भी है। आज तेरी बात ही सही, अपनी आधीश्वरी से आज मैं तुझे मांग लूंगी। आ मेरे पीछे पीछे, आ आ मेरे पीछे।
1: स्त्री अपेक्षाकृत शांत हो जाती है।
0: मुझे प्यास लग रही है, तेरे पास मदिरा से भरी तुम भी है ना, उसे पीने के लिए मुझे दे देना।
2: माते, मैं निवेदन कर चुका हूँ कि ये थाती है किसी की, जिसे ज्यों का त्यों सौंपना मेरा दायित्व मेरा धर्म है। मैं इसे तुम्हारे सामने ही देवी मणिभद्रा को दूंगा, फिर चाहे तुम पूरी तुम भी ले लेना। हाँ, मेरे पास अपनी दो रोटियां हैं, चाहो तो उन्हें ले लो।
1: चले जा रहे थे वे। राजा भर्तरी को कभी कभी आभास होता कि जैसे वहां बिखरे हुए मूर्ति शिल्प जीवंत हो गए हैं। कुछ देर में प्रकाश स्पष्ट होने लगा। पीपल के एक विशाल वृक्ष के नीचे अनेक अग्निकुंड, कुछ बुझे हुए और कुछ में दहकते हुए कोयले, लपटे निकलती हुई। भैरवी ने किलकारी मारी। कुंडों के लाल पीले प्रकाश में भर्तरी को कुंडों के आसपास प्रेतों की भांति अदृश्य होती कुछ परछाइयां दिखाई दी। वृक्ष के नीचे एक विशाल शिला पर एक अर्धनग्न स्त्री इन आते हुए लोगों पर टकटकी जमाए हुए बैठी थी।
0: यही है हमारी आदिश्वरी मणिभद्रा, जाओ।
2: महामयी देवी मणिभद्रा की जय हो, जय हो।
3: इस समय इस साधना क्षेत्र में प्रवेश वर्जित है, तुम कैसे आ पहुंचे?
2: मुझे चंद्रपुर का छोटा मार्ग चुनकर शीघ्र ही वहां पहुंचना था, आपके दर्शन भी पाना चाहता था।
3: जानते हो, साधना में व्यवधान का दंड प्राण देकर चुकाना पड़ता है। कोई क्रुद्ध भैरव या भैरवी तुम्हें अभी ही त्रिशूल अथवा खांडे से भेद सकता है। मेरे समक्ष होकर भी तुम निरापद नहीं हो। इसके पूर्व कि हमारा कोप टूटे, शीघ्र बताओ कि तुम कौन हो।
2: ये तुम भी माधा के मधु विक्रेता मधुचंद्र ने आपके लिए भेजी है, कृपया स्वीकार करें। मैं देवी के सम्मुख मिथ्या भाषण का दोषी नहीं होना चाहता, पर अभी अपना नाम और कुल भी प्रकट नहीं करना चाहता, केवल रात्रि विश्राम की अनुमति चाहता हूं। प्रातः होते ही मैं अपने मार्ग पर निकल जाऊंगा।
3: तुझे भय नहीं है क्या?
2: भय तो छीने जाने का होता है देवी, मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है जिसे छीना जा सके, केवल प्राण है, और प्राणों का भी मोह अब बचा नहीं है।
3: अंगोछे में क्या बांध रखा है तूने?
2: दो रोटियां और मुट्ठी भर चबेना।
3: यहाँ आकर दिखा। इसमें तो घरेलू महक है, एक रोटी ले लूं।
2: जी।
3: हाँ, अब तू निर्भय होकर बैठ जा पति, मेरी बहन मंजरी के हाथों का स्वाद है तेरी इन रोटी में। माधा के बाहर के खेतों में रुका था क्या?
2: हाँ, वही एक कृषिका ने स्नेह पूर्वक ये रोटियां मार्ग के लिए बांध दी थी।
3: बस समझ ले कि ये रोटियां तेरा सुरक्षा कवच बन गई है पति, अब तुझे कोई भय नहीं। मेरी बहन।

0: सुन ले पति, भैरव और भैरवियां तुझ पर कुपित हैं, क्योंकि आज चक्र साधना की रात अवांछित प्रवेश करके तूने विघ्न उपस्थित किया है। साधना में विघ्न डालना अक्षम्य अपराध है। तेरे आने के पहले वो सब के सब आनंद के आरण में थे, और ध्यान भंग होते ही वो देह के आवेग में आ पहुंचे हैं। अपनी आंखों से देख राजा भर्तरी कि देह के आवेग में विवेक कैसे पीछे छूट जाता है।
1: देवी,
0: वज्र भैरव का संकेत मिल चुका था कि तुम यहां होकर निकलो तो मैं तुम्हारा सत्कार करूं, साधना का स्वरूप तुम्हें दिखाऊं। तुम उज्जैनी के नरेश भर्तरी ही हो सकते हो। साधारण मनुष्य तो क्षेत्र की भयावहता के भास से अपने प्राण ही छोड़ देता। तुम उज्जैनी के नरेश ही हो ना?
1: मां, अभी केवल भर्तृहरि हूं।
0: इतना ही पर्याप्त है। नीला, नीला
2: देवी।
0: नीलघंटा, तुम तो चक्र साधना में थी ना?
2: महाभद्रा, तुम यदि अनुमति दे दो तो मैं इसे साधन भैरव बना लूं।
0: पहले तुम इनके पाद अर्चन अर्घ आचमन के लिए जल की व्यवस्था करो। तदुपरांत यदि ये स्वीकार करें तो तुम्हारे साधन भैरव हो सकते हैं। आओ नरेश, इस प्रस्तर शिला पर आसन ग्रहण करो। तुम्हें हमारा आचरण देखकर वितृष्णा हो रही होगी।
1: नहीं देवी,
0: वस्तुतः हमारे साधना मार्ग का पहला अनुशासन है कि सामान्य जन से पार्थक्य बना रहे, इसलिए हम किंचित घृणा, जिज्ञासा और भय का वातावरण खड़ा कर देते हैं।
1: जिज्ञासु हूँ देवी, और भी कुछ समझना चाहता हूँ।
0: ओ, वहाँ जो एकादश हवन कुंड देख रहे हो ना, एकादश युगल वहाँ बैठेंगे। 5 ज्ञानेंद्रिय 5 कर्मेंद्रिय और 1 मन चक्र साधना में आज 5 भैरव और 6 भैरवियां भाग ले रही हैं। साधना के लिए यंत्र के आसपास 5 कुंड जागृत किए गए हैं। यंत्र महाशक्ति का प्रतीक है, कुल का प्रतीक है। तो जेनी नरेश, ये एक अनुभव क्रीड़ा है। अपने ही शरीर में पुरुष और नारी युगल की स्थिति के साथ पूर्णता की प्रतीति के निकट पहुंचने का उपक्रम है। कुलाकुल के अभेद का चिरंतन आनंद जहां प्रवाहमान है। प्रवाहमान अर्थात प्रतिक्षण नूतन आनंद।
2: जल प्रस्तुत है।
0: ठीक है, अब तुम जाओ नीला।
2: बहुत प्यास है भद्रे, उद्विग्नता है।
0: प्यास को बढ़ने दो, उद्विग्नता के साथ खेलो। एक सीमांत पर ये स्वयं प्रशमित हो जाएंगी। जल आ गया है राजन, हाथ पांव धोकर आचमन करें। शुभ संयोग में तुम आज यहाँ पहुंचे हो। आज उपासना की रात है। महाभैरव की इच्छा है कि तुम साधना के साक्षी बनो।
2: भर्तरी ने जल पात्रों को छुआ। ये शमशान से लाए हुए घड़े थे जिन्हें भरकर नीलघंटा भर्तरी के लिए पानी लाई थी। ये घड़े थे मैले, कुचेले, बदरंग। भर्तरी को घिन हो आई। यहाँ तो मलिनता और दूषण ही केवल सामने है।
0: इस साधना के प्रथम चरण में शुचि और अशुचि के भेद से मन को मुक्त करना पड़ता है। भर्तरी, भर्तरी, यहाँ कुछ भी अग्राह्य नहीं है। एतदर्थ बहिरंग उपासना से शरीर के स्वभाव और गुण का अतिक्रमण कर अभाव से महाभाव तक की यात्रा करने वाला ही भैरव बन पाता है। जल का स्वभाव निर्मलता है, मलिनता उसे अन्य से मिलती है। पियो भर्तरी, आनंद का अनुभव करो और पियो। प्यास देह का भाव है, देह जन्य प्यास निहित पदार्थ से ही शामित होगी, अन्यथा तुम्हारी आत्मा और चित्त की व्याकुलता बनी ही रहेगी। जल की कामना तुम्हें सहज प्रेक्षक न बनने देगी।
2: मणिभद्रा पाषाण शिला से उतरकर भर्तरी के सामने खड़ी हो गई। मुक्त वसना नारी देह को सामने पाकर राजा भर्तरी की आंखें संकोच से बंद हो गईं। तभी मणिभद्रा ने ललकारा,
0: अपने चित्त को सहज कर उज्जैनी नरेश, और स्मरण कर तूने कभी अपनी माँ को भी निर्वसन देखा होगा, उसके स्तनों से खेलता रहा होगा मूर्ख। ये सभी भैरव और भैरवियां इस समय यौवन की उल्लासित अवस्था में हैं। तेरे आने से पूर्व यह आरंभ और तरुण अवस्था से आगे बढ़ चुके हैं। प्रेक्षक बनने के लिए तुम्हें भी आरंभ उल्लास तक आना पड़ेगा। मेरा अनुगमन कर राजा भर्तरी, ये ले तेरी लाई हुई तुम्बी और पी ले। तुम अब साधना भूमि के प्रेक्षक हो, हम सबके अतिथि हो। महाभैरव के प्रसाद की अवहेलना करेगा तो भैरव के ये गण तुझ पर टूट पड़ेंगे। इन क्रुद्ध आंखों को देख जो झाड़ियों से झांक रही हैं, हिंसक निर्दयी आक्रामक और विस्फारित आंखें।
1: देवी, आप जानती हैं कि मद्य के आस्वाद से मैं अनजान नहीं हूं। प्रतिदिन सेवन करने वाले अवंती नरेश को उस दिन से इसकी आवश्यकता ही नहीं रही जब मैंने राज महालय छोड़ा। मांसाहारी वन श्वानों का भय मुझे नहीं है, क्योंकि उस लकुटी के आलंबन पर मैं यहां तक निरापद चला आया हूं। किंतु तुमने स्वयं ही मुझे अपना अतिथि चुना है, अतः मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा जो इस क्षेत्र की मर्यादा के विरुद्ध हो। लाओ प्रसाद दो माते।
0: आज की साधना बस यहीं तक, इसी चतुर्थ प्रौढ़ उल्लास तक। पुत्रों और पुत्रियों, इसके पश्चात ये भूमि वन समय और जो कुछ भी उपलब्ध हो वो सब तुम्हारा है। शक्ति के आलंबन से इसी काया में मोक्ष पाने तक उद्यम करो और स्मरण रखो कि जब तक ये काया है तभी तक ये संसार नित्य है और काया का इच्छित है सुख। समझ लो कि साधना की इस घड़ी में तुम्हारे सिवा यहाँ अन्य कोई उपस्थित नहीं है। और भर्तरी तुम भी जान लो, इस महा साधना का प्रारंभ मध्य से होता है और अंत मैथुन से। मैथुन वो है जिसमें नारी में शक्ति का आरोपण होता है, जिनसे भौतिक और शारीरिक सुख की क्षणिक अनुभूति अपरिमेय आनंद में परिवर्तित हो जाती है।
1: मेरा मदिरा पात्र रिक्त हो गया है।
0: मैं उसे भर देती हूँ। किंतु भर्तरी, साधना में संयम का होना बहुत महत्वपूर्ण है। चरणामृत से प्यास नहीं बुझती। इसी प्रकार मध्य सेवन से संज्ञाहीनता की स्थिति में पहुंचना साधना नहीं है।
3: ये तो पशुता है।
1: कुछ खाने को मिलेगा माते?
3: खोज ले, यत्र तत्र ये मांस पिंड बिखरे पड़े हैं। अरे तेरा लाया हुआ रोटी साग भी तो है,
1: इसमें से तुम भी खा लो माते।
3: नहीं रे, मुझे आहार की क्या कमी है।
2: प्रातः काल का सूर्य रात्रि की कालिमा को चीर कर चारों दिशाओं में प्रकाश भर देता है।
1: सृजात्येष जगत् कृत्स्नं पाति संहरते तथा कालो भूत्वा महादेवः केवलो निष्कलः शिवः।
3: इस पद का अर्थ क्या है भर्तरी?
2: भर्तरी सुन नहीं पाए, वो देख रहे थे विशाल पीपल के नीचे हवन कुंडों के आसपास बिखरी और उड़ती हुई पत्तलें, टूटे हुए मृद पात्र, हव्यशेष, अधजली समीधाएं इधर उधर बिखरे हुए थे। विगत रात्रि के स्मृति चिन्ह यहां वहां। भर्तरी को लगा एक सपना था जो बीत गया। मदिरा का ये वस्तु जगत की झिलमिलाती ओट देने वाला प्रभाव कहीं अपने लिए अतिरिक्त सुख की इच्छा ही तो जुगुप्सा का संसार नहीं रचती थी।
0: सुना नहीं तुमने नरेश? मैंने तुमसे कुछ पूछा है, क्या सोच रहे हो?
1: क्षमा करें माते, सचमुच ही मेरा चित्त कहीं और था। कुछ पूछा आपने?
0: तुम कोई पद गुनगुना रहे थे, इसका अर्थ क्या है?
1: वो महाकाल महादेव की स्तुति है माते। केवल वही निष्कल महादेव शिव काल बनकर संपूर्ण जगत की सृष्टि करते हैं, पोषण और रक्षा करते हैं और उसका संहार करते हैं।
0: ये तो परम गुरु आदि योगी शिव का पहले से ही जाना और माना हुआ तत्व है। मैंने सोचा कि कोई नई बात है।
1: एक पुरातन सत्य ही नए नए रूप में आकर सृष्टि के सूत्र साधता है देवी, युग के अनुसार उसकी व्याख्या भी नई हो जाती है। अच्छा माते, वे सारे भैरव भैरवियां कहाँ चले गए? ये सुनसान क्यों है?
0: साधक को भी देह धर्म निभाना पड़ता है, शरीर ही साधना का माध्यम है। शरीर के धर्म का अतिक्रमण तभी संभव है जब शरीर बना रहे। आहार विहार दोनों शरीर के धर्म हैं, इन्हें साध लेना ही साधना है। भैरव और भैरवियां यही कर रहे होंगे। संभव है कि राह में तुम्हें कोई मिल जाए, उससे वार्तालाप मत करना, उसके निकट रुकना भी मत। उनमें से कोई तुम पर आक्रमण कर सकता है। तुम्हारी सुरक्षा के लिए मैं तुम्हें त्रिपद तक पहुंचा देती हूं।
1: माते, मुझे तो इसी अरण्य मार्ग से जाना है ताकि आज ही चंद्रपुर पहुंच सकूं। त्रिपद तो पीछे छोड़ आया हूं।
0: चंद्रपुर? बड़ी उद्दाम इच्छा है तेरी जल्दी से जल्दी चंद्रपुर पहुंचने की।
1: उसी के लिए यात्रा की है।
0: जानती हूँ, किंतु ये मार्ग तो अत्यंत दुर्गम है। सीधे खड़े आकाश को चूमते हुए पर्वतों के बीच द्रुतवाहिनी एक सक्री नदी है, योजन भर दूर, जिसमें अनगिनत मकर और घड़ियाल भरे हैं। तत्पश्चात योजन भर गहन कांतार है, हिंस वन्य जीवों से भरा हुआ है। जो इस मार्ग से जाता है उनका आहार बनता है। लोकापवाद है कि मध्य मास मैथुन प्रिय साधक वहां उसे अपना आखेट बना लेते हैं।
3: इस लोकापवाद का खंडन

मार्ग में ऊंचे नुकीले धार वाले पत्थर हैं। चल पड़े हैं राजा भर्तरी चारू मित्रा के चंद्रपुर की ओर। मार्ग कठिन है, चारों ओर जंगल और पहाड़ हैं। चढ़ाई ऐसी कि जरा सी चूक का अर्थ होता तत्काल फिसलन और अंततः गहराई में गिरकर मृत्यु। यहाँ वहाँ बानर भालुओं के झुंड चौंककर इन पथिकों को देखते हैं, गुर्राते हुए आक्रामक होते हैं। तभी मणिभद्रा की किलकारी सुनकर अपने स्थान पर ठिठक कर रह जाते हैं और भर्तरी के पांव आगे बढ़ जाते हैं।

0: हमें इस नदी को पार करना है भर्तरी।
1: माते, इस भयानक नदी को, मगरमच्छों से भरी इस नदी को, जहां किनारे पर यहां वहां घड़ियालों के बीच से राह कैसे सुगम होगी माते?
2: भर्तरी के कातर शब्द सुनकर मणिभद्रा तीव्र अट्टहास करती है।

0: अभी आप महेश कटारे द्वारा लिखे उपन्यास कामिनी काय कांतारे की रेडियो नाट्य प्रस्तुति का 15वां भाग सुन रहे थे। रूपांतरकार थे प्रोफेसर प्रकाश दीक्षित। कलाकारों का भूमिका सहित परिचय इस प्रकार है। सूत्रधार चित्रा भादुड़ी, भर्तृहरि अरविंद बिलगैया, नील घंटा बद्रुन्निसा और मणिभद्रा रंजना तिवारी। परिकल्पना पंडित रामस्वरूप रतौनिया। संयोजक राकेश ढौंडियाल और प्रस्तुतकर्ता चित्रेंद्र स्वरूप राजन।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम संग्रहालय से के अंतर्गत रेडियो धारावाहिक कामिनी काय कांतारे का 15वां भाग। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
2: मध्य प्रदेश, बिहार और गुजरात की 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए आज मतदान जारी है। चुनाव आयोग के अनुसार सुबह 11 बजे तक प्रदेश की दतिया सीट पर 32.53% मतदान हुआ। सुबह 7 बजे शुरू हुआ मतदान शाम 6 बजे तक चलेगा। ग्वालियर में देश का पहला टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन स्थापित होने जा रहा है। इसके लिए आज नई दिल्ली में मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव की उपस्थिति में दूरसंचार विभाग और मध्य प्रदेश शासन के बीच MOU पर हस्ताक्षर होंगे। प्रदेश में 7 अगस्त से मुख्यमंत्री जनविश्वास अभियान चलाया जाएगा। मुख्य सचिव अशोक बर्णवाल ने कलेक्टरों और संभागायुक्तों के साथ इस संबंध में बैठक की। श्री बर्णवाल ने निर्देश दिए हैं कि अभियान के दौरान सभी विभागों की लंबित समस्याओं का शत प्रतिशत निराकरण किया जाए। प्रदेश में नशे से दूरी है जरूरी 2.0 अभियान में इंदौर पुलिस और बड़वानी पुलिस ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाकर प्रदेश का नाम रोशन किया है। वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड लंदन ने इस पहल को मान्यता देते हुए इनका नाम रिकॉर्ड में दर्ज किया है। और श्रावण महीने की वार्षिक कांवड़ यात्रा आज से शुरू हो गई है। इस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु गंगा नदी का पवित्र जल लेने के लिए हरिद्वार, गौमुख और गंगोत्री जैसे तीर्थस्थलों की यात्रा करते हैं। कांवड़ियों की सुविधा और सुरक्षा के लिए सरकार ने व्यापक व्यवस्थाएं की हैं। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
3: मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है महिलाओं का पसंदीदा कार्यक्रम महिला सभा।

महिला सभा सुनने वाली सभी सखियों को आपके अपनी दोस्त मनीषा नागदेवे का नमस्कार। उम्मीद है सखियों आप सब स्वस्थ और कुशल होंगी। आज 30 जुलाई है और 30 जुलाई को मानव तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस मनाया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य मानव तस्करी जैसे गंभीर अपराध के प्रति लोगों को जागरूक करना और पीड़ितों के अधिकारों की रक्षा के लिए समाज को संवेदनशील बनाना है। मानव तस्करी किसी भी इंसान की आज़ादी, गरिमा और उसके भविष्य को छीन लेने वाला जघन्य अपराध है। महिलाओं, बच्चों और युवाओं को झूठे रोजगार, शिक्षा, विवाह या बेहतर जीवन के सपने दिखाकर इस अपराध का शिकार बनाया जाता है। सखियों, मानव तस्करी कई रूपों में सामने आती है। जबरन मजदूरी, बाल श्रम, यौन शोषण, बाल विवाह और अवैध अंग व्यापार। सखियों, इस अपराध से बचाव का सबसे प्रभावी तरीका है सतर्कता और जागरूकता। माता पिता खुद सतर्क रहने के साथ साथ अपने बच्चों को भी सुरक्षित रहने की जानकारी दें। युवाओं को नौकरी और विदेश जाने से पहले सभी दस्तावेजों और संस्थाओं की सत्यता की जांच अवश्य करनी चाहिए। किसी भी अनजान व्यक्ति पर आंख मूंदकर विश्वास न करें। यदि कहीं इस तरह की कोई संदिग्ध गतिविधि दिखाई दे तो तुरंत पुलिस या संबंधित प्रशासन को सूचना दें। सखियों, आपकी एक छोटी सी सतर्कता किसी की पूरी जिंदगी बचा सकती है। याद रखिए, मानव तस्करी के विरुद्ध लड़ाई केवल सरकार की ही नहीं बल्कि पूरे समाज की जिम्मेदारी है। बस आवश्यकता है सतर्कता की, हौसले की, और ये हौसला कैसे झुके।

सखियों, फिल्म डोर का ये गीत अभी हमने सुना और वाकई ये हौसला कैसे झुके और इसी हौसले को नई उड़ान देने के लिए सरकार की योजना है स्टार्टअप इंडिया। स्टार्टअप इंडिया केवल एक नया व्यवसाय ही नहीं बल्कि समस्याओं का समाधान है, रोजगार के नए अवसर और देश की अर्थव्यवस्था को गति देने का माध्यम भी है। सखियों, भारत आज दुनिया के प्रमुख स्टार्टअप इकोसिस्टम वाले देशों में शामिल है। सूचना प्रौद्योगिकी, कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, वित्तीय सेवाओं और हरित ऊर्जा जैसे अनेक क्षेत्रों में युवा उद्यमी नए नए समाधान विकसित कर रहे हैं। स्टार्टअप इंडिया अभियान का उद्देश्य युवाओं को नवाचार के लिए प्रोत्साहित करना, उद्यम शुरू करने की प्रक्रिया को सरल बनाना और उन्हें आगे बढ़ाने के लिए अनुकूल वातावरण उपलब्ध कराना है। और सखियों, हम महिलाएं भी बड़ी संख्या में स्टार्टअप की दुनिया में अपनी पहचान बना रही है। यदि आपके पास भी कोई नया विचार है तो केवल कल्पना तक सीमित न रखें। सही योजना, निरंतर सीखने की इच्छा, मेहनत और धैर्य के साथ वह विचार भी सफलता की मिसाल बन सकता है। याद रखिए सखियों, हर बड़ा उद्योग कभी एक छोटे से विचार के रूप में ही शुरू हुआ था। स्टार्टअप इंडिया केवल एक सरकारी पहल ही नहीं बल्कि नवाचार, आत्मनिर्भरता और नए भारत के निर्माण का एक सशक्त जन आंदोलन है। तो आइए सखियों, हम नए विचार का सम्मान करें, नवाचार को अपनाएं और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में अपनी भूमिका निभाएं। और सुनिए ये प्यारा सा गीत।

0: सखियों, अभी हमने बजरंगी भाईजान फिल्म का गीत जुबिन नौटियाल की आवाज़ में सुना, और अब अगला क्रम हमारा, शब्द जब दिल से निकलते हैं तो असर छूट जाते हैं। शब्द जब दिल से निकलते हैं तो असर छूट जाते हैं, कागज़ पर उतरकर वही कविता बन जाते हैं। सखियों, आज से श्रावण मास शुरू हो गया है, तो सावन से जुड़ी कुछ भावनाओं और संवेदनाओं से सजी कुछ कविताएं लेकर आज हमारे साथ हैं निर्जा जैन। तो आइए सुनिए इनसे काव्य पाठ।
1: सावन इस ऋतु के आते ही मन आनंद, उमंग और उल्लास से भर जाता है और कभी कभी खो जाता है यादों में, बचपन की स्मृतियों में, जब सावन का आनंद सब मिलजुल कर उठाते थे। सावन और मोहल्ले की मस्ती के कुछ चित्र उतारने की कोशिश मैंने की है अपनी इस कविता में, जिसका शीर्षक है मोहल्ले का सावन। आइए सुनिए और भीग जाइए बचपन के उन दिनों में। बादल जब भी काले काले छतों पर आकर छा जाते हैं, गली मोहल्ले के सूखे मन फिर से जैसे मुस्काते हैं। बादल जब भी काले काले छतों पर आकर छा जाते हैं, गली मोहल्ले के सूखे मन फिर से जैसे मुस्काते हैं। टप टप गिरती बूंदों में बचपन फिर से जी उठता है। नंगे पांव सड़क किनारे पानी में सब भीग उठता है। टप टप गिरती बूंदों में बचपन फिर से जी उठता है। नंगे पांव सड़क किनारे पानी में सब भीग उठता है। चिल्लाते बच्चे दौड़ दौड़ कर कागज की नाव बनाते हैं। कीचड़ छपा की दुनिया में सपनों के रंग सजाते हैं। चिल्लाते बच्चे दौड़ दौड़ कर कागज की नाव बनाते हैं। कीचड़ छपा की दुनिया में सपनों के रंग सजाते हैं। कभी किसी के फिसलने पर ठाके गूंज उठते हैं और दीवारों से टकराकर खुशियों के सुर बहते हैं। कोने में बैठी दादी आंखें तरेर कर कहती है, अरे पागलों बीमार पड़ोगे डांट की छांव देती है। फिर भी मन

0: मनमानी बचपन की, फिर भी मनमानी बचपन की रुकने कहाँ वो पाती है। बारिश की हर एक बूंद में अपनी दुनिया बनाती है। मोहल्ले की हर खिड़की से, मोहल्ले की हर खिड़की से भुट्टे की खुशबू आती है। मोहल्ले की हर खिड़की से भुट्टे की खुशबू आती है। किसी के घर से पकौड़ों की गरम गरम थाली जाती है। बिजली कड़के बादल गरजें, बिजली कड़के बादल गरजें, फिर भी डर किसको लगता है। सावन की इस शरारत में हर चेहरा खिलसा उठता है। बिजली कड़के बादल गरजे, फिर भी डर किसको लगता है। सावन की इस शरारत में हर चेहरा खिलसा उठता है। गली गली में शोर नहीं, गली गली में शोर नहीं, बस जीवन गुनगुनाता है। मोहल्ले का ये सावन सच में बचपन लौट कर आता है। मोहल्ले का ये सावन सच में बचपन लौट कर आता है। मेरी एक और कविता है जो मैं आज आपको सुनाना चाहती हूँ। हर साल हम गिनते हैं और किसी का भी जन्मदिन आता है तो अक्सर ये सवाल पूछा जाता है, कितने सावन बीत गए। बस यही गिनती करते करते जीवन की सांझ हो जाती है। लेकिन उम्र अपने साथ इकट्ठा करती रहती है असंख्य स्मृतियों और अनुभवों की बूंदों को, जो कभी कभी यूं ही अकेले बैठे बैठे मन को भिगो देती है, कभी खुशी से कभी कुछ गम से। शायद यही तो जीवन है। इन्हीं भावों में भीगी मेरी अगली कविता है, जिसका शीर्षक है बूढ़ी आंखों का सावन। सावन की पहली फुहार, सावन की पहली फुहार आंगन में गिर जाती है। बुजुर्गों की आंखों में जैसे, बुजुर्गों की आंखों में जैसे पुरानी दुनिया लौट आती है। सावन की पहली फुहार आंगन में गिर जाती है। बुजुर्गों की आंखों में जैसे पुरानी दुनिया लौट आती है। उन्हें दिखता है बचपन अपना, उन्हें दिखता है बचपन अपना, नंगे पांव दौड़ता हुआ कच्ची गलियों में मिट्टी को पानी संग जोड़ता हुआ। उन्हें दिखता है बचपन अपना, नंगे पांव दौड़ता हुआ कच्ची गलियों में मिट्टी को पानी संग जोड़ता हुआ। कभी खेतों की मेड़ों पर, कभी खेतों की मेड़ों पर हल चलाते हाथ दिखते हैं। कभी खेतों की मेड़ों पर हल चलाते हाथ दिखते हैं। धूप में झुलसे चेहरे पर संघर्षों के दाग दिखते हैं। धूप में झुलसे चेहरे पर संघर्षों के दाग दिखते हैं। याद आती हैं वे बरसातें, याद आती हैं वे बरसातें जब छत टपकती रहती थी, जब छत टपकती रहती थी और माँ की आंचल की छांव हर मुश्किल को सहती थी। याद आती है वे बरसातें जब छत टपकती रहती थी और माँ की आंचल की छांव हर मुश्किल को सहती थी। कभी किसी के जाने का दुख, कभी किसी के जाने का दुख, कभी टूटे घर की बात, सावन उनके भीतर लाता अधूरी यादों की सौगात। सावन उनके भीतर लाता अधूरी यादों की सौगात। अब उम्र के इस मोड़ पर चलना भी धीमा लगता है। अब उम्र के इस मोड़ पर चलना भी धीमा लगता है, पर मन भीतर से अब भी भीगना अच्छा लगता है। अब उम्र के इस मोड़ पर चलना भी धीमा लगता है, पर मन भीतर से अब भी भीगना अच्छा लगता है। बूंदों में छिपा है जैसे, बूंदों में छिपा है जैसे बीता हुआ हर एक पल। हर झरती बारिश कहती है समय गया कितना ही निकल। बूंदों में छिपा है जैसे बीता हुआ हर एक पल। हर झरती बारिश कहती है समय गया कितना ही निकल। और कभी कभी मन के कोने में एक डर सा भी बस जाता है, क्या ये सावन आखिरी है, क्या ये सावन आखिरी है, सोच उन्हें घेर ले जाता है। फिर भी वो मुस्काते हैं, फिर भी वो मुस्काते हैं, खिड़की से बारिश देखते हैं। फिर भी वो मुस्काते हैं, खिड़की से बारिश देखते हैं। जीवन में फिर एक सावन को, जीवन में फिर एक सावन को फिर से वे जी लेते हैं। जीवन में फिर एक सावन को फिर से वे जी लेते हैं। जीवन में एक सावन को फिर से वे जी लेते हैं।
1: अभी हमने निर्जा जैन से सुना काव्य पाठ, आपको कैसा लगा सखियों ज़रूर बताइएगा। हमें आपके पत्रों का इंतज़ार रहता है। और अब जैसा कि हमने बात की, इस मौसम में चारों ओर हरियाली हो जाती है, मौसम बेहद सुहावना होता है, लेकिन हर मौसम में कुछ अच्छाइयाँ होती है तो कुछ छोटी छोटी परेशानियाँ भी। जैसे बारिश के मौसम में बाल और त्वचा से संबंधित कुछ समस्याएँ भी आती है, तो आइए जाने कुछ समाधान भी आज के रूपलावण्य में। सखियों, बारिश के मौसम में बालों का झड़ना और त्वचा में बालों में चिपचिपापन होना आम बात है। वैसे तो बालों और त्वचा की देखभाल के बारे में बहुत सारे उपाय हैं, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं जो निश्चित ही आपको पसंद आएंगे। तो बालों के लिए सबसे पहले आप ध्यान रखें, बारिश के पानी से अगर आपके बाल भीग गए हैं तो तुरंत उसे सादे पानी से धो लें। बरसात में भीगे बालों को बहुत देर तक बांध कर न रखें, उसे खोलकर सुखा लें। बहुत ज़्यादा सिल्की बाल हों तो कंडीशनर का उपयोग इन दिनों न करें और न ही कोई जेल या स्प्रे का प्रयोग करें, क्योंकि ये बारिश के दिनों में बालों को ज़्यादा देर टिकने भी नहीं देता है बालों में और बालों को अधिक चिपचिपा बना देते हैं। इसके अलावा आप हफ्ते में कम से कम एक बार सिर की मालिश ज़रूर करें। बालों की अच्छी सेहत के लिए उन्हें प्रदूषण से बचाना भी ज़रूरी है। बालों की सेहत और ग्रोथ के लिए समय समय पर ट्रिमिंग कराना ज़रूरी है। और अब त्वचा के बारे में बात करें, अगर बहुत चिपचिपी स्किन हो रही हो तो क्लींजिंग के बजाय आप गुलाब जल या टोनर जो अल्कोहल फ्री हो उससे आप फेस क्लीन कर सकती हैं। ऑयल फ्री और वाटर प्रूफ मॉइस्चराइजर का उपयोग करें। साथ ही फेस पैक में आप नींबू का रस, शहद या चंदन मुल्तानी मिट्टी का पैक लगाएं। अगर चेहरे पर इन दिनों मुहांसी की समस्या है तो सखियों कोशिश करें कि बाहर की चीज़ें कम से कम खाएं, तला गला कम खाएं और पानी अधिक से अधिक पिएं। साथ ही ऐसी त्वचा पर नीम का पैक ज़रूर लगाएं। तो सखियों, इन बातों को ध्यान में रखकर हम इस खूबसूरत मौसम का आनंद ले सकते हैं और साथ ही इस गीत का भी

सखियों, अभी हमने फिल्मवीर जारा का गीत सुना। जावेद अख्तर का लिखा, मदन मोहन का संगीत था और आवाज थी उदित नारायण की। और अब बारी है फैमिली फिटनेस की। सखियों, आज फैमिली फिटनेस में हमारा विषय है मुंह की बीमारियां हैं खतरे का संकेत। दांतों में गैप, सड़न, मुंह की बदबू अक्सर लोग सामान्य मानकर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन सखियों, साधारण दिखने वाले ये लक्षण शरीर में पनप रही गंभीर बीमारियों के शुरुआती संकेत हो सकते हैं। मसूड़ों की पुरानी बीमारियां और दांतों की सड़न के कारण दिल की बीमारियां और स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है। साथ ही मुंह से बदबू आना, अनियंत्रित मधुमेह, गुर्दे और यकृत से जुड़ी गंभीर समस्याओं के शुरुआती लक्षण हो सकते हैं। इसी तरह जब मसूड़े में संक्रमण शुरू होता है तो मसूड़े अपनी जगह छोड़ने लगते हैं। इसका सही इलाज न किया जाए तो संक्रमण जबड़े की हड्डी तक पहुंच जाता है, तब अच्छे खासे स्वस्थ दांत भी ढीले होकर गिरने लगते हैं। तो सखियों, इसके बचाव के लिए उपाय भी जरूरी है। बचाव में हम दिन में 2 बार फ्लोराइड युक्त पेस्ट से ब्रश कर सकते हैं। दांतों के बीच फंसे बारीक भोजन को निकालने के लिए डेंटल फ्लॉस का इस्तेमाल जरूर करें। मुंह की 80% बदबू जीभ पर जमा होने वाले जीवाणु के कारण ही होती है, इसलिए रोजाना जीभ को अच्छे से साफ करें। साल में कम से कम 2 बार दंत विशेषज्ञ के पास जाकर दांतों की जांच और सफाई करवाएं ताकि प्लाक और टार्टर न जमा हो सके। मीठे खाने के बाद ब्रश जरूर करें। भरपूर पानी पिए ताकि मुंह में लार का निर्माण सही तरीके से हो, जो प्राकृतिक रूप से जीवाणुओं को मारती है। इसके अलावा आप घरेलू उपाय में ब्रश के बाद फिटकरी के पानी से कुल्ला कर सकते हैं। सखियों, आपसे बात बहुत करने की इच्छा है, मन है, लेकिन समय सीमा का भी हमें ध्यान रखना है। और आपको बता दें, आज के इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी डॉक्टर प्रीति छड़ीदार। और आप अनुमति दें अपनी दोस्त मनीषा नागदेवी को। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम महिला सभा, यह आकाशवाणी का नौर केंद्र है। हमारे अगले कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी मध्य प्रदेश से

सुनिए NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल पर।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, आइए आपको सुनवाते हैं लोक संगीत। आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र की प्रस्तुति है।

लोक संगीत में आप सुन रहे हैं कलाकार रेवाराम विश्वकर्मा और साथियों के स्वर में लोकगीत। इनके स्वर में अगला गीत आप सुनेंगे जो है राई खरवा।

आकाशवाणी मध्य प्रदेश पर आनंद आप ले रहे हैं लोक संगीत के कार्यक्रम का। लोक संगीत में हमारे आज के कलाकार हैं रेवाराम विश्वकर्मा और साथी। इनके स्वर में अब आप सुनेंगे ये ताहू का गीत।

अभी आप सुन रहे थे लोक संगीत। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र का योगदान था। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। आइए अब आपको सुनवाते हैं सुगम संगीत। आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र की प्रस्तुति है। सुगम संगीत में हमारे आज के कलाकार हैं मानस रॉय चौधरी। इनके स्वर में आप सुनेंगे भजन।

सुगम संगीत में आप सुन रहे हैं कलाकार मानस रॉय चौधरी के स्वर में भजन। अगला भजन इन्हीं के स्वर में सुनेंगे, जिसे लिखा है मीरा ने।

अभी आप सुन रहे थे सुगम संगीत। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र का योगदान था। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। अब समय है अंतराल का।

0: क्या?
1: ये धरती, ये नदिया, ये रैना
0: और
2: आकाशवाणी इंदौर, सुनते रहिए मालवा की शान, आकाशवाणी इंदौर।
3: युवाओं के जोश, उमंग और ज्ञान से भरे कार्यक्रम युववाणी का प्रसारण होता है प्रतिदिन शाम 5 बजे,
4: जिसमें होती है नित नई जानकारियाँ, मनोरंजन और ज्ञान की बातें।
3: तो सुनते रहिए मालवा की शान,
5: आकाशवाणी इंदौर।
4: आकाशवाणी इंदौर अब मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध है।
6: इस समय आप हैं हमारे साथ।
7: जी हाँ, मालवा की शान आकाशवाणी इंदौर के साथ।
8: NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर से प्रसारित हो रहा है शाम 6 बजे।
3: अरे तनिष्का, कहाँ थी इतने दिनों से?
4: अरे राधिका, मैं गई थी कुल्लू मनाली।
3: तो क्या क्या किया कुल्लू मनाली में? मजा आया कि नहीं?
4: अरे काहे का मजा।
3: क्यों, क्या हुआ?
4: अरे मैंने वहाँ आकाशवाणी और विविध भारती इंदौर को बहुत मिस किया।
3: अरे इसमें मिस करने वाली क्या बात है, अब तो आकाशवाणी और विविध भारती इंदौर मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध है, तुम्हें नहीं पता?
4: ऐसा क्या, तो अब मैं जब भी बाहर जाऊंगी मोबाइल ऐप के जरिए आकाशवाणी ऐप से जुड़ी रहूंगी।
3: ये हुई ना बात।
2: सुनते रहिए मालवा की शान आकाशवाणी इंदौर।

आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, प्रस्तुत है फिल्म संगीत। फिल्म तमाशा से गीत सुनेंगे मीका सिंह और नकाश अजीज के स्वर में। गीतकार इरशाद कामिल, संगीतकार ए आर रहमान।

0: अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत। हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि प्रकृति, पर्यावरण और संपूर्ण सृष्टि के प्रति सम्मान मानव अस्तित्व का आधार है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में संस्कृत का श्लोक साझा करते हुए श्री मोदी ने लोगों से प्रकृति के प्रति कृतज्ञता और सेवा की भावना विकसित करने और एक स्वस्थ, समृद्ध और मजबूत राष्ट्र के निर्माण के लिए मिलकर काम करने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने प्रदेशवासियों को सावन माह के शुभारंभ की आज शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि कांवड़ यात्रियों और श्रद्धा

0: श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री ने बताया कि महाकालेश्वर, ओंकारेश्वर और अमरकंटक सहित प्रदेश के प्रमुख धार्मिक स्थलों पर दर्शन, पार्किंग, यातायात, पेयजल और स्वास्थ्य सेवाओं सहित आवश्यक व्यवस्थाओं का विस्तार किया गया है।
1: कांवड़ यात्रियों के लिए सब प्रकार की व्यवस्था करने के लिए जितना बन सके हम हर जगह प्रबंधन कर रहे हैं। खासकर ओंकारेश्वर, महाकालेश्वर में बड़ी संख्या में कांवड़ यात्री आते हैं, ऐसे में उनके आने जाने के मार्ग पर भी सभी प्रकार के प्रबंधन करने के निर्देश अपनी सरकार ने जारी किए कि दर्शन की व्यवस्था, पार्किंग की व्यवस्था, प्रबंधन, कुछ रास्ते में जलपान या अन्य प्रकार के प्रबंधन करने के लिए भी सरकार तालमेल कर रही है।
0: वहीं आगरमालवा के ऐतिहासिक शिवालय श्री बैजनाथ महादेव मंदिर पर भगवान भोलेनाथ का विशेष अनुष्ठान और पूजा अर्चना की जा रही है। दतिया विधानसभा उपचुनाव के लिए आज मतदान जारी है। दोपहर 1 बजे तक 50.26% मतदान दर्ज किया गया है। निर्वाचन क्षेत्र के सभी 291 मतदान केंद्रों पर शांतिपूर्ण ढंग से मतदान हो रहा है। इसी बीच लखनपुर गांव में सड़क निर्माण की मांग को लेकर कुछ ग्रामीणों ने मतदान का बहिष्कार किया है। वहीं उदगवा में फर्जी मतदान का प्रयास करने वाले एक व्यक्ति के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की है। निर्वाचन आयोग ने मतदाताओं से अपने मताधिकार का प्रयोग करने की अपील की है। राज्यसभा में आज लोक परीक्षा, अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पर विचार और पारित करने के लिए चर्चा होगी। कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह आज दोपहर इस विधेयक को सदन में प्रस्तुत करेंगे। सुबह 11 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होने पर सभापति सीपी राधाकृष्णन ने शून्यकाल शुरू किया। सभापति ने बताया कि उन्होंने डॉ जितेंद्र सिंह की लोक परीक्षा, अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 को विचार और पारित करने संबंधी सूचना स्वीकार कर ली है। लोकसभा ने कल यह विधेयक पारित कर दिया है। मुख्यमंत्री ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा है कि प्रदेश में निवेश बढ़ाने और युवाओं को रोजगार के अधिक अवसर उपलब्ध कराने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। इसी क्रम में आज नई दिल्ली में मध्य प्रदेश सरकार और भारत सरकार के बीच ग्वालियर में टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर होंगे। इससे प्रदेश में निवेश बढ़ने और रोजगार के नए अवसर सृजित होने की उम्मीद है। भोपाल में आज से इलेक्ट्रिक बसों का व्यावसायिक संचालन शुरू हो गया है। पहले चरण में 2 रूटों पर 10 ई बसें चलाई जाएंगी। इनमें चिरायू अस्पताल से बोर्ड ऑफिस मेट्रो स्टेशन होते हुए रेलवे कोच फैक्ट्री तक के मार्ग शामिल हैं। यात्रियों से न्यूनतम 7 रूपये तथा प्रति किलोमीटर 1.5 रूपये की दर से किराया लिया जाएगा। भोपाल सिटी लिंक लिमिटेड के अनुसार फिलहाल 30 ई बसें शहर में पहुंच चुकी हैं और अगले चरण में अन्य रूटों पर भी इसका संचालन शुरू किया जाएगा। औपचारिक लोकार्पण 15 अगस्त को प्रस्तावित है। अब रुख करते हैं मौसम का। प्रदेश में मानसून के 3 मजबूत मौसम तंत्र सक्रिय हैं। मौसम विभाग ने आज धार, देवास, बुरहानपुर, हरदा और नर्मदापुरम में अति भारी बारिश और उज्जैन, शाजापुर, सीहोर, बड़वानी, खरगोन, खंडवा, रायसेन, सागर, बैतूल तथा छिंदवाड़ा, फांडूना और सिवनी में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में आगामी रविवार तक बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है। लोगों से खराब मौसम के दौरान सावधानी बरतने की अपील की गई है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। भोपाल के मानस भवन में 1 से 5 अगस्त तक मंदाकिनी श्रीराम किंकर के पंच दिवसीय प्रवचन आयोजित किए जाएंगे। आगरमालवा के ग्राम आवर, पालखेड़ी और चाचाखेड़ी में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत महिला स्वसहायता समूहों के सदस्यों से संवाद किया गया। मंडला में गुरु पूर्णिमा पखवाड़े के समापन पर बोर्ड परीक्षा में 100% परिणाम देने वाले 61 शासकीय विद्यालयों के प्राचार्यों को मंत्री संपत्ति आयुके ने सम्मानित किया और शिवपुरी जिले में किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग ने कृषकों से खरीफ वर्ष 2026 की अधिसूचित फसलों का बीमा 31 जुलाई तक अनिवार्य रूप से कराने की अपील की है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए शाम 7:10 पर। नमस्कार।

0: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। थोड़ी ही देर में दिल्ली केंद्र से आप सुनेंगे दोपहर समाचार, कृपया प्रतीक्षा करें।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। राज्यसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा। विधेयक का उद्देश्य पेपर लीक के दोषियों के लिए कानून को और सख्त बनाना। लोकसभा की कार्यवाही विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित। सर्वोच्च न्यायालय का केंद्र सरकार को दिल्ली में छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान रैपिड एक्शन फोर्स द्वारा उपयोग किए गए हथियारों का रिकॉर्ड सुरक्षित रखने का निर्देश। बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश में 3 निर्वाचन क्षेत्रों में विधानसभा उपचुनाव के लिए मतदान जारी। महाराष्ट्र, तेलंगाना, विदर्भ और पश्चिमी मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। और भारत विश्व स्क्वॉश जूनियर टीम चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंचा। अब समाचार विस्तार से। राज्यसभा में कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 को सदन में पेश किया। श्री सिंह इस समय सदन को संबोधित कर रहे हैं।
2: एंड फाइन अप टू 50 लाख एज फार एज द सर्विस प्रोवाइडर इज कंसर्न्ड। नाउ इफ जयराम जी हैज नॉट रेड दैट आई विल रीड आउट व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सर्विस प्रोवाइडर। क्योंकि आप ही बार बार टोक रहे और कह रहे हैं आपको ज्यादा। सर्विस प्रोवाइडर मींस एनी एजेंसी, एनी ऑर्गेनाइजेशन, एनी बॉडी, एनी एसोसिएशन ऑफ पर्सन, एनी बिजनेस एंटिटी, एनी कंपनी, एनी पार्टनरशिप और सिंगल प्रोवाइडरशिप, एनी सब एसोसिएट्स, एनी सब कॉन्ट्रैक्टर्स, एनी प्रोवाइडर ऑफ सपोर्ट ऑफ एनी कंप्यूटर रिसोर्स और एनी मटीरियल बाई वट एवर नेम इट मे बी कॉल्ड विच इज एंगेज बाई द पब्लिक एग्जामिनेशन अथॉरिटी फॉर द कंडक्ट ऑफ पब्लिक एग्जामिनेशन।
1: लोकसभा ने कल लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक पारित कर दिया।
3: परीक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता और लोगों का भरोसा बनाए रखने के लिए यह विधेयक संसद में लाया गया है। इसका उद्देश्य छात्रों के भविष्य को सुरक्षित रखना और परीक्षा प्रणाली को कानूनी रूप से और अधिक सशक्त बनाना है। इस विधेयक में कई सख्त प्रावधान किए गए हैं। दोषी पाए जाने पर 10 साल तक की जेल, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और संपत्ति जब्त करने का प्रावधान है। इसके अलावा मामलों का जल्द निपटारा सुनिश्चित करने के लिए विशेष फास्ट ट्रैक अदालत स्थापित करने का प्रावधान है, जहां मामलों की रोजाना सुनवाई होगी। इसके अलावा पुलिस में मामला दर्ज होने के 2 महीने के भीतर जांच पूरी करनी होगी। वहीं आरोप पत्र दाखिल होने के बाद 3 महीने के भीतर मामले का निपटारा करने का प्रावधान है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: इससे पहले शून्यकाल के दौरान कांग्रेस के प्रमोद तिवारी ने नीट परीक्षा पेपर लीक के विरोध में प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर कथित पुलिस कार्रवाई का मुद्दा उठाया। उन्होंने गृहमंत्री अमित शाह से इस पर बयान देने की मांग की। इसके जवाब में केंद्रीय मंत्री और सदन के नेता जेपी नड्डा ने कहा कि विपक्ष का पूरा ध्यान सदन की कार्यवाही को बाधित करने पर है।
4: इस संसद के माध्यम से देश को इस बात का संदेश देना चाहता हूं कि मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार हर विषय पर चर्चा करने के लिए तैयार है। विपक्ष जो है वो गैर जिम्मेदाराना व्यवहार कर रही है, यह ध्यान में रहे।
1: लोकसभा की कार्यवाही नीट परीक्षा मुद्दे को लेकर विद्यार्थियों के प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई पर विपक्ष के हंगामे के कारण दोपहर बाद 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। आज दिन में 11 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होने पर विपक्षी सदस्यों ने विद्यार्थियों के प्रदर्शन के दौरान पुलिस के कथित कार्रवाई के विरोध में नारेबाजी शुरू कर दी। विपक्षी सांसद इस मुद्दे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से सदन में बयान देने की मांग कर रहे थे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि प्रश्नकाल सदस्यों का अधिकार है। उन्होंने कहा कि सदन की कार्यवाही में व्यवधान डालना संसदीय परंपराओं के अनुरूप नहीं है।
5: मैंने कई बार सदन के सभी माननीय सदस्यों से आग्रह किया है, प्रश्नकाल माननीय सदस्य का अधिकार है और प्रश्नकाल के अंदर सरकार की जवाबदेही भी तय होती है। मैंने ये आप सबसे आग्रह किया है कि सदन में प्रश्नकाल के अंदर सदन को बाधित नहीं करें। प्रश्नकाल महत्वपूर्ण समय होता है।
1: सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को नीट पेपर लीक मामले को लेकर जंतर मंतर पर विद्यार्थियों के प्रदर्शन के दौरान तैनात रैपिड एक्शन फोर्स के हथियारों के उपयोग का रिकॉर्ड सुरक्षित रखने का निर्देश दिया है। एक रिपोर्ट।
6: सर्वोच्च न्यायालय ने कानून व्यवस्था की स्थिति से निपटने के लिए पैलेट गन के इस्तेमाल पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि पुलिस को असाधारण परिस्थितियों में पैलेट गन का इस्तेमाल करने का अधिकार है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची और न्यायमूर्ति वी मोहन की पीठ ने दिल्ली सरकार को प्रदर्शन के दौरान पैलेट लगने से घायल हुए लोगों को बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने का निर्देश भी दिया। समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
1: पेपर लीक के खिलाफ सख्त कार्रवाई के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोशल मीडिया पोस्ट को हटाने पर मेटा ने अफसोस जाहिर किया है। आज नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव एस कृष्णन ने कहा कि मेटा ने इस घटना पर अफसोस जताते हुए सरकार को पत्र लिखा है। श्री कृष्णन ने मेटा के वरिष्ठ प्रतिनिधियों को इस घटना की वजहें बताने को कहा है, साथ ही ऐसी गलतियों को रोकने के लिए उठाए जा रहे कदमों के बारे में भी जानकारी देने को

0: कहा है। भारतीय जनता पार्टी ने पंजाब में कथित पेपर लीक को लेकर आज नई दिल्ली में आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन की अगुवाई दिल्ली भाजपा अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा ने की। संवाददाताओं से बातचीत में श्री मल्होत्रा ने आरोप लगाया कि पंजाब में फार्मास्यूटिकल्स परीक्षा का पेपर लीक हो गया था। उन्होंने मांग की है कि परीक्षा दोबारा कराई जाए। साथ ही पंजाब के शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस के इस्तीफे की भी मांग की गई है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश में तीन निर्वाचन क्षेत्रों में विधानसभा उपचुनाव के लिए मतदान जारी है। बिहार में बांकीपुर, गुजरात में मंजलपुर और मध्य प्रदेश में दतिया निर्वाचन क्षेत्रों के लिए वोट डाले जा रहे हैं। दिन में 1 बजे तक पटना के बांकीपुर विधानसभा सीट पर लगभग 20% मतदान हो चुका था। गुजरात की मंजलपुर सीट पर 21.66% मतदान की खबर है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान के लिए निर्वाचन आयोग ने सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हैं।
1: वडोदरा के मांजलपुर विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव में मुख्य मुकाबला सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच है। भाजपा ने वडोदरा महानगर पालिका के पूर्व पार्षद सतीश पटेल को मैदान में उतारा है, जबकि कांग्रेस ने अपने प्रदेश उपाध्यक्ष भीखाभाई रबारी पर दाव लगाया है। इस चुनाव में 2,19,000 से अधिक मतदाता इन दोनों उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे। यह सीट भाजपा के वरिष्ठ विधायक योगेश पटेल के निधन के बाद खाली हुई थी, जिन्होंने कई बार इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया है। निर्वाचन आयोग ने भी सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हैं। अपर्णा खूंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: मध्य प्रदेश की दतिया सीट पर दोपहर 1 बजे तक 48.91% वोट डाले जा चुके हैं। एक रिपोर्ट।
2: मध्य प्रदेश के दतिया विधानसभा उपचुनाव के लिए आज मतदान शाम 6 बजे तक चलेगा। विधानसभा क्षेत्र के सभी 291 मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। हर केंद्र पर वेबकास्टिंग के जरिए नजर रखी जा रही है। दतिया विधानसभा क्षेत्र में करीब 2,20,000 मतदाता हैं। मुख्य मुकाबला कांग्रेस उम्मीदवार घनश्याम सिंह और भाजपा प्रत्याशी आशुतोष तिवारी के बीच माना जा रहा है। यह उपचुनाव कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती की सदस्यता समाप्त होने के बाद हो रहा है। दतिया उपचुनाव के नतीजे 3 अगस्त को घोषित किए जाएंगे। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में IASV त्रिवेणी पर समुद्री अभियान की महिला टीम से बातचीत की और उनकी असाधारण उपलब्धि तथा दृढ़ संकल्प की सराहना की। इस अवसर पर श्री सिंह ने कहा कि उनका सफल अभियान राष्ट्र के लिए बहुत गर्व का विषय है।
3: आपने इस अभियान से मैं कह सकता हूं कि केवल आपने समुद्र को ही नहीं जीता है, आपने उस सारी रूढ़ियों को भी पराजित किया है जो कभी कहती थी हमारी बेटियां ऐसे कठिन सैन्य अभियानों का हिस्सा नहीं बन सकती। आपने सिद्ध किया है फिजिकल कैपेबिलिटी, मेंटल टफनेस और लीडरशिप क्वालिटी किसी जेंडर की मोहताज नहीं होती।
0: ओडिशा के कई हिस्सों में बाढ़ के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि कई जिलों में स्कूल बंद कर दिए गए हैं और बाढ़ की बदलती स्थिति से निपटने के लिए अधिकारी हाई अलर्ट पर हैं।
4: लगातार बारिश की सबसे ज्यादा मार 5 जिलों बालेश्वर, भद्रक, जाजपुर, मयूरभंज और केंदुझर पर पड़ी है। लगभग 5,88,000 लोग प्रभावित हुए हैं और 1,76,000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। राज्य सरकार ने जिला कलेक्टरों को निर्देश दिया है कि वे प्रभावित परिवारों को जल्द मुआवजा दिलाने के लिए 3 दिनों के भीतर नुकसान का विस्तृत ब्यौरा सौंपे। इस बीच ऊपरी जलग्रहण क्षेत्र में लगातार बारिश से महानदी का जलस्तर बढ़ रहा है, जिससे नदी बेसिन के निचले इलाकों में रहने वालों लोगों में चिंता बढ़ गई है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: मौसम विभाग ने मध्य महाराष्ट्र, तेलंगाना, विदर्भ और पश्चिमी मध्य प्रदेश में आज अत्यधिक तेज वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
5: मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के दौरान अरुणाचल प्रदेश, केरल, माहे और राजस्थान में गरज चमक और बिजली गिरने के साथ तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है। तटीय और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, कोंकण और गोवा में भी कल तक ऐसे ही हालात बने रहने की संभावना है। पूर्वोत्तर भारत में विभाग ने अगले 2 से 3 दिनों तक गरज चमक, तेज हवाओं के साथ भारी बारिश का अनुमान लगाया है। इस बीच राष्ट्रीय राजधानी में अगले 2 से 3 दिनों तक तेज बारिश होने की संभावना है। भानु प्रताप सिंह के साथ नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
0: श्रावण महीने की वार्षिक कांवड़ यात्रा आज से शुरू हो गई है।

0: झारखंड के देवघर में आज से श्रावणी मेला शुरू हो गया है।
1: सावन के पहले दिन ही देवघर के बाबा बैद्यनाथ धाम और दुमका के बाबा बासुकीनाथ मंदिर में लाखों शिव भक्तों का हुजूम उमड़ पड़ा है। पूरी बाबा नगरी बोलबम के अटूट विश्वास और केसरिया रंग में रंग गई है। सुरक्षा के मोर्चे पर इस बार तीसरी आंख के साथ साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैमरों का पहरा है। कांवरियों के पैरों को थकान न मिले इसके लिए नए फुट ओवरब्रिज से लगातार सुगम जलार्पण कराया जा रहा है, जबकि पूरे कांवरिया पथ पर ठंडे पानी की फुहारें, भव्य टेंट सिटी और निःशुल्क चिकित्सा शिविर श्रद्धालुओं का स्वागत कर रहे हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं महविश रहमान।
0: गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देशवासियों को श्रावण का पवित्र महीना शुरू होने पर शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि प्रकृति, पर्यावरण और संपूर्ण सृष्टि के प्रति सम्मान मानव अस्तित्व का आधार है। सोशल मीडिया पोस्ट में एक संस्कृत उद्धरण साझा करते हुए श्री मोदी ने लोगों से प्रकृति के प्रति कृतज्ञता और सेवा की भावना विकसित करने तथा एक स्वस्थ, समृद्ध और मजबूत राष्ट्र के निर्माण के लिए मिलकर काम करने का आह्वान किया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ये आकाशवाणी है। अमरीकी सेना ने कल रात भर ईरान के खिलाफ व्यापक हवाई हमले किए। एक रिपोर्ट।
2: अमरीकी सेंट्रल कमांड ने बताया कि ये हमले ईरान द्वारा जॉर्डन में स्थित अमरीकी सैन्य ठिकानों और होर्मुज चिल्डमरु मध्य में जहाजों पर किए गए थे। इसके जवाब में इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के दर्जनों ठिकानों को निशाना बनाया गया। अमरीकी कमांड के अनुसार इन हमलों का उद्देश्य ईरान और उसके समर्थित समूहों से अमरीकी सैनिकों, वाणिज्यिक जहाजों तथा खाड़ी क्षेत्र के पड़ोसी देशों को होने वाले खतरों को कम करना है। इस बीच ईरान के खुजेस्तान प्रांत के चार शहरों अहवाज और बंदर अब्बास में कई विस्फोटों की खबरें सामने आई। अमेरिका और ईरान के बीच लगातार संघर्ष बढ़ता ही जा रहा है। समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर पाकिस्तानी सशस्त्र बलों का क्रूर हमला जारी है। इसमें 40 से अधिक नागरिक मारे गए हैं और कई अन्य घायल हुए हैं। संयुक्त अवामी एक्शन कमेटी के प्रदर्शनकारी वर्तमान में पाकिस्तानी सुरक्षा बलों की क्रूरता और लक्षित हत्याओं को लेकर रावलकोट के डी चौक पर शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। एक मानवाधिकार संस्था ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त के कार्यालय से पाकिस्तानी बलों द्वारा घातक गोलीबारी की घटनाओं में हस्तक्षेप करने की अपील की है। भारत विश्व स्क्वाश जूनियर टीम चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंच गया है। कनाडा के ऑन्टेरियो में भारतीय पुरुष टीम ने इंग्लैंड को 2-1 से हराया। सेमीफाइनल में भारत का सामना अमरीका से होगा। राष्ट्रमंडल खेलों में पैरा एथलेटिक्स के पुरुषों की 100 मीटर T47 स्पर्धा में के फाइनल में भारत के दिलीप महादु गावित ने स्वर्ण और मोहम्मद बासिल मोरसिंगा नाकाथ ने रजत पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। पुरुषों की लंबी कूद स्पर्धा में मुरली श्रीशंकर ने रजत पदक जीता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने पदक जीतने पर खिलाड़ियों को बधाई दी है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्यसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा। विधेयक का उद्देश्य पेपर लीक के दोषियों के लिए कानून को और सख्त बनाना। लोकसभा की कार्यवाही विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित। सर्वोच्च न्यायालय का केंद्र सरकार को दिल्ली में छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान रैपिड एक्शन फोर्स द्वारा उपयोग किए गए हथियारों का रिकॉर्ड सुरक्षित रखने का निर्देश। बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश में 3 निर्वाचन क्षेत्रों में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान जारी। महाराष्ट्र, तेलंगाना, विदर्भ और पश्चिमी मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। और भारत विश्व स्क्वाश जूनियर टीम चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंचा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, प्रस्तुत है कार्यक्रम आपकी फरमाइश। कार्यक्रम आपकी फरमाइश में हम आपको वो गीत सुनाते हैं जो आप हमें पत्रों के माध्यम से लिख कर भेजते हैं। लता मंगेशकर के स्वर में पहला गीत सुनेंगे फिल्म लम्हे से, गीतकार आनंद बख्शी, संगीतकार शिव हरी। फरमाइश हमें आई है सरोज चौक अमरावती महाराष्ट्र से, श्रोता है कमरुल्ला, नसीम बेगम, आयशा खान, हदिया, असमा, सालिया शोएब, मुश्तबा, रऊफ और शाहिद। इन्हीं के साथ गांधी बाग अकुला से हैं रमेश और वैशाली कटनकर।

अगले श्रोता कोटवा नारायणपुर से हैं, ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय, प्रतीक राय, रोशनी राय और प्रांजल राय। सुनते हैं आपकी पसंद का गीत।

एक महत्वपूर्ण जनहित सूचना। भोपाल पुलिस आयुक्त द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के अंतर्गत जारी आदेश के अनुसार भोपाल शहर में सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने के उद्देश्य से नागरिकों के लिए निम्न निर्देश जारी किए गए हैं। यदि आपने अपने मकान, फ्लैट या अन्य परिसर को किराए पर दिया है अथवा किसी किराएदार, पेइंग गेस्ट, घरेलू नौकर, ड्राइवर, कर्मचारी या अन्य सहायक को रखा है तो उसकी जानकारी निर्धारित प्रपत्र में संबंधित पुलिस थाने अथवा मध्य प्रदेश पुलिस सिटीजन पोर्टल पर उपलब्ध कराना आवश्यक है। इसी प्रकार होटल, लॉज, धर्मशाला, हॉस्टल, गेस्ट हाउस, छात्रावास, निर्माण स्थलों, निजी सुरक्षा एजेंसियों, जिम, स्पा, ब्यूटी पार्लर तथा घर घर जाकर वस्तुओं की डिलीवरी करने वाले कर्मचारियों से संबंधित निर्धारित जानकारी भी संबंधित संस्थानों द्वारा पुलिस को उपलब्ध कराई जानी आवश्यक है। भोपाल पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि शहर की सुरक्षा में अपना सहयोग दें तथा निर्धारित प्रावधानों का पालन करें। आदेशों का उल्लंघन करने पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के प्रावधानों के अंतर्गत वैधानिक कार्यवाही की जा सकती है। सूचना समाप्त हुई। कार्यक्रम में अगला गीत सुनेंगे फिल्म प्रेम रोग से। सुरेश वाडकर, लता मंगेशकर के स्वर हैं, गीतकार नरेंद्र शर्मा, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। फरमाइश हमें आई है खंडवा ग्राम लोहारी से। श्रोता हैं राजेश कुमार धनजे, राहुल कुमार, विशाल कुमार, शीला और गायत्री धनजे। इन्हीं के साथ खुर्दी रोड मानपुर से हैं विजय वैद, रानी वैद, महिमा वैद और नीतू वैद। सुनते हैं आपकी पसंद का गीत।

उदित नारायण और विभा शर्मा के स्वर में गीत सुनेंगे फिल्म इश्क से। गीत लिखा जावेद अख्तर ने, गीत को संगीतबद्ध किया अनु मलिक ने। इस गीत के लिए फरमाइश महनगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से आई है। श्रोता हैं अभिजीत गवाणकर, श्रीमती सरिता गवाणकर, एकांश गवाणकर। इन्हीं के साथ बदलापुर मुंबई से हैं सिद्धांत गवाणकर, प्रणीता गवाणकर। नागपुर से हैं शैलेश गवाणकर, वैशाली, श्वेता, सुमित और ध्वनि गवाणकर। सुनते हैं आपकी पसंद का गीत।

0: करती हूँ कि तुम्हें मुझसे इश्क है?
1: मुझे शर्म आती है।
0: देखो, तुम नहीं कहोगी तो मेरी जान निकल जाएगी।
1: I love you.
2: Yeah!

अरिजीत सिंह और निकिता गांधी के स्वर में अगला गीत सुनेंगे फिल्म राब्ता से। गीतकार इरशाद कामिल, अमिताभ भट्टाचार्य, संगीतकार प्रीतम। फरमाइश हमें आई है रिंगनी छत्तीसगढ़ से। श्रोता हैं दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा, लेवई से गुलाबदास माणिकपुरी, दतरेंगी से भागवत वर्मा, बगबुड़वा पथरिया से हैं नरेन नेताम और कुसुम नेताम। सुनते हैं आपकी पसंद का गीत।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आपकी फरमाइश। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में एक संस्कृत उद्धरण साझा करते हुए कहा कि प्रकृति, पर्यावरण और संपूर्ण सृष्टि के प्रति सम्मान मानव अस्तित्व का आधार है। दतिया विधानसभा उपचुनाव के लिए आज मतदान जारी है। दोपहर 1 बजे तक 50.26% मतदान दर्ज किया गया है। निर्वाचन क्षेत्र के सभी 291 मतदान केंद्रों पर शांतिपूर्ण ढंग से मतदान हो रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदेशवासियों को श्रावण मास के शुभारंभ की आज शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि कांवड़ यात्रियों और श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा है कि आज नई दिल्ली में मध्य प्रदेश सरकार और भारत सरकार के बीच ग्वालियर में टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हो रहा है। भोपाल में आज से इलेक्ट्रिक बसों का व्यावसायिक संचालन शुरू हो गया है। पहले चरण में 2 रूटों पर 10 ई-बसें चिरायू अस्पताल से बोर्ड ऑफिस, मेट्रो स्टेशन होते हुए रेलवे कोच फैक्ट्री तक के सभी मार्ग पर चलेंगी। प्रदेश में मूंग की खरीद को लेकर किसानों का विरोध प्रदर्शन कल रात समाप्त हो गया। राज्य कृषि मंत्री एदल सिंह कंसाना ने कहा कि अब प्रत्येक पात्र किसान से 60% तक मूंग की खरीदी की जाएगी और मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में आगामी रविवार तक बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है। लोगों से खराब मौसम के दौरान सावधानी बरतने की अपील की गई है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। ये आकाशवाणी भोपाल है। अब समय है सांध्यकालीन सभा के कार्यक्रम विवरण का। आकाशवाणी मध्य प्रदेश के प्रसारण में शाम के 5:02 पर आप सुनेंगे युवा श्रोताओं का मनपसंद कार्यक्रम युववाणी। प्रस्तुति आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र की रहेगी। फिल्म संगीत का आनंद लीजिएगा शाम 5:33 पर, शाम 6:30, रात 8:30 और रात 9:30 पर। शाम के ठीक 6:00 प्रसारित होगा प्रायोजित कार्यक्रम NCERT। आकाशवाणी भोपाल के प्रसारण में ही ग्रामीण श्रोताओं का कार्यक्रम ग्राम लक्ष्मी आप सुनेंगे शाम 7:21 पर। इसमें लक्ष्मी जुड़ा की भेंट वार्ता होगी, विषय रहेगा दुग्ध प्रसंस्करण के लाभ। रात 8:00 दिल्ली केंद्र से आप सुनेंगे संसद समीक्षा। 8:15 पर प्रसारित होगा कार्यक्रम सुर्खियों में। इन्हीं सारी जानकारियों के साथ कार्यक्रम विवरण संपन्न हुआ। मीडियम वेव 188.3

मीटर्स यानी 1593 किलो हर्ट्स। डीटीएच के ऑडियो चैनल साथ ही न्यूज ऑन एआईआर और वेस ओटीटी ऐप पर यह आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। मीडियम वेव पर अब हमारी ये सभा यहीं पर संपन्न होती है। शाम के 5 बजे सभा पुनः आरंभ होगी। तब तक के लिए हमारा प्रसारण डीटीएच पर जारी रहेगा।

0: कंप्यूटर का आउटपुट लीजिए, पहले प्लेयर फिर कार्ड।
1: कुल भी प्रकट नहीं करना चाहता।
0: समय एक बार फिर मिला लीजिए, 4:38 और 18:19।

मीडियम वेव 462.96 मीटर अर्थात 648 किलो हर्ट्ज पर और मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज ऑन AIR पर ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। संध्या के 5 बजने को है, अब हमारी दूसरी सभा आरंभ होती है। सभा के आरंभ में आइए सुने युवा साथियों के लिए कार्यक्रम युववाणी।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं आपका पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी। मैं हूं तनिष्का।
1: और मैं काजल। हर बार की तरह आज भी हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ रोचक बातें, कुछ नई जानकारियाँ और एक खूबसूरत सा सफर जो आपको सोचने पर भी मजबूर करेगा और मुस्कुराने की वजह भी देगा।
0: लेकिन उससे पहले शुरू करते हैं आज के दो दिलचस्प सवालों के साथ। ध्यान से सुनिएगा क्योंकि इनके जवाब हम आपको देने वाले हैं कार्यक्रम के आखिर में।
1: तो आज का पहला सवाल है कि भारत की कौन सी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है।
0: और आज का दूसरा सवाल ये है कि किस भारतीय लेखक को राष्ट्रकवि की उपाधि से सम्मानित किया गया है। मैं प्रश्न दोहरा देती हूँ, किस भारतीय लेखक को राष्ट्रकवि की उपाधि से सम्मानित किया गया था।
1: तो श्रोताओं सोचिए, आप अपने जवाब जो है उन्हें याद करिए, उन्हें याद रखिए और बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आज का सफ़र होने वाला है बेहद खास।
0: बिल्कुल, क्योंकि आज हम बात करेंगे उन खूबसूरत चीज़ों की जो शायद हमारे आसपास हमेशा मौजूद रहती है लेकिन भागती दौड़ती ज़िंदगी में हम उन्हें महसूस करना भूल जाते हैं।
1: तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस खास पेशकश को, जहां बातें होंगी साथ साहित्य, रिश्ते और उन छोटी छोटी खुशियों की जो ज़िंदगी को और खूबसूरत बना देती हैं।

0: बारिश की फुहारे, हरियाली की चादर और शिव भक्ति से सराबोर वातावरण, यानी कि श्रोताओं, श्रावण मास का पावन समय शुरू हो चुका है।
1: और श्रावण का नाम आते ही मन में भोलेनाथ की छवि उभर आती है और मंदिरों में गूंजती घंटियाँ, हर हर महादेव का जय घोष और भक्ति से सराबोर वातावरण जो है वो महसूस होने लगता है।
0: बिल्कुल काजल, और शायद यही इस महीने की सबसे बड़ी खूबी है कि यह केवल पूजा का अवसर नहीं बल्कि

0: संयम, सेवा, धैर्य और आत्मचिंतन का संदेश भी देता है। शिव का स्वरूप जितना विराट है उतना ही सरल भी।
1: और जब श्रावण और महादेव की बात हो तो काशी का नाम अपने आप ही स्मरण हो जाता है। काशी के बारे में एक बहुत ही सुंदर बात कही जाती है कि शिव काशी में नहीं रहते बल्कि काशी शिव में बसती है। वहाँ की गलियाँ, गंगा के घाट, मंदिरों की घंटियाँ, देश विदेश से आए श्रद्धालुओं की आस्था सब मिलकर एक ऐसा वातावरण रचते हैं कि मन अपने आप शांत हो जाता है। श्री काशी विश्वनाथ धाम के दर्शन के बाद ऐसा लगता है जैसे मन की सारी व्याकुलता कहीं पीछे छूट गई हो और भीतर केवल श्रद्धा और कृतज्ञता का भाव रह गया हो।
0: एकदम सच कहा तुमने काजल। लेकिन श्रावण की यही विशेषता है कि ये अनुभूति केवल काशी तक सीमित नहीं रहती, भारत के हर कोने में ये महीना अपनी अलग छटा बिखेरता है। कहीं कावड़ यात्रा की आस्था दिखाई देती है, कहीं शिवालयों में जलाभिषेक हो रहा होता है, तो कहीं सावन के लोकगीत और झूले इस ऋतु की सुंदरता को और भी जीवंत बना देते हैं। मानो पूरा वातावरण ही भक्ति और उल्लास के साथ भर उठता है।
1: बिल्कुल बिल्कुल सच कहा तुमने तनिष्का। और यही विविधता हमारी संस्कृति की सबसे बड़ी पहचान है। अलग अलग परंपराएं होते हुए भी सबको जोड़ता है ये एक ही भाव जिसे हम कहते हैं श्रद्धा।
0: और शायद यही कारण है कि श्रावण का महीना मन को भी हरियाली से भर देता है। जैसे वर्षा धरती को नया जीवन देती है, वैसे ही ये महीना हमें अपने भीतर नई ऊर्जा और पॉजिटिविटी जगाने की प्रेरणा देता है, मोटिवेशन देता है।
1: और यदि कभी काशी जाने का अवसर मिले तो गंगा घाट, गंगा तट की शांति, मंदिरों की घंटियाँ और वहाँ का आध्यात्मिक वातावरण इस अनुभूति को और भी ज़्यादा गहरा कर देता है।
0: बिल्कुल। भारतीय परंपरा में भगवान शिव को करुणा, समभाव और सरलता का प्रतीक माना गया है। इसीलिए श्रावण हमें केवल पूजा करना ही नहीं बल्कि इन गुणों को अपने जीवन में उतारने की भी उतनी ही प्रेरणा देता है।
1: तो आइए इस श्रावण केवल शिवालयों में नहीं बल्कि अपने व्यवहार में, अपने विचार और अपने कर्मों में भी शिव के आदर्शों को स्थान दें। शायद आस्था भी एक ऐसी यात्रा है जो बाहर से शुरू होकर धीरे धीरे हमारे भीतर तक पहुंच जाती है।
0: चलिए अब इसी एहसास के साथ कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे विषय की जो जितना गंभीर है उतना ही जरूरी भी है, मानव तस्करी के विरुद्ध विश्व दिवस।
3: बिल्कुल, और इस चर्चा की शुरुआत एक छोटे से सवाल से करते हैं। काजल, अगर कोई आपको कहे कि विदेश में शानदार नौकरी, मोटी सैलरी, रहने खाने की पूरी व्यवस्था, बस तुरंत हाँ कह दीजिए, तो क्या जवाब होगा?
2: सुनने में तो किसी फिल्म की कहानी जैसा लगता है, लेकिन आज के समय में मैं सबसे पहले ये पूछूंगी कि ये ऑफर असली है या कोई जाल या कोई फ्रॉड।
3: हाँ, और यही सतर्कता आज की सबसे बड़ी ज़रूरत है, क्योंकि आज मानव तस्करी का चेहरा बदल चुका है। अब ये सिर्फ जबरन मजदूरी या शोषण तक सीमित नहीं रहा है, बल्कि डिजिटल दुनिया तक पहुँच चुका है दोस्तों।
2: और इस वर्ष का वैश्विक संदेश है, घोटालों के जाल में ना फंसें, यानी मानव तस्करी का वो नया रूप जिसमें लोगों को झूठी नौकरी के वादे और बेहतर भविष्य के सपने दिखाकर दूसरे देशों में ले जाया जाता है,
3: और वहाँ पहुँचने के बाद उनकी वास्तविकता पूरी तरह बदल जाती है। उनके पासपोर्ट छीन लिए जाते हैं, उन्हें बाहर निकलने नहीं दिया जाता, और उन्हें ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी, साइबर फ्रॉड और फर्जी निवेश योजनाओं में काम करने के लिए मजबूर किया जाता है।
2: यानी वो अपराधी नहीं होते,
3: और बल्कि अपराध करने के लिए मजबूर किए गए पीड़ित लोग होते हैं।
2: तो ज़रा सोचिए, किसी के सपनों का इस्तेमाल करके उसे अपराध के जाल में धकेल देना, इससे बड़ा अन्याय और क्या हो सकता है?
3: यही कारण है कि आज मानव तस्करी का संबंध सिर्फ शोषण से नहीं, बल्कि साइबर अपराध, वित्तीय धोखाधड़ी, मनी लॉन्ड्रिंग और संगठित अपराध जैसे क्षेत्रों से भी जुड़ चुका है।
2: तो सवाल ये है कि हम खुद को और अपने आसपास के लोगों को सुरक्षित कैसे रखें?
3: तो सबसे पहली बात, किसी भी नौकरी या विदेश भेजने वाले ऑफर पर आंख बंद करके बिल्कुल भरोसा ना करें।
2: और दूसरी बात ये कि किसी एजेंसी या कंपनी के जानकारी आधिकारिक

0: आधिकारिक स्रोतों से जरूर जांचें।
1: और अगर किसी दोस्त, रिश्तेदार या परिचित को कोई संदिग्ध ऑफर मिले तो उसे भी सावधानी बरते। कई बार आपकी एक सलाह किसी की पूरी जिंदगी बचा सकती है।
0: अगर आपको कहीं भी मानव तस्करी या जबरन शोषण की आशंका दिखाई दे तो संबंधित प्रशासन या पुलिस को जानकारी देना आपकी सबसे बड़ी सामाजिक जिम्मेदारी है।
1: और एक बात हमेशा याद रखिए, जो लोग इस जाल में फंस जाते हैं उन्हें दोषी नहीं बल्कि पीड़ित समझिए। उन्हें हमारी संवेदनशीलता, सहयोग और न्याय की जरूरत होती है।
0: दोस्तों, डिजिटल युग में सिर्फ स्मार्टफोन होना ही काफ़ी नहीं है,
1: स्मार्ट सोच होना भी उतनी ही ज़रूरी है।
0: तो आइए इस मानव तस्करी के विरुद्ध विश्व दिवस पर हम सब मिलकर ये संकल्प लें कि हम स्वयं को जागरूक बनाएंगे
1: और दूसरों को भी जागरूक रखेंगे। चलिए इसी के साथ अब कार्यक्रम का रुख बदलते हैं और सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

0: कहते हैं ना, इस दुनिया में कुछ आवाजें ऐसी होती है जिन्हें सुनने के लिए कान नहीं बस दिल चाहिए होता है। सुबह की पहली किरण के साथ चिड़ियों की चहचहाहट, पेड़ों के पत्तों से गुजरती हवा की सरसराहट और बारिश की बूंदों का धरती से मिलना, ये सब मिलकर प्रकृति का अपना एक खूबसूरत संगीत बना देते हैं।
1: क्या बात है, ये सुनकर ही कितना सुंदर लगता है। और सबसे खूबसूरत बात यह है कि इस संगीत को सुनने के लिए ना किसी बड़े मंच की ज़रूरत नहीं है, ना किसी खास तैयारी की, बस चाहिए थोड़ा सा वक्त और एक शांत मन।
0: लेकिन आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में शायद सबसे मुश्किल काम यही हो गया है, और वो है थोड़ा सा रुकना। हम सुबह उठते ही मोबाइल की स्क्रीन देख लेते हैं, दिन भर नोटिफिकेशंस, मैसेजेस और अपडेट्स की दुनिया में उलझे रहते हैं, और कई बार तो पता ही नहीं चलता कि कब हम दुनिया से जुड़ गए लेकिन खुद से दूर हो गए।
1: बिल्कुल सही कहा तुमने तनिष्का, कभी कभी ऐसा लगता है जैसे हमारी उंगलियां लगातार स्क्रीन पर चल रही हैं लेकिन मन कहीं थक कर आराम मांग रहा है। हर पल कुछ नया देखने की कोशिश में हम उन खूबसूरत चीज़ों को देखना भूल जाते हैं जो हमारे आसपास हमेशा मौजूद होती है।
0: हाँ, और शायद इसीलिए दोस्तों प्रकृति की तरफ लौटना इतना ज़रूरी हो जाता है। कुछ पल के लिए मोबाइल को एक तरफ रख कर अगर हम बस पेड़ों के बीच बैठ जाएं, हवा की ठंडक महसूस करें, आसमान को निहारें या पक्षियों की आवाज़ सुने, तो मन के अंदर का शोर थोड़ा कम होने लगेगा।
1: क्योंकि प्रकृति हमसे कुछ मांगती नहीं है, वो ना कोई जवाब चाहती है ना कोई अटेंशन, वो बस अपनी मौजूदगी से हमें याद दिलाती है कि ज़िंदगी सिर्फ जल्दी जल्दी आगे बढ़ने का नाम नहीं है बल्कि रास्ते में मिलने वाले खूबसूरत पलों को महसूस करने का नाम भी है।
0: बिल्कुल काजल, क्या तुम्हें पता है कि वैज्ञानिक भी मानते हैं कि प्रकृति की आवाज़ें हमारे मन को शांत करने में बहुत मदद करती है। बारिश के बूंदों की धुन, बहते पानी की आवाज़ और पक्षियों का कलरव हमारे मन को एक अलग तरीके का सुकून देते हैं। शायद इसीलिए पहाड़ों की खामोशी और समुद्र की लहरें हमें बिना कुछ कहे ही अपनी ओर खींच लेती हैं।
1: और शायद यही वजह है कि बचपन में हम छोटी छोटी चीज़ों में इतनी खुशियाँ मिल जाती थी हमें और हम इतने खुश हो जाते थे। बारिश में भीगना, मिट्टी की खुशबू महसूस करना, बादलों में अलग अलग तस्वीरें ढूंढना, तब हमें पता नहीं था कि हम प्रकृति के साथ अपना सबसे खूबसूरत रिश्ता जी रहे हैं।
0: हाँ, और अगर हम नोटिस करें तो एक फूल हमें क्या सिखाता है, वो हमें धैर्य सिखाता है, एक नदी हमें चलते रहने की सीख देती है और एक पेड़ वो हमें बिना किसी स्वार्थ के देना सिखाता है। प्रकृति हर पल कोई ना कोई कहानी कह रही होती है दोस्तों, बस ज़रूरत है थोड़ी देर रुक कर उसे सुनने की।
1: तो दोस्तों, अगली बार जब मन थोड़ा सा बेचैन हो, जब विचारों का शोर ज़्यादा हो जाए या जब स्क्रीन की दुनिया थका दे, तो कुछ पल प्रकृति के नाम कर दीजिए। शायद इसी पेड़ की छांव में, हवा के एक हल्के से झोंके में या आसमान को देखते हुए आपको वो सुकून मिल जाए जिसकी तलाश आप कहीं और से कर रहे थे।
0: क्योंकि कुछ एहसास ऐसे होते हैं जिन्हें शब्दों में नहीं बांधा जा सकता, उन्हें बस महसूस किया जा सकता है। जहाँ हवा भी कोई संदेश लेकर आती है, जहाँ खामोशी भी संगीत बन जाती है और जहाँ दिल बिना कुछ कहे भी मुस्कुरा उठता है।
1: तो आइए कुछ पल के लिए इस खूबसूरत एहसास में खो जाते हैं, प्रकृति की उस मधुर धुन के साथ जो हर दिल से अपनी एक अलग कहानी कहती है।

0: अच्छा काजल, आज का एक और सवाल है, थोड़ा अलग है, पर क्या तुम्हें लगता है अगर इंसानों को भविष्य देखने की सुपर पावर मिल जाए तो जिंदगी थोड़ी आसान हो जाएगी?
1: आसान मुझे तो लगता है और मुश्किल हो जाएगी। सोचो अगर मुझे पहले ही पता चल जाए कि अगले हफ्ते मेरा इंटरव्यू जो है वो खराब जाने वाला है, तो शायद मैं इंटरव्यू देने ही ना जाऊं।
0: या फिर अगर पता चल जाए कि आज से 5 साल बाद तो सब कुछ अच्छा ही होने वाला है, तो फिर हम चैन से बैठ जाएंगे और कुछ करेंगे ही नहीं, है ना?
1: बिल्कुल बिल्कुल सच कहा तुमने। हमारी आधी टेंशन उस चीज की होती है हमें जो अभी हुई ही नहीं है। हाँ, दरअसल
0: कभी अगर ऐसा हो गया तो, या फिर वैसा नहीं हुआ, इन्हीं सब में हमारा दिमाग फुल टाइम एक स्क्रिप्ट राइटर बना हुआ होता है। ऐसी ऐसी कहानियां बना देता है ना काजल कि बॉलीवुड वाले भी सोच में पड़ जाएं।
1: बिल्कुल सही कहा तुमने। और मजेदार बात पता है तुम्हें, उन 100 कहानियों में से शायद 95 कभी सच भी नहीं होती हैं।
0: हाँ, लेकिन फिर भी हम रात भर जागकर उन्हीं की चिंता करते रहते हैं।
1: कभी एग्जाम का रिजल्ट, कभी नौकरी, कभी किसी का रिप्लाई, और सबसे बड़ा सवाल, लोग क्या सोचेंगे।
0: अरे हाँ, और वो व्हाट्सएप पर किसी का टाइपिंग देखकर जो उम्मीदें बनती है ना, और फिर सामने से सिर्फ रूखा सूखा ओके अगर आ जाए तो उफ,
1: बस बस वही शुरू हो जाती है हमारी ओवरथिंकिंग की वेब सीरीज।
0: लेकिन शायद जिंदगी हमें बार बार यही सिखाती है कि हर चीज हमारे कंट्रोल में नहीं होती।
1: हमारे हाथ में क्या होता है? मेहनत, ईमानदारी और अपना बेस्ट देना।
0: और जो हम

0: हमारे हाथ में नहीं है। उसके लिए हर पल डरते रहना, शायद वो हमारी आज की खुशी छीन लेता है।
1: किसी ने बहुत प्यारी बात कही है, जिंदगी को समझने से ज़्यादा उसे जीना ज़रूरी है।
0: हाँ, और कभी कभी जो चीज़ उस वक्त बहुत बड़ी परेशानी लगती है, कुछ साल बाद वही हमारी सबसे अच्छी सीख बन जाती है।
1: शायद के सरा सरा सिर्फ एक गाना नहीं है, ये एक छोटी सी याद दिलाने वाली बात है कि हर सवाल का जवाब आज ही मिल जाए ये ज़रूरी नहीं है।
0: तो दोस्तों, मेहनत करते रहिए, सपने देखते रहिए, लेकिन हर पल भविष्य का बोझ लेकर मत चलिए,
1: क्योंकि जो होना है वो अपने समय पर हो ही जाएगा। और तब तक क्यों ना आज की मुस्कान जो है वो बरकरार रखी जाए।
0: तो चलिए, इसी खूबसूरत सोच के साथ सुनते हैं एक ऐसा गीत जो सालों से हमें यही कहता आया है कि के सरा सरा, व्हाटएवर विल बी विल बी। फिल्म पुकार का ये जोशीला गीत हम सुनते हैं।

0: तो दोस्तों, इस मजेदार गीत के बाद अब वक्त है उन दो सवालों के जवाब देने का जो हमने कार्यक्रम की शुरुआत में आपसे पूछे थे। तो हमारा पहला सवाल था कि भारत की कौन सी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर है गोदावरी नदी को। गोदावरी भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। इसका उद्गम महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर से होता है और यह महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा जैसे राज्यों से होकर बंगाल की खाड़ी में मिलती है।
1: और दोस्तों, आज का दूसरा सवाल ये था कि किस भारतीय लेखक को राष्ट्र कवि की उपाधि से सम्मानित किया गया था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है मैथिली शरण गुप्त। दोस्तों, मैथिली शरण गुप्त हिंदी साहित्य के महान कवियों में गिने जाते हैं। उन्होंने अपनी कविताओं के माध्यम से राष्ट्र प्रेम, भारतीय संस्कृति, सामाजिक चेतना और मानवीय मूल्यों को जन जन तक पहुंचाया। उनकी प्रसिद्ध कृतियों में भारत भारती, साकेत और यशोधरा शामिल है।
0: जिंदगी की असली खुशियाँ अक्सर बड़ी उपलब्धियों में नहीं बल्कि उन छोटे छोटे पलों में छुपी होती हैं जिन्हें हम रोज देखते हैं लेकिन महसूस करना भूल जाते हैं।
1: आइए दोस्तों, हर दिन कुछ पल अपने लिए और अपनों के लिए और उन बातों के लिए निकालें जो हमें दिल को सुकून देती है। इसी के साथ कार्यक्रम में सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

तो दोस्तों, उम्मीद है आपको आज का ये कार्यक्रम बहुत पसंद आया होगा। अब वक्त है आपसे विदा लेने का, तो अनुमति दीजिए तनिष्का और काजल को। नमस्कार, नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे युवा साथियों के लिए कार्यक्रम युववाणी। हम आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से बोल रहे हैं। आप हमारा प्रसारण मीडियम वेव 462.96 मीटर अर्थात 648 किलो हर्ट्स पर और मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर सुन रहे हैं। इंदौर केंद्र से अब आपको सुनवा रहे हैं फिल्म संगीत, और फिल्म संगीत में ये पहला गीत आप सुनेंगे मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में राजा मेहंदी अली खान का लिखा हुआ, आइए सुनते हैं।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी EMI गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान EMI के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1800 420 2233 पर कॉल करें।

बचपन से जिनको मैं अपना उस्ताद मानता था और जिनसे मैंने तालीम ली, उनको तो मैं भूल नहीं सकता। वो हैं रफ़ी साहब। इनके तो कई गाने बहुत अच्छे लगते थे और लगते हैं,

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: हेलो
3: राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ।
2: फिर से
4: आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे।
5: 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे।
2: सर इतने कहाँ से?
5: एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में।
2: 2 लाख
6: क्या हुआ पापा?
2: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं। काट दिया।
6: पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
2: फ्रॉड?
6: पुलिस, बैंक, आरबीआई इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें, उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
2: तो पैसे गवाओगे,
7: आरबीआई कहता है।
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।

0: साहब की आवाज में ये गीत आप सुन रहे थे शहनाई फिल्म से।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
0: इस संदेश के साथ ही फिल्म संगीत अब यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से बोल रहे हैं, आइए सुने प्रायोजित कार्यक्रम एनसीईआरटी उमंग।

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
3: और अजीत का भी नमस्कार। आइए सुनते हैं एक सुंदर विचार हमेशा की तरह, जिसे हमें भेजा है मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर और रतन माला जी ने।
2: वो लिखते हैं, जो दूसरों के चेहरे पर मुस्कान और जीवन में खुशियां लाता है वही सबसे सफल इंसान है।
3: बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका इतने सुंदर विचार के लिए। आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले हमारे श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है कोका भिलाई से उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल जी का।
2: धमदा ग्राम सुखरी कला से अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषि, ओशिका, आदित्य जंघेल और अंजलि जंघेल।
3: और भटीपारा महुआ उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता, कमला देवी गुप्ता, सुधा, कविता, पंकज, आयुषी और मीहू लिखते हैं,
2: नमस्कार। खनिज पदार्थों पर केंद्रित ये भी जानिए श्रृंखला बेहद रोचक, दिलचस्प और अद्भुत रही। ऐसी जानकारी जरूर प्रसारित करते रहें।
3: आपका बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। अगला संदेश हमें मिला है जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से योगेश ठाकुर जी का।
2: छत्तीसगढ़ पथरिया भरेवा से चंदूलाल सिंगरौल, नारायणी सिंगरौल, नोमेश सिंगरौल, नेहा और वान्या सिंगरौल।
3: आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं लगातार संदेश भेजने के लिए। निवेदन है इसी प्रकार से जुड़े रहिए हमारे उमंग कार्यक्रम से। अब एक बार फिर से लघु प्रेरक कथाओं की श्रृंखला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक और रोचक प्रेरक प्रसंग लेकर हम प्रस्तुत हैं।
2: आज हम बात करेंगे भारत के उस महान देशभक्त और स्वतंत्रता सेनानी की, जिन्होंने नारा दिया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। और उनका एक अन्य प्रसिद्ध नारा था, जय हिंद।
3: श्रोताओं आप समझ गए होंगे हम बात कर रहे हैं सुभाष चंद्र बोस की, जिन्हें हम नेताजी के नाम से भी जानते हैं।
2: बचपन से ही वे अत्यंत मेधावी थे। आपको बता दें कि उन दिनों में अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवा को इंडियन सिविल सर्विसेज या ICS कहते थे। आज इसी सेवा को भारतीय प्रशासनिक सेवा या IAS कहते हैं।
3: श्रोताओं उन्होंने इंग्लैंड जाकर भारतीय सिविल सेवा यानी ICS की परीक्षा दी। उस समय ICS को ब्रिटिश शासन की सबसे प्रतिष्ठित और कठिन सेवाओं में से एक माना जाता था।
2: उन्होंने परीक्षा में उच्च स्थान यानी चौथा स्थान प्राप्त किया। उनके सामने एक सुरक्षित, सम्मानित और समृद्ध सरकारी जीवन का अवसर था।
3: ये उपलब्धि इसलिए भी विशेष मानी जाती है क्योंकि उस समय ICS परीक्षा दुनिया की सबसे कठिन और लब्ध प्रतिष्ठ परीक्षाओं में गिनी जाती थी और अधिकांश भारतीयों के लिए इसे पास करना बहुत कठिन हुआ करता था।
2: लेकिन उनके मन में एक प्रश्न बार बार उठता था, क्या मैं उस सरकार की सेवा कर सकता हूँ जिसके अधीन

0: अपना भारत देश गुलाम है।
1: बहुत विचार विमर्श करने के बाद सन 1921 में उन्होंने स्वेच्छा से ICS से इस्तीफा दे दिया और त्यागपत्र पर लिखा कि वे विदेशी शासन की सेवा नहीं बल्कि भारत की सेवा करना चाहते हैं।
0: जब ये समाचार भारत पहुंचा तो अनेक युवाओं को देश के लिए काम करने की नई प्रेरणा मिली। शुरुआत में उनके परिवार के सभी सदस्य इस निर्णय से सहमत नहीं थे,
1: लेकिन धीरे धीरे समय के साथ परिवार ने उनके निर्णय का सम्मान किया। जब वे स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख नेता बने तो उनके परिवार को उन पर बड़ा गर्व हुआ।
0: ये प्रसंग उनके जीवन का एक प्रेरक उदाहरण है जो बताता है कि व्यक्तिगत सफलता से अधिक देश की सेवा महत्वपूर्ण है।
1: श्रोताओं, आज भी उनके जीवन का ये प्रसंग हजारों युवाओं और सबको प्रेरणा देता है। ये घटना बताती है कि महान व्यक्तित्व केवल सफलता से ही नहीं बल्कि अपने आदर्शों के प्रति अटल रहने से बनते हैं।
0: जी
1: श्रोताओं, आज के प्रसंग में आपने एक शब्द सुना, शब्द था
0: लब्ध प्रतिष्ठ।
1: इसका अर्थ है
0: अत्यंत प्रतिष्ठित या सम्मानित।
1: तो श्रोताओं, अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। तो हमारा प्रश्न है, अंग्रेजी शासन काल के दिनों की इंडियन सिविल सर्विस को आज किस नाम से जाना जाता है, और साथ ही साथ आपको अर्थ बताना है लब्ध प्रतिष्ठ शब्द का। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: अंग्रेजी शासनकाल के दिनों की इंडियन सिविल सर्विस को आज किस नाम से जाना जाता है, और साथ ही साथ आपको बताना है लब्ध प्रतिष्ठ का अर्थ।
1: श्रोताओ, आप हमारे IBRS नंबर यानी 8800440559 पर और हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर अपने संदेश भेज सकते हैं। और अब बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो आइए सुनते हैं एक खूबसूरत गीत संगीत से भरा कार्यक्रम। शीर्षक है पहली बूंद।
0: ये कार्यक्रम NCERT की कक्षा 6 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक की एक कविता पर आधारित है, जिसमें बताया गया है कि जब वर्षा ऋतु आती है तो किस तरह धरती पर आनंद और उल्लास का वातावरण रच जाता है और लोगों को बहुत राहत मिलती है।

0: अभी आपने सुना कार्यक्रम पहली बूंद। जरा सोचिए मित्रों, क्या होता यदि हम बीमारियों और संक्रमणों का इलाज नहीं खोज पाते। पहले बहुत सी महामारियों से हजारों लोग मरते थे। इतिहास बताता है कि गांव के गांव खत्म हो जाते थे, लेकिन अब इलाज या रोग निरोधक टीके खोज लिए गए हैं।
1: जी हाँ, रोगाणु विज्ञान में एक महान चिकित्सक लुई पाश्चर का नाम बड़े आदर से लिया जाता है। उन्होंने बहुत सी बीमारियों के टीकों की खोज की और दुनिया को महामारियों से बचाया।
0: तो आज का कार्यक्रम लुई पाश्चर के जीवन पर आधारित है। आइए सुनते हैं कार्यक्रम लुई पाश्चर।
2: आज हम आपको एक बहुत ही प्रतिभाशाली वैज्ञानिक की कहानी सुनाने जा रहे हैं। उस वैज्ञानिक का नाम है लुई पाश्चर, जो दुनिया के महान और श्रेष्ठ वैज्ञानिकों में से एक हैं।
3: 19वीं शताब्दी में अपने सार्थक और बेजोड़ योगदान के लिए वे सदैव याद किए जाएंगे। पेंसिलिन के आविष्कारक सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने भी इस जीनियस के गुणों को पहचान लिया था। इसीलिए उन्होंने कहा था, विदाउट पाश्चर आई वुड बी नथिंग।
2: 27 दिसंबर सन 1892, सॉर्बोन विश्वविद्यालय का एम्फीथिएटर।
4: लेडीज एंड जेंटलमैन, आज इस सुप्रभात में हमारे साथ विज्ञान की दुनिया के जाने माने लोग हैं। आज के दिन लुई पाश्चर जी को उनके 70वें जन्मदिन पर उनके मानव कल्याणकारी कार्यों के लिए उन्हें सम्मान देते हुए हमें बहुत ही खुशी हो रही है। और अब साइंस एकेडमी के प्रेसिडेंट मोनसिनर द अवेडी उन्हें यह मेडल प्रदान करेंगे।

0: लोगों ने मुझे बहुत बड़ी खुशी दी है। इसे मुझ जैसा व्यक्ति ही महसूस कर सकता है। हाँ, मुझे पूरा विश्वास है कि विज्ञान और शांति अज्ञान और अशांति पर विजय पाएंगे।
1: आज भी कई झकझोरने वाले सच लुई पाश्चर के नाम से जुड़े हैं। उनका नाम केवल कुछ आविष्कारों के लिए ही नहीं लिया जाता है। उनकी प्रत्येक खोज एक बाधा रहित श्रृंखला की कड़ी है। उन्होंने अपने शिष्यों को सिखाया,
2: रिमेंबर, कोई भी ऐसी बात मत कहो जिसे प्रयोगों द्वारा तुम सिद्ध ना कर सको।
3: लुई पाश्चर का जन्म 27 दिसंबर सन 1822 को फ्रांस में स्विस बॉर्डर के नजदीकी शहर जूरा के एक छोटे से गांव डोले में हुआ था।
1: वे एक किसान परिवार से थे। उनके पिता जीन जोसेफ पाश्चर नेपोलियन ग्रैंड आर्मी में नॉन कमीशन ऑफिसर थे।
3: लुई पाश्चर का बचपन अपनी तीन बहनों के साथ बहुत ही खुशहाल रहा।

0: स्कूल में वे एक सामान्य पर गंभीर छात्र थे। आगे जिंदगी में क्या करना है, इन्हीं विचारों में वे खोए रहते थे। उनकी रुचि या तो मछली पकड़ने में या फिर चित्रकारी में थी। उनमें पोर्ट्रेट बनाने की गजब की प्रतिभा थी। ये देखकर किसी ने उन्हें एक बार कहा भी था कि एक दिन वे महान पेंटर बनेंगे। लुई पाश्चर के पिता उनके भविष्य को लेकर चिंतित रहते थे। एक दिन,
1: देखो मुझे पाश्चर की बहुत चिंता है, लेकिन फिर भी मुझे पूरा यकीन है कि पाश्चर इस गांव की मामूली जिंदगी को पीछे छोड़कर दूसरी जगह किसी अच्छे स्कूल में एक दिन टीचर बनेगा। वो काबिल तो है, पर उसमें विद्वान बनने के लक्षण मुझे जरा कम ही नजर आते हैं।
2: हाँ ठीक कहते हो, वो मेहनती है, चित्रकारी में भी अच्छा है। उसने मेरे और आपके जो स्केच बनाए हैं वो देखे हैं आपने?
1: लेकिन क्या सिर्फ चित्रकारी से ही वो अपनी जिंदगी चला लेगा?
2: हाँ मुझे भी उसकी चिंता होती है, पर मुझे लगता है वो सिर्फ हाथों से ही नहीं बल्कि दिमाग से भी काम लेता है।
1: तुम शायद ठीक कह रही हो, लेकिन
0: सन 1831 में जब लुई पाश्चर केवल 8 साल के थे, तभी एक महत्वपूर्ण घटना घटी। पहाड़ियों से एक भयानक भेड़िया नीचे तलहटी में आकर लोगों पर हमला करने लगा, जिसके कारण 8 लोग रेबीज नामक भयंकर बीमारी के शिकार हुए और फिर मर गए।
3: चलो अरे भेड़िया,
0: लुई पाश्चर के गांव के भी कुछ लोग इस भयानक बीमारी का शिकार हुए।
4: वे लोग रेबीज का सिर्फ एक ही इलाज जानते थे। वे लुहार के पास जाते थे और वो घावों को गर्म लोहे की छड़ से दाग देता था।
3: चलो चलो चलो
5: ठहरो, लोहा गर्म हो रहा है।
6: ये लीजिए, बिल्कुल लाल हो गया।
0: जले हुए मांस की बदबू और रोगियों की दर्दनाक चीखों से लुई पाश्चर घबरा गए।
4: जब वे 15 वर्ष के हुए तो उन्हें शिक्षा के लिए पेरिस भेज दिया गया। घर से दूर रहने के कारण वे निरुत्साहित रहते थे।
0: 21 वर्ष की आयु में लुई पाश्चर ने पेरिस के मशहूर नॉर्मल साइंस स्कूल इकोल में प्रतियोगी परीक्षा में 4th स्थान प्राप्त किया।
4: ये उथल पुथल और हलचल से भरा समय था। सन 1848 की क्रांति ने पेरिस को हिला दिया था और दूसरे कई लोगों की तरह लुई पाश्चर के मंसूबे भी इस दौर की उठापटक में कहीं दब के रह गए थे।
0: 26 वर्ष की आयु में टार्टरिक एसिड, जो प्राकृतिक रूप से इमली व अंगूरों में पाया जाता है, उसके क्रिस्टल पर शोध के अपने डॉक्टरल थीसिस के बाद लुई पाश्चर स्ट्रासबर्ग कॉलेज में प्रोफेसर के पद पर नियुक्त हुए।
4: केमिस्ट्री प्रोफेसर के पद पर 2 साल काम करने के बाद वे लिली विश्वविद्यालय की साइंस फैकल्टी के डीन बने।
0: उसी समय उत्तरी फ्रांस के शराब उद्योग में एक समस्या उठ खड़ी हुई, जिसके समाधान के लिए फ्रांस के तत्कालीन शासक नेपोलियन बोनापार्ट ने लुई पाश्चर को बुलाया और कहा,

0: लुई पाश्चर।
1: सर,
0: हम तुमसे एक मदद चाहते हैं।
1: कहिए सर।
0: पता लगाकर हमें बताओ कि वो कौन से जीवाणु हैं जिनसे हमारे यहां बनने वाली शराब प्रदूषित हो रही है और हमें बहुत ही आर्थिक हानि उठानी पड़ रही है।
1: यस सर, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि इस समस्या का हल ढूंढ सकूं।
0: ठीक है।
2: कुछ ही वर्षों बाद सन 1864 में पाश्चर इस समस्या का हल खोजने के लिए अरबोइस नामक एक जगह पर अंगूरों के बाग में गए। उन्होंने साबित कर दिखाया कि सूक्ष्म जीवों के कारण ही शराब प्रदूषित हो रही है, और अगर शराब को कुछ मिनटों तक 55 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाए तो इन जीवाणुओं को नष्ट किया जा सकता है। 8 साल तक लुई पाश्चर ने फर्मेंटेशन पर काम किया और अपनी कड़ी मेहनत से उन्होंने एक नई तकनीक विकसित की जो दुनिया भर में पाश्चरीकरण के नाम से जानी जाती है।
3: तभी से दूध और अन्य पेय पदार्थों पर सफल प्रयोग के बाद ये प्रक्रिया पूरे विश्व में काम में लाई जाने लगी। इस प्रक्रिया में जल्दी खराब होने वाली खाने पीने की चीजों को गर्म करके उनमें मौजूद नुकसानदायक बैक्टीरिया और मोल्ड्स को नष्ट किया जाता है। और अच्छी बात यह है, इस प्रक्रिया से खाद्य पदार्थों को कोई नुकसान भी नहीं पहुंचता है। आज दूर दूर से खाद्य पदार्थ और दवाइयां आ पाती हैं, वे इसी प्रक्रिया की देन है।
2: पाश्चर वास्तव में धन्यवाद के पात्र हैं, क्योंकि उन्होंने ऐसी तकनीक ढूंढ निकाली जिससे रोगाणुओं को नष्ट करना और उनसे होने वाले प्रदूषण पर नियंत्रण रख पाना संभव हो पाया।
3: इस जानकारी के साथ ही पाश्चर ने स्टेरिलाइजेशन के आधारभूत नियमों को भी विकसित किया। इसके साथ साथ उन्होंने रोगाणुओं द्वारा फैलने वाली बीमारियों को कम करने के लिए अस्पताल प्रणाली में बहुत ही गौरवशाली बदलाव किए।
2: इससे पहले जोसेफ लिस्टर ने एंटीसेप्टिक विधि विकसित की थी जिसमें कार्बोलिक एसिड का प्रयोग एंटीसेप्टिक के रूप में किया जाता था। शल्य चिकित्सा में शरीर में सूक्ष्म जीवों का प्रवेश रोकने के लिए ये विधि काफी सफल रही।
3: सन 1874 में लिस्टर ने पाश्चर को पत्र लिखकर अपने शोधों के बारे में बताया, जिससे पाश्चर को आगे बढ़ने और नए तरीके से सोचने में सहायता मिली।
2: लेकिन 1786 में एक ब्रिटिश डॉक्टर एडवर्ड जेनर ने, जिन्हें प्रतिरक्षण प्रणाली यानी इम्यून सिस्टम की कोई जानकारी नहीं थी, सबसे कारगर दवाई का उन्होंने पता लगाया, जिसे उन्होंने नाम दिया वैक्सीन।
3: प्रतिरक्षण विज्ञान के जनक के नाम से मशहूर लुई पाश्चर ने रोगों से बचाने वाली वैक्सीन के वैज्ञानिक सिद्धांत को स्थापित किया।
2: एक बार फिर समय ने अपना खेल दिखाया और ये खोज बड़ी ही सफल रही।
3: सन 1881 में भेड़ों पर शोध करते हुए पाश्चर ने एंथ्रेक्स बीमारी को रोकने के लिए वैक्सीन बनाई।
2: तो फिर उन्होंने क्या किया?
3: 5 और 17 मई को 25 भेड़ों के एक समूह को पाश्चर के इसी साल बनाए गए एंथ्रेक्स के बैक्टीरिया वाला द्रव दिया गया और दूसरे नियंत्रित समूह की 25 भेड़ों को ये द्रव नहीं दिया गया। इस प्रकार ये बिना टीके वाली भेड़ें थीं। 2 सप्ताह बाद यानी 31 मई को सभी 50 भेड़ों को एंथ्रेक्स के बैक्टीरिया वाला टीका दिया गया।
4: अरे आजा आजा आजा।
5: हाँ,
4: इंजेक्शन लगा दूँ?
5: आई एम श्योर 100% सारी की सारी भेड़ें बच जाएंगी और यही बात मेरे सिद्धांत को सही साबित करेगी।

0: रिजल्ट के इंतजार में उन्होंने कई रातें जाग जाग कर बिताई।
1: सर सर ये टेलीग्राम।
2: अच्छा लाओ दिखाओ। हाँ अरे आश्चर्यजनक कामयाबी चार्ल्स, वंडरफुल सक्सेस।
1: क्या हुआ सर?
2: देखो टीके वाली सभी भेड़े बिल्कुल ठीक और स्वस्थ हैं।
1: कॉन्ग्रेचुलेशंस, बधाई हो सर।
2: थैंक यू। और बिना टीके वाली सारी भेड़े मर रही हैं या फिर मर चुकी हैं?
1: यानी आपका प्रयोग सफल रहा।
2: हाँ चार्ल्स।
0: उनकी प्रसिद्धि आसमान को छूने लगी।
3: इस समय तक भी पाश्चर ने मानव जाति पर प्रयोग करने की बात सोची तक नहीं थी। 6 जुलाई सन 1885 का ऐतिहासिक दिन, उन्होंने पहली बार एक व्यक्ति का इलाज रेबीज वैक्सीन से किया।
4: सर सर देखिए, एक पागल कुत्ते ने मेरे बेटे के हाथ, पैरों और जांग पर काट लिया है। मेहरबानी करके मेरी मदद कीजिए।
2: लेकिन इंसानों पर और खासकर बच्चों पर परीक्षण करने के लिए मैं अभी पूरी तरह तैयार नहीं हूँ।
4: डॉक्टर साहब कुछ तो करिए, वरना मेरा बेटा।
2: देखिए आप,
4: ओ गॉड, जोसेफ मास्टर की उम्र ही क्या है, 9 साल का है, लगता है मर जाएगा।
2: पर ये काम जोखिम भरा है, इससे जान को भी खतरा हो सकता है। हाँ अब
4: मेरा बेटा।
2: अच्छा ठीक है ठीक है, मैं ये परीक्षण करूंगा। हाँ।
0: और आखिरकार उन्होंने ये परीक्षण करने की ठान ली।
3: उनके सहयोगी जोसेफ ग्रांचर एक डॉक्टर थे। उन्होंने रेबीज से मरे हुए खरगोश की हड्डी में थमे द्रव का आधा सिरिंज जितना डोज लिया और उस सहमे हुए बच्चे के शरीर में इंजेक्शन लगा दिया।
0: 10 दिनों तक रहस्य की स्थिति बनी रही, जिस दौरान उस बच्चे को एक के बाद एक 13 इंजेक्शन लगाए गए। 3 हफ्तों के परीक्षणों के बाद उन्हें महसूस हुआ कि अब वे अपनी सफलता संसार के सामने घोषित कर सकते हैं।
3: पाश्चर को खुद यकीन नहीं था कि वैक्सीन काम करेगी, लेकिन माइस्टर चंगा हो गया। वो इतिहास का प्रथम व्यक्ति बन गया जिस पर रेबीज की दवाई का पहला प्रयोग किया गया। उसने बड़े होकर वर्षों तक पाश्चर इंस्टीट्यूट में गेटकीपर के रूप में कार्य किया।
0: सन 1940 के दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जब नाजियों ने पाश्चर के इंस्टीट्यूट पर आक्रमण किया, तो यही माइस्टर था जिसने जर्मन्स को पाश्चर की कब्र तक पहुंचाने के बजाय अपनी जान देना बेहतर समझा। सन 1868 में अपने शानदार करियर के बीच में ही पाश्चर पर अपंगता का प्रहार हुआ, जिसका परिणाम आंशिक रूप से लकवे के रूप में सामने आया। उनके बाएं हाथ को लकवा मार गया था और उनकी जबान पर भी इसका बुरा असर पड़ा था। तब वे 46 वर्ष के थे और तभी से उन्हें अपने प्रयोगों को करने के लिए दूसरों की सहायता लेनी पड़ती थी।
3: इतना सब होने के बावजूद उनके महान मस्तिष्क पर इसका कोई असर नहीं पड़ा और जो जो प्रयोग और नए विचार पाश्चर के दिमाग में थे, वे दूसरों की मदद से दुनिया के सामने आए। पाश्चर के समय विज्ञान या चिकित्सा के क्षेत्र में कोई नोबेल पुरस्कार नहीं था, अगर होता तो उन्हें जरूर मिल ही जाता।
0: और फिर 27 सितंबर सन 1895 को उनकी पत्नी ने उन्हें ये कहते हुए सुना।
5: इस तरह मैं और ज्यादा नहीं जी सकता।
0: और 24 घंटे बाद दोपहर को 4:40 पर लुई पास्चर ने अपनी समर्पित पत्नी की बाहों में दम तोड़ दिया। पूरी जिंदगी एकनिष्ठ और उत्साह से भरे पास्चर का अंतिम संस्कार भी एक नायक की तरह किया गया और उन्हें पेरिस के नोट्रे डेम कैथेड्रल में दफना दिया गया। अपने दादा को याद करते हुए उनके पोते वैलोरी रेडॉट ने अपनी डायरी में लिखा, माय ग्रैंडफादर वाज द जेंटलेस्ट विद द गुडनेस ऑफ हिज हार्ट मोस्ट अफेक्शनेट एंड सेंसिटिव इंडिविजुअल ही वाज अ ह्यूमनिस्ट ऑलवेज वर्किंग टुवर्ड्स द इंप्रूवमेंट ऑफ द ह्यूमन कंडीशन।
6: और इसी के साथ अब हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत को उमंग की तकनीकी टीम के साथ यानी कुसुमलता,
7: जगबंधु,
6: चेतना,
7: अर्शद और फैजान के साथ विमलेश को आज्ञा दीजिए।
6: नमस्कार।
8: उमंग उमंग उमंग उमंग।
9: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम NCERT उमंग। हम आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से बोल रहे हैं। आप हमारा प्रसारण मीडियम वेव 462.96 मीटर अर्थात 648 किलोहर्ट्ज पर और मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज ऑन AIR पर सुन रहे हैं। आइए सुने एक और प्रायोजित कार्यक्रम वतन का राग।
10: वतन का राग सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। श्रोताओं, हमारा सवाल था कि बाबा कांशीराम का जन्म कब हुआ था। इसका सही जवाब है 11 जुलाई। और सही जवाब भेजने वाले हमारे इस बार के दो भाग्यशाली श्रोता हैं, हमीरपुर उत्तर प्रदेश से रामशरण विश्वकर्मा और छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से मोहन साहू। आप दोनों ही श्रोताओं को बहुत बहुत बधाई। हम आपको भेज रहे हैं आजादी के दुर्लभ तरानों पर केंद्रित जन गर्जे श्रृंखला से एक ऑडियो एल्बम और आजादी के रणबांकुरों का एक छाया चित्र।
11: भारतीय सेना के शूर वीरों को समर्पित शौर्य स्मारक भोपाल।
12: शौर्य स्मारक, शहीदों की राष्ट्र सेवा से प्रेरित जीवन यात्रा का रूपायन।
11: जीवन के विभिन्न पड़ावों पर अदम्य साहस से जूझते मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान करते शूर वीरों की शौर्य गाथा का चित्रांकन
12: हर शाम 6 बजे से भारतीय जल थल और वायु सेना पर लघु फिल्मों का प्रदर्शन और भी बहुत कुछ।
11: शौर्य स्मारक भोपाल, समय दोपहर 12 बजे से शाम 7 बजे तक। आप सब परिवार सादर आमंत्रित हैं। ध्यान रहे, बुधवार

हमारे देश में स्वाधीनता का सूर्योदय किसी एक दिन का चमत्कार नहीं था, वो असंख्य देशभक्तों के स्वयं जलकर प्रकाश बनने के त्याग का परिणाम था। उस पावन प्रभात की पहली किरण में अनगिनत क्रांति वीरों के रक्त की आभा थी। स्वतंत्रता की हर सांस में उनके बलिदान की सुगंध थी और मुक्त गगन में लहराते तिरंगे की हर लहर में उनके राष्ट्र प्रेम का स्पंदन था। कितने ही ऐसे सपूत हुए जिन्होंने अपने सपनों को मातृभूमि के चरणों में अर्पित कर दिया। किसी ने यौवन की मुस्कान त्याग दी, किसी ने परिवार का स्नेह, किसी ने सुख सुविधाओं का संसार, तो किसी ने अपने प्राणों का अमूल्य उपहार। और सबसे बड़ी बात ये कि वो इतिहास के पन्नों में अपना नाम अंकित करने नहीं निकले थे। उनका तो एकमात्र स्वप्न था कि भारत स्वाधीन हो, भारत आत्मगौरव से आलोकित हो। एक ऐसे ही महान स्वाधीनता संग्राम सेनानी थे मणिलाल मूलाशंकर पंड्या। एक ऐसे देशभक्त जिन्होंने मौन समर्पण के साथ स्वाधीनता यज्ञ में अपनी आहुति दी और अपना सर्वस्व मातृभूमि के चरणों में अर्पित कर दिया। मणिलाल पंड्या का जन्म 20 जुलाई सन 1911 को गुजरात के पाटन नामक स्थान पर हुआ था। उनके पिता का नाम मूलाशंकर पंड्या था। ये 20वीं सदी का उदय काल था। गुजरात का ऐतिहासिक नगर पाटन उस समय गायकवाड़ राजवंश

की छत्र छाया में अपनी सांस्कृतिक चेतना को संजोए हुए था। इसी नगर के एक पारंपरिक ब्राह्मण परिवार में उनकी परवरिश हुई। पिता ने उन्हें धर्म, मर्यादा और विद्या के संस्कार दिए। पराधीन भारत की दशा से उस समय के युवा अत्यंत आक्रोशित थे। बड़ौदा रियासत की प्रगतिशील शिक्षा नीतियों और महाराजा सयाजी राव गायकवाड़ के राष्ट्रीय दृष्टिकोण ने पाटन के युवाओं में एक मूक चेतना भर दी थी। मणिलाल पंड्या ने जब होश संभाला तब उनके कानों में तिलक जी के स्वराज की हुंकार गूंज रही थी, गांधी जी के आंदोलनों का आमंत्रण गूंज रहा था और उनके भीतर एक संकल्प जाग चुका था कि उनका जीवन देश हित में समर्पित होने के लिए है।

मणिलाल पंड्या ने देश की पुकार पर अपने मित्रों के बीच स्वदेशी का प्रचार प्रसार आरंभ कर दिया था। वो स्वदेशी और स्वराज का मंत्र लिए आगे बढ़ने लगे। इसी बीच गांधी जी ने सन 1930 में नमक सत्याग्रह आरंभ किया। 12 मार्च सन 1930 को साबरमती आश्रम से ये सत्याग्रह आरंभ हुआ। गांधी जी ने दांडी के लिए अपनी ऐतिहासिक यात्रा आरंभ की, जो 24 दिनों तक चली और 6 अप्रैल सन 1930 को दांडी समुद्र तट पर नमक कानून भंग के साथ संपन्न हुई। इस ऐतिहासिक दांडी मार्च का प्रभाव पूरे भारत में हुआ और गुजरात तो इसके केंद्र में ही था, इसलिए गुजरात की धमनियों में राष्ट्रवाद का रक्त उबल रहा था। दांडी मार्च के बाद गांधी जी ने मई सन 1930 में ब्रिटिश नमक कर के विरुद्ध धरसाना सत्याग्रह की योजना बनाई। ये स्वाधीनता संग्राम का महत्वपूर्ण अहिंसक विरोध था। दरअसल गांधी जी की गिरफ्तारी के बाद 21 मई सन 1930 को सरोजनी नायडू और इमाम साहब के नेतृत्व में 2500 सत्याग्रहियों ने धरसाना नामक डिपो की ओर शांतिपूर्ण मार्च किया। ये धरसाना नमक कारखाने पर शांतिपूर्ण छापे की योजना थी। ब्रिटिश दमन चक्र चला। जब इन सत्याग्रहियों पर बर्बर लाठियां बरस रही थीं, तब गुजरात के स्वयं सेवकों के जत्थे में मणिलाल मूलाशंकर पंड्या अग्रिम पंक्ति में सीना ताने खड़े थे। पुलिस की लाठी बरसती जा रही थी और महात्मा गांधी की जय का नारा बुलंद होता जा रहा था। सैकड़ों लोग घायल हुए। एक अमेरिकी पत्रकार वेब मिलर ने अपनी रिपोर्ट के जरिए इस घटना को दुनिया के सामने उजागर किया और भारतीय स्वाधीनता आंदोलन की वैश्विक चर्चा के साथ ही ब्रिटिश शासन की अंतर्राष्ट्रीय आलोचना हुई। धरसाना सत्याग्रह ने मणिलाल पंड्या को ब्रिटिश शासन की नजरों में ला दिया। उन्होंने पाटन के स्थानीय बाजारों में घूम घूम कर विदेशी वस्त्रों की होली जलाई। इसके साथ ही शराब की दुकानों के सामने धरनों का कुशल नेतृत्व किया। अंग्रेजी हुकूमत उनकी गतिविधियों से बौखला उठी। उन्होंने मणिलाल पंड्या को गिरफ्तार कर साबरमती सेंट्रल जेल में डाल दिया। एक अहिंसक योद्धा जेल के लोहे की सलाखों के पीछे धकेल दिया गया। जेल में उसे अनेक यातनाएं दी गईं, लेकिन इन यातनाओं ने उनके संकल्प को और अधिक मजबूत कर दिया। गांधी

से रिहा होने के बाद मणिलाल पंड्या का संकल्प और भी फौलादी हो चुका था। 1930 के दशक के उत्तरार्ध में स्वाधीनता आंदोलन एक नए दौर में प्रवेश कर चुका था, जहां एक ओर ब्रिटिश भारत था, वहीं दूसरी ओर देसी रियासतें थीं। पाटन बड़ौदा रियासत का अंग था, जहां उत्तरदायी शासन की मांग को लेकर बड़ौदा राज्य प्रजामंडल तीव्र गति से सक्रिय हो रहा था। मणिलाल पंड्या जानते थे कि किसी भी बड़ी क्रांति के लिए संगठनात्मक मजबूती आवश्यक है। उन्होंने पाटन तथा मेहसाणा के सुदूर ग्रामीण अंचलों का व्यापक दौरा किया। उन्होंने शोषित किसानों से संवाद किया, उन्हें उनके अधिकारों के प्रति सजग किया और रियासती करों के विरुद्ध एक व्यापक जन आंदोलन खड़ा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस कार्य में उनके सहयोगी थे कर्मठ स्वाधीनता सेनानी माणिकलाल मगनलाल।

शर्मा। दोनों ने मिलकर स्थानीय युवाओं का एक ऐसा अभेद्य नेटवर्क तैयार किया जो खादी, छुआछूत उन्मूलन और राष्ट्रीय शिक्षा के संदेश को जन जन तक पहुंचाने लगा। सन 1942 में बंबई के ग्वालिया टैंक मैदान से गांधी जी ने करो या मरो का नारा देते हुए भारत छोड़ो आंदोलन का शंखनाद किया। ब्रिटिश हुकूमत ने शीर्ष नेताओं को रातों रात गिरफ्तार कर लिया। आंदोलन दिशाहीन न हो जाए इस चिंता से अनेक नेताओं ने भूमिगत रहकर इस आंदोलन को हवा दी। पाटन में इस आंदोलन की कमान संभाली मणिलाल पंड्या जैसे नायकों ने। भूमिगत रहते हुए उन्होंने इस आंदोलन को जारी रखा। इस तरह पाटन और मेहसाणा का संपूर्ण क्षेत्र रातों रात गुप्त क्रांतिकारी गतिविधियों का मुख्य केंद्र बन गया। मणिलाल पंड्या ने देशभक्ति पत्रिकाओं और बुलेटिनों के संपादन तथा वितरण का कार्य अत्यंत सतर्कता के साथ गुप्त रूप से किया। अंग्रेजी व्यवस्था को पंगु बनाने के लिए उन्होंने सरकारी डाक, टेलीग्राफ लाइन और रेलवे पटरियों को बाधित करने वाले कई गुप्त अभियानों का कुशलतापूर्वक संचालन किया। जब अरुणा आसफ अली और अच्युत पटवर्धन मुंबई से भारत छोड़ो आंदोलन का भूमिगत रहते हुए संचालन कर रहे थे, तब उत्तर गुजरात तक उनके संदेशों और रसद को सुरक्षित ठिकाने तक पहुंचाने का काम मणिलाल पंड्या ही कर रहे थे। मुखबिरों की सूचना पर ब्रिटिश खुफिया विभाग ने उन्हें भारी मात्रा में प्रतिबंधित साहित्य के साथ गिरफ्तार कर लिया। इस बार उन्हें अत्यंत कठोर कारावास में शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया गया, लेकिन उनका आत्मबल अजेय रहा। देश में आजादी की सुबह आने तक वो सलाखों के पीछे ही रहे। अंततः देश आजाद हुआ। उनकी आंखों में संतोष और खुशी के आंसू थे। उन्हें सत्ता या पद का कोई लालच नहीं था। वो एक मूक कर्मयोगी की तरह अपनी जड़ों की ओर लौट आए। वो जीवन के अंतिम क्षणों तक खादी भंडारों के माध्यम से स्वावलंबन का मंत्र देते रहे तथा निर्धन बच्चों की शिक्षा हेतु तन मन धन से समर्पित रहे। नमन ऐसी महान विभूति को।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग, मार्गदर्शन शिवशेखर शुक्ल, संकल्पना संतोष कुमार वर्मा और संकल्पना संयोजन अदिति गौड़, प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश की। और दोस्तों, अब बारी है आज के सवाल की। हमारा आज का सवाल है कि कार्यक्रम किस व्यक्तित्व पर केंद्रित था। सवाल एक बार फिर सुन ले, कार्यक्रम किस व्यक्तित्व पर केंद्रित था। आपके जवाब 10 दिनों के भीतर हमारे पास पहुंच जाने चाहिए। जवाब भेजने के लिए हमारा ईमेल एड्रेस है wataNkaraag@gmail.com और radioazadhind@gmail.com। सही जवाब के साथ आप अपना नाम, अपने शहर का नाम और अपना ईमेल एड्रेस अवश्य लिखें।

0: अधिकारी साइबर ठगी से जागरूक कर रहे संस्थान के विशेषज्ञ हमारे स्टूडियो में उपस्थित होते हैं, तो आप भी सीधे हमारे टेलीफोन के माध्यम से जुड़ सकते हैं। हमारे टेलीफोन नंबर है 2710223 और 2710224। इंदौर का एसटीडी कोड है 0731। तो जुड़िए हमारे कार्यक्रम साइबर क्राइम रहे सावधान से और अपनी समस्याओं और जिज्ञासाओं का समाधान जानिए। सुनते रहिए विविध भारती का इंदौर केंद्र FM 101.6 MHz पर और कार्यक्रम साइबर क्राइम रहे सावधान प्रति शुक्रवार सुबह 11:32 से 12 बजे तक। हम आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। संसद ने राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक का उद्देश्य वंदे मातरम को राष्ट्रगान के समान वैधानिक संरक्षण प्रदान करना है। वंदे मातरम के अपमान पर 3 वर्ष तक की कैद, जुर्माना या दोनों सजा हो सकती है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि ये विधेयक देश की सांस्कृतिक विरासत, राष्ट्रीय पहचान और स्वतंत्रता संग्राम के आदर्शों का प्रतिनिधित्व करता है। श्री राय ने कहा कि वंदे मातरम केवल एक गीत नहीं है बल्कि ये राष्ट्र की आत्मा की आवाज है।
2: यह विधेयक राष्ट्र गौरव का विधेयक है। यह किसी राज्य के खिलाफ नहीं है, किसी व्यक्ति या किसी विचारधारा के खिलाफ नहीं है। और जब राष्ट्रगान हो तो उसके साथ साथ राष्ट्र गीत का भी गायन हो। अब एक भारत श्रेष्ठ भारत के लिए संपूर्ण वंदे मातरम चाहिए।
1: राज्यसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा जारी है। लोकसभा ने ये विधेयक कल पारित कर दिया था। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने विधेयक पेश किया। चर्चा के लिए 7 घंटे आवंटित किए गए हैं। डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि विधेयक के अंतर्गत जांच 2 महीने के भीतर और आरोप पत्र दाखिल होने के बाद 3 महीने के भीतर मुकदमा पूरा किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि ये विधेयक देश के छात्रों और युवाओं के कल्याण की रक्षा के लिए सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है।
3: प्राइम मिनिस्टर मोदी जी लॉस्ट नो टाइम।
4: प्रधानमंत्री मोदी ने बिना समय गवाए घोषणा की है कि छात्रों के भविष्य को खतरे में डालने की अनुमति नहीं दी जाएगी, इसलिए वर्ष 2024 के अधिनियम में संशोधन करने वाला ये विधेयक लाया जा रहा है ताकि इसे अधिक कठोर और प्रभावी बनाया जा सके। यदि इसमें सुधार के लिए कोई सुझाव होंगे तो मैं उनका स्वागत करता हूं और उन पर विचार करूंगा।
3: आई विल बी टेकिंग नोट ऑफ इट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज संसद भवन में अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड के सांसदों से मुलाकात की। इस दौरान दोनों राज्यों में आई बाढ़ की स्थिति पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार बाढ़ की स्थिति से निपटने में राज्य की सहायता करना जारी रखेगी। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने कहा है कि लगभग 17,000 सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम अब रक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। श्री सेठ ने बताया कि सरकार का एकमात्र उद्देश्य रक्षा क्षेत्र को स्वदेशी और आत्मनिर्भर बनाना है। उन्होंने बताया कि वायुसेना, SIDM, उद्योग और स्टार्टअप समुदाय 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए दृढ़ संकल्पित है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव एस कृष्णन ने कहा है कि सरकार ने देश में सेमीकंडक्टर विनिर्माण को मजबूत करने के लिए 1,27,500 करोड़ रुपए के बजट के साथ इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के दूसरे चरण को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि ये वर्ष भारत के सेमीकंडक्टर उद्योग के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि 3 सेमीकंडक्टर इकाइयां पहले ही वाणिज्यिक उत्पादन शुरू कर चुकी हैं। बिहार की बांकीपुर, गुजरात की मंजलपुर और मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए मतदान समाप्त हो गया है। शाम 5 बजे तक बांकीपुर और मंजलपुर में लगभग 34% और दतिया में 69% से अधिक मतदान हुआ। छत्तीसगढ़ के बस्तर पंडुम 2026 के विजेता परगना माझी और पद्म पुरस्कार विजेताओं के एक प्रतिनिधि मंडल ने आज राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। राष्ट्रपति ने कहा कि बस्तर पंडुम जैसे आयोजनों ने युवाओं को उनकी परंपराओं, रीति रिवाजों और सांस्कृतिक विरासत से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

0: प्रवर्तन निदेशालय ने चेन्नई, कोयम्बतूर, हैदराबाद और मुंबई में वर्ष 2022 में कोयम्बतूर बम धमाकों से जुड़े अवैध धन शोधन मामले में 16 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया। फिदायीन आतंकी जमीशा मुबीन और इस्लामिक स्टेट से जुड़े कई आतंकवादियों की इन हमलों में संलिप्तता पाई गई है। दो बार के ओलंपिक पदक विजेता नीरज चोपड़ा ने आज राष्ट्रमंडल खेलों की भाला फेंक स्पर्धा के फाइनल में पहुंच गए। रोहित यादव और यशवीर सिंह ने भी फाइनल में जगह बनाई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से बोल रहे हैं। आपको आज के शेष और कल की प्रातःकालीन सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में जानकारी दे देते हैं।

श्रोताओं, आपसे थोड़ी देर बाद यानी 7:20 पर आप सुनेंगे किसान भाइयों के लिए कार्यक्रम खेती गृहस्थी। आज के इस कार्यक्रम के आकर्षण है आज की बात में आप सुनेंगे मोबाइल ऐप से करें स्मार्ट खेती। भेंट वार्ता हम आपको सुनवाएंगे, इसके साथ ही लोक संगीत, मंडी के भाव और मौसम की जानकारी भी आप सुन सकेंगे। रात्रि 8 बजे आकाशवाणी की दिल्ली केंद्र से संसद समीक्षा अनुप्रसारित की जाएगी। सुर्खियों में ये कार्यक्रम आप सुनेंगे आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से रात्रि 8:15। 8:30 पर सुनिएगा फिल्म संगीत। फिल्म संगीत का आनंद लीजिएगा रात्रि 9:15 चित्रगीत में। और रात्रि 9:30 हम आपको सुनवाएंगे आपका पसंदीदा कार्यक्रम मन भावन।

श्रोताओं, रात्रि 10 बजे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से संसद में आज हुई प्रश्नकाल की रिकॉर्डिंग का प्रसारण हम करेंगे। आप इसे सुन सकेंगे रात्रि 10 बजे से 11 बजे के बीच। तो ये तो थे हमारी आज की इस सभा के शीर्ष कार्यक्रम, और अब कल की सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में संक्षिप्त में हम आपको जानकारी दे देते हैं।

कल यानी 31 जुलाई को प्रसारित होने वाली सुबह की सभा के कार्यक्रमों के बारे में जानकारी दे रहे हैं। कल प्रातः 6:05 पर आप सुनेंगे वंदना, 6:30 पर सुनिएगा चिंतन। कल के चिंतन का शीर्षक रहेगा समय, आलेख गौरव अरोरा का है, वाचक मुकाम सिंह चौहान के हैं। 6:35 पर सुनिएगा खेती की बातें कार्यक्रम, और कल के इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे खरपतवार मोथा का प्रभावी नियंत्रण, वाचन डॉक्टर अनुराधा शर्मा का। श्री रामचरितमानस गान आप सुनेंगे 6:40 पर। कार्यक्रम विवरण और स्थानीय सूचना सुन सकेंगे प्रातः 6:50 पर। कल 7:20 पर सुनिएगा साप्ताहिक कार्यक्रम इंदौर परिक्रमा, और कल के इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाएंगे खास मोहम्मद रफी साहब पर केंद्रित कार्यक्रम। सुनहरे पल आप सुन सकेंगे 7:40 पर। 8:30 सुनिएगा फिल्म संगीत, 9:00 आप सुनेंगे लोक संगीत में छाया पगारे और साथियों के गाए लोकगीत, सुगम संगीत में कल कलाकार होंगी सपना भाटे। 9:30 आप सुनिएगा शास्त्रीय संगीत जिसमें आप सुनेंगे शिवानंद पाटिल का गायन राग सालग वराली तोड़ी।

10 बजे सुनिएगा जिले की चिट्ठी, जिसे हम आकाशवाणी की दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। 10:05 पर सजीव फोन इन कार्यक्रम MH हॉटलाइन आप सुनेंगे और 11 बजे आकाशवाणी के भोपाल के कार्यक्रम आप सुन सकेंगे।

0: कार्यक्रम विवरण में आज के शीर्ष और कल की प्रातःकालीन सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में हम आपको जानकारी दे रहे थे। हम आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से बोल रहे हैं। आप हमारा प्रसारण मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज़ पर सुन रहे हैं और थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से प्रादेशिक समाचार।
1: अरे रीमा, सोलर पैनल लगवा ले।
2: कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा
3: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
2: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो।
4: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर। सूर्य घर।
5: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। राज्यसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा शुरू। ग्वालियर में देश का पहला टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन स्थापित करने के लिए आज एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने केला उत्पादक किसानों को 107.72 करोड़ रुपए की राहत राशि जारी की। और दतिया विधानसभा उपचुनाव में शांतिपूर्ण मतदान, शाम 6 बजे तक हुआ 71.44% मतदान। अब समाचार विस्तार से। राज्यसभा ने लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा शुरू कर दी है। ये विधेयक कल लोकसभा में पारित किया जा चुका है। भोजनावकाश के बाद सदन की कार्यवाही फिर से शुरू होने पर कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने विधेयक पेश किया। सभापति सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि विधेयक पर चर्चा के लिए 7 घंटे आवंटित किए गए हैं। इस विधेयक में कई महत्वपूर्ण प्रावधान शामिल हैं, जिनमें 10 वर्ष तक की कैद, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और दोषी पाए जाने पर संपत्ति जब्त करने जैसे कठोर दंड इसमें शामिल हैं। मामलों के शीघ्र निपटान के लिए विधेयक में प्रत्येक राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन को दैनिक सुनवाई के लिए विशेष त्वरित न्यायालय स्थापित करने का भी प्रावधान रखा गया है। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने आज नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया, जहां भारत सरकार के दूरसंचार विभाग और मध्य प्रदेश सरकार के बीच ग्वालियर में देश का पहला टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन स्थापित करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस अवसर पर केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि यह परियोजना मेक इन इंडिया और दुनिया के लिए भारत में निर्माण के संकल्प को मजबूत करेगी। उन्होंने कहा कि गुणवत्ता, भरोसा और नवाचार के दम पर भारत वैश्विक टेलीकॉम विनिर्माण का महत्वपूर्ण केंद्र बनेगा। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव कल झाबुआ जिले के थानला में आयोजित प्रदेश स्त्री स्वसहायता समूहों के क्षमता वर्धन और ऋण वितरण कार्यक्रम में शामिल होंगे। वे 300 करोड़ रुपए के ऋण का वितरण करेंगे और प्राकृतिक खेती करने वाले किसानों से संवाद भी करेंगे। मुख्यमंत्री करीब 175 करोड़ के विकास कार्यों का भूमि पूजन और 109 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों का लोकार्पण करेंगे। कार्यक्रम में स्वसहायता समूहों, किसानों और विभिन्न सरकारी योजनाओं के हितग्राहियों को लाभ दिया जाएगा। इसके साथ ही मेधावी छात्र छात्राओं का सम्मान भी किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने आज उज्जैन में बन रहे रेप्टाइल पार्क और अनुसंधान केंद्र का निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि होमगार्ड के जवानों को सांपों को सुरक्षित पकड़ने और उनका रेस्क्यू करने का विशेष प्रशिक्षण दिया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे रिहायशी इलाकों में सांप निकलने पर लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित होगी और वन्यजीव संरक्षण को भी बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने कहा कि यह सर्प उद्यान शोध, संरक्षण और जनजागरूकता का प्रमुख केंद्र बनेगा। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का।
1: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook के साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार

0: सुन सकते हैं।
1: ब्रेक के बाद समाचारों में आपका पुनः स्वागत है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि राज्य सरकार हर परिस्थिति में किसानों के साथ खड़ी है। उन्होंने आज बुरहानपुर में आयोजित बलराम कृषि महोत्सव से वर्चुअल रूप से जुड़कर प्राकृतिक आपदा से प्रभावित 8,000 से अधिक केला उत्पादक किसानों के खातों में 107 करोड़ 72 लाख रुपए की राहत राशि जारी की। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसान कल्याण वर्ष 2026 के तहत किसानों की आय बढ़ाने और उन्हें समृद्ध बनाने के लिए लगातार काम किया जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि बुरहानपुर के केले और केले के रेशे से बने उत्पाद अब देश के साथ साथ विदेशों में भी नई पहचान बना रहे हैं।
2: एक जिला एक उत्पाद में बुरहानपुर को केला प्रसंस्करण को राष्ट्रीय सम्मान मिला और अब केले के जैसे से कपड़े उत्पादन के लिए भी हम लोग और न केवल कपड़ा बल्कि सजावटी सामान से लेकर कई प्रकार के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से अब जो कमाई हो रही है वो देश विदेश तक बुरहानपुर की पहचान बन रही है। फसल के विविधीकरण में भी बुरहानपुर के किसानों ने कमाल किया है। धार में पीएम मित्रा पार्क का भी बड़ा लाभ हमारे बुरहानपुर के किसानों को और टेक्सटाइल उद्योग को मिलेगा।
1: दतिया विधानसभा उपचुनाव के लिए आज मतदान शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गया। शाम 6 बजे तक 71.44% मतदान दर्ज किया गया। बारिश के बावजूद कई मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की लंबी कतारें देखने को मिली। इस सीट पर भाजपा के आशुतोष तिवारी और कांग्रेस के घनश्याम सिंह के बीच मुख्य मुकाबला है। मतदान के दौरान कुछ शिकायतें भी सामने आई जिन पर चुनाव अधिकारियों ने आवश्यक कार्रवाई की। मतों की गिनती 3 अगस्त को होगी और उसी दिन परिणाम घोषित किए जाएंगे। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने कहा है कि वन अधिकार कानून को बेहतर तरीके से लागू करने के लिए सभी विभाग मिलकर काम करें। वे आज भोपाल में वन अधिकारों से जुड़ी समीक्षा बैठक में संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि गांवों की ग्राम सभाओं में सभी काम पारदर्शिता और आपसी सहयोग से किए जाएं। बैठक में बताया गया कि 15 अगस्त को होने वाली विशेष ग्राम सभाओं में लोगों को वन अधिकारों की जानकारी देने के लिए जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदेशवासियों को श्रावण मास की शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि भगवान शिव की आराधना के इस पवित्र महीने में प्रदेश के सभी प्रमुख शिव मंदिरों और कांवड़ यात्रा मार्गों पर श्रद्धालुओं की सुविधा, सुरक्षा और अन्य जरूरी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएंगी। श्रावण मास के पहले दिन उज्जैन, ओंकारेश्वर, ममलेश्वर, महेश्वर, भोजपुर, बड़वानी, कुबेरेश्वर और प्रदेश के अन्य शिवालयों में बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन और जलाभिषेक के लिए पहुंचे। रतलाम में मादक पदार्थों की तस्करी रोकने के लिए अधिकारियों की बैठक में नशीले पदार्थों के खिलाफ लगातार सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। बैठक में संयुक्त टीमों से नियमित जांच, सड़क पर गश्त बढ़ाने और स्कूल कॉलेज तथा छात्रावासों के आसपास विशेष निगरानी रखने पर जोर दिया गया। वहीं शाजापुर महिला थाने में नशे से दूरी है जरूरी 2.0 अभियान के समापन पर महिलाओं को नशे के दुष्प्रभाव और मानव तस्करी से बचाव की जानकारी दी गई। इस बीच बॉलीवुड के प्रसिद्ध अभिनेता पंकज त्रिपाठी ने भी सोशल मीडिया संदेश में लोगों से नशे से दूर रहने और स्वस्थ सुरक्षित जीवन अपनाने की अपील की।
3: मध्य प्रदेश पुलिस का अभियान नशे से दूरी है जरूरी 2.0 अभी चलाया जा रहा है, जन जागरूकता अभियान है, तो मैं उसका समर्थन करता हूं और युवाओं से ये अपील करना चाहता हूं कि नशे से जितना दूरी हो बना के रखें। नशे की आदत आपके जीवन को, आपके रिश्तों को, आपके परिवार को सब कुछ नष्ट करके रख देती है और जो जीवन कहीं और जा सकता था, सुंदर हो सकता था, खुशहाल हो सकता था, समाज के परिवार के काम आ सकता था, वो तबाह हो जाता। दोस्तों, नशे से दूरी है जरूरी, ख्याल रखना, ये सिर्फ आपके लिए है, आपके जीवन के लिए है, आपके परिवार के लिए है। थैंक यू।
1: भोपाल में आज से एसी इलेक्ट्रिक बसों का नियमित संचालन शुरू हो गया है। पहले चरण में 10 ई बसें शहर के 3 प्रमुख मार्गों पर चलाई जा रही हैं। इन बसों का किराया 7 से 40 रुपए रखा गया है, जो सामान्य सिटी बसों के बराबर है। नई बसों में दिव्यांगजनों के लिए विशेष सुविधा, सीसीटीवी कैमरे, जीपीएस और पैनिक बटन भी लगाए गए हैं। नगर निगम के अनुसार अभी 30 ई बसें शहर में पहुंच चुकी हैं और 15 अगस्त को औपचारिक लोकार्पण के बाद इनका संचालन और बढ़ाया जाएगा। अब रुख करते हैं मौसम का। प्रदेश में मानसून लगातार सक्रिय है। मौसम विभाग ने आज बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा, नर्मदापुरम और रायसेन में अति भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। वहीं देवास, सीहोर, हरदा, बैतूल, पांडुना, सागर, नरसिंहपुर, दमोह, जबलपुर और छतरपुर में भारी बारिश की संभावना है। विभाग के अनुसार प्रदेश के कई अन्य जिलों में भी गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। डिंडौरी के करंजिया स्थित कबीर चबूतरा में पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने आज करमंडल, सिवनी और चकरार नदियों के उद्गम स्थलों पर पूजन कर एक पेड़ मां के नाम के तहत पौधरोपण किया। नीमच जिले के ग्राम जाट में आज प्रशासन द्वारा कार्रवाई करते हुए शासकीय भूमि से अवैध अतिक्रमण को हटाया गया। शहडोल के ग्रामीण इलाकों में मिशन शक्ति योजना के अंतर्गत बाल विवाह रोकने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। आगरमालवा जिले के नलखेड़ा में सिंहस्थ 2028 की तैयारियों को लेकर प्रशासनिक अधिकारियों ने आज बोरखेड़ी, सलोकी और लालूखेड़ी के मध्य प्रस्तावित होल्डिंग एरिया की भूमि का निरीक्षण किया। शिवपुरी जिले में विभागीय कार्यों में लापरवाही बरतने पर जिला शिक्षा अधिकारी ने 2 प्राथमिक

लोगों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। राजगढ़ जिले के कचनारिया सुल्तानी स्थित पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय में कक्षा छठवीं में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 31 जुलाई यानी कल तक तय की गई है। राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा के भोपाल में आयोजित होने वाले 6 माह के निःशुल्क आवासीय प्रशिक्षण के लिए छिंदवाड़ा के पिछड़ा वर्ग के 100 एवं अल्पसंख्यक वर्ग के 20 पात्र छात्रों को आवेदन करने के लिए 10 अगस्त तक की तिथि निर्धारित की गई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्यसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा शुरू। ग्वालियर में देश का पहला टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन स्थापित करने के लिए आज एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने केला उत्पादक किसानों को 107 करोड़ 72 लाख रुपए की राहत राशि जारी की और दतिया विधानसभा उपचुनाव में शांतिपूर्ण मतदान हुआ। शाम 6 बजे तक हुआ 71.44% मतदान। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए सुबह 7:10 पर। नमस्कार।

ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। आप हमारा प्रसारण मीडियम वेव 462.96 मीटर अर्थात 648 किलोहर्ट्ज़ पर और मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज ऑन AIR पर सुन रहे हैं। अब आपको सुनवा रहे हैं किसान भाइयों के लिए कार्यक्रम खेती गृहस्थी।

खेती गृहस्थी कार्यक्रम सुनने वाला सगला किसान भाई बहनों के स्मिता की राम राम। भाई बहनों, और पहला की बखत में और अभी की बखत में घणो अंतर आई गयो है। पहला की बखत में किसान अपना अनुभव और परंपरागत तरीका से खेती करता था, पर आज की बखत में डिजिटल तकनीक है। अब इका उपयोग भी हमारी खेती में भी होने मंडी गयो है। अब एक स्मार्टफोन और एक मोबाइल ऐप की मदद से खेती नरी आसान और आधुनिक लाभप्रद हुई गई है। आज को किसान मोबाइल ऐप की मदद से मौसम की जानकारी ली सके है। उके मौसम जो भी बदले है उका पहला सगली जानकारी मिली जाए, जिससे वो अपना अपनी फसल के और अपना आप के सुरक्षित करी सके। मंडी भाव की जानकारी किसान के मिले, जिससे कि वो अपना सही भाव में अपनो माल जो बेची सके है। साथ ही फसल में कदी रोग है तो उकी पहचान करनो, कौन सो रोग है, कौन सी उर्वरक नाखनो है, कौन सी दवाई छिटकनी है, यो सगलो मोबाइल पे उपलब्ध है। भाई बहनों, सिंचाई की सलाह और जानकारी जो है वह इतनी अच्छी तरह से हमारे एपना से मिली जाए, जिससे कि किसान के फसल में जो भी लाभ है और कोई भी लाभ प्राप्त करने में आसानी रहे और हानि से भी वे बचे है। नरी कृषि ऐप किसान ना के सरकारी योजना ना के बारे में बताए, फसल प्रबंधन कैसे करना है यो बताए, साथ ही विशेषज्ञ ना से जो बातचीत होए उनकी सलाह भी कई ऐपना पे उपलब्ध है। मोबाइल का उपयोग से किसान समय की बचत करी सके है, मेहनत में कमी हुई जाए, साथ ही लागत कम लगे और उनका साथ ही उत्पादन आय जो है वह बढ़ती जावे। इका सारू हूँ तो योजकू कि ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाई बहनों ने डिजिटल तकनीक अपनानी चाहिए, जिससे कि उनकी और भी लाभ बढ़ तो जावे और उनकी मेहनत कम हो।

0: जावे। मैं बहन और बात तो पढ़ और भी नहीं करांगा, अभी सुनाए ये संदेश।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बढ़ा सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
3: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
3: बहनों, हमारा कार्यक्रम में हम खास मनोरंजन को ख्याल रखा और वो भी लोकगीत का साथ है। अब जब हमारे मनोरंजन करनोज है तो आज अपन मनोरंजन करांगा। सावन को महीनों भी आई गयो है तो त्योहार ना को भी ख्याल अपन रखा जा। तो अपन सुना यो सावन गीत जी के गायो है तृप्ति नागर ने।

0: हमने तृप्ति नागर को गायो यो लोकगीत सुनियो। अब अपन आगे अपना कार्यक्रम के बढ़ावा जी का पहला सुना ये संदेश।
1: भाई बहन और अभी बखत चली रही है बारिश का मौसम की और पानी पड़ी रही भी है, कभी गर्मी पड़े तो कभी पानी पड़े, तो बस मौसम जो है कि वो बदल तो रहे।
0: भाई बहन और अपन संदेश भी सुनांगा, अपना कार्यक्रम में बातचीत भी करांगा, लेकिन अभी अपन सुना एक भेंट वार्ता जो कि अपना मौसम से संबंधित है। इना मौसम में जब वर्षा की ऋतु चली रही है तो नवजात पशुना जो है उनकी देखभाल करना भी एक बहुत बड़ी हमारी जिम्मेदारी हुई जाए, तो उनकी देखभाल कैसे करनी, उनको बचाव कैसे करना, यह जाना डॉक्टर संदीप नानावटी जी से जो कि पशु चिकित्सा महाविद्यालय महू से हैं।
1: और इना बखत पेज हमारा यहाँ नया जो बच्चा बछड़ी ना है उनको होना को बखत भी आई जाए, उनको जन्म भी हुए है, तो उनकी देखभाल करनी हमारे घनी बहुत जरूरी रहे है। और उका में हमारे नरी सारी ऐसी बात ना रहे जो कि हमारे नी पतो रहे, और कभी कभी हम उका में कहीं चूक हुई जाए तो हमारे हानि भी उठानी पड़े है। तो उका सारोज आज अपन जानकारी लेवा, तो अपन आज बात कर रहा है डॉक्टर संदीप नानावटी जी से जो कि पशु चिकित्सा महाविद्यालय महू में पदस्थ है, और वी आज हमारे बतावेगा कि कैसे हमारे नवजात पशुना की देखभाल करनी है। सबसे पहला तो हूँ डॉक्टर साहब तमारो हमारा कार्यक्रम में करूँ स्वागत, राम राम
2: जी। राम राम जी।
1: तो अब डॉक्टर साहब योज बताऊ कि भाई नवजात पशुना जो है छोटा छोटा बच्चा बछड़ी ना जो रहे उनकी देखभाल इना मौसम में कैसे करनी चाहिए।
2: जी जी, सबसे पहली बात तो ये है कि बछड़ों की देखभाल जरूरी क्यों है करना, इसलिए जरूरी है कि आज का जो बछड़ा या आज का जो वत्स है वो कल की होने वाली गाय भैंस या बैल है, आज वो नहीं होगा तो कल भविष्य की गाय भैंस कहाँ से लाएंगे। जन्म से ही बछड़े और बछड़ी का सही देखभाल होगा तो भविष्य में वो अच्छी गाय या अच्छी भैंस या अच्छा बैल बन सकता है। और अगर बचपन में बछड़े स्वस्थ होते हैं तो उनका वजन लगातार तेजी से बढ़ता है और सही समय पे वो गाय भैंस बन जाते हैं। हाँ। तो पशुपालक भाइयों आपको ये ध्यान रखना है कि जितना महत्वपूर्ण वयस्क पशु जो हमारे दूध देने वाले गाय भैंस है उनका हम ध्यान रखते हैं, उससे कहीं ज्यादा ध्यान हमको जो हमारे बच्चे पैदा होते हैं जो हमारे डेयरी फार्म का भविष्य है उनका भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अब आपने जैसे पूछा है कि

0: कैसे
1: आप कैसी सावधानी
0: हाँ,
1: कैसे करें अपन इसकी हाँ, तो ये नवजात जो बछड़े बछड़ी होते हैं उनका जो लालन पालन है वो जन्म के बाद नहीं होता
0: हाँ,
1: जो पशु गर्भ में रहता है तभी चालू हो जाता है। मतलब हमारे पशुपालक की जिम्मेदारी तब हो जाती है जब पशु गर्भस्थ शिशु रहता है उसके माँ के पेट में पलता है, तो अंतिम तीन माहों में ही वो नवजात पशुओं की देखभाल शुरू होती है। उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको माँ की देखभाल करना पड़ेगी गर्भावस्था के अंतिम तीन माहों में।
0: हाँ,
1: हमारे
0: हाँ,
1: किसान भाई
0: हाँ,
1: जानते हैं कि हमारे जो गाय है वो 9 महीने 9 दिन में जन्मती है और हमारी जो भैंस है वो 10 महीने और 10 दिन में प्रसवित होती है, इतना समय लगता है।
0: हाँ,
1: तो जैसे गाय की बात करें तो अंतिम 2 महीनों में, मतलब जब उसको 7वां महीना शुरू हो जाए तब
0: हाँ,
1: हमको उसकी देखभाल शुरू करना चाहिए, ताकि उसकी देखभाल करेंगे तो अंदर जो बच्चा पल रहा है उसकी भी देखभाल हो जाएगी। तो अब पशुपालक भाइयों प्रश्न उठता कि क्या करें, करना
0: हाँ,
1: ये है कि हम जो गर्भस्थ गाय है उसको लगातार हम लोग अच्छा खाना पिलाएं, खाना खिलाएं, पानी
0: हाँ,
1: पिलाएं, और चूंकि बारिश का समय चल रहा है तो यही समय है प्रसूति का, तो इसमें
0: हाँ,
1: कई गायें आपकी ग्यावन होगी, कई भैंस ग्यावन होगी, कोई जनने वाली होगी, तो ये
0: हाँ,
1: मौका है उनको सावधानी रखने का। तो क्या
0: हाँ,
1: करना है, उचित पोषण आहार देना है उसको, उसको जंगल में चरने नहीं भेजना है, पेड़ कहीं फिसल जाए तो बच्चा उलट सकता है, कभी नदी में पोखर में उतर जाते हैं चरते चरते तो समस्या आ जाती है उसको। उसका जो फर्श होता है वो चिकना नहीं होना चाहिए, नहीं तो उसका पैर फिसल जाएगा। उसको किसी अलग कमरे में बांध के उसकी सारभार है वो अलग तरह से की जाए, दूसरे पशुओं के साथ नहीं की जाए, क्योंकि वो हमारे डेयरी फार्म का भविष्य है, वो हमारे दूध का निर्धारण करने वाली है, भावी पशु है हमारी। तो आपको अच्छे से ध्यान देना है, बस ये ध्यान देना है कि 2 से 3 किलो पशु आहार 2 महीने पहले ही निरंतर उसको चालू हो जाए, ताकि उस माँ के पास 3 वजन होते हैं, एक तो उसका माँ के पेट में बच्चा पल रहा है, दूसरा शारीरिक देखभाल उसकी खुद की करना है, और कभी कभी अंतिम 2 महीनों में दूध भी देने लग देती है, मतलब आखिरी समय तक दूध देती है, तो दूध भी का भी एक भार रहता है। तो आपको पोषण आहार बहुत करना चाहिए। तो ये तो हुई ज्ञापन गाय भैंस की देखभाल, जो मतलब बच्चा अंदर पल रहा है उसकी भी देखभाल। अब जैसे ही बच्चा होता है तो पशुपालक भाइयों क्या होता है कि जन्म के तुरंत बाद जैसे बच्चा जमीन पर आता है तो वो अपनी माँ के साथ एक जेड़ से जुड़ा रहता है, जैसे अपन मालवी में जड़ बोलते हैं।
0: हाँ, हाँ,
1: वो जड़ से जो जन्म के तुरंत बाद बच्चे के ऊपर सब जड़ रहती है,
0: मतलब
1: तो वो
0: हाँ,
1: उसको काट दें आप, है ना, उसको साफ ब्लेड से पशु के नवजात पशु के शरीर से 2 या 3 इंच दूर पे उसको साफ कैंची से काट दे, लेकिन काटने के पहले एक छोटा सा धागा बांधना मत भूले उसके वजह, नहीं तो क्या होगा जैसे आप काटोगे तो फवारा निकलेगा खून का।
0: अच्छा,
1: उस खून को रोकने के लिए आप नाभि के शुरुआती जड़ से जहां से नाभि निकल रही है वहां पे धागे से एक गठान लगा दें, उसको टाइट बांध दें, और फिर साफ कैंची से या साफ ब्लेड से उसको कट कर दें, और काटने के बाद टिंचर आयोडीन मिल जाता है अपने कहीं भी मिल जाता है, वो टिंचर आयोडीन का एक फोहा लगा दें, कपास लगा दे भिगा के, और 10 मिनट के बाद जो धागा आपने बांधा है उसको काटना न भूलें। तो पहली बात तो किसान भाइयों याद रखिए, जैसे ही बच्चा अपने आप प्रसवित हुआ नवजात शिशु ने जन्म लिया तो सबसे पहला काम नाभि को काटना है, उसकी नाल को काटना है स्वच्छ तरीके से। दूसरा, कई बार कोई बच्चा सांस लेने में उसको तकलीफ आ रही है तो उसकी छाती को हल्के हल्के मले, और समझो उसकी सांस बहुत ही ज्यादा तेज चल रही है और ऐसा लग रहा है कि अपने हाथ से गया, तो साथी की सहायता से बच्चे की पिछले टांगे पकड़ के उसको उल्टा लटका दें और उसको झूला झूला दें।
0: अच्छा।
1: अगर ऐसा आप करेंगे ना तो नाक के अंदर जो बलगम जमा है वो धीरे धीरे नीचे आ जाएगा सब, और
0: अच्छा।
1: वो जो जाती हुई जान है, जाती हुई बच्चा है, वो लौट के वापस आ जाएगा। ये इमरजेंसी की बात है। दूसरी बात, एक बात और करना है कि अब आपको एक साफ कपड़े से नवजात पशु के शरीर को साफ करना है, उसके मुंह में उंगली डालना है ताकि जो चिकनाई है वो निकल जाए, उसके नाक में घास का तिनका तोड़ के डालना है तो उसको जोर से छींक आएगी, उसका बलगम भी साफ निकल जाएगा। ये तो अपनी देसी पद्धति हुई।
0: हाँ।
1: तो आपको नाक और मुंह के जो श्लेष्मा है, चिकनाई है, उसको साफ करना है, जैसे आप उंगली डालेंगे वो चूसने लगेगा, उसको दूध की आवश्यकता है।
0: हाँ।
1: तो आपको सबसे पहले तो नाक और मुंह को साफ करना है, फिर एक साफ कपड़े से उसके पशु के शरीर को, नवजात के शरीर को स्वच्छ करना है। आमतौर पे ये काम माता कर लेती है, गाय कर लेती है, लेकिन कई बार होता है पहली

0: बार प्रसवित माता होती है वो घबराई हुई होती है, वो ये काम नहीं कर पाती, घबरा के दूर चली जाती है अपने बच्चे से। ऐसे में हम पशुपालक और मालिक की जिम्मेदारी होती है कि वो नवजात पशु के शरीर को साफ करके उसको खड़ा करने में मदद करे। अब खड़ा करने में मदद करना क्यों पड़ता है, क्योंकि चारों पैरों पे उसके चिकनाई श्लेष्मा होती है, मतलब एक कवरिंग होता है, तो उसको नाखूनों से खुरदुरा करना पड़ता है, जो खुर रहते हैं बच्चे के उसको नाखूनों से खुरदुरा करो ताकि वो फिसले नहीं जमीन पे, नहीं तो जमीन तो फिसल जाएगा, वो बिल्कुल चिकनापन रहेगा, तो सारा चिकनापन उसका हटाना पड़ेगा। पशु को शरीर जमीन पे खड़ा करिए और धीरे धीरे किसी भी सूरत में जन्म के तुरंत एक घंटे के भीतर उसको दूध पान करने के लिए प्रवृत्त करें, उसको किसी भी तरह से थनों के पास छोड़ दें। हालांकि पशु बच्चा भूखा होगा, वो टटोलते टटोलते धीरे धीरे माँ के थनों के पास आ ही जाएगा, माँ के आंचल से दूध पीना शुरू कर देगा, क्योंकि ये उसकी जरूरत है। तो आप उसको बच्चे को माता के सामने रखें, बच्चे माँ बच्चे को चाटेगी, चाटना एक निकटता का प्रतीक है, बच्चे का उसका जो संबंध है वो और प्रगाढ़ होगा, वो अपने बच्चे को पहचानेगी, जबान से चाट चाट के उसके शरीर को साफ करेगी, उसका ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाएगा, त्वचा साफ हो जाएगी, खून दौड़ने लगेगा और माँ और बच्चे का बंधन इसमें और स्ट्रांग होगा और पनपेगा। तो आमतौर पर ये काम माँ कर लेती है, रगड़ के सफाई कर देती है। जन्म के एक से दो घंटे के भीतर नवजात पशु को चीका जरूर पिलाना है, माँ का पहला दूध, जिसको खीस भी बोलते हैं कई जगह, पर अपने मालवे और निमाड़ में तो चीका ही चलता है,
1: चीका बोलते
0: हैं। तो चीका गुणों की खान है, मतलब उसमें इतने सारे गुण है, तो इसमें आप किसान भाई हमारे मालवा के पशुपालक क्या करते हैं, निमाड़ के भी करते हैं कि वो राहत देखते हैं कि इसकी जड़ गिर जाए, पशु स्वच्छ हो जाए, उसके बाद ही दिलाएंगे, उसके बाद ही दूध पिलाएंगे। ये बहुत गलत बात है, आप उसकी राह मत देखिए, जड़ तो अपने टाइम पे गिर जाएगी, सुबह जनी है तो शाम तक गिरेगी, शाम को जनी है तो सुबह गिर जाएगी, 12 घंटे लगते हैं जड़ गिरने में।
1: अच्छा।
0: लेकिन आप राह मत देखिए, आप तुरंत एक घंटे के भीतर किसी भी सूरत में माँ का पहला दूध यानी चीका, जो गुणों की खान है, वो नवजात पशुओं को खिलाना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसमें प्रतिरोधक क्षमता विकास करने वाले पदार्थ होते हैं।
1: अच्छा।
0: इससे बच्चे को खतरनाक बीमारियों से लड़ने की ताकत मिलती है। तो ये आप देखिए, क्योंकि ये जो चीका है, मैंने बताया गुणों की खान है, गुणों की खान इसलिए कि ये कब्जियत साफ करता है, इसमें नॉर्मल दूध से प्रोटीन 4-5 गुना ज्यादा रहता है, एनर्जी ऊर्जा रहती है, ये इसमें ऐसी चीजें होती है जिसे इम्यूनोग्लोबुलिन बोलते हैं, हमने कोरोना में बहुत सुना था इम्यूनोग्लोबुलिन, प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाले, तो उससे बीमारी के संक्रमण से नवजात बच्चे को शक्ति मिलती है, नहीं तो इसको रोग घर कर लेंगे अगर आप नहीं पिलाओगे। तो खासतौर से जो बंधु भैंसे पालते हैं उनमें तो आपको ध्यान रखना है कि पाड़े पाड़ी को भी किसी भी सूरत में एक घंटे के भीतर चीका मिल ही जाना चाहिए, नहीं तो आप समझो कि वो पशु आपके हाथ से चला जाएगा, नवजात पशु। तो अगर आप मेरी बात सुन रहे हैं, रेडियो पे मेरी आवाज सुन रहे हैं, तो जो भैंस पालक है ये समझ ले कि बच्चे को प्रसवित होने के तुरंत बाद एक घंटे के भीतर उसको दूध मिल जाना चाहिए, हमारे पशुपालक भाई आजकल जानते हैं ये सब। उसके बाद कितना दूध पिलाना है ये बहुत जरूरी है, क्योंकि शुरुआत के 5 दिन तो चीका रहेगा, दूध तो रहेगा नहीं, दूध गाढ़ा रहता है, तो जब दूध को अपन गर्म करते हैं तो वो अगर फट जाए तो मतलब चीका है, और जिस दिन नहीं फटे 5वें दिन इसका मतलब वो दूध में तब्दील हो गया है। तो शुरुआत के 5 दिन ये जो दूध मिल रहा है ये सिर्फ बच्चे के लिए है, इसको बच्चे को पूरा नहीं पिलाना है, शरीर के वजन का 1/10 हिस्सा, यानी समझ लीजिए जैसे गाय का बच्चा है उसका वजन 20-25 किलो होता है, भैंस का पाड़ा पाड़ी है उसको वजन 35-40 किलो देता है उसका, तो आपको उसको 10% उसके वजन का, मतलब जैसे 20 किलो है तो 2 किलो पिलाना है, 35 किलो है तो 3.5 किलो पिलाना है, जैसे 3.5 किलो या 2 किलो पिलाएंगे ये एक साथ नहीं पिलाएंगे, आधा सुबह आधा शाम, तो 1 किलो सुबह 1 किलो शाम को, हाँ ऐसा सुबह शाम पिलाएंगे, तो उसको संतुलित मात्रा में चीका प्राप्त होगा। अगर उसने अपने मन से ज्यादा ढा लिया, ज्यादा पी लिया, तो उसको अतिसार या दस्त हो जाएंगे। हमारे पशुपालक भाई कहते हैं कि जैसा चीका पी रहा है वैसा का वैसे चीका खेर रहा है, दस्त लग रहा है उसको, वो अपच हो जाता है, अपचन हो जाता है, वो पचा नहीं पाता है। तो ऐसा कतई मत कीजिए, आप उसको उसके वजन के मुताबिक ही खिलाइए। हमारे पशुपालक भाई जो बहुत समझदार है वो क्या करते हैं, तीन थन अपने लिए रख लेते हैं और एक थन बच्चे को देते हैं, उनका अंदाज रहता है।

0: जैसे 4 लीटर की भैंस है तो 3 लीटर तो चीका हमने ले लिया और
1: हाँ,
0: एक वाला 1 लीटर चीका बच्चे को
1: बच्चे
0: दे दिया,
1: को
0: तो ये
1: दे दिया।
0: संतुलित आहार है। तो वैज्ञानिक रीति नीतियों से पशुपालन करते हैं उनको ये जानकारी है,
1: जी
0: ये ध्यान रखना है। तो पशुपालक भाइयों की पहला दूध पीने के बाद बच्चा लगभग 2 घंटे के अंदर मल त्याग कर दे, उसका जो पहला गोबर है वो निकल जाए, ये बहुत जरूरी है। अगर कई बार क्या होता है कि बच्चों की मल का स्थान ही नहीं बनता, भगवान की कुदरती स्तर पे होता है, तो आपको तुरंत डॉक्टर की मदद लेना पड़ती है और डॉक्टर उसको कृत्रिम रूप से छेद करके बच्चों का जो मल द्वार बनाता है तब जाके कई बार बच्चे में हो जाता है ये, तो ये भी आपको एक बीमारी है, ये भी पशुपालक भाई ध्यान रखना है। अब जैसे सर्दी की बारिश की बात है, बारिश में लगातार अभी तो चालू नहीं हुई है जैसे बारिश अपने, लेकिन जब बारिश लगातार चालू हो जाए और प्रसव की संख्या बढ़ जाए तो एक साथ एक गाय, दो गाय, तीन गाय, पशुपालक परेशान हो जाता है कि रोज एक एक डिलीवरी होती है क्योंकि सीजन चल रहा है। तो ऐसे में नवजात पशु को बारिश से, ठंड से बचाना बहुत जरूरी है। कई बार तेज बारिश होती है तो पूरा बाड़ा ठंडा हो जाता है अपना, तो उसमें आपको पशु को सीने पे टाट बांधना जरूरी है ताकि उसके सीने में गर्मी रहे। आप थोड़ा सा उसमें अलाव जला दें या आग जला दें तो उसका धुआं रहेगा ना, थोड़ा गर्मी रहेगी, गर्मी भी आप दे सकते हैं। एक ऐसा बड़ा बल्ब 6 वाट का बल्ब लगा दें उसके पास, तो उसके आसपास गर्मी रहे लगातार। तो आपको उसको ध्यान रखना है कि गीला नहीं होना देना, शरीर को सूखे कपड़े या टाट से पोंछ के सुखा दो उसको, ये ध्यान आपको रखना बहुत जरूरी है। अब क्या होता है कि कुछ पशुपालक भाई क्या करते हैं कि केड़ी रहती या पाड़ी रहती तो उसको तो ज्यादा दूध इसलिए पिला देते हैं कि ये कल ही बड़ी हो जाए और परसों ही प्रसूति कर दे, मतलब उनकी इतनी जल्दी रहती है। जितना ज्यादा दूध पिलाएंगे उतनी जल्दी बड़ी हो जाएगी और फिर अपन हीट पे आ जाएगी, गर्मी पे आ जाएगी, अपन क्या बंद करा देंगे। इसी जल्दबाजी न करें, संतुलित आहार दें। उसके उल्टा जो नर पशु रहता है उसको दूध ही नहीं पिलाते हैं, उसको बस पाड़े पाड़ी को छोड़ देते हैं और भैंस के ऊपर 4-5 मुंह मारता है वो और उसका दूध जो है पूरा का पूरा निकाल लेते हैं। तो नर पशु जब तक ही जिंदा रह पाता है जब तक उसको दूध मिलता है, क्योंकि उसका काम सिर्फ पाना छुड़ाने का है। तो ये पशुपालक भाई गलती करते हैं, ये एक तरह से जो हमारे नर पशु हैं, हमारे पाड़े हैं, उनके प्रति सद्भाव रखें और उनको उतना तो कम से कम दूध पिलाएं कि वो जिंदा रह सके। वो भी हमारे पशु संख्या का एक हिस्सा है, कल अगर वो पाड़े बनेंगे तो वो प्रजनन के काम आएंगे। तो ये थोड़ा सा पशुपालक भाई ध्यान रखें, क्योंकि हमारे यहाँ कहावत हो गई है कि नर पाड़े मरने के लिए पैदा होते हैं। तो अगर किसान भाई मेरी बात सुन रहे हैं तो आप समझिए कि जो हमको पैसा देती है, भैंस दूध देती है, वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट तो है, लेकिन साथ में उसका जो दूसरा हिस्सा है नर पशु है वो भी इम्पोर्टेंट है। तो आपको ये ध्यान रखना है। बछड़े बछड़ी को खिलाने के लिए जो आप इस्तेमाल करते हैं बर्तन वो बहुत साफ होना चाहिए, क्योंकि इसमें संक्रमण बहुत तेजी से फैलता है। इनका पाचन शुरुआत में बहुत कमजोर होता है क्योंकि इतना अभ्यस्त नहीं होते हैं, ये माँ के दूध के अभ्यस्त रहते हैं। फिर अपन ने बाहर का खाना जब देते हैं शिशु को दूसरा आहार तो उसको पचा नहीं पाते, तो संक्रमण हो जाता है, तो छेरा लग जाता है, दस्त लग जाता है, अतिसार लगने से निर्जलीकरण हो जाता है, डिहाइड्रेशन हो जाता है, तो उससे उनकी डेथ हो सकती है। तो आपको वस्तुओं को साफ रखना है, जो बर्तन है उनके रहने का स्थान है ये सब साफ रखें। अब तो ये नवजात पशुओं की देखभाल है, इसमें आपको खास तौर से ये भी समझना पड़ेगा कि इसको अगर पाड़िया पाड़ी है तो उसको 6 से 7 दिन तक कृमिनाशक औषधि का पान कराना पड़ेगा, उसको पेट के कीड़ों की दवाई देना पड़ेगी। पेट के कीड़ों की दवाई इसलिए देना पड़ेगी कि माँ के पेट में जो कीड़े रहते हैं गर्भावस्था के दौरान वो बच्चे के पेट में अपने आप आ जाते हैं, खाने के साथ में पेट में से कीड़े भी ट्रांसफर हो जाते हैं। और 1 महीने का 1 दिन का बच्चा जब बच्चा जन्म लेता है तुरंत बाद, तो 1 दिन के बच्चे में वो कीड़े इतने बड़े बड़े हो जाते हैं कि वो जिंदा नहीं रहने देते उसको। इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है, आज के जो टॉक है, आज की जो वार्ता है उसमें आप नोट कर लें किसान भाइयों, मालवा और निमाड़ा के पशुपालक भाई जो सुन रहे हैं इसको, कि गाभन अवस्था में गाय और भैंसों को पेट के कीड़ों की दवा जरूर दीजिए, कृमियों की दवा दीजिए, कृमिनाशक औषधि का पान कराइए, क्योंकि माँ के पेट से तो कीड़े चले जाएंगे तो वो तो बढ़िया रहेगा ही, दूध भी बढ़ेगा और बच्चे के पेट में भी कीड़े साफ हो जाएंगे। नहीं तो अगर आपने नहीं दिया अंतिम 2 महीनों में कीड़े की दवा, तो जो बच्चा पैदा होगा वो अपने पेट में कीड़े लेके पैदा होगा। तो मुझे लगता है ये बात हमारे पशुपालक भाइयों को

0: में आ गई होगी कि अंतिम 3 महीने में आपको उसको खाना पीना तो देना ही, अच्छा
1: हाँ।
0: उसको साफ सुथरे स्थान पे तो बांधना ही है गर्भवती माता को, कृमिनाशक औषधि का पान भी कराना है, थोड़ा सा कैल्शियम भी पिलाना है 10 दिन तक लगातार 100 ml एक कप के बराबर पीने की दवा आती है, उससे उसका जो बच्चा होगा उसके बोन्स स्ट्रांग होंगे, उसकी हड्डियां मजबूत हो जाएंगी, उसका दूध भी बढ़ेगा, आखिरी दिनों में कैल्शियम मिलेगा। जैसे अपने इंसानों में आयरन वगैरह खिलाते हैं ना, जैसे जानवरों में जापन गाय और भैंसों में कैल्शियम पिलाना और मिनरल मिक्सचर लवण मिश्रण देना बहुत जरूरी है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगी। तो इस तरह से अगर आप केयर एंड मैनेजमेंट सावधानी रखें नवजात पशुओं की देखभाल की, तो कोई कारण नहीं कि हम इस वाले क्षेत्र में नवजात पशुओं को बचा लेंगे और हमारे भविष्य को सुधार सकते हैं।
1: जी डॉक्टर संदीप नानावटी जी, तुमने घनी अच्छी जानकारी ऐसी दी है कि हमारा जो नवजात पशु ना है उनकी देखरेख कैसे करनी और कैसे उनके कोई भी बीमारी से या उनके उनकी जान के जो खतरों रेवे उका से बचानो, तुम्हारो बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम।
0: राम राम। नमस्कार।
1: नमस्कार। बेबेनोर हमने या भेंट वार्ता सुनी जी का में हमारे डॉक्टर नानावटी पशु चिकित्सा महाविद्यालय महू से जानकारी दी रहा था, विषय थो वर्षा ऋतु में नवजात पशुना की देखभाल अण बचाओ। अब इका साथे ज अपना लोकगीत को वक्त हुई रियो है, तमारे इंतजार होएगो लोकगीत को, तो सुनो इना संदेश का बादे सीमा मिश्रा को गायो यो लोकगीत।
2: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है, ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
3: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
2: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।

हमने सीमा मिश्रा को गायो यो लोकगीत सुनियो। अब तुम्हारे इंतजार होएगो कृषि उपज मंडी समिति संयोगितगंज प्रांगण से आया हुआ अनाज का भावना को। तो चलो जानी ला आज का भाव कहीं रिया। आज गेहूं की आवक रही 818 क्विंटल और भाव रियो 2525 रुपया से 3124 रुपया प्रति क्विंटल। मटर की आवक रही 6 क्विंटल, भाव रियो 2650 रुपया से 3410 रुपया प्रति क्विंटल। सोयाबीन की आवक रही 807 क्विंटल और भाव रियो 2250 रुपया से 7165 रुपया प्रति क्विंटल। डॉलर चना की आवक रही 1313 क्विंटल और भाव रियो 5600 रुपया से 9300 रुपया प्रति क्विंटल। अमचूर की आवक रही 140 क्विंटल और भाव रियो 4870 रुपया से 4890 रुपया प्रति क्विंटल। चना की आवक रही 216 क्विंटल और भाव रियो 5390 रुपया से 7355 रुपया प्रति क्विंटल। ऐसे ज मूंग की आवक रही 16 क्विंटल और भाव रियो 4850 रुपया से 7050 रुपया प्रति क्विंटल।

0: ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से संसद समीक्षा। कृपया इस महत्वपूर्ण प्रसारण की प्रतीक्षा कीजिए।
1: ये आकाशवाणी है। अब आप मुकेश कुमार से संसद में आज हुई कार्यवाही की समीक्षा सुनिए। पहले लोकसभा, लेखक हैं पीटीआई भाषा के दीपक रंजन। लोकसभा ने आज राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक पारित कर दिया। इसके प्रावधानों के अंतर्गत राष्ट्रगीत वंदे मातरम के गायन के दौरान किसी भी तरह का व्यवधान या उसका अपमान अपराध माना जाएगा और इसके लिए 3 वर्ष तक की सजा हो सकती है। राष्ट्रगान जन गण मन के साथ ही उसी सम्मान के साथ राष्ट्रगीत वंदे मातरम के गायन को अनिवार्य बनाने वाले राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 को डीएमके समेत विपक्षी दलों के सदस्यों के हंगामे के बीच संक्षिप्त चर्चा के बाद ध्वनिमत से मंजूरी प्रदान कर दी गई। इससे पहले उच्च सदन ने कल विधेयक को मंजूरी प्रदान की थी। प्रदर्शनकारी छात्रों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई और राम मंदिर में चढ़ावा चोरी जैसे मुद्दों को लेकर विपक्ष के हंगामे के बीच विधेयक पर सदन में हुई संक्षिप्त चर्चा का जवाब देते हुए गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि इस विधेयक के पारित होने के बाद राष्ट्रगीत को वही सम्मान मिलेगा जो राष्ट्रगान को मिलता है। उन्होंने कहा कि वंदे मातरम एक भारत श्रेष्ठ भारत और विकसित भारत के संकल्प का प्रतीक है। उन्होंने डीएमके सांसदों की चिंताओं को खारिज करते हुए कहा कि यह विधेयक राष्ट्र गौरव का विधेयक है जो किसी राज्य किसी व्यक्ति और किसी विचारधारा के विरुद्ध नहीं है। इससे पहले डीएमके सांसदों ने सदन में विधेयक पारित किए जाने का विरोध किया। विधेयक पर निचले सदन में हुई संक्षिप्त चर्चा में भाग लेते हुए डीएमके सांसद के कणिमोई ने कड़ा विरोध दर्ज कराया और आरोप लगाया कि सरकार इसके साथ हिंदुत्व के एजेंडे को राष्ट्रीयता के रूप में पेश कर रही है। उन्होंने कहा कि देश के नागरिकों के विरुद्ध है, इस तरह राष्ट्रवाद नहीं थोपा जा सकता। कणिमोई ने विधेयक को संघीय ढांचे के विरुद्ध बताते हुए ये भी कहा कि विभिन्न मुद्दों पर सदन में हंगामे के बीच विधेयक को पारित नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने इसे राज्यों के हितों की और धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ बताया। डीएमके सदस्य ने कहा कि तमिलनाडु और अन्य राज्यों में इसका विरोध हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी के संबित पात्रा ने कहा कि साधारण विधेयक नहीं है। उन्होंने विपक्ष को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि जो राष्ट्र को नहीं समझते वे यहां शोर मचा रहे हैं। श्री पात्रा ने कहा कि डॉ राजेंद्र प्रसाद ने 1950 में संविधान सभा में यह आश्वासन दिया था कि जन गण मन और वंदे मातरम दोनों एक ही रूप से गाए जाएंगे और दोनों को एक ही सम्मान मिलेगा। उन्होंने आरोप लगाया कि 76 वर्ष में कांग्रेस की सरकारों ने एक परिवार को ऊपर रखा, राष्ट्रगीत वंदे मातरम को नहीं। डीएमके के ए राजा ने विधेयक पर अपना संशोधन प्रस्तुत करते हुए कहा कि आज देश और संसद के लिए बहुत खतरनाक दिन है, ये विधेयक मजाक की तरह है। सदन ने उनके संशोधन को खारिज कर दिया और डीएमके समेत विपक्षी सदस्यों के हंगामे के बीच ध्वनिमत से विधेयक को मंजूरी प्रदान कर दी। इसके बाद सदन की बैठक दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। इस विधेयक के अंतर्गत 1971 के मूल अधिनियम में संशोधन का प्रावधान किया गया है। विधेयक के उद्देश्यों और कारणों में कहा गया है कि राष्ट्रगान की तरह राष्ट्रगीत को गाने से जानबूझकर रोकने या किसी सभा में इसके गायन में व्यवधान पैदा करने को एक दंडनीय अपराध बनाने का प्रावधान किया जाता है। इसमें बताया गया है कि 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा में डॉ राजेंद्र प्रसाद ने कहा था कि वंदे मातरम को जन गण मन के समान ही सम्मान और बराबर का दर्जा दिया जाएगा। विधेयक में राष्ट्रगीत के अपमान के लिए 3 वर्ष तक की सजा या जुर्माना या दोनों सजा के प्रावधान हैं। लोकसभा में विभिन्न मुद्दों पर कांग्रेस समेत विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही बार बार स्थगित की गई। सवेरे 11 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होने के बाद विभिन्न मुद्दों पर कांग्रेस समेत विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण प्रश्नकाल लगातार 8वें दिन नहीं चल सका और कार्यवाही शुरू होने के कुछ मिनट के भीतर दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। बैठक शुरू होने पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने 23वें राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय खिलाड़ियों की उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए उन्हें बधाई दी। इसके बाद अध्यक्ष ने प्रश्नकाल शुरू कराना चाहा, लेकिन विपक्षी सदस्य अपनी मांगें उठाने लगे। कांग्रेस सदस्यों को कल सदन में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के भाषण के दौरान पैदा हुई गतिरोध की स्थिति का मुद्दा उठाते देखा गया। वो दिल्ली में पिछले सप्ताह प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों पर पुलिस कार्रवाई को लेकर गृहमंत्री अमित शाह के बयान की भी मांग दोहराते

सुने गए। श्री बिरला ने विपक्षी सदस्यों से प्रश्नकाल बाधित नहीं करने का अपना आग्रह दोहराया। हंगामा नहीं थमने पर उन्होंने कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दी। सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे फिर शुरू होने पर पीठासीन सभापति संध्या राय ने आवश्यक दस्तावेज सदन के पटल पर रखवाए। इस बीच विपक्षी सदस्य आसन के बीच करीब आ गए। उनके हाथ में तख्तियां थीं और वे अमित शाह जवाब दो के नारे लगा रहे थे। पीठासीन सभापति ने नारेबाजी कर रहे सदस्यों से अपने अपने स्थान पर लौटने का अनुरोध किया, लेकिन हंगामा नहीं थमने पर उन्होंने सदन की कार्यवाही अपराह्न 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। संसद के मॉनसून सत्र की शुरुआत 20 जुलाई को हुई थी और तब से सदन में विभिन्न मुद्दों पर हंगामे की स्थिति के कारण प्रश्नकाल और शून्यकाल नहीं चल सके हैं। और अब सुनिए राज्यसभा में हुई कार्यवाही की समीक्षा। लिखिका है पीटीआई भाषा की मनीषा श्रीवास्तव। राज्यसभा में आज शून्यकाल के दौरान विपक्षी सदस्यों ने नीट परीक्षा प्रश्न पत्र लीक के विरोध में प्रदर्शन कर रहे विद्यार्थियों पर पुलिस के बल प्रयोग के आरोपों को लेकर सदन में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के बयान की अपनी मांग सभापति द्वारा अस्वीकार किए जाने पर विरोध जताते हुए बहिर्गमन किया। सदन में आवश्यक दस्तावेज पटल पर रखे जाने के तुरंत बाद विपक्षी सदस्यों ने 20 जुलाई को छात्रों पर हुई पुलिस कार्रवाई के संबंध में गृहमंत्री से सदन में आकर स्पष्टीकरण देने की मांग करते हुए नारेबाजी शुरू कर दी। कांग्रेस के प्रमोद तिवारी ने व्यवस्था का प्रश्न उठाते हुए कहा कि संविधान मंत्रिपरिषद को संसद के प्रति जवाबदेह बनाता है। उन्होंने कहा कि जब छात्रों पर लाठीचार्ज की गई और गोली चलाई गई तब ये स्वाभाविक मांग है कि गृहमंत्री सदन में आए और इस पर बयान दें। सभापति सीपी राधाकृष्णन ने व्यवस्था का प्रश्न खारिज कर दिया और शून्यकाल के अंतर्गत लोक महत्व से जुड़े मुद्दे उठाने के लिए सदस्यों से कहा। विपक्षी सदस्यों ने अपनी मांग नहीं माने जाने पर सदन से बहिर्गमन किया। विपक्ष के बहिर्गमन के बाद सदन के नेता और केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि 20 जुलाई से शुरू हुए संसद के मॉनसून सत्र के दौरान विपक्ष का रवैया नकारात्मक रहा है। उन्होंने विपक्ष के आचरण को गैर जिम्मेदाराना बताते हुए उसकी निंदा की। विपक्ष के बहिर्गमन के बाद सदन में नियत कामकाज जारी रहा और सदस्यों ने शून्यकाल के अंतर्गत लोक महत्व से जुड़े अपने मुद्दे उठाए। भारतीय जनता पार्टी के सुरेंद्र नागर ने वन नेशन वन डिजिटल मेट्रो कार्ड की मांग दोहराते हुए कहा कि इससे यात्रियों को कई तरह की सुविधाएं मिल सकेंगी। उन्होंने कहा कि मेट्रो यात्रियों के लिए हर शहर अपने यहां नया मेट्रो कार्ड जारी करता है। ये प्लास्टिक के कार्ड होते हैं और एक शहर का कार्ड दूसरे शहर में नहीं चलता। नागर ने कहा कि इससे पर्यावरण को भी फायदा होगा क्योंकि मेट्रो कार्ड में चिप और एंटीना लगा होने की वजह से इसकी रिसाइकलिंग नहीं हो पाती और इससे कार्बन भी उत्पन्न होता है। डिजिटल मेट्रो कार्ड जारी होने पर यह समस्या नहीं होगी। उन्होंने कहा कि डिजिटल मेट्रो कार्ड मोबाइल फोन से संबद्ध होगा, अतः इसके गुम होने से पूरी बैलेंस राशि का नुकसान नहीं होगा। अभी मेट्रो कार्ड गुम होने से उसकी पूरी बैलेंस राशि भी चली जाती है। कार्ड ब्लॉक भी नहीं किया जा सकता क्योंकि इसकी सुविधा नहीं है। डिजिटल कार्ड होने पर यह समस्या नहीं होगी। आम आदमी पार्टी के संजय सिंह ने उत्तर प्रदेश के देवरिया में बैतालपुर चीनी मिल का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि मिल करीब 20 साल से बंद पड़ी है जिससे वहां के लोगों को रोजगार की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों का 1,200 करोड़ रूपये बकाया है और वो इस राशि का इंतजार कर रहे हैं। शून्यकाल में ही घनश्याम तिवाड़ी, प्रकाश चिकबराइक, कणाद पुरकायस्त, गोविंद भाई, लालजी भाई ढोलकिया, रेखा शर्मा, दोरजी छिरिंग, लेपचा, बाबूराव निषाद, संजय भाटिया, डॉक्टर के लक्ष्मण, जोगेन मोहन, संगीता यादव, डीएमके के सदस्य एलके सुधीश, बीआरएस के रविचंद्र वद्दी राजू, यूपीपीएल के प्रमोद बोरो, बीजू जनता दल के सुभाषीष खुंटिया ने भी आसन की अनुमति से लोक महत्व से जुड़े अपने अपने मुद्दे उठाए। इसके बाद सदन में प्रश्नकाल भी सामान्य रूप से चला। भोजन अवकाश के बाद उच्च सदन में प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 को चर्चा और पारित करवाने के लिए रखा। उन्होंने कहा कि प्रश्न पत्र लीक रोधी कानून में प्रस्तावित संशोधन इस बात का प्रमाण है कि सरकार परीक्षा प्रश्न पत्र लीक के प्रति कतई बर्दाश्त नहीं करने की नीति पर चल रही है और किसी को भी देश के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। श्री सिंह ने कहा कि सरकार पूरी गंभीरता के साथ ये संशोधन लेकर आई है और सभी पक्षों से मिलने वाले रचनात्मक सुझावों का स्वागत करती है।
नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रश्न पत्र लीक

वालों को रोकने के लिए सरकार के विधेयक के भविष्य में कारगर होने पर आशंका जताते हुए एक समयबद्ध वार्षिक परीक्षा कैलेंडर बनाए जाने का सुझाव दिया तथा हाल में हुए छात्र आंदोलन में प्रदर्शनकारियों के खिलाफ ज्यादतियों की न्यायिक जांच कराने की मांग की। उन्होंने कहा कि सरकार ने इस विधेयक में कड़े प्रावधान किए हैं किंतु उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उन्होंने कहा कि फर्क इससे पड़ेगा कि आप परीक्षाएं कैसे कराते हैं और प्रश्न पत्र लीक होने से कैसे रोक पाते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष ने सरकार से सवाल किया कि वो इस समय जो काम कर रही है उसने 2 साल पहले मूल कानून बनाते समय इस काम को क्यों नहीं किया। विधेयक के समर्थन में भारतीय जनता पार्टी के ब्रजलाल ने कहा कि विधेयक ये प्रावधान करता है कि केंद्र एक विशेष SIT का गठन कर सकता है और जांच एजेंसी को केवल 2 माह के अंदर पूरी प्रक्रिया समाप्त करनी है तथा त्वरित आंदोलन अदालत को 3 महीने के भीतर अपना फैसला देना है। उन्होंने उल्लेख किया कि विशेष सरकारी वकील नियुक्त किए जाएंगे जो केवल इस प्रकार के मुकदमे की पैरवी करेंगे और अपील सीधे उच्च न्यायालय की खंडपीठ में की जाएगी तथा उस अपील पर 3 महीने के अंदर फैसला सुनाया जाएगा। जनता दल यूनाइटेड के संजय झा ने कहा कि किसी भी देश के विकास में वहां की शिक्षा व्यवस्था का प्रमुख योगदान होता है। उन्होंने कहा कि विकास के पथ पर भारत आज जिस तरह बढ़ रहा है उसका एक मुख्य कारण यह है कि बीते करीब 12 साल में शिक्षा के क्षेत्र में आमूलचूल बदलाव हुआ है और शिक्षण संस्थानों की संख्या बढ़ी है तथा शिक्षा की गुणवत्ता में भी उल्लेखनीय सुधार हुआ है। उन्होंने कहा कि प्रश्न पत्र लीक होने की समस्या कहीं न कहीं छात्रों को परेशान करती रही है। समाजवादी पार्टी के रामगोपाल यादव ने कहा कि नए विधेयक में दंड को कठोर किया गया है और सुनवाई के लिए विशेष त्वरित अदालतों के गठन का प्रावधान है। उन्होंने कहा कि दंड बढ़ाने से अपराध कम नहीं होता। पहले परीक्षाओं की जिम्मेदारी राज्य सरकारों के पास हुआ करती थी और तब इस तरह के प्रश्न पत्र लीक के मामले नहीं होते थे। आज पेपर ही 13 भाषा में होते हैं। उन्होंने सलाह दी कि पहले की तरह ही नीट को खत्म कर मेडिकल परीक्षा की जिम्मेदारी राज्यों को सौंप दी जानी चाहिए जब 15% सीट केंद्र के अधिकार में होती थी। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रफुल्ल पटेल ने कहा कि पिछले कुछ दिन में प्रश्न पत्र लीक मामले और उसके बाद हुए घटनाक्रम से केवल छात्र ही परेशान नहीं हुए बल्कि सरकार को भी पीड़ा हुई है और लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 इसी पीड़ा का परिणाम है। उन्होंने कहा कि सरकार पर संवेदनहीनता का आरोप लगाना ठीक नहीं है। आम आदमी पार्टी के संजय सिंह ने कहा कि सरकार ने कहा था कि नीट का पेपर लीक होने से 22,80,000 बच्चे प्रभावित हुए हैं लेकिन जब दोबारा नीट का पेपर हुआ तो 20 लाख बच्चे इसमें बैठे 2,80,000 बच्चों ने ये परीक्षा नहीं दी। इसके लिए कौन जिम्मेदार है। उन्होंने कहा कि फास्ट ट्रैक अदालतों में बेहिसाब मामले लंबित हैं। ये अदालतें कैसे जल्दी सुनवाई कर पाएंगी। उन्होंने कहा कि कई स्कूलों में लड़कियों के लिए शौचालय नहीं है, कई स्कूलों में शिक्षक नहीं है, कई की इमारत खस्ता हाल है और कई स्कूल बंद हो चुके हैं। शिक्षा पर आखिर सरकार कितना खर्च करती है। उन्होंने प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों पर पुलिस कार्रवाई का जिक्र करते हुए कहा कि इसका आदेश किसने और क्यों दिया। उन्होंने किसी का नाम लिए बगैर कहा कि भाजपा की एक सांसद ने जैन जी के लिए जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया है उन्हें गटर कहा है, उन पर सत्ता पक्ष रोक लगाए अन्यथा यही जैन जी आपको सबक सिखाएगी। चर्चा में राष्ट्रीय जनता दल के मनोज कुमार झा, BRS के रविचंद्र वद्दी राजू, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के जान ब्रिटास, झारखंड मुक्ति मोर्चा की महुआ मांझी और शिवसेना के मिलिंद देवड़ा ने भी हिस्सा लिया। समीक्षा लिखे जाने तक चर्चा जारी थी। अभी आप संसद में आज हुई कार्रवाई की समीक्षा सुन रहे थे।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। रात्रि के 8:15 हुए हैं। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम सुर्खियों में।
1: सुर्खियों में ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए वैश्विक चुनौतियों के बीच भारत के बढ़ते निर्यात पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशंस के महानिदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉक्टर अजय सहाय। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं मनोज पाठक।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं मनोज पाठक और आज इस कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे वैश्विक व्यापार में रुकावटों के बीच भारत की निर्यात प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता को और मजबूत हम कैसे बना सकते हैं। गौरतलब है कि देश के वित्त मंत्रालय ने जुलाई 2026 की मासिक आर्थिक समीक्षा जारी की और इसमें एक अच्छी खबर दी कि पश्चिम एशिया के भू राजनीतिक संघर्षों के बाद भी भारत ने अपने आयात स्रोतों और निर्यात गंतव्यों में विविधता लाकर अपने बाहरी व्यापार को लचीला बनाए रखा है और 2025-26 वित्त वर्ष के दौरान हमने रिकॉर्ड निर्यात किया जो $863.1 बिलियन से ऊपर पहुंच गया। यहां पर हम ये समझना चाहेंगे इस कार्यक्रम के माध्यम से कि हम कैसे अपने निर्यात को और अधिक प्रतिस्पर्धी बना सकते हैं और वैश्विक स्तर पर जो रुकावटें आ रही हैं उन्हें ध्यान में रखते हुए अपने कारोबार को निरंतर बढ़ाए रख सकते हैं। इस विषय पर हमने चर्चा के लिए आमंत्रित किया है जाने माने विशेषज्ञ, फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर जनरल और CEO डॉक्टर अजय सहाय जी को। डॉक्टर सहाय, कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
3: धन्यवाद।
2: सबसे पहले तो डॉक्टर साहब, हम यही समझना चाहेंगे कि हमारे सामने जो वर्तमान परिस्थितियां हैं जिसमें जगह जगह मार्ग रुक रहे हैं, एक ओर, दूसरी ओर ऊर्जा का जो संकट है उससे निकलने के समाधान ढूंढे जा रहे हैं, जगह जगह रूट्स बंद हो जा रहे हैं, उसमें हमारे लिए कैसी चुनौतियां उत्पन्न हो रही हैं?
3: जैसा आपने बताया है कि जितनी चुनौतियां हैं उसके बाद भी अगर आप भारत के निर्यात को देखिए तो वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है। $863 बिलियन का हमने पिछले वर्ष में निर्यात किया था और जबकि अभी हम देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा चैलेंजेस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज में आ गए, मिडिल ईस्ट की बहुत सी इकोनॉमी इंपैक्ट हुई है, उसके बाद भी अगर हम फर्स्ट क्वार्टर 2026-27 का देखें तो हमारा अप्रैल से जून जो एक्सपोर्ट है, मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट, वो 15% बढ़ा है और ये बहुत ही सकारात्मक दिखता है और ये शो करता है कि जो भारतीय जो निर्यात है उसकी प्रतिस्पर्धा जो है वो बढ़ती जा रही है। दूसरा कारण ये है कि हमारा जो निर्यात है उसमें काफी विविधीकरण आ गया है, चाहे हम प्रोडक्ट की बात करें चाहे हम देशों की बात करें, दोनों में काफी विविधीकरण आ गया है। गवर्नमेंट ने जिस तरह का एक प्रोएक्टिव पॉलिसी का सपोर्ट दिया है उससे भी जो हमारे एक्सपोर्ट्स हैं वो ज्यादा ज्यादा कॉम्पिटिटिव होते जा रहे हैं। और अगर हम पूरे एक्सपोर्ट्स को देखें तो हमारा एक्सपोर्ट जो है वो दो भागों में बटा हुआ है। एक तो हमारे जिनको हम कह सकते हैं जो हमारे सनराइज सेक्टर्स हैं, जिसमें मैं कहना चाहूंगा इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, फार्मा है, स्पेशलिटी केमिकल्स है, ऑटोमोबाइल है, इन सेक्टर्स में हम बहुत अच्छा कर रहे हैं और शायद जो हमारे पास टेक्निकल कॉम्पिटेंस है वो हमें काफी मदद भी कर रही है। दूसरी चीज, बहुत सी ग्लोबल कंपनीज इंडिया में अपना बेस कर रही हैं, जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स हो रहे हैं उनका जो हमें फायदा मिल रहा, ना खाली ट्रेड में मिल रहा बल्कि हमारे इन्वेस्टमेंट में भी वो हमें उसका फायदा मिल रहा है। अगर हम ट्रेडिशनल सेक्टर्स की बात करें तो ट्रेडिशनल सेक्टर्स में जैसे एग्रो एंड फूड सेक्टर है, मैरीन सेक्टर है, अपैरल टेक्सटाइल है, फुटवेयर सेक्टर है, कार्पेट्स है, हैंडीक्राफ्ट है, इन सेक्टर्स में भी इंडिया का एक्सपोर्ट बढ़ रहा है, जबकि इस सेक्टरों में जो प्रतिस्पर्धा है वो ज्यादा हो गई है कि बहुत से कंट्री जो है जो लो कॉस्ट इकोनॉमी है वो भी हमारे कॉम्पिटिटर्स है, लेकिन फिर भी हम इस प्रतिस्पर्धा में अपना एक्सपोर्ट बढ़ा रहे हैं। हमारा जो एक्सपोर्ट का जो फोकस था वो पहले दिन कुछ सालों में हमेशा यूरोप और US के ऊपर रहा है। US अभी भी हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हमारा मार्केट है, 18% अपने एक्सपोर्ट का US को भेजते हैं, लेकिन EU और की जगह हमारे आसियान कंट्रीज है, मिडिल ईस्ट की कंट्रीज है, अफ्रीका है, नॉर्थ ईस्ट एशिया है, ये हमारे लिए मार्केट बहुत बड़े होके आए हुए हैं और इन मार्केट में इंडिया का एक्सपोर्ट बढ़ते जा रहा है। इसी चीज, जो बहुत से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किए गए हैं उसका भी बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट एक्सपोर्ट के ऊपर आया है। जो नई स्कीम्स लॉन्च की गई हैं, चाहे पीएलआई स्कीम की बात करें या और हम प्लग इन प्ले के लिए जो स्कीम्स इंडस्ट्रियल पार्क में आ रही हैं, वो भी इंडिया में एक्सपोर्ट बढ़ाने में बहुत मददगार होंगी, कि क्योंकि जो कंपनीज है वो इंडिया को अपना बेस बना रही है और इंडियन कंपनीज भी अब इन्वेस्टमेंट बढ़ाती जा रही है।
2: यहाँ पर हम ये समझना चाहेंगे, आपने चर्चा की बाजारों का विविधीकरण हो रहा है, साथ ही निर्यात के जो नए ठिकाने हैं वो बन रहे हैं, इसे थोड़ा और स्पष्ट करें और यदि संभव हो तो कुछ उदाहरण देकर बताएं कि कहाँ हमारा निर्यात पहुंच रहा है और कौन सी वस्तुओं का निर्यात वहाँ पहुंचने लगा है जो हमारे पारंपरिक यू और अमेरिका जो दो मुख्य ठिकाने रहे हैं उनके अतिरिक्त।
3: देखिए, जैसे हिंदी में कहा जाता है, चुनौती में अवसर होते हैं।
2: जी, आपदा में अवसर की बात लगातार प्रधानमंत्री करते हैं,
3: बात करते हैं और वो एकदम सही है। आपको मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा कि जब अमेरिका ने भारत के ऊपर 50% की ड्यूटी लगाई तो हमारा जो मैरीन जो एक्सपोर्ट था वो बहुत बुरी तरह प्रभावित किया, क्योंकि इक्वाडोर जो हमारा बहुत बड़ा कॉम्पिटिटर था उसके ऊपर 5% ड्यूटी थी, मेक्सिको जो दूसरा कॉम्पिटिटर था उसके ऊपर 0% ड्यूटी थी और हमारा जो मैरीन एक्सपोर्ट है उसका करीब 35% एक्सपोर्ट जो था वो यूएस के लिए था। जब ये आया तो हम लोगों ने बहुत चिंता जताई कि ये इंडिया का मैरीन एक्सपोर्ट बहुत बुरी तरह प्रभावित होगा, लेकिन हम सब लोग अचंभित रहे जब हम लोगों ने देखा कि हमारे जो मैरीन एक्सपोर्टर्स है उन्होंने बहुत जल्दी ईयू, चाइना और रशिया में अपने को बड़े अच्छी तरह से एस्टैब्लिश कर दिया और इसका ये रिजल्ट रहा कि अगर 25-26 के हम एक्सपोर्ट देखें जहां हमारा एक्सपोर्ट यूएस के लिए प्रभावित हुआ था, हमारा ओवरऑल एक्सपोर्ट जो है वो करीब करीब 15% मैरीन एक्सपोर्ट बढ़ा है। तो ऐसे और भी क्षेत्र हैं जहां पे हम देख रहे हैं कि इंडिया की प्रतिस्पर्धा बढ़ रही है और उस प्रतिस्पर्धा बढ़ने से हमारा एक्सपोर्ट भी बढ़ रहा है। तीसरी बात है कि एक ग्रोइंग रियलाइजेशन इंडस्ट्री में आ रहा है कि एक्सपोर्ट आपको स्केल प्रोवाइड करने के लिए और आपको डाइवर्सिफाई करने के लिए, आपको डिस करने के लिए बहुत अधिक मदद करता है। जैसे एक उदाहरण देना चाहूंगा कि जब रेड सी की क्राइसिस हुई तो ये हुआ कि जो भी हमारा सेरेमिक का जो भी उद्योग है वो बुरी तरह प्रभावित होगा, लेकिन जब हम लोगों ने खोजा का अध्ययन किया तो हम लोगों ने फाइनल की जो भी इंडस्ट्री थी उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा क्योंकि वो डोमेस्टिक मार्केट की ओर चली गई थी, लेकिन जब रेड सी की प्रॉब्लम खत्म हुई वो फिर वापस एक्सपोर्ट में चले गए। तो शायद इंडिया को बहुत बड़ा एडवांटेज है कि हमारे पास इतना बढ़िया वाइब्रेंट डोमेस्टिक मार्केट है कि हम इस तरह प्ले कर सकते हैं। ये तरह का ऐसी जो सुविधा है वो बाकी कंट्री को नहीं है, साउथ ईस्टर्न कंट्रीज के पास ऐसी सुविधा नहीं है।
2: यहाँ पर हम ये समझना चाहेंगे, आपने कहा कि जो वैश्विक कंपनियां हैं, बड़ी कंपनियां हैं, वो भारत को अपना बेस बना रही हैं और हमारे यहाँ से उत्पाद अन्य देशों को जा रहे हैं, तो ऐसे कुछ क्षेत्र जहां भारत में इनका अच्छा आधार बन गया और निर्यात हमारा अब अच्छी तरह हो रहा है, उन्हें थोड़ा हमारे श्रोताओं को बताएं कि किस तरह ये लाभान्वित कर रहे हैं और उनके समक्ष क्या चुनौतियां वर्तमान स्थिति को देखते हुए आ रही है।
3: देखिए, इसका सबसे बड़ा उदाहरण तो आपका स्मार्टफोन है। अब देखिए, अगर इंडिया के 2015-16 की डाटा देखिए तो हम करीब करीब जो हमारा 24 से 25 बिलियन डॉलर इंपोर्ट रहता था स्मार्टफोन्स और मोबाइल फोन का, आज की डेट पे हम नेट एक्सपोर्टर मोबाइल सेक्टर में आ गए हैं। बड़ी बड़ी ग्लोबल कंपनीज ने इंडिया को बेस बना दिया और इंडिया का जो स्मार्टफोन का एक्सपोर्ट्स है वो इंडिया के ओवरऑल इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट को बहुत तेजी से बढ़ा रहा है। इनफैक्ट कुछ बात कर रहा था मैं, जैसे बड़े बड़ी कंपनी जैसे एप्पल है, वो जिसका जो उनका एक्सपोर्ट का प्लान है तो उसके प्लान के लिए शायद जो साउथ के जितने भी एयरपोर्ट हैं, चेन्नई की बात करें, बैंगलोर की बात करें, हैदराबाद की बात करें, तो जो कैपेसिटी है वो भी उनको ही नहीं डील कर पाएगी और देयर आर नंबर ऑफ अदर मैन्युफैक्चरर्स आल्सो। ऐसे अगर हम बात करें टेक्सटाइल के क्षेत्र में, जो ग्लोबल कंपनीज है वो इंडिया से इंक्रीजिंगली प्रोक्योरमेंट कर रही है और एक तरह का जो सप्लाई चेन उनको चाहिए वो इंडिया में एस्टैब्लिश हो गया है। एक बहुत बड़ा फैक्टर था कि यूएस ने इतनी जब टैरिफ भी इंडिया पे लगाई थी 50% टैरिफ अपैरल सेक्टर में, एक्सपोर्ट नहीं प्रभावित हुआ, इसका बहुत बड़ा कारण था कि ग्लोबल कंपनीज इंडिया में जो उन्होंने अपनी सप्लाई चेन एस्टैब्लिश कर ली थी उसको वो बदलना नहीं चाहती थी। तो शायद अब कंपनीज का एक परमानेंट स्टेक इंडिया में आ गया है क्योंकि इंडिया को एक्सपेंशन में उनको कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रही है। हमारे स्टेट गवर्नमेंट भी जो है वो बहुत प्रोएक्टिव हो गई और एक बहुत अच्छी बात हुई।

0: उनमें भी एक तरह से होड़ लगी है एक्सपोर्ट रिलेटेड इन्वेस्टमेंट पाने के लिए। लॉन्ग टर्म रोड मैप जब हम एक्सपोर्ट का देखते हैं तो हम ये देख रहे हैं कि हमारी जो डोमेस्टिक कंपनी है वो एक्सपोर्ट की तरफ मुड़ रही है, वो एक्सपोर्ट में अपना इन्वेस्टमेंट कर रही है। जो ग्लोबल कंपनीज इंडिया में आ रही है वो इंडिया को एक बेस बना रही है, ना खाली इंडिया में सप्लाई करने के लिए बट वो ग्लोबल हब इंडिया को बनाना चाहती है पूरे वर्ल्ड में सप्लाई करने के लिए।
1: यहाँ पर आपने चर्चा की सनराइज सेक्टर की और साथ ही पारंपरिक की, तो पारंपरिक क्षेत्र जिसमें कह लें कि कुटीर उद्योग यानी जो छोटे छोटे उद्यमी हैं उनके लिए भी अवसर बनता है, उसके अलावा जो मझोले हैं SMEs हैं उनके लिए अवसर बनता है, उनका क्या भविष्य नजर आ रहा और उनके सामने चुनौतियां क्या देख रही और उसका समाधान सरकार के स्तर पर क्या ढूंढा जा रहा?
0: देखिए जहां तक आप हमारे कुटीर उद्योगों की बात कीजिए या जो हमारे ट्रेडिशनल उद्योगों की बात कीजिए उनके एक्सपोर्ट बढ़ रहे हैं क्योंकि हमारे जो न्यू फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो रहे हैं उन एग्रीमेंट पे इनको बहुत ज्यादा फायदा होगा। जैसे कि हम बात करें, अगर हम यूके के फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को बात करें और हम टेक्सटाइल और फुटवेयर सेक्टर को लेके रखें तो इनमें बहुत हाई ड्यूटी है। अगर हम यूरोपियन यूनियन की बात करें वहां पे भी टेक्सटाइल और फुटवेयर में बहुत ज्यादा हाई ड्यूटी है। हम अभी भी उन मार्केट में हैं और अगर हमें टैरिफ का एडवांटेज मिलता है तो इन सेक्टर में हम अपना एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा बढ़ा सकते हैं। तो जहां हम अपनी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स को देख रहे हैं या हमारे ट्रेडिशनल सेक्टर्स एक्सपोर्ट्स को भी बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे क्योंकि ट्रेडिशनल सेक्टर्स जो हमारे हैं उनके ऊपर उन मार्केट में ड्यूटी बहुत ज्यादा है। अगर मान लें हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में तो शायद यूके और ईयू में मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट पे 5% ड्यूटी है, लेकिन अगर हम बात करते हैं टेक्सटाइल की तो 16-20% ड्यूटी हो सकती है, फुटवेयर में 10-20% ड्यूटी हो सकती है। तो जो मार्जिन टैरिफ का एडवांटेज है वो इन मार्केट में इनको बहुत ज्यादा मिलेगा। जहां तक चुनौतियां हैं तो ये भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम जो न्यू फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर रहे हैं वो एडवांस इकोनॉमीज के साथ कर रहे हैं और मार्केट एक्सेस इसमें एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा क्योंकि जिस तरह वर्ल्ड मूव कर रहा है अब ट्रेसिबिलिटी और सर्टिफिकेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हो गए हैं एक्सपोर्ट स्ट्रेटजी के लिए। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में आपको टैरिफ का बेनिफिट मिलता है लेकिन वो बेनिफिट तभी मिलेगा जब आपके पास मार्केट एक्सेस होगा। तो ये मार्केट एक्सेस जो है वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है। जैसे हम बात करें कि अभी यूरोपियन यूनियन में इको सस्टेनेबल प्रोडक्ट रिजीम आ रही है, यूरोपियन यूनियन में EUDR का रेगुलेशन आया है, तो ये जितने रेगुलेशन आ रहे हैं वो कंप्लायंस कॉस्ट इंडस्ट्री की बढ़ा रहे हैं। लेकिन गवर्नमेंट ने इन चैलेंजेस को पहले से ही देख लिया है, उन्होंने एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन में एक ट्रेस की स्कीम लाई है जिसमें टोटल जो सर्टिफिकेशन और जो कंप्लायंस कॉस्ट है उसमें माइक्रो एंड स्मॉल इंडस्ट्री को 95% जो कॉस्ट है वो रीइंबर्स हो रही है और हर इंडस्ट्री को हर साल 50 लाख तक का ये सपोर्ट मिलेगा। जो हमारी मीडियम इंडस्ट्री है उनको 80% ऑफ द कॉस्ट ऑफ सर्टिफिकेशन टेस्टिंग रीइंबर्स हो रही है 50 लाख की सीलिंग से। तो ये बहुत बड़ा एक सपोर्ट दिया हुआ है जो हमारे छोटे एक्सपोर्टर हैं, जो मझोले एक्सपोर्टर हैं, उनको इस सपोर्ट को लेना चाहिए और नए तरह के जो भी सर्टिफिकेशन और ट्रेसिबिलिटी की रिक्वायरमेंट है उससे अपने को इक्विप करना चाहिए।
1: जो छोटे कहले निर्यातक है जिनका कारोबार अपेक्षाकृत छोटा है वह कैसे इस प्रमाणन को प्राप्त कर सकते हैं और पूरा लाभ अपने उत्पाद का ले सकते हैं?
0: देखिए एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगा कि अगर मैं फल का एक एक्सपोर्ट करता हूँ US में तो उसके लिए मेरे को एक FDA का सर्टिफिकेशन चाहिए होता है, उस सर्टिफिकेशन की कॉस्ट बहुत ज्यादा है। एक तरह से उदाहरण देना चाहूंगा, मान लीजिए उस सर्टिफिकेशन की कॉस्ट 20 लाख रुपए है और मैं एक लघु उद्योग का एक एक्सपोर्टर हूँ, मेरे लिए वो कॉस्ट बहुत ज्यादा है। तो इस स्कीम के थ्रू गवर्नमेंट हमें 95% जो 20 लाख का है वो वापस करती है, मतलब हमारे पास 19 लाख रुपए जो 20 लाख पर आपने खर्च किए 19 लाख रुपए वो सरकार आपको वापस दे रही है। सरकार का पूरा प्रयास ये है कि ज्यादा से ज्यादा लोग ये सर्टिफिकेट लें और अपने को एक्सपोर्ट मार्केट में एस्टैब्लिश करें। तो ये सरकार को मानना है कि ये सर्टिफिकेशन की कॉस्ट बहुत ज्यादा है और इमीडिएटली इस तरह का सपोर्ट दिया गया है। लॉन्ग टर्म में अगर आप इंडिया के जितने नए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट देखेंगे उसमें हमने MRA म्यूचुअल रिकॉग्निशन एग्रीमेंट की बात की है क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारी जो लैब है वो भी रिकॉग्नाइज्ड हों। तो अगर हमारी लैब इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज होने लगेंगी, इंपोर्टिंग कंट्री में रिकॉग्नाइज्ड होने लगेंगी, तो वही सर्टिफिकेशन बहुत कम दाम पे हमें इंडिया में ही अवेलेबल होगा। और गवर्नमेंट का पूरा फोकस है कि हमारे जो छोटे उद्योग हैं उसका ये फायदा ले।
1: श्रोताओं की ओर से डॉक्टर सहाय आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे वैश्विक चुनौतियों के बीच भारत

0: के बढ़ते निर्यात पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशंस के महानिदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉक्टर अजय सहाय। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे मनोज पाठक। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं।
1: सुर्खियों में
2: ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। अब सुनिए फिल्म संगीत। फिल्म संगीत में ये गीत हम आपको सुनवा रहे हैं, मेरा गांव मेरा देश। इस फिल्म का ये गीत है मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ में। आनंद बख्शी के बोल हैं, तर्ज लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बढ़ा सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: इस संदेश के बाद अगला गीत सुनवा रहे हैं लोफर फिल्म से मोहम्मद रफी की आवाज में आनंद बख्शी का लिखा गीत।

जुदाई फिल्म का गीत आप सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की आवाज़ में। इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत अब यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार संध्या, जिसे हम आकाशवाणी के दिल्ली

0: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार। संसद ने वंदे मातरम को राष्ट्रगान के समान वैधानिक संरक्षण प्रदान करने वाला विधेयक पारित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया की स्थिति की समीक्षा के लिए मंत्रिमंडल की सुरक्षा समिति की बैठक की अध्यक्षता की। नाविकों सहित लोगों के हितों की रक्षा के लिए एकीकृत व्यवस्था पर बल दिया। दिल्ली सरकार नीट परीक्षा में कथित अनियमितताओं के विरोध प्रदर्शन में शामिल विद्यार्थियों के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करेगी। अमरीका और ईरान के बीच मिसाइल हमले तेज, पश्चिम एशिया संघर्ष के तत्काल समाधान की उम्मीदें कम हुई। गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में कल मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी। उड़ीसा में बाढ़ की स्थिति गंभीर। राष्ट्रमंडल खेलों में भाला फेंक में नीरज चोपड़ा, रोहित यादव और यशवीर सिंह ने तथा ट्रिपल जंप में प्रवीण चित्रवेल और शिल्वा प्रभु ने फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। संसद ने राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक का उद्देश्य वंदे मातरम को राष्ट्रगान के समान वैधानिक संरक्षण प्रदान करना है। वंदे मातरम के अपमान पर 3 वर्ष तक की कैद, जुर्माना या दोनों सजा हो सकती हैं। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि ये विधेयक देश की सांस्कृतिक विरासत, राष्ट्रीय पहचान और स्वतंत्रता संग्राम के आदर्शों का प्रतिनिधित्व करता है। श्री राय ने कहा कि वंदे मातरम केवल एक गीत नहीं बल्कि ये राष्ट्र की आत्मा की आवाज है।
2: यह विधेयक राष्ट्र गौरव का विधेयक है। यह किसी राज्य के खिलाफ नहीं है, किसी व्यक्ति या किसी विचारधारा के खिलाफ नहीं है। और जब राष्ट्रगान हो तो उसके साथ साथ राष्ट्र गीत का भी गायन हो। अब एक भारत श्रेष्ठ भारत के लिए संपूर्ण वंदे मातरम चाहिए।
1: राज्यसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पर इस समय चर्चा चल रही है। लोकसभा ने विधेयक कल पारित कर दिया था। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने विधेयक पेश किया। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि विधेयक के अंतर्गत जांच 2 महीने के भीतर और आरोप पत्र दाखिल होने के बाद 3 महीने के भीतर मुकदमा पूरा किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि विधेयक देश के विद्यार्थियों और युवाओं के कल्याण की रक्षा के लिए सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है।
3: प्राइम मिनिस्टर मोदी जी लॉस्ट नो टाइम।
4: प्रधानमंत्री मोदी ने बिना समय गवाए घोषणा की है कि छात्रों के भविष्य को खतरे में डालने की अनुमति नहीं दी जाएगी, इसलिए वर्ष 2024 के अधिनियम में संशोधन करने वाला ये विधेयक लाया जा रहा है ताकि इसे अधिक कठोर और प्रभावी बनाया जा सके। यदि इसमें सुधार के लिए कोई सुझाव होंगे तो मैं उनका स्वागत करता हूं और उन पर विचार करूंगा।
3: आई विल बी टेकिंग नोट ऑफ इट।
1: विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि सरकार ने नए विधेयक में केवल दिखावटी बदलाव किए हैं।
5: ज्यादा जुर्माना, कड़ी सजा, स्पेशल टास्क फोर्स, फास्ट ट्रैक कोर्ट जैसे प्रावधान आपने इसमें रखा है, इससे कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं। लेकिन ये जो मजबूत कानून लाने के लिए हमने 2024 में ही इसकी मांग रखी थी, लेकिन तब आपने हमारी इस बात को नहीं माना।
1: हमारे संवाददाता ने बताया है कि संसद के दोनों सदनों में आज विधायी कामकाज हुए।
6: आज संसद के दोनों सदनों में विधायी कामकाज हुआ। लोकसभा ने आज राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 को मंजूरी दी। राज्यसभा ने यह विधेयक कल पारित किया था। इस विधेयक को मंजूरी देने के बाद निचले सदन की कार्यवाही कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। राज्यसभा में अभी लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा हो रही है, जिसे लोकसभा ने कल मंजूरी दी थी। नीट मुद्दे पर छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस के कथित कार्रवाई को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण लोकसभा की कार्रवाई एक बार स्थगित करनी पड़ी। इस व्यवधान के कारण निचले सदन में प्रश्नकाल और शून्यकाल नहीं हो पाया। राज्यसभा में प्रश्न

0: प्रश्नकाल और शून्यकाल सुचारू रूप से चले। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया की स्थिति की समीक्षा के लिए आज मंत्रिमंडल की सुरक्षा समिति की बैठक की अध्यक्षता की। श्री मोदी ने नाविकों सहित लोगों के हितों की रक्षा के लिए सभी घटनाक्रमों की नियमित निगरानी के लिए एकीकृत और समन्वित व्यवस्था बनाने को कहा। उन्होंने नाविकों और उनके परिवारों को समय पर सूचना, आपातकालीन सहायता और परामर्श के लिए एक व्यवस्था स्थापित करने का भी निर्देश दिया। बैठक में रबी फसलों के लिए उर्वरकों के वैकल्पिक स्रोतों के उपयोग पर भी चर्चा की गई। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली सरकार नीट परीक्षा में कथित अनियमितताओं के विरोध प्रदर्शनों में शामिल विद्यार्थियों के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करेगी। ये फैसला आपराधिक रिकॉर्ड वाले प्रदर्शनकारियों पर लागू नहीं होगा। ये निर्णय उच्चतम न्यायालय के 28 जुलाई के आदेश के अनुरूप लिया गया है। दिल्ली के गृह मंत्री आशीष सूद ने कहा कि प्रदर्शन की आड़ में हिंसा, तोड़फोड़ या अन्य आपराधिक गतिविधियों में शामिल लोगों के खिलाफ कानून के अनुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
2: भारत सरकार ने पहले ही कहा था कि जो प्रदर्शनकारी छात्र हैं, जो अपना विरोध प्रकट करने आए थे, उनके संदर्भ में कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। मगर ये उन पर जिनके ऊपर पहले से आपराधिक मुकदमे हैं, जिन्होंने हिंसा की है, तोड़फोड़ की, उन पर लागू नहीं होगा।
1: रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने कहा है कि लगभग 17,000 सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम अब रक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। श्री सेठ ने बताया कि सरकार का एकमात्र उद्देश्य रक्षा क्षेत्र को स्वदेशी और आत्मनिर्भर बनाना है।
3: संकल्प एयरफोर्स और SIDM के द्वारा, जो आज जितने कहते हैं इंडस्ट्री के लोग, स्टार्टअप के लोग, एक जिद है कि भारत को 2047 विकसित भारत बनाना है। और अभी आपने देखा होगा कैसे 74,000 स्पेयर्स एयरफोर्स के जो इंडिजिनस हो गए।
1: इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय सचिव एस कृष्णन ने कहा है कि सरकार ने देश में सेमीकंडक्टर विनिर्माण मजबूत करने और आत्मनिर्भर सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम बनाने के लिए 1,27,500 करोड़ रुपए के बजट के साथ इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के दूसरे चरण को स्वीकृति दी है। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि इस वर्ष 3 सेमीकंडक्टर इकाइयां पहले से ही वाणिज्यिक उत्पादन शुरू कर चुकी हैं। पर्यटन मंत्रालय और इंडिगो ने अतुल्य भारत पहल को बढ़ावा देने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि भारत के पास एक असाधारण पर्यटन गाथा है, जिसे सरकार और इंडिगो मिलकर दुनिया के सामने पेश कर रहे हैं। बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश की 3 विधानसभा सीटों के लिए आज हुए उपचुनाव शांतिपूर्वक सम्पन्न हो गए। बिहार की बांकीपुर, गुजरात की मंजलपुर और मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीटों पर मतदान हुआ। बांकीपुर में मतदान प्रतिशत 34% से अधिक रहा, जबकि मंजलपुर में 37% और दतिया में 71% से अधिक वोट डाले गए। छत्तीसगढ़ के बस्तर पंडुम 2026 के विजेता परगना मांझी और पद्म पुरस्कार विजेताओं के एक प्रतिनिधि मंडल ने आज राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भेंट की। राष्ट्रपति ने कहा कि बस्तर पंडुम जैसे आयोजनों ने युवाओं को उनकी परंपराओं, रीति रिवाजों और सांस्कृतिक विरासत से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने बताया कि ऐसे आयोजन पर्यटन को बढ़ावा देते हैं और रोजगार के अवसर सृजित करते हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने चेन्नई, कोयम्बटूर, हैदराबाद और मुंबई में वर्ष 2022 में कोयम्बटूर बम धमाकों से जुड़े अवैध धन शोधन मामले में 16 स्थानों में तलाशी अभियान चलाया। फिदायीन आतंकी जमीशा मुबीन और इस्लामिक स्टेट से जुड़े कई आतंकियों की इन हमलों में संलिप्तता पाई गई है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। अमेरिका और ईरान ने एक दूसरे पर नए मिसाइल हमलों से व्यापक क्षेत्रीय संघर्ष की आशंका बढ़ गई है और युद्ध विराम की उम्मीदें कम हो गई हैं। अन्य देश भी संघर्ष में शामिल होने की आशंकाएं बढ़ गई हैं। जॉर्डन में एक अमेरिकी सैन्य हवाई अड्डे पर ईरान के मिसाइल हमले के बाद ईरान के खिलाफ अमेरिका के जवाबी हमलों से क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है। ईरान ने कहा है कि केशम द्वीप पर हुए हमले में 3 लोग मारे गए और 2 अन्य घायल हो गए। पाकिस्तानी सेना की घातक कार्रवाई के बीच पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में विरोध प्रदर्शन जारी है। इस

0: कहा कि शुरुआत में शांतिपूर्ण प्रदर्शनों के दौरान पाकिस्तानी सेना की क्रूर कार्रवाई में 40 से अधिक लोगों की मौत हो गई थी। शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच झड़पें तेज हो गई हैं। भारत ने चुनावों को पाकिस्तान द्वारा अपने अवैध कब्जे और क्षेत्र में गंभीर मानवाधिकार उल्लंघनों को छिपाने का प्रयास बताया है। उड़ीसा की महानदी में बाढ़ का पानी लगातार बढ़ रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रभावित जिलों में बचाव राहत कार्य तेज कर दिए गए हैं।
1: उड़ीसा में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है, हालांकि इसके मध्यम स्तर की बाढ़ बने रहने की उम्मीद है। भारी बारिश के कारण महानदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। राजस्व और आपदा प्रबंधन मंत्री सुरेश पुजारी ने आज जाजपुर, भद्रक, बालेश्वर और केंदुझर जिलों में बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया, ताकि बचाव और राहत कार्यों की समीक्षा की जा सके। उन्होंने बताया है कि अब तक 20 जिलों के 7 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। मौसम विभाग ने बरगढ़ जिले के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जबकि झारसुगुड़ा, संबलपुर, सोनपुर, बलांगीर, कलाहंडी, नवापड़ा और नवरंगपुर के लिए येलो चेतावनी लागू है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: मौसम विभाग ने गुजरात में अहमदाबाद, आणंद, सूरत और नवसारी समेत 13 जिलों के लिए मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है।
2: राज्य में भारी बारिश की चेतावनी को देखते हुए गांधीनगर स्थित राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र में अपर मुख्य सचिव डॉ. जयंती रवि की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में हाई अलर्ट वाले जिलों की प्रशासनिक तैयारियों का जायजा लिया गया, जबकि आपातकालीन राहत और बचाव कार्यों के लिए भारतीय सशस्त्र बलों की तीनों सेनाओं को भी अलर्ट पर रखा गया है। राज्य सरकार ने संभावित बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के लिए जिला प्रशासन को स्पष्ट निर्देश दिए हैं। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: मौसम विभाग ने कल गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में अत्यधिक मूसलाधार वर्षा के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 2 दिन में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तराखंड, बिहार, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में भी तेज वर्षा की संभावना है। इसी तरह का मौसम पूर्वोत्तर भारत, पंजाब, कोंकण, गोवा, ओडिशा, तेलंगाना, मध्य प्रदेश और राजस्थान के कुछ भागों में अगले 2 से 3 दिन तक रहने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज संसद भवन में अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड के सांसदों से भेंट की। इस दौरान दोनों राज्यों में आई बाढ़ की स्थिति पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार बाढ़ की स्थिति से निपटने में राज्यों की सहायता करना जारी रखेगी। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं मनोज पाठक।
3: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स आज 274 अंक बढ़कर 77,928 पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 67 अंक बढ़कर 24,317 दर्ज हुआ। और अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में $1 की तुलना में रुपया 3 पैसे कमजोर होकर 95.68 रूपए पर बंद हुआ।
0: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री सुरेश गोपी ने कहा है कि 1 जुलाई तक देश में 33 करोड़ 13 लाख घरेलू एलपीजी उपभोक्ता थे। इनमें से 10 करोड़ 58 लाख प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना कनेक्शन शामिल हैं। श्री गोपी ने कहा कि सरकार घरों में किफायती कीमतों पर घरेलू एलपीजी की उपलब्धता सुनिश्चित कर रही है। भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र INSpace ने कहा है कि निजी अंतरिक्ष कंपनियों को किसी भी नियोजित अंतरिक्ष वस्तु की पुनः वापसी के दौरान दुर्घटना जोखिम को न्यूनतम करना होगा। INSpace अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी कंपनियों की सभी गतिविधियों पर नजर रखने वाली एजेंसी है। 2 बार के ओलंपिक पदक विजेता नीरज चोपड़ा आज राष्ट्रमंडल खेलों में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा के फाइनल में पहुंच गए। रोहित यादव और यशवीर सिंह ने भी फाइनल में जगह बनाई है। प्रवीण चित्रावेल और सेल्वा प्रभु ने पुरुषों की ट्रिपल जंप स्पर्धा के फाइनल में प्रवेश किया। ताइपे ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स में आज उन्नति हुडा, तन्वी शर्मा और देविका सिहाग ने क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। वहीं अनमोल खरब, तान्या हेमंत और को राउंड ऑफ 16 मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद ने वंदे मातरम को राष्ट्रगान के समान वैधानिक संरक्षण प्रदान करने वाला विधेयक पारित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया की स्थिति की समीक्षा के लिए मंत्रिमंडल की सुरक्षा समिति की बैठक की अध्यक्षता की। नाविकों सहित लोगों के हितों की रक्षा के लिए एकीकृत व्यवस्था पर बल दिया। दिल्ली सरकार ने कहा नीट परीक्षा विरोध प्रदर्शनों में शामिल लोगों के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगी। आपराधिक पृष्ठभूमि वाले लोगों को कोई छूट नहीं दी जाएगी। अमरीका और ईरान के बीच मिसाइल हमले तेज। पश्चिम एशिया संघर्ष की तत्काल समाधान की उम्मीद कम हुई। गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में कल मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी। ओडिशा में बाढ़

वन भवन कार्यक्रम लेकर उपस्थित है आपका मित्र मुकाम सिंह चौहान। नमस्कार। कार्यक्रम का पहला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं अभिलाषा फिल्म से, मोहम्मद रफी की आवाज में।

जी हाँ, मन भवन कार्यक्रम का आरंभ कर रहे हैं रफी साहब की आवाज में, क्योंकि आज उन्हें हम याद कर रहे हैं और उनके गाए गीत हम इस कार्यक्रम में आपको सुनवाएंगे और इस गीत की फरमाइश हमारे ये श्रोता कर रहे हैं। एरोड्रम रोड सोमानी नगर इंदौर से बीआर नामदेव, राजश्री रौनक, दिव्यांशी धीरज और श्रीधा नामदेव, ग्राम गुरावा पोस्ट के लोद से नंदलाल राजपूत, राजू, मनुकाबाई, नंदनी, रुद्र और राजपूत परिवार, आदर्श नगर मलोट से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश मैंडी, सौरभ शायना और निवान शर्मा, राजकोट से मधुसूदन भट्ट, आरती, जस्मीन और प्रयागराज भट्ट, संस्कृति नगर इंदौर से बबलू, केसरी, छाया, हर्ष, मिताक्षी और सोमती बाई, बोरखेड़ा पित्रामल जिला उज्जैन से विनोद मूणत, नेहा जैन, दीपक, मयंक मूणत, चेतन हटा, दिलीप सिंह पवार, दीक्षा और कुश मूणत। इसी गीत की फरमाइश आई है अमरावती से चंदू जी हाथोले की, छत्रपति संभाजी नगर से राजेश साबले, पाटिल, राजदीप, राशि और शीतल राजेश, राजपुर से घिसु दिलवारे, लक्ष्मी, माधुरी, सोनाली, भगवान, पुष्पा, नेहा, एकता, स्मिता, सौरभ और कुणाल दिलवारे, करनाल से सुधीर तिवारी, नूतन तिवारी, मीनाक्षी और संदीप गुगलानी, पालदाना का इंदौर से हसीना भी मंसूरी, अमीना भी मंसूरी, मोहम्मद रफी और मंसूरी परिवार, एरोड्रमर इस गीत को सुनना चाहते हैं सुदामा नगर इंदौर से अनिल भंडारे, उषा भंडारे, समता चित्रा, निशा भंडारे, सपना संगीता रोड इंदौर से लाल फतेह चंदानी, लीला फतेह चंदानी, संगीता सुनीता, पिंकी, साक्षी मनन और तानिया।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर से प्रसारित हो रहा है शाम 6 बजे।
3: श्रोताओं, FM 101.6 MHz पर और मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज ऑन AIR पर विविध भारती के इंदौर केंद्र से प्रति शुक्रवार सुबह 11:32 से सुनिए साइबर जागरूकता पर केंद्रित सजीव फोन इन कार्यक्रम साइबर क्राइम रहे सावधान। इस कार्यक्रम में आईटी विशेषज्ञ, स्टेट साइबर सेल इंदौर के आला अधिकारी, साइबर ठगी से जागरूक कर रहे संस्थान के विशेषज्ञ हमारे स्टूडियो में उपस्थित होते हैं। तो आप भी सीधे हमारे टेलीफोन के माध्यम से जुड़ सकते हैं। हमारे टेलीफोन नंबर है 2710223 और 2710224। इंदौर का एसटीडी कोड है 0731। तो जुड़िए हमारे कार्यक्रम साइबर क्राइम रहे सावधान से और अपनी समस्याओं और जिज्ञासाओं का समाधान जानिए। सुनते रहिए विविध भारती का इंदौर केंद्र FM 101.6 MHz पर और कार्यक्रम साइबर क्राइम रहे सावधान प्रति शुक्रवार सुबह 11:32 से 12 बजे तक। श्रोताओं, अभी आपने ये सूचना सुनी और इस सूचना को ही हम आगे बढ़ाते हुए बता दें कि कल विविध भारती इंदौर से 11:30 से 12 बजे के बीच साइबर क्राइम रहे सावधान कार्यक्रम प्रसारित होगा और इस कार्यक्रम में आप जुड़ सकते हैं। विशेषज्ञ के तौर पर हमारे स्टूडियो में उपस्थित रहेंगे नरेंद्र सिंह रघुवंशी, DSP साइबर सेल। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का इंदौर केंद्र और कार्यक्रम मन भावन। इस कार्यक्रम में अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं धरती फिल्म से मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाज में। हसरत जयपुरी का गीत है, शंकर जयकिशन का संगीत और इस गीत की फरमाइश आप सभी की है। मोरी गेट दिल्ली से कन्हैया लाल, रीता देवी, शिल्पा रानी, आकाश कुमार। गांधी चौक रोपड़ से हरदेव, मीका, बलविंदर, बिरक, जयतीक और मीका बिरक। घंटा घर चौक खंडवा से संजय पंचोलिया, प्रियंका पंचोलिया, गुनगुन, संप्रीत, हेमेंद्र और सन्मति पंचोलिया। ग्राम बन बघेरा, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ से योगेश सारवा, आशा, नीरज, नीलेश और अंजलि सारवा। छबड़ा राजस्थान से आसिफ अली सिद्दीकी, वाहिद अली सिद्दीकी और शमीम बानो। कंवर कॉलोनी बड़वाहा से प्रवीण श्रीमाली, मीना श्रीमाली, आदित्य, अदिति शिवानी और मीनू राज श्रीमाली। पलसीकर कॉलोनी इंदौर से धनेश मटाई, राकेश मटाई, उमेश, विक्की असनानी, हनी, जिम्मी, अमिता, दियाना, जियांश और मटाई परिवार।

डोंगरगांव छत्तीसगढ़ से राष्ट्रपाल गजभिये, राधिका बीबी अनिष्का और तन्मय गजभिये, बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशन देवांगन, कौशल्या, हिमलता, डिंपल और उनके साथी, नावदाखेड़ी जिला देवास से प्रेम नारायण, जाट सार्थक, आदेश माही, पवन सिंह और उनके साथी, आजादनगर लक्सर हरिद्वार से ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, मेहराज जहां, गुमाश्ता नगर इंदौर से अनिल कवचाले, सभिया, सुषमा, सीमा, श्मिता, श्वेता, पूजा सखी और उनके साथी, बेरड़ी से हुकुम करम कर और उनके परिवार के सदस्य, बेरड़ी से ही राजेश सोनी, कंचन, गायत्री, वैष्णवी, चंचल, अर्जुन और धीरज सवनेकर की पसंद पर सुनवा रहे हैं ये कार्यक्रम का अगला गीत।

लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाज में ये गीत आप सुन रहे थे। अब अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाज में। ममता फिल्म का गीत है, गीत मजरूह सुल्तानपुरी का है, रोशन साहब का संगीत है और इस गीत की फरमाइश आप सभी की है। शिवाजी नगर नांदेड़ से ईश्वर चौखाला, करुणा विनोद

गौरव, प्रतीक्षा उत्कर्ष, केशव राव और उनके साथी देवास से नेत्रा रावणकर, योगेंद्र सिसोदिया, मनु ठाकुर, कृष्णा वैद्य, जकीर हुसैन नजमी और उनके साथी इंदौर से मनशु जयराम पाटिल, मंजू बलिराम पाटिल, सारिका नेहा, संध्या गोलू, तनु राखी देवांश और उनके साथी धर्मपुरी जिला धार से शेख फहीम मोहम्मद, मोहम्मद तस्लीम शेख, मुजफ्फर अयान फैजान, सुमेरा साइमा हसनीन और खुशी देवास से अलीना खानम, नसीब अख्तरी, जाफराबाद से सुधाकर राजे जाधव, डॉक्टर प्रशांत राजे जाधव, संचित मोताला से कुमार प्रथमेश देशमुख, कुमारी प्रणाली देशमुख और करड़ा रिसोड से कुमारी सानवी देशमुख और कुमार सरवर्द देशमुख, औरंगाबाद से नागनाथ गुप्ता और गोदावरी गुप्ता, इंदौर से सृष्टि उपाध्याय और उनके परिवार के सदस्य, रंथभवर से मोहम्मद यूनुस मंसूरी, मुकेश नारोलिया, मॉरिस अकबर, दिनेश कुंभकार, हसन भाई, जानकीलाल वर्मा और नियाजू भाटिया, पोफाली यवतमाल से जयराम सिंगणकर, दिशांत कुमार, वंदना धुले और उनके परिवार के सदस्य, दरियापुर बाभली से गजानंद येले और नवदीप येले, छीपा कॉलोनी सनावद से यूनुस खत्री, सादिक खत्री और अयूब खत्री, जायसवाल निवास गांधी चौक पंधाना से संतोष भाई जायसवाल और मधु जायसवाल, कोल्हापुर से अरुण कामले, तुषार कुरणे, प्रसिक कामले, एकता उत्कर्ष मेघना और उनके साथी, आड़ा बाजार इंदौर से भावना, प्रतिभा पांजरे, जिया बल्लू, मनीष शर्मा, आशीष और दिनेश पांजरे की पसंद पर सुनवा रहे हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत ममता फिल्म से।

मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाज में ये गीत आप सुन रहे थे। अब सुनवा रहे हैं गुमनाम फिल्म का गीत मोहम्मद रफी और शारदा की आवाज में। गीत हसरत जयपुरी का है, शंकर जयकिशन का संगीत है और इस गीत की फरमाइश करने वाले हमारे श्रोता हैं गुलबालोद तहसील आलोट जिला रतलाम से विक्रम मालवीय, रचनाबाई, कमलाबाई, वनदेवी, आकाश, माहेश्वरी, विनायक और उनके साथ ही सहारनपुर से सुरेश नारंग, आशु नारंग और सोनाली, गोला बाजार बक्सर से श्रद्धानंद आर्य, अभय, परमानंद, प्रमोद, रोहित और मोहित, सनावद से दिलीप मालाकार, योगेश मालाकार, सुनीता मुस्कान, जितेंद्र धर्मेंद्र मालाकार, इंदौर से देवेंद्र, राकेश, कुमारी निशा, प्रकाश और उनके साथ ही सनावद से मोहम्मद सादिक, मोहम्मद शाकिर, मुश्ताक अहमद, बेबी मंतसा, रमेश गौड़ और मोहम्मद शादाब खत्री, प्रणाम सिटी खंडवा से सुभाष खंडाले, मंदा खंडाले, संदीप, पिंटू कुमार, जयश्री और खंडाले परिवार, भोपाल से श्रवण सिंह गिन्नारे, रेखा, विनीता, शेर सिंह और गोपाल राठौड़, अंबागढ़ चौक छत्तीसगढ़ से ओम प्रकाश मसिया, सिलोचनी खुमेंद्र तुषारणी, अंबागढ़ चौकी से ही रिजवान खान, आयशा और अनस और रेहान, पुणे से पंकज वाडोदे, आर्या, प्रियंका, बीटी वाडोदे और उनके साथ ही बोराला धरंग मालेगांव से दत्ता घायल, सुनीता, सानिका गजानंद और उनके परिवार के सदस्य, कोटला बहादुर जिला मंदसौर से तूफान डांगे पटेल, टीना नेपाल, लक्ष्य और बाबू पटेल, शाहूनगर यवतमाल से राहुल मनवर, सरला, विशाल, चेतन, रोशनी और बेबी प्रियांशी, चांदूर बिस्वा तालुका नांदूरा से नारायण भाऊ खड़ से रक्षाताई, ललिता, संजना, गणेश, कार्तिक, मालती चौधरी, स्वाति, प्रयाग चौधरी और कुमारी देविका चौधरी, उमरखेड़ से मिलिंद खंडारे, कंचन, नागसेन, ओजस्वी, सारा, स्वाति, प्रीतम कुमार, किशोर गोदावरी, राजू और उनके साथी, क्रांतिनगर नांदेड़ से प्रगीश वड़गांवकर, कांचन, नारायण, शांताबाई, अंजलि, राजू, माया और उनके परिवार के सदस्य, ग्राम लोहारी जिला खंडवा से राजेश कुमार धंजे, राहुल कुमार, विशाल, शीला और गायत्री धंजे, खुर्दी रोड मानपुर से विजय वेद, रानी महिमा और नीतू वेद, छेगांव माखन खंडवा से भूपेंद्र, अशोक कुमार वाघे, झंवर और उनके परिवार के सदस्य। तो आप सभी की पसंद पर हम आपको सुनवा रहे हैं कार्यक्रम का अगला गीत गुमनाम फिल्म से।

शारदा और मोहम्मद रफी की आवाज में ये गीत आप सुन रहे थे। अब सुनवा रहे हैं ज्वेल थी फिल्म का गीत लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाज में। मजरूह सुल्तानपुरी का गीत है, संगीत एसडी बर्मन का। और इस गीत को सुनना चाहते हैं रिंगनोद जिलाधार से सुनील माहेश्वरी, गोविंद माहेश्वरी, श्याम माहेश्वरी और तनिष्क माहेश्वरी। शेवगांव अहिल्यानगर से बाबा साहेब कंगणकर, साखरबाई, परमेश्वरी, रोहिणी, श्रावणी, ईश्वरी और उनके साथ ही। गौतमनगर नांदेड़ से प्रभाकर जोंधले, आरती जोंधले, नंदानगर सुलगांव से नंदराम मनशारे, हरी, रिंकी, रेखा, रीना, राजकुमार और मनशारे परिवार। छिंदवाड़ा से निसार खान, उमेश गुप्ता, संतोष, मोनू और उनके साथ ही। यहीं से सादिया, जारा, आलिया, अलीशा, नेहा, ज्योति और परिवार के सदस्य। बीड़ शहर से रणजीत, नामदेव थोरात, रितेश, आकाश, रश्मि, रंजना और उनके साथी। बड़ा बाजार देवास से तस्नीम, मुर्तजा, आने अली, मोहम्मद नजमी, मुनेरा, सारा, शकीना और जमीला नजमी। कवई सालपुरा, बारा जिला ही है राजस्थान का। सतीश श्रीवास्तव, प्रेमलता, हिमानी, हर्षिता, अभिषेक और उनके साथी। रामगंज खंडवा से विजय महोबिया, संजय, कविता, विशाल, विवेक, सपना, शिवी, सलोनी, राजू चराटे और पेंटर बाबू। तुलजा भवानी माता वार्ड खंडवा से अनिल विंचुरकर, मंगला, शोभित विंचुरकर। उदयनगर से मोहित रत्नपार की, स्वाति, मनस्वी और उनके परिवार के सदस्य। इसी गीत को सुनना चाहते हैं महाराष्ट्र से शाहजी बोड़खे, नंदा बोड़खे, हनुमान और सारिका बोड़खे। कुंदानगर खरगोन से ध्रुवांश, सोनवणिक, सुनीता, खुशी, प्रियांश, आशीष, पूनम।

कृष्णा और शुभम सोनवणे, ग्राम जसवाड़ी से दुर्गेश नागनपुरे, वंदना भावना बिंदु गोलू, सूरज कुमार ढाक से और उनके साथी, नेपानगर से सुदर्शन शाह और पल्लवी, त्रिलोकनगर देवास से अनंत चिखले, मुकेश, प्रदीप कुलकर्णी, उल्लास जोशी, राजेंद्र पारिख, अमिताभ प्रसाद, अंबिका प्रसाद, लखन चौधरी, महेश शर्मा और उनके परिवार के सदस्य, मोहद जिला बुरहानपुर से मुशर्रफ खान तड़वी, जरीना मुबारक, परवीज, रोजमीन, तैमूर और भैया तड़वी, गांव रतनपुर तहसील जिरनिया जिला खरगोन से भागीरथ नायक, जितेंद्र नायक, सुभाष, रविंद्र, शिवानी, अश्विनी, हर्षराज, आदित्य और उनके साथी, विडुल उमरखेड़ से गंगाधर पोपलवाड़, सम्यक प्रियंका, लक्ष्मी, भारत दुले, अम्बेडकर चौक वाकोड़ी से उत्तम जमधाड़े और देवशाला जमधाड़े की पसंद पर सुनवा रहे हैं ये गीत।

लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाज में ये गीत आप सुन रहे थे। अब सुनवा रहे हैं मोहम्मद रफी और आशा भोसले का गाया गीत शतरंज फिल्म से। एसएच बिहारी के बोल हैं, तर्ज शंकर जयकिशन की है। अनुरोध आप सभी का, कृष्णबाग कॉलोनी इंदौर से नियाज मोहम्मद मंसूरी, सरताज बानो, उम्मीद, रजिया, जुनेद और अलीना, शास्त्री नगर खंडवा से रमेश पंचोली, बीनो देवी, प्रकाश उर्मिला, दीपक, दीपिका, नंदिनी, निखिल, गोरांज पंचोली, बिस्टान जिला खरगोन से कैलाश पगारे, दुर्गा देवी, राहुल और मनीषा, इंदौर से देविका चौधरी, कविता, संजय, मनीष वाणी, ब्रोनो और उनके साथी, इंदिरा बिहार रायगढ़ से अक्रम नूरजहां, डब्ल्यू नूरजहां, सईद, वसीम वलीउल्लाह नूरजहां, बुलंदशहर से बद्रू अली अंसारी, फर्जी अली अंसारी, लुधियाना पंजाब से अमरजीत सोनम कौर, परमजीत आदिबा कौर, सरवानिया महाराज जिला नीमच से गोविंद पाटीदार, ममता, पूजा, मधुसूदन, यशस्वी और हंसवी पाटीदार, नवग्रह नगरी तिलकपत खरगोन से मनीष निमाड़े, वंशिका अनुराग और उनके परिवार के सदस्य, अर्धापुर से दुर्गा दास जोशी, गंगाधर, गजानन, संजय, आशीष पृथ्वी और उनके साथी, मक्सी से दयाराम जाटव, चैन सिंह आरोल, नानूराम कांसोटिया, नंद किशोर और दीपक कांसोटिया, लच्छनपुर से विश्वनाथ साहू, लेवई से गुलाबदास माणिकपुरी, दतरंगी से भागवत वर्मा, खंडवा से अब्दुल गफ्फार, डावर अब्दुल हक, जिया उल हक, अब्दुल रहमान, अब्दुल कादर, मोहम्मद हमजा और अब्दुल रशीद खत्री, धाड़ी नांदूरा से श्री कृष्ण बाठे, संदीप बाठे, अमूल्य और वैशाली बाठे, सनावद से हुकुम चंद कटारिया, पिंटू सेन, हरिनिवास खेड़े, दीपक, सचिन, प्रभा, कृष्णा, अर्नव और काव्यांशी कटारिया, मेहरनगर उमरखेड़ से अभिजीत गवहाणकर, सरिता, प्रिंस एकांश गवहाणकर, बदलापुर मुंबई से सिद्धांत, प्रणीता, अर्जुन, वैशाली, श्वेता, सुमित और उनके परिवार के सदस्य, अन्नपूर्णा रोड इंदौर से सुरेश मंगवानी, लक्ष्मी मंगवानी, शोभा, निर्मल, ज्योति, नेहा और उनके साथी, मालीपुरा बीजलपुर से मोहनलाल चौहान, ललिता चौहान, प्रियंका परमार, वर्णिका और उनके परिवार के सदस्य, धानोरा से भगवान पाटिल, मंगीश, सचिन, प्रेम, श्रेया और श्रुति, दादरी गेट भिवानी से कृष्ण मेहरा, कोमल, किरण, कपिल और कृणाल, मलोट से सतीश मिगलानी, सीमा, अनमोल, धर्मपाल, वीर सिंह लाठी, लखविंदर संधू, महावीर और गुरुचरण, पांडर कवड़ा से अनिल बुरांडे, उषा, प्राची, अनुश्री, धनश्री, बल्लार शाह से सूरज जी लोंढे, प्राची और एकलव्य, नेवासा खुपटी से बंडू लोहार, पोपलघट, माया, शिवांश, चंद्रकला और देवीदास पोपलघट, श्रीरामपुर भोकर से हरिभाऊ बिड़वे, श्रावण, अनिता और बिड़वे परिवार, लातूर से उस्मान शेख, फौजी, साहिराबानो, दस्तगीर, फैज नबी, शाकिर, इस्लामी, बाबा शेख, करिश्मा और सिमर शेख और ये हमारे श्रोता हैं। लाबरिया भैरू से अनिल बामनिया, प्रमिला बामनिया, नंदनी, मुस्कान, नीलम, सावन, कृष्ण कुमार, ऋतिक, कृणाल, केतन और बामनिया परिवार, हिंगोली से रामचंद्र, धोंडीबा इंगोले, सिद्धांत, टिकू इंगोले, रमाबाई, मयूरी, सुरभि, मंजूषा, गौतम इंगोले, नामदेव शिंदे, मास्टर विलास और सुनील जबड़े, वस्मत हिंगोली से दीपाली, राजू ठोके, पार्वती, सखाराम रोहित, सोनू मोनू ठोके, झुमरी तलैया से देव इंगोले, छोटू दादा और उनके परिवार के सदस्य, बलिया से ओम प्रकाश राय, उषा, अमित और हैप्पी राय, दुबिहा, नेवादा, गाजीपुर से प्रतीक राय, रोशनी, प्रांजल, शेरपुर कला से अवधेश, प्रीति और नवनीत राय, नेपाल पैलेस सागर से तिलक राणा, मीना राणा, मोनिका नूपुर, ऋषिका, सरोज चौक अमरावती से कमरुल्ला, नसीमा आयशा, हदिया

आलिया आसमा और उनके साथी सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह ठाकुर, डॉक्टर अमनदीप, कालका से शुभ चंद्र बजाज बिट्टा साहिल और उनके परिवार के सदस्य। तो आप सभी की पसंद पसंद आ रहे हैं कार्यक्रम के आखिर में ये गीत शतरंज फिल्म से।

आशा भोसले और मोहम्मद रफी की गाई के गाए इस गीत के साथ ही मनभावन कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। आप सुन रहे थे मनभावन कार्यक्रम, ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। थोड़ी ही देर में अगला कार्यक्रम आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

ये आकाशवाणी है। अभी आप आज राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान हुई कार्यवाही की रिकॉर्डिंग सुनेंगे। दिस इज द दिल्ली स्टेशन ऑफ आकाशवाणी। प्लीज स्टैंड बाय।

0: एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस ऑल्सो एंड डेफिनेटली इट्स प्रोवाइडिंग द बेनिफिट द कंसर्न कम्युनिटी विच इज द क्वेश्चन इज रेज बाय द पर्टिकुलर
1: यस थर्ड सप्लीमेंट्री श्रीमान डॉक्टर अशोक कुमार मिट्टल जी.
2: एनवायरमेंट तथा बायोडायवर्सिटी के मैनेजमेंट में महिलाओं की भागीदारी विशेषकर ग्रामीण क्षेत्र और आदिवासी क्षेत्रों में अत्यंत महत्वपूर्ण है. वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप स्थानीय स्तर पर वन उत्पादों के कलेक्शन और प्रोटेक्शन में भी सक्रिय भूमिका निभाते हैं. तो माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि बायोडायवर्सिटी से जुड़े फाइनेंशियल ग्रांट में वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए क्या विशेष प्रावधान किए गए हैं. इसके साथ साथ बायोडायवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी में महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन बढ़ाने और फॉरेस्ट प्रोटेक्शन से जुड़े निर्णय लेने की प्रक्रिया में उनकी सक्रिय भूमिका सुरक्षित करने के लिए मंत्रालय द्वारा क्या ठोस कदम उठाए गए. धन्यवाद.
1: ऑनरेबल मिनिस्टर.
0: माननीय सभापति महोदय, मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारा जो बायोडायवर्सिटी का विषय है वह हमारे विकास की प्राथमिकताओं में है. बायोडायवर्सिटी को सिक्योर करने का अर्थ है फूड सिक्योरिटी को, आजीविका को, इकोलॉजिकल बैलेंस को, हमारे जंगल, हमारे वेटलैंड, हमारे समुद्री तट, रेगिस्तान, घास के मैदान और मैरीन इकोसिस्टम की सुरक्षा करने का विषय है. और निश्चित रूप से जो ग्राम सभाओं का हम गठन करते हैं उसमें महिलाओं के सशक्तिकरण पर हम पूरा ध्यान देते हैं, लेकिन पूरी कम्युनिटी को जब हम जोड़ते हैं तो उसमें महिला सशक्तिकरण में जो उनकी भागीदारी है उसको सुनिश्चित करने का प्रयास करते हैं. और ये निश्चित रूप से देश की बायोडायवर्सिटी संरक्षण में उनकी बड़ी भूमिका है. इसका कोई वैधानिक प्रावधान तो नहीं है, लेकिन हम उनको पूरा प्रोत्साहन, उनको पूरी नॉलेज शेयरिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए कार्य करते हैं.
1: फोर्थ सप्लीमेंट्री डॉक्टर श्रीमती मेहता विश्रम कुलकर्णी जी.
3: धन्यवाद सभापति महोदय. बायोडायवर्सिटी के बारे में ये जो प्रश्न है, पुणे में 25 साल पहले से 900 हेक्टेयर से भी ज्यादा जमीन पर बायोडायवर्सिटी का रिजर्वेशन किया गया था, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाया. तो मेरा प्रश्न है और दूसरा भी इससे जुड़ा है कि मियावाकी फॉरेस्ट के जरिए अर्बन एरियाज में छोटे छोटे प्लॉट्स पर भी बायोडायवर्सिटी हम कर सकते हैं. तो मेरा प्रश्न ये है कि क्या मिनिस्ट्री अर्बन लोकल बॉडीज को ये आदेश देगी कि वो बायोडायवर्सिटी पार्क का रिजर्वेशन का इम्प्लीमेंट करे और मियावाकी गार्डन के लिए भी अगर मिनिस्ट्री बजट की सहायता कर सकती है क्या, ये मेरा प्रश्न है.
1: ऑनरेबल मिनिस्टर.
0: माननीय सभापति महोदय, मंत्रालय के द्वारा नगर वन और नमो वन की योजना चलाई जाती है. वो बायोडायवर्सिटी से अलग है. अपने स्थानीय प्रशासन के माध्यम से अगर सदस्य महोदय प्रस्ताव भेजेगी तो हम सहानुभूतिपूर्वक विचार करेंगे.
1: नाउ क्वेश्चन नंबर 122 श्रीमान ए रहीम जी.
4: प्रश्न संख्या 122. क्या श्रम और रोजगार मंत्री ये बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार ने श्रम संहिताओं के लागू होने के पश्चात रोजगार सुरक्षा, संविदात्मक रोजगार, छंटनी और कामबंदी यानी ले ऑफ पर पड़ने वाले प्रभाव का आकलन किया है, और यदि हाँ तो उसके निष्कर्ष क्या हैं? ख श्रम संहिताओं के अंतर्गत श्रमिकों की छंटनी करने वाले कर्मचारियों की कामबंदी अथवा अपना परिचालन बंद करने वाली स्थापनाओं की राज्यवार और क्षेत्रवार संख्या कितनी कितनी है. ग क्या श्रम संहिताओं को लागू करने से पूर्व और पश्चात छंटनी, कामबंदी, औद्योगिक विवादों तथा औपचारिक रोजगार के संबंध में कोई तुलनात्मक अध्ययन किया गया है. और घ क्या सरकार श्रम संहिताओं के कार्यान्वयन तथा श्रमिकों के अधिकारों एवं उनकी रोजगार संबंधी सुरक्षा पर इसके प्रभाव की स्वतंत्र समीक्षा करवाने का विचार रखती है.
1: सेकंड सप्लीमेंट्री थ्रू पी विल्सन जी.
5: थ्रू दिस हाउस आई वुड लाइक टू आस्क द ऑनरेबल मिनिस्टर द रीजंस फॉर द गवर्नमेंट डिसीजन टू अब्सटेन फ्रॉम द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन कन्वेंशन ऑन द डीसेंट वर्क इन द प्लेटफॉर्म इकोनॉमी व्हिच सीक्स टू सेट मिनिमम स्टैंडर्ड्स फॉर द गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स एंड वॉज सपोर्टेड बाई द बोथ इंडियन एम्प्लॉयर्स एंड वर्कर्स especially when such absenteeism risk denying lakhs of young Indians engaged in app-based work basic protections on working conditions, social security and fair treatment that the global community has recognized as essential. Thank you, Chairman.
1: Honorable Minister.
4: Dr. Mansukh Mandaviya, श्रम एवं रोजगार मंत्री.
6: माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने आईएलओ के गिग वर्कर्स के विषय के संदर्भ में जब क्वेश्चंस पूछा है, मैं बताना चाहूंगा कि गिग वर्कर्स हमारे देश में एक नई व्यवस्था खड़ी हो रही है और गिग वर्कर्स का हितों की रक्षा हो

0: गिग वर्कर्स को अपना एक एम्प्लॉइज के रूप में अधिकार मिले, उसके लिए पहली बार लेबर कोड में, नहीं केवल भारत में लेकिन दुनिया में पहली बार हमने गिग वर्कर्स को रिकॉग्नाइज करा है और उसको कानूनी दर्जा दिया। कानूनी दर्जा देने वाला दुनिया का पहला देश है वो भारत है, और भारत में गिग वर्कर्स को रजिस्टर करने के लिए ई श्रम पोर्टल पर प्रावधान रखा गया है। और आज जो नीति आयोग के एक रिपोर्ट के मुताबिक 80 लाख गिग वर्कर्स है और उसमें से 10 लाख गिग वर्कर्स ऑलरेडी ई श्रम पोर्टल पर रजिस्टर हुए हैं। अभी विषय है उसके हितों की रक्षा के लिए या तो उसको सोशल सिक्योरिटी देने के लिए। तो माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा सदन को और देश को बताना चाहूंगा कि हमारे गिग वर्कर्स को सोशल सिक्योरिटी मिले, उसको सोशल सिक्योरिटी का कानूनी प्रावधान मिले, उसके लिए ही हमने लेबर कोड में प्रावधान करा है। अभी आईएलओ ने जो अपना कन्वेंशन कर रहे थे, यूरोप और उनका एक मॉडल होता है, भारत का गिग वर्कर्स का एक अलग मॉडल है, हमारे यहाँ वो एक इमर्जिंग व्यवस्था है, उसके लिए कई प्रावधान हमने अभी करके रखा है। कई प्रावधान भविष्य में भी करने की आवश्यकता हो तो हम उसके में भी प्रावधान करेंगे। इसलिए हमें फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए थी, ना कि उसके सोशल सिक्योरिटी के हितों के लिए कोई कॉम्प्रोमाइज करना। इसलिए फ्लोर के द्वारा, पार्लियामेंट के सदन के द्वारा मैं एश्योर करना चाहता हूं कि गिग वर्कर्स के हितों की रक्षा के लिए हमने लेबर कोड में जो प्रावधान करा है उसका इम्प्लीमेंटेशन करके उसको सोशल सिक्योरिटी सुनिश्चित करी जाएगी।
1: थर्ड सप्लीमेंट्री, श्रीमान प्रमोद बोरा जी।
2: ऑनरेबल चेयरमैन सर, विद रेफरेंस टू द इम्पैक्ट ऑन एम्प्लॉयमेंट सिक्योरिटी, विल द ऑनरेबल मिनिस्टर स्टेट इफ एनी असेसमेंट हैज बीन मेड ऑन हाउ द न्यू 50% बेसिक वेज रूल अंडर द कोड ऑन वेजेस will impact workers' eligibility under the 21,000 ESIC ceiling, and what specific institutional mechanism or programs are being implemented under the new codes to currently clear pending provident funds of displaced workers and provide them financial literacy training to protect their social security resources. Thank you.
1: Honorable Minister.
0: Maniya Adhyaksh Mahoday, जब लेबर कोड लागू होने से सोशल सिक्योरिटी को हम बढ़ावा दे रहे हैं। ये देश है जिसमें 2014 के पहले केवल देश में 29% लोगों को, 19 करोड़ लोगों को सोशल सिक्योरिटी का बेनिफिट मिलता था। पिछले 12 साल में मोदी गवर्नमेंट में हो एक्सेस बढ़ा के आज देश में 68% यानी कि 101 करोड़ लोगों को सोशल सिक्योरिटी देने वाला ये देश बना। सोशल सिक्योरिटी सुनिश्चित हो और इसके लिए एसिक में हमारे न्यू लेबर कोड हमें प्रावधान करता है कि एसिक में पहले कई स्टेट बाहर थे, कई स्टेट ESIC के लाभार्थी नहीं थे, EPFO में उसको लाभ नहीं मिल रहा, लेकिन अभी लेबर कोड ये सुनिश्चित करता है कि सारे देश के सभी डिस्ट्रिक्ट को नोटिफाई करा जाएगा और सभी डिस्ट्रिक्ट में ESIC के तहत जो हमारे प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले वर्कर्स है, ESIC के लाभार्थी है, उसको उसका लाभ दिया जाएगा, सोशल सिक्योरिटी दी जाएगी, हेल्थ सिक्योरिटी दी जाएगी, ताकि ऐसे वर्कर उसके लिए काम करते करते कोई भी दिक्कत आई हो, उसका काम छूट गया, उसके मैटरनिटी बेनिफिट की आवश्यकता हुई, तो ऐसी स्थिति में भी उसको लाभ मिले, वो भी हमने सुनिश्चित करा है। और माननीय सदस्य ने अपने प्रश्न के प्रारंभ में कहा कि उससे क्या कोई असेसमेंट करा गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, जब हमने लेबर कोड लागू करा, और लेबर कोड तो 2019 और 20 में बना था लेकिन कई कारणों से वो लागू नहीं हो पाया था, लेकिन हमने 2025 नवंबर में देश में लेबर कोड लागू करा और मई 2026 में हमने उसका रूल्स का इम्प्लीमेंटेशन करा। सभी स्टेट अपने रूल्स को उसके साथ अलाइन कर रहे हैं और स्टेट स्टेप बाय स्टेप इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में हमने एक प्राइमरी सर्वे करा था और हमारे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ने VVGNLI करके हमारी एक लेबर इंस्टीट्यूट है, उन्होंने एक व्यापक सर्वे करा। उस सर्वे में वर्कर्स की ओर से जो फीडबैक आए, ये मैं आपके द्वारा सदन को और देश को बताना चाहूंगा। 60% वर्कर्स का मानना है कि लेबर कोड के पूर्ण इम्प्लीमेंटेशन से वर्किंग कंडीशन बेहतर बनेगी। 63% वर्कर्स का विश्वास है कि सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट अधिक पोर्टेबल बनेंगे। 60% कॉन्ट्रैक्ट माइग्रेंट और गिग वर्कर्स का मानना है कि उन्हें सोशल सिक्योरिटी का बेहतर कवरेज मिलेगा। 66%

0: वर्कर्स का मानना है कि एम्प्लॉयमेंट टर्म्स एंड कंडीशन अधिक स्पष्ट होगी। 66% वर्कर्स का मानना है कि महिला वर्कर्स की सेफ्टी और प्रोटेक्शन में सुधार आएगा और 63% वर्कर्स का विश्वास है कि वर्क प्लेस पर सेफ्टी इक्विपमेंट और प्रोटेक्टिव मेजरमेंट बेहतर होगा। ये कुल मिला के हमारा सर्वे से निकला है, वो बताता है कि देश के श्रमिक के लिए ये लेबर कोड हितकारी।
1: फोर्थ सप्लीमेंट्री श्रीमान मयंक कुमार नायक जी।
2: थैंक यू सर। माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में श्रम और रोजगार मंत्रालय के द्वारा खूब काम किया जा रहा है। नई नई टेक्नोलॉजी और नए नए औद्योगिक डेवलपमेंट भी हो रहे हैं। सर मेरा माननीय मंत्री जी आदरणीय मनसुख भाई जी से प्रश्न है कि सर जो नए नए बिजनेस आ रहे हैं, नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, तो क्या श्रम मंत्रालय के द्वारा उस इंडस्ट्रीज को जिस प्रकार से कामदार चाहिए, लेबर चाहिए, उसकी ट्रेनिंग का कोई प्रावधान है क्या? और यदि हाँ तो उनके लिए सरकार के द्वारा और राज्य सरकारों द्वारा समन्वय करके इस तरह से देश के युवाओं को रोजगारी मिल जाए जो आने वाले भारत में आत्मनिर्भर भारत का माननीय प्रधानमंत्री ने स्वप्न देखा है उसे पूरे करने में सरकार का जो दायित्व है वो सरकार कैसे निभा रही है वो मैं आपके माननीय मंत्री से जानना चाहता हूँ। थैंक यू सर।
1: ऑनरेबल मिनिस्टर।
0: माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है। बदलते समय में टेक्नोलॉजी का भी बदलाव हो रहा है, बदलते समय में वर्किंग कंडीशन भी बदल रही है। एक समय था जब श्रमिक खेत में काम करने के लिए जाते थे तो हाथों से काम करते थे, आज समय बदले वो टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हैं, फार्म इक्विपमेंट का यूज करते हैं, और जो स्प्रे करते थे पहले तो हैंड से उसको पेस्टिसाइड का स्प्रे करना था तो हैंड से करते थे, आज समय बदला और ड्रोन से करते हैं। तो ड्रोन टेक्नोलॉजी का समझदारी आए, ड्रोन टेक्नोलॉजी के लिए ट्रेनिंग मिले, तब जाके हमारे ड्रोन दीदी आज देश में हजारों की संख्या में ऐसी महिला को ऐसे ड्रोन चलाने का तकनीकी का ज्ञान दिया गया है ताकि वो ड्रोन को अपने अर्थोपार्जन के लिए उपयोग करते हैं और किसान के खेत में जाके ड्रोन से वो छिड़काव करवाते हैं। वैसे कई सेक्टर में, हर सेक्टर में टेक्नोलॉजी आई है और टेक्नोलॉजी के अनुरूप हमारे वर्कर्स में टेक्नोलॉजी का ज्ञान आए, इसके लिए स्किल इंडिया मूवमेंट के द्वारा उसको स्किलिंग करा जाता है। हर इंडस्ट्रीज को ये व्यवस्था और हर इंडस्ट्रीज को ये कहा गया है कि बदलते टेक्नोलॉजी के साथ उसको रिस्किलिंग करा जाए। तो आज जिस टेक्नोलॉजी का उपयोग आज आपकी इंडस्ट्रीज में करते हैं और उसका नया आप वर्जन आया और नया मशीन आया तो नया मशीन का उपयोग करने के लिए उसको रिस्किलिंग करने की भी व्यवस्था करी गई है। स्किल इंडिया के तहत अभी लास्ट 2025 के बजट में अनाउंसमेंट करा गया था सरकार के द्वारा, जिसमें हर सेक्टर में भी टेक्नोलॉजी बदल रही है और इंडस्ट्रीज क्लस्टर के आधार पर जिस टाइप का इंडस्ट्रीज क्लस्टर है एक क्लस्टर के अनुरूप उसको स्किलिंग हो, इसलिए हब एंड स्पोक के द्वारा आईटीआई की व्यवस्था करी गई है। एक डिस्ट्रिक्ट में एक लेवल की इंडस्ट्रीज है तो डिस्ट्रिक्ट के हब के रूप में एक आईटीआई काम करेगी और स्पोक के रूप में ये इंडस्ट्रीज के क्लस्टर में उसको ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि उसकी स्किलिंग का भी इन्हांसमेंट हो और इस स्किलिंग के इन्हांसमेंट का उपयोग हमारे टेक्नोलॉजी का उपयोग करके उपार्जन बढ़े। दूसरा, माननीय अध्यक्ष महोदय, टेक्नोलॉजी कैसे रोजगार एम्प्लॉयमेंट देने के लिए उपयोगी हो सकती है? भारत सरकार ने नेशनल कैरियर सर्विस पोर्टल बनाया है तो नेशनल कैरियर सर्विस पोर्टल पर आज देश में 53 लाख से अधिक स्टेट गवर्नमेंट, देश की कंपनी, दुनिया की कंपनी उसके पर जुड़ी हुई है। उनको की कोई भी टाइप का स्किल मैन पावर की रिक्वायरमेंट हो तो स्किल मैन पावर उसको क्या चाहिए उसके पर वो नोट करते हैं। आज सुबह से मैंने देखा 12 लाख से अधिक नौकरियां वहां उपलब्ध है, कोई ना कोई टाइप के उसको स्किल मैन पावर चाहिए ताकि जिसको जॉब चाहिए वो जिस टाइप की स्किल की रिक्वायरमेंट है ऐसा स्किल वर्कर उसमें अप्लाई कर सकते हैं। उन्होंने अप्लाई करा और फिर उसको स्किलिंग की आवश्यकता रही, विशेष स्किलिंग की आवश्यकता हुई तो भारत सरकार की ओर से उसको 15 दिन का, 1 महीने का, 3 महीने का स्किलिंग करा के जिस इंडस्ट्रीज को जिस टाइप का स्किल मैन पावर चाहिए ऐसा स्किल मैन पावर उपलब्ध कराने के लिए भी भारत सरकार ने व्यवस्था करी है, इसलिए देश में एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ रही है। देश के

0: युवाओं में एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ने से उसका रोजगार प्राप्त हो रहा है और रोजगार निर्माण से देश में हमारे इंडस्ट्रीज का की जो स्किल मैन पावर की रिक्वायरमेंट है वो भी पूरी हो रही है। इसलिए समय बदलते समय के साथ स्किलिंग, रिस्किलिंग और रिस्किलिंग के बाद जॉब और जॉब के बाद अर्थोपार्जन की एक श्रृंखला मोदी गवर्नमेंट ने हमने सुनिश्चित करी।
1: नाउ क्वेश्चन नंबर 123 श्रीमान संतोष कुमार पी।
2: प्रश्न संख्या 123, क्या श्रम और रोजगार मंत्री ये बताने की कृपा करेंगे कि आज की स्थिति के अनुसार अकुशल, अर्धकुशल, कुशल तथा अति कुशल श्रमिकों सहित विभिन्न श्रेणियों के कामगारों के लिए अधिसूचित न्यूनतम मजदूरी का राज्य संघ राज्य क्षेत्रवार ब्यौरा क्या है? क्या सरकार ने मुद्रास्फीति तथा जीवन यापन की बढ़ती लागत के दृष्टिगत विद्यमान न्यूनतम मजदूरी की पर्याप्तता की कोई समीक्षा की है, और यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है? ग, क्या सरकार मजदूरी संहिता 2019 के अंतर्गत न्यूनतम मजदूरी लागू करने सहित न्यूनतम मजदूरी को संशोधित करने अथवा बढ़ाने का विचार रखती है, और यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा तथा संभावित समय सीमा क्या है? और घ, देश भर में न्यूनतम मजदूरी संबंधी उपबंधों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?
1: सेकंड सप्लीमेंट्री श्रीमान सतपाल शर्मा जी।
3: धन्यवाद माननीय चेयरमैन महोदय। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी के ध्यान में ये क्वेश्चन लाना चाहता हूँ कि जो रेट्स ऑफ वेजेज है इंक्लूडिंग वीडीए पर डे वो एग्रीकल्चर के केस में बहुत कम है, जबकि हम सब जानते हैं कि जीवन व्यतीत करने के लिए एग्रीकल्चर का एक विशेष महत्व होता है। और जब मैं इसको कंपैरिजन करता हूँ स्वीपिंग से, वॉच एंड वार्ड, लोडिंग अनलोडिंग, इन सब के संदर्भ में ये जो वेजेस हैं बहुत कम है, तो क्या सरकार इस विषय को गंभीरता से लेगी और किसानों के रेट्स को भी बढ़ाने का प्रयत्न करेगी? एक थोड़ा सा एक विषय क्लासिफिकेशन को लेकर भी है, तीन क्लासिफिकेशन दी है ए, बी एंड सी। आज के संदर्भ में जब हम पूरे भारतवर्ष की बात करते हैं, ठीक है बड़े जगह हैं जैसे दिल्ली है, मुंबई है, मद्रास है, लेकिन इन जगहों को छोड़कर मुझे लगता है कि भारतवर्ष की सभी जगहों को मात्र बी में ही कन्वर्ट किया जाना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया।
1: ऑनरेबल मिनिस्टर
2: डॉक्टर मनसुख मांडविया, श्रम एवं रोजगार मंत्री।
0: माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने किसान के हित की रक्षा की बात करी है, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि सभी लोगों को जीवन व्यापन करने के लिए मिनिमम जरूरत है वो तो उपलब्ध होना ही होना चाहिए, और मिनिमम जरूरत उपलब्ध हो इसलिए ही प्रधानमंत्री जी ने आज देश में इस टाइप की सोशल सिक्योरिटी की व्यवस्था करी है, ताकि देश में सभी नागरिक को अपना घर मिले, पूर्ता खाना मिले और घर में उसको गैस का सिलेंडर मिले। ये सारी व्यवस्था सोशल सिक्योरिटी का एक पार्ट ही है और वेजेस का भी एक पार्ट है। और जब वेजेस तय करी जाती है तब व्यक्ति को कितना न्यूट्रिएंट फूड चाहिए, कितनी कैलोरी चाहिए, उसको विज्ञापन के उसको जीवन निर्वाह के लिए कपड़ा चाहिए, उसको घर चाहिए, उसको फैन, घर में फैन चाहिए। तो पहले फैन नहीं था तो बिजली बिल नहीं आता था, आज अभी मोबाइल तो हम काउंट ना करें वो एडिशनल व्यवस्था है, लेकिन उसके जीवन में मिनिमम जीवन जरूरी चीजों को खरीदने के लिए उसको मिनिमम जो खर्च लगता है उसको मिनिमम वेज के रूप में माना जाता है। और मिनिमम वेज आज तक माननीय अध्यक्ष महोदय सरकार तय करती थी, लेकिन भारत सरकार तय करती थी, लेकिन वो एडवाइजरी के रूप में था, स्टेट उसको माने नहीं माने उसके लिए कोई कंपलसरी नहीं था। लेकिन माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय प्रधानमंत्री जी ने लेबर कोड लागू करा, लेबर कोड में फ्लोर वेज की का प्रावधान करा गया है, तो भारत सरकार अभी नए लेबर कोड के मुताबिक फ्लोर वेज तय करेगी। फ्लोर वेज मतलब कोई भी राज्य उससे कम मिनिमम वेज नहीं देंगे, उसका तो इतना देना ही देना, उससे ऊपर राज्य जितना रख सकते हैं, जितना रखना चाहे इतना रख सकते हैं, उसमें से सभी राज्य अपने, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि देश में बहुत डाइवर्सिटी है, हमारे देश में मैदानी प्रदेश भी है, हिमालयन रेंज भी है, नॉर्थ ईस्ट जैसे पहाड़ी प्रदेश भी है, विकसित प्रदेश भी है, अल्पविकसित प्रदेश भी है, तो ऐसी स्थिति में उसकी रिक्वायरमेंट और उसका जीवन निर्वाह का एबीसी यानी कि एक मेट्रोपॉलिटन सिटी, उसके अगल बगल में रहने वाले लोगों का खर्च, एक छोटे शहर में रहने वाले और उसके अगल बगल में रहने वाले लोगों का जीवन खर्च, और एक का दूर सुदूर गांव में रहने वाले और किसान का जीवन निर्वाह का खर्च अलग अलग होता है, उसको ध्यान में रख के फ्लोर वेज तय करा जाएगा। और फ्लोर वेज के ऊपर सब लोग वेज तय करे उसमें सारा पैरामीटर को सुनिश्चित करके तय करा।

0: जाएगा। वर्तमान समय में जो वेजेस उपलब्ध है वो हर साल में दो बार वेरिएबल डियरनेस अलाउंस होता है, उसके अनुसार एड होता है और ये आज भारत सरकार सभी को बाधित करती है।
1: हेड सप्लीमेंट्री थ्रू आर गिरिराजन जी।
2: सर, नाउ द मिनिस्ट्री इज अनाउंसिंग मिनिमम वेजेस 5 ईयर वंस और 3 ईयर वंस और 2 ईयर वंस रेगुलरली। द मिनिस्ट्री शुड अनाउंस द मिनिमम वेजेस एवरी फाइनेंशियल ईयर विदाउट फेल। सर, द मिनिमम वेजेस नॉट अनाउंस्ड ईयरली बाय द मिनिस्ट्री। द मिनिस्ट्री हैज एनी प्रपोजल टू अनाउंस मिनिमम वेजेस एवरी फाइनेंशियल ईयर, दैट विल हेल्प द लेबर्स अक्रॉस द कंट्री। थैंक यू।
1: ऑनरेबल मिनिस्टर।
0: माननीय अध्यक्ष महोदय, हर राज्य अपने अपने हिसाब से मिनिमम वेज में बढ़ोतरी करता है, लेकिन भारत सरकार तो जो महंगाई को ध्यान में रखते हुए हर साल में दो बार VDR के द्वारा VDS के द्वारा बढ़ोतरी करता है कि इस बार जो इन्फ्लेशन बढ़ा हो, अभी महंगाई बढ़ी हो, उसके आधार पर उसका खर्च बढ़ता है तो उसके आधार पर सरकार बढ़ोतरी करती है और उसको देखते हुए राज्य सरकार उसको प्लस माइनस प्लस कर सकती है, माइनस तो नहीं, और उसका लाभ अपने देश के अपने राज्य के वर्कर्स को दे सकते हैं।
1: फोर्थ सप्लीमेंट्री श्रीमती सुलादा देव।
3: थैंक यू सो मच ऑनरेबल चेयरमैन सर। जय श्री जगन्नाथ सर। माननीय मंत्री अभी बोल रहे थे कि इन्फ्लेशन के बारे में किस तरह से हर चीज में प्राइस राइज हो रहे हैं। एक मिडिल क्लास फैमिली भी अपनी घर चलाने के लिए मुश्किल हो रहा है, तो हम लोग जो एकदम लोअर क्लास बिलोंग्स करते हैं, जो अनस्किल्ड लेबर और स्किल्ड लेबर है, उन लोगों के लिए मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जिस तरह से प्राइस हाइक हो रहा है, उस माननीय मंत्री जी ये बोलेंगे कि उन लोगों की जो वेजेस है, डेली वेजेस है, वो बढ़ना जरूरी है। वो बढ़ाने के कोई प्रपोजल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है क्या? अगर है तो स्टेट को भी कम्युनिकेट करें। और दूसरी बात मैं मतलब ये जानना चाहती हूँ कि कुछ ऐसे स्वास्थ्य मित्र है जो हमारे ओडिशा में काम करते थे हेल्थ में, आयुष्मान योजना में, उन लोगों को भी जो कंटक जेल में काम करते थे उन लोगों को भी निकाला जा रहा है। वो कौन से कैटेगरी में आते हैं, उन लोगों की फिर रिहैबिलिटेशन किस तरह से हो और किस तरह से, क्योंकि हेल्थ एक ऐसा सब्जेक्ट है, अगर हेल्थ अगर किसी का खराब होता है तो अगर वहां पर कोई असिस्टेंट ना हो तो फिर प्रॉब्लम हो जाते हैं। उन लोगों के लिए कुछ सोचे हैं क्या? और कि ये वो कौन से कैटेगरी में आते हैं और बढ़ाने की अगर कोई योजना है तो सर बताए। थैंक यू सो मच सर।
1: ऑनरेबल मिनिस्टर।
0: माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य की बात में ऐसा इस दृष्टि से ऐसा समझा हो कि उनके यहाँ हेल्थ वर्कर है, उसकी सैलरी बढ़नी चाहिए और उसने ये भी अपेक्षा रखी है कि जो अपने मिनिमम वेज है वो आपको रेगुलर बढ़ाता जाना चाहिए, समय समय पर बढ़ाते जाना चाहिए। मैं उसको माननीय सदस्य को रिप्लाई देना चाहूंगा आपके द्वारा माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारा देश अभी बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है, नया भारत बन रहा है। अध्यक्ष महोदय, आज हमारा भारत दुनिया में डेवलप्ड कंट्री, यूरोप की बात करें 1-2% इकोनॉमिक ग्रोथ है, चाइना यूएसए 4-5% इकोनॉमिक ग्रोथ है, भारत की इकोनॉमी 7.5% से ग्रो कर रही है। जब कोई भी देश की इकोनॉमी ग्रो करती है तब देश के नागरिक का परचेज पावर बढ़ता है, देश के नागरिक का परचेज पावर बढ़ता है तो देश में डिमांड बढ़ती है और डिमांड बढ़ती है तो मैन्युफैक्चरिंग बढ़ता है और मैन्युफैक्चरिंग बढ़ता है तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है तो रोजगारी बढ़ती है स्वाभाविक तौर पर। यहाँ जो बात रखी गई है कि अपने वर्कर्स है उसको, हेल्थ वर्कर्स को अपना सैलरी बढ़नी चाहिए सभी राज्य को, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि आप 2 साल में बढ़ाओ, 3 साल में बढ़ाओ, 5 साल में बढ़ाओ। भारत सरकार तो हर 6 महीने में बढ़ाती है, उसको देखते हुए हर राज्य सरकार, क्योंकि लेबर वेलफेयर वो कंकरेंट लिस्ट में है तो ये राज्य सरकार का अधिकार है कि जब चाहे तब अपने राज्य में वो मिनिमम वेज बढ़ा सकते हैं। किसी का भी वेज में बढ़ोतरी करनी है तो राज्य सरकार उसमें पर बढ़ोतरी करके अपने एम्प्लॉइज को उसका लाभ दे सकते हैं।
1: नाउ क्वेश्चन नंबर 124 श्रीमती सुमित्रा पाल्मीक जी।
4: 124
5: प्रश्न संख्या 124। क्या युवा मामले एवं खेल मंत्री ये बताने की कृपा करेंगे कि क दिव्यांगजनों तथा महिलाओं के मध्य खेल सुविधाओं को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है? ख ऐसे वर्ग के युवाओं को सहायता प्रदान करने हेतु विभिन्न योजनाओं तथा वित्त प्रावधानों का ब्यौरा क्या है? और ग ऐसे वर्ग के युवाओं में नशीली दवाओं के विरुद्ध जागरूकता बढ़ाने तथा उनके करियर मार्गदर्शन हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

0: हैं।
1: आनंद मिश्रा,
0: रक्षा निखिल खडसे, युवा मामले एवं खेल राज्य मंत्री।
2: दल पे रखा है।
1: नाउ फर्स्ट सप्लीमेंट्री श्रीमती सुमित्रा पाल्मिक जी।
3: माननीय सभापति महोदय जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हूँ। आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री महोदय से ये जानना चाहती हूँ कि जो पैरा एथलेटिक्स, इन खिलाड़ियों के लिए आपने कितने सेंटर बनाए हैं और उसमें इन्हें प्रशिक्षित करने का क्या क्या माध्यम है और इसमें महिलाओं युवाओं की संख्या कितनी
1: है।
2: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य जी को बताना चाहूंगी कि पैरा फ्रेंडली फैसिलिटी सेंटर्स हमारे पूरे टोटल साई में 13 सेंटर है, जिसमें से गांधीनगर का जो सेंटर है वो डेडिकेटेड सेंटर है फॉर पैरा, और उसके अलावा 12 सेंटर है हमारा त्रिवेंद्रम में है, अर्नाकुलम में है, संभाजीनगर, बैंगलोर, भोपाल, कलकत्ता, लखनऊ, पटियाला, सोनीपत, आईजी स्टेडियम और केएसएसआर में। इन सभी जगह पे हमारे पैरा एथलीट को ट्रेनिंग दी जाती है और लगभग 172 एथलीट्स यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, और जिसमें से 62 जो हमारे एथलीट्स है वो टॉप स्कीम में भी है, जो एलए के लिए आने वाले ओलंपिक के लिए तैयारी कर रहे हैं। और मैं आपके माध्यम से ये भी बताना चाहूंगी कि 2014 से पहले जो हमारा पैरा ओलंपिक में रैंक था पूरे वर्ल्ड में 67 था और मेडल सिर्फ एक ही था। पैरा एशियन गेम्स में हमारा रैंक 15 था और मेडल सिर्फ 14 थे, लेकिन 2014 के बाद आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने स्पोर्ट्स को लेकर काफी अग्रसर भूमिका रखी और उसके बाद हम देख सकते हैं है कि 2024 में हमारा रैंक 18 था, 29 मेडल्स हमने प्राप्त किए और पैरा एशियन गेम में हमारा रैंक अभी 5th है जहाँ पे हमने 108 मेडल प्राप्त किए। तो सभी पैरा एथलीट्स के लिए हमारे सभी साई के सेंटर में सभी सुविधाएं दी जा रही है, जहाँ पे हमारे महिला एथलीट्स भी काफी बड़ी संख्या में आज प्रैक्टिस कर रही है। धन्यवाद।
1: सेकेंड सप्लीमेंट्री श्रीमान गुलाम अली जी।
4: शुक्रिया चेयरमैन सर, मैं जम्मू कश्मीर से आता हूँ और हमारा जो पड़ोसी मुल्क है वो हमेशा कहीं षड्यंत्र से हमें हमारे युवाओं को खासकर नशा की लपेट में नस्ल कशी करना चाहता है। हमारे वहाँ हमारी जो यूथ मिनिस्ट्री है उसने बहुत सारे प्रोग्राम वहाँ शुरू करे हैं और बच्चे जो हैं हमारे जो स्टोनिंग और उसमें मुलव्वस थे आज वो स्कूलों में और खेलकूद के जरिए बड़े बड़े अवार्ड लेके आ रहे हैं। मैं मिनिस्टर साहिबा को मुबारकबाद भी दूंगा और उनकी बहुत पार्टिसिपेशन रहती है और उनमें उत्साह रहता है खेलने का। मेरा मिनिस्टर साहिबा से क्वेश्चन है कि फिट इंडिया फ्लैगशिप प्रोग्राम है मिनिस्ट्री ऑफ यूथ सर्विसेज का, नशा मुक्त के प्लेजेस भी हम लेते हैं, ड्रग फ्री इंडिया, बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं, क्या नौजवान जो बच्चे बच्चियां हैं जम्मू कश्मीर के, क्या उनकी जो एक्सट्रीम लेवल पे चले गए हैं क्या उनके लिए कोई इंफ्रास्ट्रक्चर रिहैबिलिटेशन का जहां उनको मेन स्ट्रीम में फिर लाने का कोई प्रोग्राम, उस पर कुछ काम हुआ है? मैं उसकी जानकारी चाहूंगा। शुक्रिया।
1: ऑनरेबल मिनिस्टर।
5: माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है कि देश के युवा धन आज नशा की ओर आगे बढ़ रहे हैं, उसको बचाना उस समय की मांग है और न केवल सरकार लेकिन सामूहिक प्रयास की आवश्यकता है। वर्तमान समय में जिस तरह से एडिक्शन बढ़ रहा है, एडिक्शन के सामने मूवमेंट चलाने के लिए आज से एक साल पहले हमने सोचा कि देश के स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन जिसका बहुत बड़ा अनुयायी वर्ग होता है उसको भी उसमें शामिल करना चाहिए, स्कूल कॉलेजों को भी उसमें शामिल करना चाहिए। इसलिए हमने वाराणसी में समिट करी थी, 2 दिन की चिंतन बैठक करी थी और उसमें हमने तय करा कि आने वाले दिनों में हम नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत का कैंपेन को कैसे चलाएं। माननीय अध्यक्ष महोदय, कोई भी देश को समृद्ध राष्ट्र बनना है, डेवलप्ड कंट्री बनना है तो आवश्यक है कि उसके देश के नागरिक फिट रहे, उसके देश के नागरिक स्वस्थ रहे। जब नागरिक स्वस्थ होगा तब सोसाइटी स्वस्थ होगी और स्वस्थ समाज ही समृद्ध राष्ट्र का निर्माण कर सकता है। और इसलिए समृद्ध राष्ट्र बनाने के लिए, डेवलप्ड कंट्री बनाने के लिए हमारे देश के युवा नशा से मुक्त हो उसके लिए कई कार्यक्रम की श्रृंखला चलती है। सरकार की ओर से राज्य सरकार और केंद्र सरकार अपने अपने हिसाब से रिहैबिलिटेशन सेंटर ये सब तो करते हैं, अवेयरनेस कैंपेन भी चलाते हैं, लेकिन हमने तय करा है 2 अगस्त को सारे देश में 100 वीक 2 साल के लिए बहुत बड़ा नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत कैंपेन ऑनरेबल प्रधानमंत्री जी प्रारंभ करवा रहे हैं। एक ही साथ में देश के सभी स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइज

0: ऑर्गेनाइजेशन एक मंच पर आ रहे हैं, देश के सब कॉलेज मंच पर आ रही है, यूनिवर्सिटी मंच एक मंच पर आ रही है और माय भारत के युवा उसको लीड कर रहे हैं। युवाओं ने अपने स्वयं को चिंता करी कि हम हमारे साथी को एडिक्शन से बचाए, नशा से बचाए, इसलिए 2 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी 10:30 बजे समग्र देश को संबोधित करेंगे और 1 करोड़ से अधिक युवा एक साथ में शपथ ग्रहण करेंगे कि हम तो नशा से मुक्त होंगे, लेकिन हम हर व्यक्ति, एक एक व्यक्ति को नशा मुक्त करेंगे। एक कैंपेन हर वीक चलेगा, उसमें नुक्कड़ नाटक हो, उसमें क्विज कॉम्पिटिशन हो, उसमें पेंटिंग कॉम्पिटिशन हो, उसमें अलग अलग अलग संडे ऑन साइकिलिंग के साथ उसको जोड़ा जाए, स्पोर्ट्स के साथ उसको जोड़ा जाए। हमें हमारे युवाओं को खेल के मैदान में लाना होगा, हमें हमारे युवाओं को में व्यापक अवेयरनेस लानी होगी और ये केवल सरकार नहीं कर पाएगी, उसमें सारी सोसाइटी, सारे देश की जिम्मेवारी है। वो हमारा युवा है, देश का युवा है, देश का भविष्य है और यही हमारे देश के विकसित भारत के राहबर है और इसलिए देश के युवाओं को उसके साथ जोड़ के इस अभियान का प्रारंभ हो रहा है। सभी सम्मानित सदस्यों को मेरी प्रार्थना है, आप सब लोगों को भी लोकल लेवल पर इन्विटेशन दिया जाएगा, जहां से भी आपको इन्विटेशन मिले वहां आप उपस्थित रहे, युवाओं को प्रोत्साहित करें, हर वीक में कोई एक एक और एक कोई न कोई एक ऐसी एक्टिविटी करे जिसमें युवाओं के साथ नशा मुक्ति के लिए मेरे देश के जनप्रतिनिधि का भी संवाद हो, ताकि देश के युवा व्यसन मुक्त बने और विकसित भारत के राह पर आगे बढ़े। इस अभियान के साथ सभी को जुड़ने के लिए मेरी प्रार्थना है।
1: हेड सप्लीमेंट्री डॉक्टर कविता पटेलदार।
2: सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से ये पूछना चाहती हूँ कि ग्रामीण महिलाओं को स्पोर्ट्स में आगे बढ़ाने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है?
1: ऑनरेबल मिनिस्टर।
3: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य जी को बताना चाहूंगी कि खास करके ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं का स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेशन बढ़ाने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 2021 में अस्मिता लीग्स की शुरुआत की थी कि जिसके माध्यम से आज पूरे देश में हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, तहसील लेवल पे हम अस्मिता लीग्स का आयोजन कर रहे हैं और जिसके माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र की लड़कियां या महिलाएं, उनका पार्टिसिपेशन आज स्पोर्ट्स में बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। और मैं आज इस हाउस को भी बताना चाहूंगी कि लगभग 3,500 से भी ज्यादा लीग्स आज तक हम करवा चुके हैं, 38 डिसिप्लिन में आज ये लीग हो रही है पूरे देश में और लगभग 6 लाख से भी ज्यादा महिलाओं ने इस लीग्स के माध्यम से पार्टिसिपेशन किया है और इन्हीं लीग्स के माध्यम से आज साई के सेंटर या स्टेट एक्सेलेंस जो सेंटर है हमारे स्पोर्ट्स के, उनमें इनका सिलेक्शन किया जाता है जिससे ज्यादा से ज्यादा महिलाएं स्पोर्ट्स में आज आगे आते हुए दिखाई दे रही है, मेडल तक पहुंच रही है और उसके साथ ही हमारे जितने भी साई के सेंटर है, स्टेट के साथ भी हम बात कर रहे हैं कि कोचेस, जो महिलाओं की संख्या है कोचेस में, उनका भी प्रावधान ज्यादा से ज्यादा बढ़े कि जिसके माध्यम से एक अच्छा माहौल हम सभी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट में महिलाओं खिलाड़ी के लिए दे पाए। धन्यवाद।
1: स्पोर्ट्स सप्लीमेंट्री श्रीमान उपेंद्र कुशवाहा जी।
4: हाल के वर्षों में हम अपने राज्य बिहार में देखते हैं कि सूखा नशा की प्रवृत्ति युवाओं में ज्यादा बढ़ी है, क्या सरकार इस बात से सहमत है? सरकार ने कोई स्टडी वहाँ इस विषय को ध्यान में रखकर कराया है? अगर नहीं कराया है तो सरकार कराएगी। एक दूसरा, लोगों के बीच इसके कारण को ढूंढते हुए विमर्श के रूप में बिहार में जो शराबबंदी कानून लागू है उससे भी कुछ लोग संबंध इसका जोड़कर देखते हैं कि क्योंकि शराबबंदी कानून लागू है इसलिए ड्रग लेने की प्रवृत्ति नशा के रूप में वहाँ के युवाओं में ज्यादा बढ़ी है, तो क्या शराब कानून लागू होने से भी कोई इसका संबंध है? इस दृष्टि से भी कोई स्टडी कराना चाहेंगे?
1: ऑनरेबल मिनिस्टर।
0: माननीय अध्यक्ष महोदय, ये बात सार्वजनिक स्वीकार करने योग्य है कि नशा तो युवाओं में बढ़ रहा है और उसका समाधान करने के लिए हमें सामूहिक अभियान चलाना है, जिस उल्लेख में लास्ट क्वेश्चन के रिप्लाई में कर चुका हूँ। लेकिन जो पहले नशा था और बदलते समय में हेरोइन, सरस, उसके अलावा सिंथेटिक ड्रग्स, ये बहुत खतरनाक है, उसका उपयोग भी न्यू जनरेशन में बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। एक नहीं, ऐसे कई टाइप की स्टडी ने ही ये बताया है और हम सार्वजनिक जीवन में देख भी रहे हैं कि उसको न्यू जनरेशन में स्कूल कॉलेज में भी उसका प्रवेश हो चुका है। चौराहे पर पान मसाला बेचने वाले शॉप पर भी ये चीजें जब हम खड़ा रहते हैं तब हमें पता चलता है। उसका समाधान कैसे करा जाए, उनके लिए

0: दो ही रास्ता है, एक कानूनी प्रावधान तो बहुत कुछ है और बदलते समय के साथ पब्लिक अवेयरनेस और काउंसलिंग, कई समस्या है उसके लिए हम कोई एक कारण को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते हैं। माननीय सदस्य ने कहा कि क्या कारण है कि नशा बढ़ता जा रहा है, कई कारण है। आज बच्चे, उसकी स्थिति, उसका ट्रेस, उसकी जीवन शैली, ये सब एनवायरमेंट जो आज वर्तमान सोशल मीडिया में दुनिया के साथ संपर्क में रहना और वहां जो कुछ हो रहा है उसकी इफेक्ट उसके मन में, उसके मन मस्तिष्क में भी हो रही है। इसलिए ये सब स्थिति का एनालिसिस करके हमें आगे बढ़ना होगा, लेकिन एक खतरा हमारे सामने है, उसका समाधान जितना हो सके इतना करने की कोशिश करी है और आने वाले दिनों में सामूहिक चिंतन के आधार पर, सामूहिक रिसर्च के आधार पर, सतत उसके पर अध्ययन के आधार पर रास्ता तय करना होगा।
1: नाउ क्वेश्चन नंबर 125, डॉक्टर ज्योति नाथनाथ वाटमारे।
2: क्वेश्चन नंबर 125।
3: प्रश्न संख्या 125, क्या श्रम और रोजगार मंत्री ये बताने की कृपा करेंगे कि क ई श्रम पोर्टल पर पंजीकृत 31.5 करोड़ से अधिक असंगठित श्रमिकों में महिलाओं की संख्या रिकॉर्ड 54% से अधिक हो जाने के उपरांत उन्हें वन टॉप सॉल्यूशन के माध्यम से केंद्रित सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु सरकार की क्या योजना है? ख, क्या सरकार महाराष्ट्र सहित देश भर की कृषि, घरेलू कार्य तथा निर्माण क्षेत्रों में कार्यरत असंगठित महिला श्रमिकों को पालना योजना तथा प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना जैसी पेंशन योजना से जोड़कर प्रत्यक्ष लाभ अंतरण डीबीटी सुनिश्चित कर रही है? और ग, मंत्रालय द्वारा ऐसी महिला श्रमिकों के लिए कौशल विकास, मातृत्व लाभ तथा सुरक्षित कार्य वातावरण, जल, सफाई एवं स्वच्छता अवसंरचना सुनिश्चित करने हेतु क्या विशेष बजटीय प्रावधान किए गए हैं?
1: फर्स्ट सप्लीमेंट्री, यू कैन गो स्ट्रेट अवे।
2: आदरणीय सभापति महोदय, देश के निर्माण और अर्थव्यवस्था की रीढ़ हमारी असंगठित क्षेत्र की महिला श्रमिक हैं, जो कठिन परिस्थितियों में भी राष्ट्र के विकास में अपना अभूतपूर्व योगदान देती है। मैं आपके माध्यम से आदरणीय मंत्री महोदय से ये पूछना चाहूंगी कि असंगठित क्षेत्रों में काम करने वाले महिला श्रमिकों का शोषण न हो, उन्हें सुनिश्चित वेतन मिले, काम की जगह पर उन्हें सुरक्षा मिले, उनकी मैटरनल और मेंस्ट्रुअल हेल्थ की केयर हो, उनका ख्याल रखा जाए और महिला कामगारों के बच्चों के लिए पालना योजना अनिवार्य की जाए और सरकार के सभी योजनाओं का लाभ अंतिम पायदान पर खड़ी महिला श्रमिकों को तक पहुंचाने के लिए सरकार क्या कदम उठाने जा रही है?
1: ऑनरेबल मिनिस्टर
3: शोभा कारंदलाजे, श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री।
4: माननीय चेयरमैन सर, पहली बार देश में 29 एक्ट को हम बदल के 4 कोड में लाए हैं, महिला का सुरक्षा इसी में है। ये 4 कोड में महिला के लिए हम एम्प्लॉयर्स कैनॉट डिस्क्रिमिनेट, वो डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हैं सर। महिला एंड पुरुष को एक साथ लेके जाना यानी एक ही पगार देना, जेंडर डिस्क्रिमिनेट को इसी में हम नकारे हैं। ऐसे ही महिला वो बच्चे का बात किया, वर्किंग जगह में फ्रेश रखने के लिए ऐसे ही हम मैटरनिटी लीव पहले 8 महीने का अभी 26 वीक तक हम बढ़ाए हैं। एंड कोई पोस्ट मैटरनिटी में घर से काम करना चाहते हैं वो घर से भी काम कर सकते हैं। एंड 2 वीक का बीच में वो मैटरनिटी मेडिकल ब्रेक भी ले सकती है। ऐसे भी हम 3500 मैटरनल बेनिफिट भी उसको दे रहे हैं सर। एंड अभी फैमिली बोले तो केवल महिला नहीं है, कौन बच्चा पैदा करते हैं वो फैमिली को हम एक्सटेंशन किया है वुमेन एम्प्लॉय के साथ, इसका इन लॉज भी वो फैमिली में अभी आ रहे हैं। महिला को, महिला का एम्प्लॉयमेंट कितना है देश में, हर साल महिला का अनएम्प्लॉयमेंट कम हो रहा है सर। अभी बार बार बोलते हैं अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहे हैं, मगर देश का सामने में एक आंकड़ रखना चाहती हूँ। ऑल इंडिया लेवल में अनएम्प्लॉयमेंट रेट इट इज डिक्रीज फ्रॉम 3.6% टू 3.1% इन इंडिया हमारे प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व में। ऐसे ही यूथ का एम्प्लॉयमेंट भी अभी बढ़ रहा है, महिला का एम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है एंड वर्कफोर्स पॉपुलेशन भी बढ़ रहे हैं। एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज फ्रॉम 54% इन 2022, इसके पहले का आंकड़ा ही नहीं है सर। हमारे देश में कोई आंकड़ा ही नहीं रखा है कितना एम्प्लॉयमेंट हमारे देश में हम दे रहे हैं। पहली बार हम आंकड़ा ले को शुरू किया, अभी वो बढ़कर 57.4% हमारे देश में एम्प्लॉयमेंट बढ़ा है सर। एम्प्लॉयमेंट फॉर्मलाइजेशन कैसे होता है, उसका आंसर किधर मिलता है? हमारा फॉर्मलाइजेशन करने के लिए भारत सरकार अभी तैयार किया, इसके कारण ईपीएफओ में 2007 to 2025 में ये केवल 8 साल का अंदर 8.23 करोड़ लोग सब्सक्राइब, नया सब्सक्राइबर ईपीएफओ में बढ़ा है, नया सब्सक्राइबर। पिछले साल लास्ट ईयर में वो नंबर था 1.6 करोड़, लाइक इतना बड़ा रेट में हमारा एम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है। इसके कारण है अलग अलग सर, हमें एमएसएमई को मदद दे रहे हैं, अभी एमएसएमई में उद्यम पोर्टल खोला हम, 9 करोड़ उद्यम पोर्टल में एंटरप्राइज जुड़े हैं, वो लोग बताया हम 39 करोड़ लोगों के लिए काम दिया है, एम्प्लॉयमेंट दिया है, इसी में 40% महिला है सर, हमको बोलने के लिए खुश होता है 40% इसी में महिला है। अभी एंटरप्रेन्योर्स ज्यादा हो रहे हैं, महिला का ज्यादा हो रहे हैं, ऐसे ही स्टार्टअप्स केवल हम गिनती करते थे हाथ में, मगर अभी प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2 लाख स्टार्टअप के लिए भारत सरकार मदद दिया, इसके कारण नए बच्चे, नए नौजवान युवती ये स्टार्टअप खोलने के लिए कर रहे हैं सर। मुद्रा में हम प्रधानमंत्री जी एक योजना शुरू किया, प्रधानमंत्री जी मुद्रा योजना, इसी में 3.8 करोड़ लोगों को हम जॉब दिया है एंड एंटरप्रेन्योर्स बनाया है। पीएमईजीपी में सर 97 लाख लोगों को पीएमईजीपी में हम एम्प्लॉयमेंट दिया है सर। इतना बड़ा नंबर में भारत सरकार एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने के लिए अभी अभी एक योजना शुरू किया, अभी लास्ट महीने में प्रधानमंत्री जी पहले क्रेंच का पैसा लोग एंटरप्रेन्योर्स एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉयज को दिया, वो योजना है प्रधानमंत्री जी विकसित भारत रोजगार योजना, इसी में हम 1 लाख करोड़ लगा रहे हैं एंड किसके लिए, एम्प्लॉयर्स को भी मदद देना एंड नया एम्प्लॉय जुड़ा तो उसको भी मदद देने के लिए। इसीलिए मैंने बताना चाहती हूँ पूरा देश में महिला को एंटरप्रेन्योर्स बनाने के लिए, जॉब दिलाने के लिए एंड सरकार में जॉब दिलाने के लिए 19 क्रेंचर्स में सरकार का जॉब दिलाने का रोजगार महिला हम बनाए, इसमें 11 लाख लोगों को सरकारी नौकरी भारत सरकार ने दिया है।
1: सेकंड सप्लीमेंट्री श्रीमती सीमा द्विवेदी जी।
5: माननीय सभापति महोदय, सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 अधिनियमित किया गया है जो 21 नवंबर 2025 से प्रवृत्त हुई है। महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहती हूँ कि जो इस अधिनियम में से प्रवृत्त किया गया है, इसमें महिलाओं को क्या क्या सुविधा दी जा रही है, इसके बारे में माननीय मंत्री जानना चाहती हूँ।
4: माननीय चेयरमैन सर, मैं अभी बताइए 29 कानूनों को हम निकाल के ब्रिटिशर्स का समय का कानून था, हमारा देश वाले नहीं बनाए थे वो कानून, हम ऐसे रखे थे उसको हम पूरे निकाल के अभी 4 कोड में लाया है। इसी में बहुत बड़ा एंड अच्छा कोड है सोशल सिक्योरिटी कोड। सोशल सिक्योरिटी कोड में महिलाओं के लिए हम पहले क्वेश्चन का आंसर में भी बताया सर, वो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हम नहीं कर सकते नया कोड में, एंड एक काम के लिए इक्वल वर्क फॉर इक्वल वेजेस, एंड इक्वल वेजेस देना इक्वल वर्क के लिए, ऐसा हम किया है सर। ऐसे कोई भी बोर्ड हो, सरकार कुछ भी बोर्ड गठित करे और यानी इंडस्ट्री कुछ भी बोर्ड गठित करे, इसी में 1/3 उसी में बोर्ड में मेंबर्स महिला होना चाहिए, महिला का समस्या महिला ही जानती है, इसलिए महिला होना चाहिए, ऐसे ही प्रोविजन इसी में रखा है सर। मैटरनिटी लीव 26 वीक का काम बढ़ाया है सर, वर्क फ्रॉम होम का प्रोविजन हम रखे हैं सर। ऐसे ही महिला को कहीं इंडस्ट्री में काम करने के लिए प्रोविजन नहीं था, पहले बार महिला किसी भी इंडस्ट्री में काम कर सकती है, नई ड्यूटी भी कर सकती है, मगर उसका सुरक्षित का कायम रखना एंड उसका सुरक्षित के लिए ध्यान रखना, ऐसा भी प्रोविजन हम रखे हैं सर। मेडिकल बोनस हम 3500 दे रहे हैं, नर्सिंग ब्रेक्स हम दे रहे हैं, ऐसे महिला का बच्चे के लिए क्रेश फैसिलिटी भी इंडस्ट्री के तहत और वर्किंग

0: ऑर्डर्स में हम दे रही है। ऐसे ही सर हम दे स्टैंडिंग ऑर्डर्स ऑफ होम अरेंजमेंट फॉर फ्लेक्सीबिलिटी ऑफ वुमेन वर्कर्स सेक्टर में स्टैंडिंग कमिटी बनाने के लिए हम इसी में रखा है सर। एंड ग्रीवेंस रिड्रेसल सेल महिला के लिए अलग से ग्रीवेंस रिड्रेसल सेल रखना चाहिए, ऐसे हम नया कोड में सोशल सिक्योरिटी कोड में महिला के लिए हम लाए हैं सर।
1: थर्ड सप्लीमेंट्री डॉक्टर धर्मशील गुप्ता जी।
2: माननीय सभापति महोदय आपका धन्यवाद। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहती हूँ कि बिहार की बहुत बड़ी आबादी महिलाएं काम करती हैं, रोजगार करती हैं, तो क्या बिहार में कितनी महिलाएं रोजगार कर रही हैं, या माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कितने रोजगार को बढ़ाया गया है, ये मैं जानना चाहती हूँ आदरणीय मंत्री जी से।
0: चेयरमैन सर, बिहार में ई श्रम पोर्टल में 3.2 करोड़ लोग जुड़े हैं। इसी में अलग अलग तरीके का लोग हैं। ई श्रम पोर्टल में जुड़ने वाले एग्रीकल्चर लेबरर्स है सर, विश्वकर्मी से, गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स है, ऐसे ही सर्विस सेक्टर में कौन कौन काम करते वो है, ऑटोमोबाइल एंड ट्रांसपोर्टेशन इसी में काम करने वाले डोमेस्टिक वर्कर्स है, ऐसे अलग अलग तरीके का लोग बिहार में 3.3 करोड़ लोग जुड़े हैं।
1: फोर्थ सप्लीमेंट्री डॉक्टर कविता पाटीदार जी।
3: धन्यवाद माननीय सभापति महोदय। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से ये जानना चाहूंगी कि लेबर कोर्ट में महिलाओं के लिए क्या प्रोविजन रखा है।
1: ऑनरेबल मिनिस्टर
0: कर दिया है, पहली बार महिला कोड में हम महिला के लिए प्रोविजन रखा है। महिला कोड देश का इतिहास में वो पहले बहुत साल से मांग था, लेबर कोड आना चाहिए, लेबर कोड आना चाहिए। 2020 से प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में प्रयत्न किया मगर नहीं हो पाया। पहली बार हमारा सरकार पिछले साल नवंबर 21 को पूरा देश में लेबर कोड को लागू किया। ये लेबर कोड में 4 कोड में महिला का विशेष प्रावधान हम रखा है सर, एंड महिला का सिक्योरिटी करने के लिए एंड इक्वल काम के लिए इक्वल वेजेस देने के लिए इसी में सब प्रोविजन है। मैंने पिछले आंसर में इसका सदन के नजर में लाया सर। थैंक यू।
1: नाउ क्वेश्चन नंबर 126 श्रीमान उज्जवल देवराव निकाम जी।
4: क्वेश्चन नंबर 126 सर।
5: प्रश्न संख्या 126, क्या विधि और न्याय मंत्री ये बताने की कृपा करेंगे कि क गत 3 वर्षों में से प्रत्येक वर्ष के दौरान विधिक सेवा प्राधिकरणों के माध्यम से विधिक सहायता तथा विधिक परामर्श प्राप्त करने वाले व्यक्तियों की राज्यवार संख्या कितनी कितनी है। ख आज की स्थिति के अनुसार देश के जिलों में स्थापित तथा कार्यरत विधिक सहायता बचाव परामर्श कार्यालयों की राज्यवार संख्या कितनी कितनी है। ग उक्त अवधि के दौरान राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण को निर्गत निधि तथा तत्संबंधी उपयोग का ब्यौरा क्या है। और घ उक्त अवधि के दौरान विधिक सेवा प्राधिकरणों के माध्यम से संवितरित मुआवजे सहित अपराध के पीड़ितों के लिए विधिक सेवाओं को सुदृढ़ करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं।
1: ऑनरेबल मिनिस्टर
5: श्री अर्जुन राम मेघवाल, विधि एवं न्याय राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार।
6: चेयरमैन सर, उत्तर सभा पटल पे रख लिया है। थैंक यू।
1: द फर्स्ट सप्लीमेंट्री श्रीमान उज्जवल देवराव निकाम जी।
4: थैंक यू सर। ऑनरेबल मिनिस्टर, व्हाइल रिप्लाई इंडिकेट्स दैट द नंबर ऑफ बेनिफिशियरीज, इट डज नॉट इंडिकेट द क्वालिटी ऑफ द लीगल असिस्टेंस प्रोवाइडेड। सो माय पिन पॉइंट क्वेश्चन टू यू, हैज द गवर्नमेंट अंडरटेकन एनी इंडिपेंडेंट इवैल्यूएशन ऑफ द इफेक्टिवनेस ऑफ लीगल एड, इंक्लूडिंग सक्सेस रेट, क्लाइंट सेटिस्फैक्शन और क्वालिटी ऑफ रिप्रेजेंटेशन प्रोवाइडेड टू द बेनिफिशियरी।
1: ऑनरेबल मिनिस्टर।
6: धन्यवाद सभापति जी। माननीय सदस्य ने जो प्रश्न किया है नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी से संबंधित है और इसमें कितना खर्चावार कितने लोग लाभार्थी हुए, ये जवाब इनको दे दिया गया है। मैं इस स्कीम के बारे में थोड़ा बताना चाहता हूँ कि समाज के गरीब और वंचित वर्गों को निःशुल्क और सक्षम विधिक सेवाएं प्रदान करने के लिए सरकार ने विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम के तहत एक नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी का गठन कर रखा है। ये जिलों में भी काम करते हैं, स्टेट में भी करते हैं। जब नेशनल लेवल पे करते हैं तो नालसा कहलाते हैं, जब राज्य स्तर पे करते हैं तो वो उस स्टेट का नाम से साथ उसको लीगल सर्विस अथॉरिटी से जोड़ देते हैं, डिस्ट्रिक्ट में वो डालसा कहलाते हैं, तालुका में भी काम करते हैं। जो संख्या ये पूछना चाह रहे हैं विगत 3 सालों में, तो 2023 और इसमें हमने 15.5 लाख इसमें लाभार्थी रहे।

0: 24-25 में 16.5 लाख लाभार्थी रहे और 25-26 में 20 लाख लाभार्थी रहे, ये इंक्रीजिंग ट्रेंड है। ये जो पूछना चाह रहे हैं कि क्या कोई इंडिपेंडेंट एजेंसी से भी कोई आपने इवोल्यूशन करवाया है क्या, मैं ये इनको कहना चाहता हूं कि हर जगह सीएससी है, कॉमन सर्विस सेंटर, वहां पे न्याय बंधु, प्रो बोनो, जो गरीब हैं, दूर स्थानों पे रहते हैं, वकील कर नहीं सकते, उनको सरकार निःशुल्क ये विधिक सहायता देती है और उसमें एक कंसेप्ट है, हक हमारा भी है, उसके तहत हम काम करते हैं और इसका इवोल्यूशन भी हम कराते हैं। इतने लाभार्थी इसमें लाभान्वित हुए हैं और ये बहुत अच्छी योजना है गरीबों को न्याय के द्वार तक पहुंचाने के लिए। धन्यवाद।
1: सेकंड सप्लीमेंट्री श्रीमान सुभाषिस कुंदिया जी।
2: थैंक यू चेयरमैन सर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं, उड़ीसा के ट्राइबल क्षेत्रों के में स्थानीय भाषा में लीगल एड और लीगल अवेयरनेस सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए।
1: ऑनरेबल मिनिस्टर।
0: सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न किया है वो जो रीजनल लैंग्वेजेज है, अभी भाषिणी टूल हमारे बहुत अच्छी तरह से काम कर रहा है। जितने भी हमारी भाषाएं हैं, जैसे 22 भाषाएं संविधान में मान्यता प्राप्त है, तो संविधान भी हमने सभी भाषाओं में अनुवाद किया है और रीजनल जो भाषाएं हैं उनका भी भाषिणी टूल के माध्यम से आप भाषाओं का अनुवाद जान सकते हैं। लोकसभा में भी, राज्यसभा में भी आपने देखा होगा कि अनुवाद जो है ज्यादा भाषाओं में हो रहा है। ये जो विषय आपने रखा है ये विषय जस्टिस से संबंधित ही है कि जो भाषा नहीं जानता है, जैसे अंग्रेजी में अधिकतर हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में लोग बहस करते हैं, जो भाषा नहीं जानते हैं उनके लिए क्या भाषिणी टूल उसका एक सबसे महत्वपूर्ण उपाय है और इस दिशा में नरेंद्र मोदी जी की गवर्नमेंट आने के बाद तेजी से काम हुआ है। भाषा हमारी संस्कृति का हिस्सा है, इसलिए हम संस्कृति का विकास भी करेंगे, विरासत को भी बताएंगे। धन्यवाद।
1: दी हाउस स्टैंड्स अडजॉर्न्ड टू मीट एट 2 PM।
3: अभी आप आज राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान हुई कार्यवाही की रिकॉर्डिंग सुन रहे थे। यू वर लिसनिंग टू द प्रोसीडिंग्स ड्यूरिंग द क्वेश्चन आवर इन राज्यसभा टुडे। दिस ब्रॉडकास्ट केम टू यू फ्रॉम द दिल्ली स्टेशन ऑफ आकाशवाणी।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। संसद ने लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने आज इस विधेयक को मंजूरी दे दी। लोकसभा ने इसे कल ही पारित कर दिया था। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि ये देश के हर नागरिक और विशेष रूप से युवाओं के भविष्य से जुड़ा विषय है। उन्होंने कहा कि सरकार ने पेपर लीक रोकने और शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए कई कदम उठाए हैं। उन्होंने बताया कि देश में एम्स की संख्या 7 से बढ़कर 22 हो गई है और मेडिकल सीटों में भी वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से शिक्षा व्यवस्था में बड़ा बदलाव आया।

0: पर लीक रोकने के लिए और अधिक प्रभावी प्रावधान होने चाहिए थे। भाजपा के ब्रजलाल ने कहा कि इस विधेयक में फास्ट ट्रैक अदालतों और विशेष कार्यबल का प्रावधान है। डीएमके के तिरुचि शिवा और समाजवादी पार्टी के राम गोपाल यादव ने नीट परीक्षा समाप्त करने की मांग की। चर्चा के बाद राज्यसभा ने विधेयक ध्वनिमत से पारित कर दिया। इसके बाद सदन की कार्यवाही कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। संसद ने राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक का उद्देश्य वंदे मातरम को राष्ट्रगान के समान वैधानिक संरक्षण प्रदान करना है। वंदे मातरम के अपमान पर 3 वर्ष तक की कैद, जुर्माना या दोनों सजा हो सकती है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि यह विधेयक देश की सांस्कृतिक विरासत, राष्ट्रीय पहचान और स्वतंत्रता संग्राम के आदर्शों का प्रतिनिधित्व करता है। श्री राय ने कहा कि वंदे मातरम केवल एक गीत नहीं है, बल्कि ये राष्ट्र की आत्मा की आवाज है।
1: यह विधेयक राष्ट्र गौरव का विधेयक है। यह किसी राज्य के खिलाफ नहीं है, किसी व्यक्ति या किसी विचारधारा के खिलाफ नहीं है। और जब राष्ट्रगान हो तो उसके साथ साथ राष्ट्र गीत का भी गायन हो। अब एक भारत श्रेष्ठ भारत के लिए संपूर्ण वंदे मातरम चाहिए।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया की स्थिति की समीक्षा के लिए आज मंत्रिमंडल की सुरक्षा समिति की बैठक की अध्यक्षता की। श्री मोदी ने नाविकों सहित लोगों के हितों की रक्षा के लिए सभी घटनाक्रमों की नियमित निगरानी के लिए एकीकृत और समन्वित व्यवस्था बनाने को कहा। उन्होंने नाविकों और उनके परिवारों को समय पर सूचना, आपातकालीन सहायता और परामर्श के लिए एक तंत्र स्थापित करने का भी निर्देश दिया। दिल्ली सरकार नीट परीक्षा में कथित अनियमितताओं के विरोध प्रदर्शनों में शामिल विद्यार्थियों के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करेगी। ये फैसला आपराधिक रिकॉर्ड वाले प्रदर्शनकारियों पर लागू होगा। ये निर्णय उच्चतम न्यायालय के 28 जुलाई के आदेश के अनुरूप लिया गया है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय सचिव एस कृष्णन ने कहा कि सरकार ने देश में सेमीकंडक्टर विनिर्माण मजबूत करने और आत्मनिर्भर सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम बनाने के लिए 1,27,500 करोड़ रुपए के बजट के साथ इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के दूसरे चरण को मंजूरी दे दी है। विधेयक पारित होने पर प्रधानमंत्री मोदी ने थोड़ी देर पहले इंस्टाग्राम पर एक वीडियो संदेश जारी किया। अपने संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि संसद ने एक ऐसा बिल पास किया है जिससे परीक्षा प्रणाली मजबूत होगी। 2 बार के ओलंपिक पदक विजेता नीरज चोपड़ा आज राष्ट्रमंडल खेलों में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा के फाइनल में पहुंच गए हैं। रोहित यादव और यशवीर सिंह ने भी फाइनल में जगह बना ली है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Saira Mujtaba. Parliament has passed the Public Examinations Prevention of Unfair Means Amendment Bill 2026, with the Rajya Sabha approving it today. The bill was passed by the Lok Sabha yesterday. The legislation incorporates several significant provisions, including stringent penalties such as imprisonment for up to 10 years, fines of up to 10 crore rupees, and seizure of the properties of convicted offenders. To ensure the expeditious disposal of cases, the legislation mandates that every state government and union territory administration establish special fast-track courts for the day-to-day trial. It further provides that investigations into offences must be completed within 2 months from the date the information is recorded at the police station. The trials must be concluded within 3 months from the filing of the charge sheet. Parliament has also passed the Prevention of Insults to National Honour Amendment Bill 2026, with the Lok Sabha approving it today. Rajya Sabha passed the legislation yesterday. The law will further amend the Prevention of Insults to National Honour Act 1971. The legislation seeks to give Vande Mataram the same statutory protection as the national anthem Jan Gana Mana and make the insult to the national song a criminal offence. These offences are punishable with imprisonment up to 3 years, a fine or both.